0: Eligible placements. Sage University, transforming your passion into profession.
1: अमरनाथ के लिए बालटाल बेस कैंप से चौथा जत्था रवाना. अब तक 56,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन. अमरनाथ यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात. जम्मू से श्रीनगर के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू. दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश से गर्मी से राहत. आज भी बारिश का अलर्ट जारी. मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी. ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर आज मुंबई में स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी के आदेश. देश को इसी महीने मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात. 17 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन. जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी हाईटेक ट्रेन सेवा. दक्षिण कोरिया इंचियोन में फुटबॉल रोबोट कप का शानदार आयोजन किया गया. तो वहीं सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने जीता लार्ज साइज ह्यूमनॉइड लीग का खिताब. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर. मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा. सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ.

निर्मल मन जन सो मोही पावा मोही कपट छल भगवान के दर्शन। अच्छा अब फिर यहां वही बात आ गई, भगवान कहां है? बोले जहां भक्त की हां भगवान वहां। भगवान कहां? जहां भक्त की हां भगवान वहां। प्रहलाद जी ने क्या कह दिया? खंबे में है? बोले हां। भगवान देखो मिले कि नहीं प्रकट भाई? अच्छा देखो, भगवान कर्जा भी तुरंत चुकाते। राम अवतार में पत्थर से भक्ति नहीं प्रकट हुई, तो इधर नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बैलेंस बराबर। तो भगवान कहां? बोले जहां भक्ति की वहां भगवान। इसमें दूसरी बात सुनो। बोले भगवान कैसा है? बोले जैसा देखो वैसा है। पानी का कोई आकार थोड़ी है। बर्फ फ्रिज में जिस बर्तन में रख दो वैसे ही जम जाती। कटोरी में रखो तो कटोरी, कुल्फी वाली लगाओ तो कुल्फी, गिलास में रखो तो गिलास। अब पानी का कोई आकार नहीं, जिस आकार में रख दो उसी आकार में वो जम जाता। भगवान भगवान दोनों है, निराकार भी है साकार भी। निराकार ब्रह्म ही साकार। हम अभी जब बैठे थे प्रसाद पा रहे थे तो महाराज जी को अगर 8वीं शताब्दी के लगभग आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जब चारों धामों की स्थापना के लिए निकले तो बद्रिकानाथ जब आए, बद्री विशालापुरी जैसे ही आए, यहां आकर उन्होंने अलकनंदा जी में जैसे ही गोता लगाया तो अपने तपोबल के प्रभाव से भगवान नारायण को जो निराकार रूप में पर्वत बन करके तपस्या कर रहे थे उन्हीं को मूर्ति के रूप में प्रकट करके यहां पर विराजमान करवा दिया। साकार रूप में प्रकट कर दिया है तो वो निराकार। अब पर्वत का कोई आकार है क्या? बोलो बोलो बोलो। कोई ठीक ठाक आकार नहीं, आड़ा टेढ़ा तिरछा, एक अलग ही आकार में निराकार में। लेकिन भगवान यहां तपस्या कर रहे तो बोले भक्त कैसे पता लगाएं कि कैसी तपस्या कर रहे और तपस्या होती कैसी? बोले भाई तपस्या ऐसी होती आंख बंद किए ऐसे हाथ रखे हुए। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। जो छोटा बच्चा होता है वो सीधा सीधा नहीं पढ़ पाता, वेद की ऋचाएं नहीं पढ़ पाता, वेद के मंत्र नहीं पढ़ पाता। अब जो संस्कृत पढ़ा ही ना हो उसको सीधी वेद की बातें बताओ तो उसको ना समझ आएगी। जिसे हिंदी नहीं आती उसको आप जो है अंग्रेजी पढ़ाओ तो ना समझ आएगी। और जिसको जो है अभी कुछ सीखा ही नहीं उसको आप हिंदी पढ़ाओ उसे आएगा ही नहीं। तो फिर मास्टर क्या करते हैं? छोटा बड़ा पढ़ाते।

लेकिन छोटा बड़ा भी कैसे पढ़ाते, चिन्ह दिखाकर आ अनार का, ताकि अनार के चक्कर में आ ध्यान रहे, बड़ा आ आम का, आम के चक्कर में बड़ा आया। देखो उदाहरण देकर के समझाते हैं। एक अच्छा बोले अब छोटा लिखना है कैसे लिखे, बोले बेटा दो चूल्हे बनाओ और चूल्हे में लकड़ी लगा दो और लकड़ी के ऊपर फिर लकीर धर दो, लो आ बन गया। समझाते, बोलो समझाते कि नहीं समझाते? क्यों समझाते? ताकि इसको ध्यान में भर जाए, स्मरण में भर जाए, तो भगवान भी जगत आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने क्या किया 8वीं शताब्दी में, बोले बद्रीनाथ भगवान की महिमा जन जन तक पहुंचेगी, तो लोग पूछेंगे कैसे हैं बद्रीनाथ, तो कैसे पता लगेगा? तो बोले टेंशन ना लो, निराकार भगवान से कहा आप मूर्ति रूप साकार बनकर अलकनंदा जी में हमें मिलो, और डुबकी लगा करके भगवान को निकाल लिया और वो मूर्ति को रख दिया। ऐसा किया तो है वो निराकार, पर हम सबके ज्ञान के लिए वो साकार बन गए। क्या बन गए? साकार बन गए। तो भगवान तो वैसे तो निराकार है, ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाच पे नाच नचावे। भगवान को कोई पकड़ सकता क्या? नहीं पकड़ सकता, पर भगवान खुद ही पकड़ आ जाते। कभी कभी माता और छोटा बच्चा खेल खेलता, जब बच्चा चलने लगता तो माँ कहती लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो माँ आगे आगे दौड़ती, बच्चा पीछे पीछे भागता। क्या कभी बच्चा पकड़ पाएगा माताजी को? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। पर माताजी ही ठहर जाती, पकड़ लेती, बच्चे को लगता कि लो लो हमने पकड़ लिया, हो पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अरे पकड़ा नहीं है, माताजी की इच्छा थी तो वो ठहर गई। ऐसे ही भगवान बंधन में नहीं है, वो तो भक्त के भाव के कारण स्वेच्छा से बंध जाते हैं। तो निराकार को पकड़ नहीं सकते, पर भगवान की इच्छा होती है लीला करने की, तो कभी कृष्ण बन जाते, कभी राम बन जाते, कभी जो है हनुमान बन जाते, कभी भोले बाबा बन जाते, कभी कुछ बन करके भगवान निराकार, भगवान साकार बन करके प्रकट हो जाते। क्या हो जाते? बोलो बोलो बोलो बोलो, प्रकट हो जाते। तो भगवान विठ्ठल नाथ, पंडरपुर वाले विठ्ठल नाथ पुंडलिक के घर पर गए। पुंडलिक माँ बाप की सेवा में इतने तल्लीन, होशी नहीं, भगवान ने आवाज लगाई, अरे पुंडलिक बहुत दिन हो गए तुम आए नहीं, तुम नहीं आए तो हम ही आ गए, तुम नहीं आए तो हम ही आ गए। जितनी ललक भक्त के अंदर भगवान के लिए होती, भगवान के अंदर उससे ज्यादा ललक भक्त के लिए होती। तुम नहीं आए तो हम आ गए। पुंडलिक ने कहा हाँ हाँ ठीक है, अच्छे आए, भले आए भले आए, पर अभी ना हमारे माँ बाबू जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उनकी सेवा में व्यस्त हैं। ये लो ईंट, भगवान आए ना तो स्वागत तो होना चाहिए, पर अब जा तो नहीं सकते, तो ईंट खिसका दी, इस पर खड़े हो जाओ, हम जैसे ही फ्री होते हैं तो आते हैं। तो भगवान खड़े हो गए उस पर ईंट के ऊपर। रुक्मी माता बोली ये तो गजब का भगत है, ईंट दे रहा है। भगवान बोले जैसा भी है ठीक है, अच्छा है, पर है बहुत प्यारा, अच्छा है, बोला है, माँ बाप की सेवा कर रहा है, थोड़ा व्यस्त फ्री होगा आएगा। एक घंटा दो घंटा दिन भर हो गया, अच्छा इसको याद ही नहीं रहा पुंडलिक को माता पिता की सेवा में कि भगवान भी आ रखे। अब भगवान ज्यादा देर कोई आदमी खड़ा होगा तो कमर दर्द होगी कि नहीं होगी? भगवान ने ऐसे हाथ रख लिए। तो आप कभी साक्षी गोपाल जी के दर्शन करना, ये वही दर्शन है। पुंडलिक के यहां पर भगवान ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं, तो इट्ठल नाथ होते होते इनका नाम विट्ठल नाथ पड़ गया। तो भक्त जब बहुत समर्पित होता तो भगवान उनके घर पहुंचते, शबरी को थोड़ी जाना पड़ा।

0: भगवान सबरी के यहाँ गए, सबरी भगवान के घर नहीं गई, वो तो शरणागत थी गुरु आज्ञा पर। उसके गुरु ने कहा था, मतंग मुनि ने, राम आएंगे। क्या कहा था? राम आएंगे। बस इतना गुरु ने कहा और चली गई। सबरी ने लौट के ये नहीं गुरु से पूछा कब आएंगे, बस उसे भरोसा था गुरु ने कहा राम आएंगे। और परिणाम क्या हुआ? आए। वन में चार प्रकार के महात्मा रहते थे, हमने कई बार ये बात कही भी पर आज फिर से कहते, चार प्रकार के महात्मा, जलाहारी, फलाहारी, जलाहारी, फलाहारी, दूधाहारी और पवनाहारी। चार प्रकार के महात्मा, जल पीकर रहने वाले जलाहारी। जलाहारी कहते कि सुनो, हम बहुत कठोर तप करते हैं, राम जी यदि बनाएंगे तो सबसे पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे। बोले क्यों? बोले हम जलाहारी है, केवल जल पीकर रहते। तो दूसरे बोले रुको चुप रहो, राम जी आएंगे तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे, हमारे घर आएंगे। बोले क्यों? बोले तुम तो दूध ही पीते हो, वो भी दिन में दो बार, हम फलाहारी हैं, एक फल खाते। तो राम जी बनाएंगे, सबसे पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे। तीसरे महात्मा बोले चुप रहो, ना जलाहारी के घर आएंगे ना फलाहारी के घर आएंगे, राम जी बनाएंगे तो हमारी झोपड़ी में आएंगे। बोले क्यों? बोले ना हम जलाहारी है ना फलाहारी, हम पयाहारी है, दूध पीते हैं, वो भी एक टाइम, वो भी गाय का, वेद रक्षणा गाय का, जो राम जी को बहुत प्रिय। तब तक चौथे महात्मा बोले चुप रहो, तीनों के यहां नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले भगवान आएंगे तो हमारे यहां आएंगे, बनाएंगे। बोले क्यों? बोले ना हम जलाहारी हैं ना फलाहारी है ना पयाहारी है, हम पवनाहारी। ये पवनाहारी क्या है? बोले हम कुछ खाते ही नहीं, हवा भर खाते, केवल श्वास लेते हैं बस, कुछ खाते पीते ही नहीं। तो भगवान तुम लोगों से ज्यादा हमारी कठोर तप है कि नहीं है? बोले हाँ है। तो बोले बताओ किसके यहां राम जी आएंगे? हमारे यहां आएंगे, हम तो पवनाहारी है। राम जी आ गए वन में, चारों ने अपने अपने बाहर झोपड़ी के बाहर चौक चंदन लगाया, फूलों को बिछाया, आओ आओ आओ सरकार, आहा आओ ठाकुर जी, आओ आओ बहुत अच्छे आए, आओ आओ पधारो पधारो, आओ बाप जी पधारो पधारो पधारो। भगवान बाहर आके खड़े होके कहते सबरी कहां रहती, सबरी कहां, सबरी कहां रहती। चारों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, बोले ये तो सबरी का पता पूछ रहे, इन्हें पूछना चाहिए कि फलाहारी कहां रहता, पवनाहारी कहां रहते, जलाहारी कहां रहते। और ये चारों के पास आके कहते सबरी कहां रहती है। महात्मा बोले ढूंढ लो, खोज लो, हमें नहीं है पता, हमें नहीं पता, अपना खोजो, जाओ जा। किसी महात्मा को दया लगी होगी, उसने इशारा किया, राम जी एक दया भगवान की क्यों, मेरे पागलो तुम शरणागत रहोगे ना, खोजता हुआ तुम्हारे घर आएगा, खोजता हुआ तुम्हारे घर आएगा। और हमने पढ़ा सबरी के पास राम जी 10,000 वर्ष बाद पहुंचे। गुरु जी जब से बता के गए तब से राम जी के मिलने की आयु 10,000 साल थी। 10,000 वर्ष तक सबरी ने इंतजार किया, आंखों की रोम के जो रोम कूप होते ना, ये पलकें, पलकों के जो बाल होते ना, सबरी के बाल इतने बढ़ गए 10,000 साल में कि पृथ्वी पर लटकने लगे, आंखों के रोम पृथ्वी पर लटकने लगे। और जब राम जी आए तो वो राम जी को देख नहीं पा रही आंखों से, क्योंकि रोमकूप सामने आ रहे। तो जब राम जी आए और जब वो नहीं देख पाई तो दोनों हाथों से रोम के बालों को ऊपर करके राम जी को देख रहे, राम जी को देख रहे। पर मेरे पागलों, यदि तुम शरणागत भगवान के भगत रहोगे तुम्हें राम जी के दर पे नहीं जाना पड़ेगा, राम तुम्हारा घर खोजते खोजते आएंगे।
1: भगवान शंकर की वाणी, हमारे भूत भावन महादेव कहते हैं किससे, पार्वती से, देवी ये मेरा अनुभव है।
0: क्या अनुभव है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना,
1: मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये सारा संसार मोहिन सा है और हम सब सपना देख रहे हैं, जगत एक स्वप्न के तरह है। अच्छा, स्वप्न में जब तक रहोगे तब तक दुख रहेगा। स्वप्न में कोई तुम्हें पीट रहा हो या तुम पानी में डूब रहे हो तो बचने का पूरा उपाय करोगे, हाँ जी या ना जी? और रोगे भी, हाँ जी या ना जी? कभी कभी सपना देखना कि एक हाथी पीछे पड़ जाए मारने के लिए, तो तुम आगे आगे हाथे पीछे पीछे, और जब तक सपने में दुख बराबर है, इतने में पैर में कुछ चोट लगी और गिर गए और हाथी नजदीक आया, और जैसे ही उसने पैर उठाया और रखने ही वाला था तब तक नींद खुल गई। बिस्तर पे देखा रे कोई हाथी बाती नहीं है, कहीं नहीं मर रहे हम, पसीने से लथपथ हो गए। ये पसीना क्यों आया, एसी चल रही थी? अरे बोले हाथी मार रहा था, हाथी मार रहा था। कमरे में हाथी कहां से आए? कमरे में नहीं, सपने में हाथी। मतलब जब तक सपने में थे दुख बराबर था, सपना गायब हुआ दुख गया। ऐसे ही जब तक तुम जगत में रहोगे दुख बराबर रहेगा, और जैसे ही शरीर छूटा दुख अपने आप गायब हो जाएगा। इसलिए बाबा ने इनको इस संसार को स्वप्न संसार कहा। क्या कहा? स्वप्न संसार। स्वप्न संसार में सुख भी है दुख भी है, दोनों ही है। इसलिए इस स्वप्नमयी जगत में हमको हारिए ना हिम्मत विसारिए ना, हिम्मत हारना नहीं हो राम को, भगवान को विसारना नहीं, भगवान का सुमरण सदैव बनाए। देखो भगवान की भक्ति दो प्रकार से की जा सकती है, एक निराकार और एक साकार। अच्छा निराकार और साकार क्या है? बहुत लोग निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, और बहुत लोग केवल मूर्ति पूजा को मानते हैं, निराकार को नहीं मानते। अच्छा दोनों ही सही है,

0: ही सही है। निराकार पिता है, साकार माँ है, दोनों जरूरी है, बाप भी जरूरी है, माँ भी जरूरी है, दोनों आवश्यक है। तो निराकार पिता है, साकार। अच्छा ऐसे समझो, पानी जब तक बहता है किसी भी आकार में नहीं रहता तो वो निराकार हो जाता, क्या हो जाता? लेकिन निराकार रूपी पानी को साकार बनाना हो तो फ्रिज में रख दो, कुल्फी बन जाएगा। और कुल्फी बना बड़ी आराम से खाओ, पकड़ लो पानी की। अच्छा पानी को पकड़ा जा सकता क्या? बोलो हाँ या ना। अरे जम के बोलो, पानी को पकड़ सकते क्या? लेकिन फ्रिज में जमा दो तो बर्फ तो पकड़ सकते हैं। बर्फ किससे बनती है? पानी से बनती है। उसी प्रकार ये ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म जो घट घट में बैठा। रामायण के अनुसार गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं वर्णी। वो ब्रह्म जो घट घट में बैठा, कण कण में बैठा, तुम में समाया, मुझ में समाया, जीव में समाया, चींटी से लेकर के हाथी में समाया, अजगर से लेकर के भगवान, सर्वत्र पशु पक्षियों में कण कण में व्याप्त है पूर्ण परब्रह्म परमात्मा, पूरे जगत में व्याप्त है। उस ब्रह्म में हवा में भी है और हवा के बाहर भी है, ब्रह्मांड के समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है, स्पेस के ऊपर भी है, स्पेस के नीचे भी है। पर उस ब्रह्म को पकड़ पाना, हवा को पकड़ पाना बहुत कठिन है। तो बोले क्या किया जाए? बोले हवा को तो नहीं पकड़ सकते पर गुब्बारे में भर सकते हैं। हवा को नहीं पकड़ सकते लेकिन हवा का मजा लेने के लिए गुब्बारे में भर सकते हैं। तो जब कभी भक्त निराकार ब्रह्म को नहीं देख पाता, समझ नहीं पाता, तो भगवान कहते कोई बात नहीं पगले, तू हमें नहीं समझ पा रहा, नहीं देख पा रहा, मैं साकार होकर के प्रकट होता। तो वो राम और कृष्ण बन करके प्रकट हो जाता। इसको एक उदाहरण से और समझो। संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतरणिका, सीढ़ी को। सीढ़ी जान गए ना, सीढ़ी को। अच्छा सीढ़ी अवतरण का, उसको संस्कृत में क्या कहते? अवतरण का। अच्छा सीढ़ी के दो उपयोग है, एक ऊपर चढ़ जाओ और दूसरा उतर जाओ। भगवान बैठे छत पे और हम हैं नीचे, तो इन जैसे जो महात्मा होते हैं वो चढ़ जाते हैं, तप के बल पर, जप के बल पर, ध्यान के बल पर। लेकिन जो हमारे जैसे उल्लू होते हैं वो नीचे से ही भगवान से कहते हम ना चढ़ पाएंगे, वाइब्रेशन होता है, बीपी लो होता है हमारा, हम ना चढ़ पाएंगे, भजन ना कर पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम वहीं से दोनों हाथ उठाकर हमें पुकारो, हम खुद नीचे उतर करके आ जाए। हाँ कोई बात नहीं, तुम वहीं रहो, भजन करो, हम आ जाएंगे। और याद रखना मेरे पागल, इस भक्ति को शरणागत भक्ति कहा। क्या कहा? शरणागत। और जिस भक्त के अंदर शरणागत भक्ति है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान चलकर उसके पास आते। महाराष्ट्र के पुंडलीक भगत माता पिता की सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि भगवान के पास गए ही नहीं, बहुत दिन से नहीं गए। जब बहुत दिन से नहीं गए तो एक दिन भगवान ने ही रुक्माई से कहा, रुक्मी मां से, चलो पुंडलीक नहीं आया, हम ही मिलने चल पड़ते हैं।
1: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है क्या? घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं क्या? सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: अमरनाथ के लिए बालटाल बेस कैंप से चौथा जत्था रवाना, अब तक 56,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात, जम्मू से श्रीनगर के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश से गर्मी से राहत, आज भी बारिश का अलर्ट जारी। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है, ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर आज मुंबई में स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी के आदेश। देश को इसी महीने मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, 17 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी हाईटेक ट्रेन सेवा। दक्षिण कोरिया इंचियोन में फुटबॉल रोबोट कप का शानदार आयोजन, सिंगवा यूनिवर्सिटी ने जीता लार्ज साइज ह्यूमनॉइड लीग का खिताब।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज चौथा दिन, बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ बालटाल बेस कैंप से चौथा जत्था रवाना। आस्था और उत्साह के साथ रवाना हुए तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, सुबह लगी लंबी कतार। अमरनाथ यात्रा में रविवार को 24,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, 18,700 पुरुष और 5,000 महिला भक्तों ने पूजा अर्चना की। अमरनाथ यात्रा में हर दिन बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की तादाद, 3 दिन में 56,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का रखा जा रहा है विशेष ख्याल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चंदनवाड़ी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था रवाना, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। तीर्थयात्रियों के बीच डमरू बजाते हुए नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी, यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। बूढ़े अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हुई तेज, पुंछ में धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले गीता प्रवचन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। 16 जुलाई को होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू, पुरी से लेकर लखनऊ तक भव्य आयोजन की तैयारी। मदुरई में भगवान मुरुगन के मंदिर भव्य कुंभाभिषेक का आयोजन, समारोह में शामिल होने दूर दूर से पहुंचे भक्त। मदुरई के बाहरी इलाके के घने जंगलों के बीच है भगवान मुरुगन का मंदिर, प्राकृतिक खूबसूरती भरपूर। मुरुगन मंदिर की दिव्यता को बनाए रखने के लिए कुंभाभिषेक की परंपरा, गर्भगृह के कलशों का पवित्र नदियों के जल से किया गया अभिषेक। समारोह के लिए मंदिर की हुई भव्य सजावट, भक्तों पर भी पवित्र जल छिड़क कर दिया गया आशीर्वाद। मुरुगन मंदिर समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन से भी रखी गई नजर। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश से गर्मी से राहत, आज भी बारिश का अलर्ट।

0: جاري. हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी, अगले दो दिन में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पंजाब और हरियाणा में अगले तीन दिन में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी, ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर आज मुंबई में स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी के आदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, ओडिशा के तटों पर मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में ना जाने की सलाह। महाराष्ट्र के सतारा जिले में जोरदार बारिश से पहाड़ों पर खूबसूरत नजारा, वाटरफॉल बने पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। सतारा और रत्नागिरी जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का दौर, कोयना डैम के जलस्तर में बढ़ोतरी। पहाड़ियों से गिरते झरने और बारिश के बीच वादियों में फैली धुंध, सुहाने मौसम का आनंद लेने पहुंचे पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील। महाराष्ट्र में झमाझम बारिश के बाद पहाड़ों पर बदला नजारा, मॉनसून का मजा लेने बड़ी तादाद में लोनावला पहुंच रहे हैं पर्यटक। गुजरात के हिल स्टेशन सापुतारा में भी पर्यटकों की भीड़ बढ़ी, लगातार हो रही बारिश से सुहाना हुआ मौसम। देश की पहली पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ 17 जुलाई को होगा, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। फिलहाल जींद और सोनीपत के बीच चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन, आज सीएम सैनी जींद में समारोह को लेकर हो रही तैयारियों का लेंगे जायजा। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में होंगे 10 कोच, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी रफ्तार। गुजरात में पहले शहरी केबल स्टेड फ्लाईओवर का उद्घाटन, अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। बिहार की नालंदा में शांतामणि पेपर मिल के विस्तार परियोजना का शुभारंभ, उत्पादन क्षमता में होगी बढ़ोतरी। बिहार में पटना एम्स के विस्तार के लिए 24 एकड़ जमीन की मंजूरी, 200 नए आईसीयू बेड के साथ नई सुपर स्पेशलिटी सेवाएं होंगी शुरू। बिहार के मुजफ्फरपुर को जल्द मिलेगी हवाई सेवाओं की सौगात, एयरपोर्ट पर शुरू हुआ सर्वे, बाउंड्री मार्किंग का काम। पश्चिम बंगाल में मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए दार्जिलिंग की वादियों में पहुंचे लोग, सुहाने मौसम का ले रहे हैं आनंद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेज हवा के साथ जमकर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। उड़ीसा के बौद्ध जिले में नदी में अचानक बाढ़ से दो महिलाएं फंसी, तेज जलधारा के बीच 4 घंटे बाद हुआ सुरक्षित रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के खरगोन में प्राकृतिक झरना बना आकर्षण का केंद्र, देश भर से पर्यटकों की उमड़ रही भीड़। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पर सीएम योगी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिलावादी आम का लिया स्वाद, बीजेपी के कई नेता भी आम पार्टी में हुए शामिल। शिवपुरी में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिफेंस फैक्ट्री का किया शिलान्यास, अडानी ग्रुप 2500 करोड़ की लागत से तैयार होगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। रामनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए गर्डर ब्रिज का किया उद्घाटन, नए पुल से यातायात होगा ज्यादा सुगम। थूथुकुड़ी में तमिलनाडु के मंत्री श्रीनाथ ने 80.5 किलो लाख की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, आंगनबाड़ी केंद्र, आर्टिफिशियल टर्फ, क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान, गर्लफ्रेंड गौरी स्प्राट के साथ शादी की। आमिर खान ने अपने बांद्रा वाले घर पर निजी समारोह में शादी की। रजिस्टर्ड मैरिज में सिर्फ परिवार के लोग और दोस्त शामिल हुए। आमिर खान की शादी समारोह में मुकेश अंबानी के परिवार समेत कई बड़ी हस्तियां पहुंची हैं। अपनी शादी में जमकर झूमे आमिर और गौरी। आमिर गौरी की खुशियों में शरीक होने के लिए बी टाउन के कई नामी चेहरे पहुंचे। आमिर की बेटी, बेटे एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, निर्देशक आशुतोष गोवरकर और साथ नजर आई उनकी पत्नी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी आमिर और गौरी को बधाई देने के लिए पहुंचे। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान भी हुए शामिल। दक्षिण कोरिया इंचियोन में रोबोट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन हुआ। सिंगवा यूनिवर्सिटी ने जीता लार्ज साइज ह्यूमनॉइड लीग का खिताब। रोबोट वर्ल्ड के फाइनल में चाइना की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की शांघाई टीम में हुआ मुकाबला। तो वहीं सिंगवा यूनिवर्सिटी की टीम ने बूस्टर T1 रोबोट की मदद से जीता मैच। इस साल रोबोट कप में अपनाया गया AI ऑपरेटेड फॉर्मेट। मैदान पर खुद फैसले लेकर रणनीति अपनाते हैं। चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर पहला स्पेस बेस्ड ग्रीन हाउस गैस डिटेक्टर इंस्टॉल किया गया। पृथ्वी की कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा पर नजर रख सकता है डिटेक्टर। चाइना के स्पेस स्टेशन पर मौजूद शेनझोउ 23 क्रू कई अहम रिसर्च पर कर रहा है काम। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को ट्रैक करने और इकोलॉजिकल एनवायरमेंट के लिए भी मिल सकेगी जानकारी। चाइना के शिनजियांग उइगर में तारों को देखने के शौकीन उमड़े। विशेष प्राकृतिक स्थितियों के कारण साल में 240 दिनों तक आसमान रहता है साफ। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए बनाया जा रहा है स्टारी स्काई ड्राइविंग कॉरिडोर। फिलहाल 90% से ज्यादा बुक हो चुकी हैं कैपसाइट्स। मेक्सिको में फुटबॉल फैंस पर वर्ल्ड कप का खुमार। टीम के समर्थन में विशेष नस्ल के डॉगी के साथ जुटे फैंस। मेक्सिको टीम के फैंस ने डॉगी को पहनाई जर्सी। इंग्लैंड के साथ मैच से पहले जोश हाई। मेक्सिको में फुटबॉल वर्ल्ड कप का रोमांच देखने को मिला मेक्सिको सिटी के एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस के पास जुटे फैंस।
1: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
4: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover interested in what's going on around the world?
6: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
5: Or want to catch your team's live play-by-play? It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
1: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What about me, Jack? What about me?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
2: Well played, Jack. Well played.
1: Jack FM, playing what we want.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आप जहां काम करते हैं, नौकरी हो व्यापार हो, अगर काम करने की जगह आपका कार्य स्थल अगर बेहतर हो तो अच्छा काम भी कर पाएंगे और सफल भी हो पाएंगे। लेकिन बहुत बार कार्यस्थल पर तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके कार्य स्थल पर परेशानियां आ रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं दिनांक 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। आप जहां पर काम करते हैं, जो आपका कार्य स्थल है, उसका ग्रहों से क्या संबंध है, पहले ये समझिए। देखिए, आप जहां भी काम करते हैं, नौकरी में या व्यापार में, आपके काम करने की जगह का सीधा संबंध होता है शनि के साथ। शनि बताता है कि आपके कार्य स्थल पर जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे हैं। इसके अलावा कुंडली का सप्तम भाव यानी आपके कलीग और दशम भाव आपके काम करने की जगह भी महत्वपूर्ण है। सप्तम और दशम से आप ये समझ सकते हैं कि जहां आप काम करते हैं वहां का माहौल कैसा है। किसी भी कुंडली में बुध बड़ा महत्वपूर्ण है ऑफिस के मामले में, क्योंकि बुध की सहायता से व्यक्ति अपने ऑफिस में अपने कार्य स्थल पर एडजस्ट कर पाता है। राहु और मंगल आपके ऑफिस में आपके कार्य स्थल में अलग अलग समस्याएं पैदा करते हैं। कुंडली में अगर सप्तम भाव अच्छा नहीं है तो ऑफिस में अपने कलीग से और बाकी लोगों से सहयोग नहीं मिलेगा। जरूरत के समय आपके साथी, आपके साथ काम करने वाले लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके कार्यस्थल पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब अगर आपके कार्य स्थल की स्थितियां ठीक नहीं हैं, वहां पर काम करने में आपको परेशानी होती है, तो क्या करेंगे। सबसे पहली समस्या, अगर आपको अनावश्यक काम करना पड़ता है, दूसरे घूम रहे हैं और आपको बेवजह का प्रेशर दिया जा रहा है, अनावश्यक काम करना पड़ता है, तो क्या करेंगे। रोज सुबह और रोज शाम
शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण करिएगा शनिवार की शाम को, और अपने काम करने की जगह पर एक सफेद मार्बल का टुकड़ा रखिएगा। अपने सामने अपने डेस्क पर शीशे के नीचे या सामने की दीवार पर रंग बिरंगे फूलों का चित्र लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बेवजह का प्रेशर नहीं मिलेगा, अनावश्यक काम नहीं करना होगा। बहुत बार ऑफिस में ऐसा होता है कि जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे कलीग हैं, वही हमारे लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, चुगली करते हैं, काम करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो अगर आपको अपने कलीग से, अपने सहयोगियों से समस्या हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिएगा। स्नान करने के बाद हल्की सुगंध लगाइएगा। ऑफिस जब जब जाते हैं, रोज जाते हैं, गुड़ खाकर जाइएगा, और हर मंगलवार को जब भी आपको समय मिले हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करिए, और अपने काम के स्थान पर एक नकली या असली लाल रंग का फूल रखिएगा या उसका चित्र लगाइएगा। सहयोगियों की वजह से आपको समस्या नहीं होगी। कार्यस्थल की समस्याओं पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है ऑफिस में कि आप काम बड़ी मेहनत से करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन आपके काम का एप्रिसिएशन नहीं होता, आपके काम की प्रशंसा आपको नहीं मिलती है। क्या उपाय करेंगे कि काम का रिकग्निशन हो, काम की प्रशंसा मिले? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। एक तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करिएगा। जहां पर बैठकर आप काम करते हैं, काम के स्थान पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाइएगा। और याद रखिए, एक अपनी पेन हमेशा पर्सनल रखिए, अपनी पेन दूसरों को मत दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके काम की प्रशंसा होगी, काम को आपके एप्रिसिएशन प्राप्त होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिस भी ठीक है, ऑफिस का माहौल भी ठीक है, लेकिन खुद ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप खुद एडजस्ट नहीं कर पा रहे, सब कुछ ठीक होने के बावजूद, तो क्या करेंगे? रोज स्नान करना आपका जरूरी है, रोज नहाइए। इसके बाद सुबह के समय 108 बार
नमः शिवाय का जप करिएगा, चंदन की सुगंध लगाइए या चंदन की सुगंध वाला तिलक लगाइए, एक पेरी डॉट या एक मोती सलाह लेकर के धारण करिए, ऐसा करने से आपका काम में अपने करियर में एडजस्ट करना आसान होगा। देखिए आपके कार्यस्थल में कैसी भी परेशानी आ रही हो, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं कि योग्यता के बावजूद आपको सम्मान नहीं मिलता, आप ऑफिस के पॉलिटिक्स के शिकार हैं, लंबे समय से आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कार्यस्थल पे परेशानियां आ रही हों। दो उपाय आपको जरूर करने चाहिए अगर कार्यस्थल पे परेशानी आ रही हो। रोज शाम को 108 बार शनिदेव के मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप अवश्य करिए और सप्ताह में एक दिन हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप नौकरी वाले व्यक्ति हैं और ऑफिशियल मामलों में प्रॉब्लम हो रही है तो केवल शनि देव की पूजा करके, केवल शनि देव के लिए उपाय करके आप इस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। तो आज हमने आपको बताया कि आपके कार्य स्थल पर अगर परेशानियां आ रही हैं तो उन परेशानियों को दूर करने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए, जिस भगवान के प्रति श्रद्धा है उनका नाम लें, इसके बाद अपना पैर जमीन पर रखिएगा। अगर रोज सुबह की एक आदत ये बना लेते हैं तो हर दिन आपका शुभ होगा और मंगलमय होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करिए, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: अमरनाथ के लिए बालटाल बेस कैंप से चौथा जत्था रवाना, अब तक 56,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात, जम्मू से श्रीनगर के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश से गर्मी से राहत, आज भी बारिश का अलर्ट जारी। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी, ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर आज मुंबई में स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी के आदेश। देश को इसी महीने मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, 17 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। जींद और सोनीपत के बीच चलेगी हाईटेक ट्रेन सेवा। दक्षिण कोरिया इंचियोन में फुटबॉल रोबोट कप का शानदार आयोजन किया गया, तो वहीं सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने जीता लार्ज साइज ह्यूमनॉइड लीग का खिताब।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में, और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो गुड लक के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपके घर की समस्याओं के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि आप कितना भी कुछ कर लो लेकिन घर में लगातार नेगेटिव एनर्जी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, कितनी कोशिश करने के बाद भी वो कम नहीं होती, कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, आप परेशान रहते हैं। तो इन सबके कारण क्या है और इनसे बचने के समाधान क्या है, उपाय क्या है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
6: देखिए, शनि देव की उपासना संध्या काल में करनी चाहिए और सूर्य देव की उपासना दिन में करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूजा का सारा फल मिलेगा। आप शनि देव की पूजा सुबह भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप शनि की पूजा शाम को करेंगे और सूर्य देव की पूजा सुबह करेंगे तो पूजा ज्यादा फलदायी होगी, पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा।
4: और आइए अब जान लेते हैं 6 जुलाई 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है।
6: दिनांक 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 1:47 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 4:07 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 9:57 तक, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से ही कि अगर आपका घर में घुसते ही मन जो है वो तनावपूर्ण रहता हो, आप उदास हो जाते हो, तो इसके आखिर कारण क्या होते हैं और इनको सही करने के उपाय क्या हैं?
6: जी देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप घर में घुसते हैं, आपका मन उदास हो जाता है, आपका मन भारी हो जाता है, आपके मन में चिंता आने लगती है। अगर घर में घुसते ही आपका मन अशांत हो जाता है या घर में घुसते ही आपको उदासी महसूस होती है, घर का माहौल बड़ा भारी भारी सा लगता है, बड़ा निगेटिव लगता है, तो समझना चाहिए कि आपके घर में काफी नकारात्मक ऊर्जा है, काफी निगेटिव एनर्जी आपके घर में है। इसका दूसरा मतलब ये है कि आपका बृहस्पति कमजोर है और घर में जो शुभ अंश है, घर में जो शुभता है, वो शुभता घट रही है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है तो रोज शाम को घर के पूजा स्थान पर आपको दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाने के बाद पूरे घर में गुग्गल की या धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं और पूरे घर में घुमाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और घर का माहौल ठीक होगा, घर की उदासी दूर होगी।
4: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मेष, वृष और मिथुन, उनका राशिफल क्या है।
6: मेष राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80% बेहतर भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, पुरस्कार सम्मान मिल सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और आइए बात कर लेते हैं कि अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बार बार खराब हो जाते हो तो इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों होता है ऐसा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे वो टीवी हो चाहे वो फ्रिज हो, लेकिन वो बार बार खराब होता रहता है, तो उसके समाधान क्या है?
6: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ओवन, माइक्रोवेव, ये बार बार खराब होने लगते हैं। क्या इसका भी कोई अर्थ है? अगर घर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बार बार खराब हो जाते हों, या अगर बल्ब और ट्यूबलाइट बार बार फ्यूज हो जाती हो, यानी बिजली के सामानों में बार बार गड़बड़ी होती हो, तो समझना चाहिए कि राहु खराब हो रहा है। और अगर राहु खराब होगा तो इसके बाद दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आपके घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खराब हो रहे हैं तो घर में मुख्य स्थानों पर लाल रंग का स्वस्तिक लगा दें और घर में गंदगी इकट्ठा ना होने दें। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, इनके पीछे भी आप छोटा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा सकते हैं।
4: और अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में।
6: कर्क राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
6: जी आज का पहला प्रश्न अर्चना जी ने हमें लिखा है और अर्चना जी हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 9 अगस्त 2002, जन्म का समय सुबह के 7:55, जन्म स्थान है गुड़गांव। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे ने अभी ग्रेजुएशन किया है, आगे मेरे बेटे को किस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए जाना चाहिए। देखिए अर्चना जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर आप आगे उसको टेक्निकल पढ़ाई करें, कंप्यूटर जैसी कोई पढ़ाई करवाएं या मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई करवाएं तो उसमें आपके बेटे के सफल होने की संभावनाएं बहुत हैं। अगर आपका बेटा आगे कंप्यूटर या मैनेजमेंट जैसी पढ़ाई करे तो एक अच्छा करियर बना पाएगा, आने वाले समय में भटकाव ना हो, इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, पढ़ाई में बाधा ना आए, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाइए और अपने पुत्र से कहिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा।
4: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से ही कि आज का दूसरा सवाल वो किसका लेंगे।
6: जी अगला प्रश्न अनीशा ने हमें लिखा है और अनीशा हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 सितंबर 1993, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म स्थान है मुंबई। अनीशा कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं लेकिन उसमें परिवार की तरफ से अड़चनें बहुत आ रही हैं, तो क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो सकेगा। अनीशा आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह इसी साल के अंत तक होने की संभावना बनती है, आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ। वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, इसीलिए एक बार कुंडली मिला लीजिए और अगर उसमें कोई कमी है तो पहले से उसका उपचार कर लेना चाहिए। आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन बेहतर रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
4: तो चलिए जान लेते हैं कि अगर घर में बार बार बिना किसी कारण के झगड़ा हो रहा हो, कोई वजह नहीं हो लेकिन तनाव के कारण घर में लगातार झगड़े हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है और इसको दूर करने के उपाय क्या हैं?
6: बहुत बार ऐसा होता है कि घर में बार बार बिना वजह के झगड़ा होता है, बिना वजह के विवाद होते हैं और घर का माहौल खराब हो जाता है। कब होता है ऐसा? अगर घर में बार बार बिना किसी कारण के झगड़ा होता है, बिना किसी कारण के लड़ाई होती है या विवाद होता है, या वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है, सदस्यों में मन मुटाव बढ़ता है, परिवार के सदस्य आपस में तनाव पालते हैं, तो समझना चाहिए कि आपके पूरे परिवार के लिए मंगल की स्थिति बेहतर नहीं है। अगर आपके परिवार में बिना वजह के झगड़े हों, बिना वजह के उपद्रव और अशांति हो, तो अपने घर में पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिएगा। शनिवार की शाम को घर के सभी लोग मिल करके सुंदर कांड का पाठ करेंगे, हर शनिवार की शाम को। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो घर में मंगल की स्थिति बेहतर होगी, घर में अशांति दूर होगी, बेवजह के वाद विवाद समाप्त होंगे।
4: और अब जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को।
6: तुला राशि, काम की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, किसी अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में अशांति से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दूसरों के मामलों में ना पड़ें, चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और आइए अब जानते हैं कि अगर घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता हो बिना वजह के, सर्दी जुकाम तो अक्सर लगा रहता है लेकिन कभी आपके पेट दर्द हो रहा है, कभी आपके सर दर्द हो रहा है, कभी आपका मन ही खराब है, तो इसके पीछे के कारण क्या है?
6: बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ा रहता है। कभी पिता बीमार हैं, कभी माता बीमार हैं, कभी बच्चे बीमार हैं, कोई ना कोई घर में हमेशा बीमार रहता है। क्या कारण है? अगर घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है

0: 28 बार या 108 बार जप करिए और दोनों समय भोजन बन जाने के बाद पहले भगवान को भोजन अर्पित करिए फिर ग्रहण करिए। अगर ये उपाय करेंगे तो घर में सूर्य की शुभता बढ़ेगी और अगर घर में सूर्य की शुभता बढ़ेगी तो घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम बढ़ा हुआ रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की रुकावट दूर होगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, एक प्रश्न था, घर में सब कुछ ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी घर की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए?
0: जी, ऐसा हो सकता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा भी ना हो, घर के लोगों में तालमेल भी ठीक रहता हो, कोई बड़ी समस्या भी ना हो घर में, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो। तो अगर घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, घर में पैसा नियमित रूप से ना आता हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि रोज शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा की जाए और एक बड़ी शानदार स्तुति है माता लक्ष्मी की, इंद्र कृत लक्ष्मी स्तोत्र, इंद्र कृत लक्ष्मी स्तोत्र। रोज शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो, मां लक्ष्मी के चित्र के सामने दीपक जलाएं और इंद्र कृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें या इंद्र कृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ सुनें। अगर ऐसा नियमित रूप से रोज शाम के समय करें और प्रार्थना करें तो घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि घर में अनुपयोगी वस्तुएं, कूड़ा कबाड़ ये बेवजह

0: इकट्ठा करके मत रखिएगा, क्योंकि जो लोग घर में कूड़ा कबाड़ अनुपयोगी चीजें इकट्ठा करके रखते हैं उनके घर की आर्थिक स्थिति में दिक्कतें अवश्य आती हैं।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के तीसरे प्रश्न का, तो जानेंगे पंडित जी से ही कि आज का तीसरा प्रश्न उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न नीरज जी ने हमें लिखा है और नीरज हमें मेल लिखते हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 16 मई 1990, जन्म का समय शाम के 4:55, जन्म स्थान है जौनपुर उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। नीरज कह रहे हैं कि मेरी नौकरी चली गई है और पिछले काफी दिनों से मैं नौकरी का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आगे मुझे नौकरी कब मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। नीरज, आपकी कुंडली में नौकरी मिलने का समय चल रहा है और ये संभावना बनती है कि अगस्त सितंबर के महीने में आपको नौकरी मिलेगी। स्थान परिवर्तन के साथ आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा और उसमें आप बेहतर नौकरी पा सकेंगे। आने वाले समय में आपके करियर में कोई इतनी समस्या, कोई इतनी बाधा दिखाई नहीं दे रही है और आने वाले समय में करियर में आपकी स्थिरता बनी रहेगी। एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, 8 से 10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपको लाभ होगा।
1: और आइए अब जान लेते हैं आज का अंतिम और चौथा प्रश्न पंडित जी किसका लेने वाले हैं।
0: आज का अंतिम प्रश्न अविनाश जी ने हमें लिखा है और अविनाश जी हमें मेल लिखते हैं जोधपुर राजस्थान से। इनकी जन्म की तारीख है 23 नवंबर 1982, जन्म का समय सुबह के 5 बजे, जन्म का स्थान है जोधपुर। अविनाश कह रहे हैं कि मैं एक व्यापार करता हूं और मेरा पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा फंस गया है। हालांकि मेरा व्यापार ठीक है, लेकिन पैसा फंसने की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो मेरा पैसा कब तक निकल पाएगा और आने वाले समय में मेरा व्यापार कैसा रहेगा। अविनाश, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका फंसा हुआ पैसा इस साल के आखिरी या अगले साल की शुरुआत तक काफी हद तक निकल पाएगा। काफी हद तक आप पैसे के प्रेशर से बाहर आ जाएंगे। जून 2027 के बाद आपके व्यापार की स्थिति अच्छी है, उसके बाद कोई बहुत दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। आप सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए। हर बुधवार को गाय को हरा चारा या हरा फल या हरी सब्जी खिलाइए। निरंतर ये उपाय 1 साल तक करते रहिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: जन्मदिन 6 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में बदलाव के बाद स्थितियां बेहतर होंगी। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या कहती है।
0: आज की जिज्ञासा है कि घर में किन जानवरों के चित्र या किन जानवरों की मूर्तियां लगा सकते हैं। घर में जंगली जानवरों के चित्र या जंगली जानवरों की मूर्तियां ना लगाएं। सुख शांति और समृद्धि के लिए गाय का चित्र या मूर्ति लगाएं और आर्थिक संपन्नता के लिए हाथी या बैल का चित्र लगाना अच्छा होगा।
1: और आइए अब जानते हैं 6 जुलाई 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 6 जुलाई सोमवार रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है सिंह राशि। इस समय धन और संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान इस समय आपको बनाए रखना चाहिए।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी

0: आते हैं कि अगर आपके घर के बड़ों में, बुजुर्गों में बेवजह की बहस ज्यादा होती हो तो क्या करें, घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिएगा, मुख्य द्वार पर एक तांबे का छोटा सा सूर्य लगाइए और नेम प्लेट काले रंग की बिल्कुल मत रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर का माहौल बेहतर होगा, घर के बड़ों में अशांति नहीं होगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
1: खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में खूबसूरत वादियों में बसा नूरी चंब अब इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बहता झरना, हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। तो चलिए आपको आखिर में दिखाते हैं इस खूबसूरत तस्वीर को, जिसे निहारने के लिए गर्मियों के मौसम में बड़ी संख्या में लोकल और बाहरी सैलानी पहुंच रहे हैं।

0: जम्मू कश्मीर का हर कोना प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है और उन्हीं में से एक है पुंछ का ये नूरी चंबछी, जो इन दिनों सैलानियों को खूब आकर्षित कर रहा है, पर्यटन के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। ऊंची पहाड़ियों से गिरता झरना और उसके आसपास का मनमोहक नजारा हर किसी का दिल जीत रहा है। गर्मी से राहत पाने और कुछ पल प्रकृति के करीब बिताने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। दोस्तों परिवारों के साथ यादें समेट रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती को कैमरे में कैद कर रहे हैं। सैलानियों के यहाँ पहुँचने से छोटे दुकानदारों की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ सड़क, पार्किंग, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास जरूरी है ताकि ये देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी जगह बना सके।
1: लेकिन ये है कि इसमें जो एरिया है बहुत दूर दूर से लोग आए यहाँ पिकनिक स्पॉट में, आप देख सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं। इतना अच्छा पिकनिक स्पॉट है और इसकी जो है इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। रास्ता बहुत ही ऐसे है कि हम वहाँ से बड़ी मुश्किल से आए हैं क्योंकि बारिश की वजह से तो ये बहुत ही कच्चा रास्ता है और बहुत ही लोग जो है बहुत परेशान भी हो रहे हैं और साथ साथ ब्यूटी भी जो है इंजॉय कर रहे हैं।
0: स्थानीय लोगों के मुताबिक इस खूबसूरत झरने का सिरा मुगल काल से भी जुड़ता है। लोगों का कहना है कि मुगल शासक जहांगीर की पत्नी नूरजहां को ये जगह बेहद पसंद थी, लिहाजा इसका नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया।
2: पूंछ जिला के अंदर बैराम गले के अंदर नूरी छम नामक जो है ये झरना जो है प्राकृतिक झरना, ये बहुत ही पुराना है और इसका इतिहास जो है ये मुगलों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि नूरजहां जब अपने साम्राज्य के साथ मुगल रास्ते की ओर से जब श्रीनगर की ओर उनका दौरा रहता था तब वो इस स्थान के ऊपर जरूर आती थी, यहाँ पर अपने केश धोया करती थी, स्नान किया करती थी और ये स्थान उन्हें इतना ज्यादा प्रिय था कि वो जब भी यहाँ से श्रीनगर गुजरती थी तो यहाँ पर जरूर आती थी। यही और उसके बाद जो उनके जो राजा थे, जो सम्राट थे मुगलों के, उन्होंने इस स्थान का नाम नूरी छम डाल दिया अपनी पत्नी के नाम पर। उनका नाम था नूर जहां, उनके नाम से यहाँ नूर छम जो है ये इस जगह का नाम पड़ गया।
0: नूरी छम की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और मनमोहक झरना इसे पुंछ आने वाले हर पर्यटक के लिए एक खास आकर्षण बना रहे हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि इस पर्यटन स्थल पर बुनियादी सुविधाओं का और विस्तार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने देश की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक ट्राम सेवा को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लगभग 150 साल पुरानी कोलकाता ट्राम सेवा को संरक्षित करने के साथ इसे आधुनिक रूप देने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य न सिर्फ शहर की सांस्कृतिक विरासत को बचाना है बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देना भी है।

0: कोलकाता की पहचान उसकी विरासत और उसकी सबसे पुरानी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ट्रैम को अब एक बार फिर से नई जिंदगी मिलने जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि ट्रैम सेवाएं बंद नहीं होंगी, बल्कि शहर के पुराने ट्रैम नेटवर्क को एक नए तरीके से फिर से बहाल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि पिछली व्यवस्था ने ट्रैम को धीमी रफ्तार, ट्रैफिक जैम और ट्रैक क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं का कारण मानकर इसकी अनदेखी की, लेकिन अब आधुनिक तकनीक के जरिए ट्रैम को फिर से शहर की जरूरत बनाया जाएगा।
1: जितने भी पुराने रूट्स हैं उन रूटों पर चलेगी, लेकिन रोड के बीच में नहीं चलेगी, वो बाएं साइड से चलेगी और एयर कंडीशन कैब रहेगा और वो बिना इलेक्ट्रिक के चलेगी, मतलब आपको बैटरी और उसकी जो सिस्टम है उस तरह उसी व्यवस्था पूरा विदेशी तकनीक रहेगा, लेकिन बनेगा यहाँ बंगाल में, बने नॉर्थ इंडिया बंगाल में बने।
0: एक समय था जब कोलकाता में करीब 70 ट्रैम रूटों पर घंटियों की आवाज गूंजती थी, लेकिन समय के साथ ट्रैम नेटवर्क लगातार सिमटता गया। आज शहर में केवल 2 रूट श्याम बाजार से एस्प्लेनेड और गरियाहाट से एस्प्लेनेड तक ट्रैम सफर हो रहा है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार के मेगा प्लान से एक बार फिर कोलकाता की सड़कों पर ट्रैम की घंटियां गूंजने की उम्मीद जगी है।
2: बीते दिन की कहानी बताता है ये ट्रैम, और यही ट्रैम जो अब इस्तेमाल नहीं होती है। जॉय राइड के लिए एक दो ट्रैम अगर यूज हो भी जाती है तो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ट्रैम इस वक्त ऐसे ही बिठा दिया गया है। लेकिन आगे के दिन में जैसे सरकार बदल हुआ है और उसके साथ साथ उनके तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि ये जो ट्रैम है उनको फिर से रास्ते पर दोहराया जाएगा और लाइन को ठीक किया जाएगा, और साथ ही साथ कोलकाता, सॉल्टलेक, विधाननगर इलाका सारे जगह फिर से चलेंगे ये पॉल्यूशन फ्री व्हीकल।
0: इस मेगा प्लान का उद्देश्य मौजूदा पटरियों का नवीनीकरण करना, ट्रैम को एक वैश्विक हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में संरक्षित करना और इसे पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्प के रूप में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाना है। सरकार की योजना है कि इसके तहत जो नए ट्रैम के डिब्बे मंगवाए जाएंगे वे पूरी तरह आधुनिक और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कुछ प्रमुख शहरों में चलने वाली ट्रैमों के मॉडल पर आधारित होंगे। ऐसे में ट्रैम के दोबारा चलने की संभावना से कोलकाता के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है।
3: अच्छा फील कर रहा है, ये तो हम यहाँ के नहीं है पर चढ़ने का मौका मिल रहा है, एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, वही अच्छा है, हम वही बोलेंगे। हाँ, पॉल्यूशन फ्री है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इसको और डेवलप किया गया तो पॉल्यूशन में कंट्रोल किया जा सकता है।
4: दोस्तों ने बोला कि चल आज घूमने चलते हैं ट्रैम में, तो हम चढ़ गए, अच्छा लग रहा है। हाँ ट्रैम तो एकदम, हाँ हाँ ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए, एक हेरिटेज है कोलकाता का ना, तो मुझे लगता है और 2-3 एक्स्ट्रा करना चाहिए।
0: कोलकाता ने ट्रैम को सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं बल्कि अपनी पहचान के रूप में जिया है, और अब सरकार की कोशिश है कि इस विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ नई रफ्तार दी जाए, और अगर योजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं, तो शहर एक बार फिर ट्रैम की घंटियों से गूंजता नजर आएगा। कोलकाता से अनिर्बान रॉय, गुड न्यूज टुडे।
5: आम एक ऐसा फल है जिसके स्वाद का हर कोई दीवाना होता है, फिर चाहे वो आम शख्स हो या फिर कोई खास। लखनऊ में एक ऐसे ही आम पार्टी का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास पर पहुंचे, और यहां सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं हुई बल्कि पूरी तरह से पारंपरिक अवधि स्टाइल में एक अनोखी आम पार्टी का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लॉन, उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक शानदार आम पार्टी का लुत्फ उठाया। नेताओं के सामने थाली से सजे ये विश्व प्रसिद्ध महिलाबाद के दशहरी और चौसा आम थे। बिना किसी तामझाम के सभी कद्दावर नेताओं ने देसी अंदाज में आम चूसते और खाते हुए हल्के फुल्के माहौल में अनौपचारिक बातचीत की।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
9: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
5: अमरनाथ के लिए बालटाल बेस कैंप से चौथा जत्था रवाना, अब तक 56,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात, जम्मू से श्रीनगर के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते आज स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टी के आदेश, दिल्ली में भी आज बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में भी आज तेज बारिश के चेतावनी के चलते सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य संस्था रहेंगी बंद, लोगों से सतर्क रहने की अपील। देश को इसी महीने मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। 17 जुलाई को पीएम करेंगे उद्घाटन। जिंदौर सोनीपत के बीच चलेगी हाईटेक ट्रेन सेवा। दक्षिण कोरिया इंचियोन में फुटबॉल रोबोट कप का शानदार आयोजन। सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने जीता लार्ज साइज ह्यूमनॉइड लीग का खिताब।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज की मॉर्निंग डोज लेकर।
14: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: शुभ समाचार की शुभ शुरुआत अमरनाथ यात्रा से होगी, जहां पर आस्था और विश्वास की अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है। हर रोज नए जत्थों की रवानगी के साथ ही अमरनाथ यात्रा मार्ग पर आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है और अब तक 56,000 से ज्यादा तीर्थयात्री यहां दर्शन कर चुके हैं, तो आपको इसके भी दर्शन करवाएंगे।
14: तो वहीं अब नॉनस्टॉप बरस रहे हैं बादल, ऐसे में मुंबई से लेकर मध्य प्रदेश और दूसरे इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में भी आज बारिश का अनुमान है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, तो आज और कहां कहां हो सकती है बारिश बताएंगे आगे।
5: और इसी बीच देश को इसी महीने पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये हाईटेक ट्रेन सेवा जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे।
14: साथ ही इस बुलेटिन में कोटा की क्लासमेट मदर से आपको मिलवाएंगे। पढ़ाई के दौरान गंभीर बीमारी ने एक स्टूडेंट के सपनों को संकट में डाल दिया, लेकिन उस बच्चे की मां ने हार नहीं मानी। बेटे के लिए मां ने ऑनलाइन क्लास की, नोट्स बनाए और बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी संभाली। मां की मेहनत रंग लाई और अब बेटा IIT में एडमिशन लेने जा रहा है। जी हां, ऐसे में बेटे ने मां की मेहनत और तपस्या पर क्या कुछ कहा है बताएंगे आगे।
5: इसके अलावा दक्षिण कोरिया भी आपको लिए चलेंगे, जहां पर फुटबॉल रोबोट कप का शानदार आयोजन किया गया है। कैसा रहा यह आयोजन और कौन बना विजेता बात होगी आगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
14: पवित्र अमरनाथ यात्रा का चौथा दिन, इस दौरान भक्तों ने बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। यात्रा के दौरान भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद।
5: उत्तराखंड के टनकपुर में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था रवाना हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जत्थे को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान सीएम धामी भी पूरी भक्ति में रंगे हुए नजर आए। उन्होंने डमरू बजाकर भक्तों का उत्साह बढ़ाया।
14: मदुरई में भगवान मुरुगन के मंदिर में भव्य वार्षिक कुंभ अभिषेक का आयोजन किया गया। मंदिर की भव्यता को बनाए रखने के लिए इस आयोजन का विशेष महत्व है। समारोह के लिए मंदिर की भव्य सजावट की गई।
5: दिल्ली में मॉनसून की राहत आज भी जारी रहने का अनुमान है। रविवार को हुई बारिश के बाद तापमान में कमी दर्ज की गई है और इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया गया है।
14: बारिश के बीच MP के खरगोन में प्राकृतिक झरना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। झरने को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं।
5: पश्चिम बंगाल में मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए दार्जिलिंग की वादियों में पहुंचे लोग सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठाया।
14: राजौरी में BRO की टीम ने किला दरहल इलाके में जंभीर नाले के पहला पक्का स्टील पुल बनाकर तैयार कर दिया है। 60 मीटर लंबे इस पुल से सेना के साथ स्थानीय लोगों की कनेक्टिविटी भी बढ़ी।
5: फिल्म एक्टर आमिर खान ने अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बन चुके हैं। आमिर खान की ये तीसरी शादी है। उन्होंने बेहद ही सादगी से परिवार को लोगों को बीच ये शादी की।
14: यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना फिर से फटा। इस दौरान सिसिली के आसमान में लावा की लाल चमक ने रात को दिन जैसा बना दिया। यह अद्भुत खगोलीय नजारा सभी को हैरान करने वाला रहा।

0: शुभ समाचार में आज सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं भव्य दिव्य अमरनाथ धाम, जहां आस्था और विश्वास की अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है। हर रोज नए जत्थों की रवानगी के साथ ही अमरनाथ यात्रा मार्ग पर आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है और अब तक 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। खास बात यह है कि अब युवाओं के बीच भी अमरनाथ यात्रा तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
1: दरअसल अमरनाथ यात्रा के दौरान यहाँ के प्राकृतिक नजारे और रास्ते उन्हें एडवेंचर टूरिज्म का अनुभव दे रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। आंकड़ों से समझे तो अमरनाथ यात्रा के पहले 3 दिन में 56,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और ये आंकड़ा पिछले साल से करीब 18.6% ज्यादा रहा। 2025 में पहले 3 दिन में 47,972 श्रद्धालु पहुंचे थे।
0: आपको बता दें 57 दिन चलने वाली ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो चुकी है। 48 किलोमीटर लंबे नुनवान पहलगाम रूट और 14 किलोमीटर वाले छोटे लेकिन कठिन बालटाल रूट से लगातार यात्री दर्शन के लिए अमरनाथ धाम पहुंच रहे हैं।
1: तो अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि श्रद्धालुओं के भारी उत्साह को देखते हुए रेलवे जम्मू से श्रीनगर के बीच स्पेशल ट्रेन चला रहा है, जिससे यात्री आराम से बेस कैंप तक पहुंच सके। विशेष ट्रेन सेवा के अलावा तीर्थयात्रियों को आधार, KYC, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, भोजन और डिजिटल सर्विलांस जैसी सुविधाएं मिल रही है।
0: तो वहीं आपको ये भी बता दें कि अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू से श्रीनगर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर पैसेंजर्स काफी खुश नजर आ रहे हैं और कई सुविधाएं भी यहां पर उनके लिए मुहैया करवाई गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े इस अमरनाथ यात्रा के दौरान।
2: बहुत ही अच्छी सुविधा है, रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है उससे और ज़्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुंच जा रहे हैं बिना किसी थकान के। हम लोग सुबह उतरे हैं और वहां से डायरेक्ट हम लोग यहां आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम यात्रा रहा।
3: मैं महाराष्ट्र मुंबई से आई हूँ और हम लोग यहाँ से वंदे भारत से आए, बहुत ही सुविधा सुंदर थी। जैसे हम लोग प्लेन में रहते तब जो सुविधाएं रहती है ऑलमोस्ट नियर बाय सुविधाएं ये थी, इसलिए ये जो प्रवास है वो सुखकर लगा।
4: मैं जलंधर पंजाब से आया हूँ और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करने में पहली बार आया हूँ। हमारी जो इंडियन आर्मी के जो भाई लोग हैं वो चप्पे चप्पे पे खड़े हैं।
5: अमृतसर से आ रहा हूँ और वंदे भारत ट्रेन प्लस जो सुविधाएं हैं, जो सिक्योरिटी है, उसको देख के अभी फील हो रहा है कि अभी कोई भी यहाँ पे डर नहीं है, आराम से आ सकते हैं और काफी अच्छा अरेंजमेंट है।
0: तो वहीं जम्मू कश्मीर के बालटाल बेस कैंप से आज सुबह श्रद्धालुओं का नया जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो चुका है। ये यात्रियों का चौथा जत्था है जिसमें भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जत्था रवाना हो चुका है और भारी भीड़ लोगों की उमड़ी हुई है। आपको बता दें अब तक 56,000 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। 2 मार्गों से यात्रा जारी है, 57 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा शुरू हो चुकी है और लोगों का उत्साह चरम पर नजर आ रहा है।
1: तो बम बम भोले के जयकारे आप सुन पा रहे हैं और पूरे नगरी में यहाँ पर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हो चुका है और यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए हर व्यवस्था वहां पर तीर्थयात्रियों के लिए काफी ज्यादा की गई है, जिसको लेकर काफी उत्साहित भी तीर्थयात्री यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए बालटाल और पहलगाम से फिलहाल यात्री रवाना हो चुके हैं और चौथा जत्था रवाना हो चुका है।
6: देखिए तो व्यवस्था हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमने प्रोसेस से सारा काम किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के घर से ही आए थे और जरा सा भी यहाँ पे कोई तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई।
7: पिछले साल में आया था तो अगस्त में आया था, शिवलिंग गल गया था।
8: अच्छा,
7: तो मैंने बाबा से वादा किया था कि बाबा अगर मैं सही समाधान रहा तो मैं फिर जल्दी से आपके पास दर्शन करने के लिए आऊंगा।
9: सरकार द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं बहुत अच्छे किए गए हैं, जो जम्मू सरकार है वो भी हमारी पूरी मदद कर रही है, पूरी मिलिट्री और जम्मू पुलिस और BSF, CFF सभी अपने देश की सुरक्षा करने वाली सीमाओं की जो फौज है वो हमारी यात्रा पूरी कंप्लीट करा रही है। पूरे प्यार से वो अपने आप को हमारे लिए जोक रखा है उन्होंने।
0: तो पहलगाम से भी आस्था और उत्साह के साथ यात्रियों का चौथा जत्था रवाना हुआ और यहां भी भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आस्था भक्ति का ये मेला 57 दिन तक चलेगा। जाहिर है बाबा बर्फानी के धाम बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा हो सकता है।

0: जो सत्य है वही शिव है, और जहाँ शिव है वही शाश्वत सौंदर्य है। ये उसी शाश्वत सौंदर्य की अनुभूति की यात्रा है। बाबा बर्फानी के दर्शन की यात्रा, श्री अमरनाथ यात्रा। हिमालय की वादी में गूंज रहा हर हर महादेव का ये जय घोष बता रहा है कि आस्था की डोर मजबूत है। समुद्र तल से करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर है बाबा अमरनाथ की गुफा, लेकिन चुनौतियों की परवाह नहीं, बम बम भोले का जय घोष करते हुए बस बढ़े जा रहे हैं। हर दिन श्रद्धालुओं का नया जत्था यात्रा मार्ग की रौनक बढ़ा रहा है। बम बम भोले हर हर महादेव के जय घोष से हिमालय की वादियाँ गूंज रही हैं। मन में बस बाबा बर्फानी के दर्शन की आस है, शिवत्व की चाह है। अब तक 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार इस तीर्थ यात्रा में युवा और स्कूली बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उनके लिए ये यात्रा अपनी संस्कृति, अपने धर्म, आध्यात्म को जानने के साथ साथ प्रकृति के साथ कुछ पल बिताने का भी है, कश्मीर की खूबसूरती को करीब से निहारने का भी है, तो कुछ इसे एडवेंचर टूरिज्म का हिस्सा भी मान रहे हैं।
1: न कहीं जो है ये अमरनाथ यात्रा जो है, इसमें कुदरत का हर एक जो खूबसूरती का नज़ारा हो, ग्लेशियर्स हो, झरने हो, दरिया हो, हरियाली हो, पहाड़ हो, बर्फ से ढके पहाड़ हो, सब कुछ एक श्रद्धालु को देखने को मिलता है। यही कारण है कि अब अमरनाथ यात्रा एक एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर भी युवा पीढ़ी में काफी लोकप्रिय हो रही है।
0: अच्छी बात यह है कि ये युवा पीएम मोदी के बताए 5 संकल्पों को भी अपना कर चले हैं। 5 संकल्प जिनमें धर्म स्थान की स्वच्छता से लेकर वहाँ के लोगों की आर्थिक तरक्की और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी जिक्र है। असल में जिस दिन अमरनाथ यात्रा शुरू हुई उस दिन पीएम मोदी ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और सफल यात्रा की शुभकामनाओं के साथ साथ 5 संकल्प लेने का संदेश भी दिया। वो 5 संकल्प हैं: पूरे यात्रा मार्ग में स्वच्छता के नियमों का पालन करना और पवित्रता बनाए रखना, प्रशासन और सुरक्षा निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करना, विशेषकर खराब मौसम और फिसलन वाले रास्तों पर, वोकल फॉर लोकल की भावना के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करना, यात्रा के समापन पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा भेंट करना, देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में पूरे साल अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना। जाहिर है इन संकल्पों के साथ की गई यात्रा से न सिर्फ धार्मिक स्थलों में स्वच्छता और पवित्रता बनी रहेगी बल्कि पर्यावरण को भी बड़ा फायदा होगा। पहलगाम से अशरफ आड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो एक ओर हिमालय की वादियों में बाबा बर्फानी के जयकारों के बीच पवित्र अमरनाथ यात्रा पूरे श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बाबा बैद्यनाथ धाम हो, देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियां यहां पर जारी हैं। लाखों शिव भक्तों के स्वागत के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।
3: सुरक्षा, ट्रैफिक, स्वास्थ्य और सुविधाओं को अंतिम रूप यहां दिया जा रहा है। यानी आस्था के दो सबसे बड़े केंद्र इन दिनों शिवमय हैं। एक तरफ बर्फानी बाबा के दर्शन की उमंग, तो दूसरी तरफ बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक की तैयारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अमरनाथ यात्रा में आस्था भक्ति के रंग साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और पूरी तैयारियां यहां पर की गई हैं। दूसरी तरफ देवघर में सावन मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक की तैयारी अपने चरम पर है और देखिए बाबा के दर्शन के लिए अब संख्या भी भक्तों की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। गीता प्रेस अपने प्रशासन के 100 वर्ष से अधिक के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। दरअसल श्रीमद् भगवद गीता का त्रिभाषी संस्करण प्रकाशित करने का जारी है और ऐसे में इस विशेष संस्करण में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं को एक ही ग्रंथ में समाहित किया जाएगा। इससे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन सभी के लिए आसान हो सकेगा।
4: कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया था उसे अब आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नई पहल की गई है। संस्कृत में रचे गए धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को अब एक ही पुस्तक में संस्कृत और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ने का मौका मिलेगा।
5: प्राय घरों में ऐसा भी होता है कि बच्चे तो अंग्रेजी जानते हैं लेकिन घर की कुछ महिलाएं हैं जो हिंदी ही जानती हैं, ऐसे परिवार हम लोगों के यहाँ भी ऐसी ही बातें हैं। तो उस दृष्टि से भी अंग्रेजी जानने वाले हैं अंग्रेजी में अर्थ पढ़ लें, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उसका हिंदी में अर्थ पढ़ लें, किसी को गीता का मूल पाठ करना है तो संस्कृत का श्लोक है मूल पाठ भी उसे कर सकता है। और इसमें प्रसंगानुकूल चार रंग के चित्र भी दिए गए हैं।
4: दुनिया भर में सनातन संस्कृति के प्रति बढ़ते आकर्षण और नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर के गीता प्रेस ने श्रीमद् भगवद गीता का अनूठा संस्करण तैयार किया है। इसमें संस्कृति के मूल श्लोक तो होंगे ही, वहीं उनके साथ श्लोकों को रोमन लिपि में भी लिखा जाएगा ताकि संस्कृत या हिंदी न जानने वाले लोग भी उनका सही और शुद्ध उच्चारण कर सके। साथ ही इंग्लिश में भी उनका अर्थ दिया जा रहा है जिससे पाठक उनका सही मतलब समझ सके।
5: इसमें संस्कृत का जो मूल श्लोक है वो एज इट इज दिया गया है संस्कृत में, उसके बाद उस श्लोक को रोमन अंग्रेजी में दिया गया है, उसके बाद हिंदी में अर्थ है, फिर अंग्रेजी में अर्थ है। ये आज की पीढ़ी को देखते हुए ये परिवर्तित रूप इसका छापा जा रहा है, संशोधित रूप छापा जा रहा है।
4: तीन भाषाओं में एक साथ श्रीमद् भगवद गीता के इस विशेष संस्करण का प्रकाशन चार रंगों में आर्ट पेपर पर किया जाएगा जो देखने में भी आकर्षक होगा। गीता प्रेस का मानना है कि इससे देश ही नहीं विदेशों के पाठकों तक भी गीता का संदेश आसानी से पहुंचेगा।
6: व्यक्ति अगर जिसे संस्कृत या हिंदी का ज्ञान नहीं है उसे इंग्लिश का ज्ञान है तो उस रोमन भाषा के सहयोग से वह श्लोकों का उच्चारण सटीक और शुद्ध तरीके से कर सकता है। गीता प्रेस यह आयोजन कर रहा है, पुस्तकें पब्लिश करने जा रही है, अगले महीने से इसका प्रकाशन शुरू हो जाएगा और पाठकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
4: गीता प्रेस की ओर से हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन तो पहले से किया जाता रहा है लेकिन अब एक ही साथ तीन भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाशन का ये नया प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि ये विशेष संस्करण नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी के साथ साथ विदेशी पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय होगा और दुनिया भर में गीता के ज्ञान के साथ सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी के प्रसार में आसानी होगी। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: एक तरफ माया नगरी मुंबई में मॉनसून पूरे शबाब पर है, आसमान से लगातार बरसते बादलों ने शहर की रफ्तार को थाम दिया है। कई इलाकों में जलभराव, धीमा ट्रैफिक और लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में भी आज बारिश के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने बादलों की चाल को देखकर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया, यानी कि एक ओर मुंबई में मेघ जमकर बरस रहे हैं तो दूसरी ओर दिल्ली भी बारिश की दस्तक का इंतजार कर रही है। और इन दिनों देश के दो बड़े महानगरों में मॉनसून का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों ओर झमाझम बारिश हो रही है और भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिल रही है लेकिन कई जगहों पर इसकी वजह से जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है, कुछ लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मॉनसून ने देश भर में गर्मी से राहत तो दी है लेकिन कई राज्यों में अब बारिश लोगों का कड़ा इम्तिहान ले रही है। जी हाँ, जम्मू

0: नाव के बीच दो महिलाएं फंस गई। पानी का रौद्र रूप और तेज धार दोनों ही बचाव अभियान में बड़ी चुनौती थे। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी। करीब 4 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद दोनों महिलाओं को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया। बाढ़ के बीच रेस्क्यू अभियान की ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से भी सामने आई। लगातार बारिश के चलते पुल बनाने के काम में लगे 14 मजदूर चारों तरफ पानी में घिर गए। खबर मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा, घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आखिरकार सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जाहिर है मॉनसून ने आते ही भले ही लोगों को गर्मी से राहत दी हो, लेकिन कुछ जगहों पर मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। अब जरा सैटेलाइट तस्वीरों से समझिए कि आखिर कई इलाकों में मॉनसून हदें क्यों लांघ रहा है। दरअसल इस वक्त पूर्व मध्य अरब सागर से लेकर कोंकण तट तक घने बादलों का एक सिस्टम एक्टिव है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक मजबूत वेदर सिस्टम बना हुआ है, जो देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह बना हुआ है। मॉनसून के मिजाज को और करीब से समझना हो तो इस तस्वीर पर भी गौर फरमाइए। ये इंफ्रारेड तस्वीरें बता रही हैं कि अगले कुछ घंटों में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने वाला है। अरब सागर से लगातार नमी मिलने की वजह से महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं बारिश के सिस्टम को और ताकत दे रही हैं। उधर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम का असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत तक साफ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और उफनती नदियों के करीब न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: एक दिन के विराम के बाद नवसारी डांग जिले में मॉनसून ने एक बार फिर से जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आवा, वघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम बेहद सुहावना हो गया और इसका आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच भी रहे हैं।
0: मॉनसून की बारिश जमकर बरस रही है, कहीं राहत बनकर तो कहीं आफत बनकर। लेकिन जो लोग गर्मी से राहत के लिए सैर पर निकल गए हैं, वो इस मौसम का भी खूब आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां घूमने आए सैलानी मूसलाधार बारिश में भी बोटिंग का लुत्फ लेते नजर आए। नीचे झील का पानी और ऊपर आसमान से बरसती बूंदे।
2: कल तक यहाँ पर कोई बारिश नहीं थी, आज बहुत बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वेदर भी बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत सारे आए। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की है, रास्ते में पेड़ भी गिरे हुए थे वो भी हटाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत पब्लिक आई हुई है।
0: असल में नवसारी डांग जिले में मानसून ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आहवा, वघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम बेहद सुहावना हो गया है और इस मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। आहवा, वघई, सुबीर और सापुतारा जैसी जगहों पर वीकेंड और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक डांग पहुंचे हैं। नवसारी से रौनक जाने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बधाई हो बधाई।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: खबरें तो आ रही हैं।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने

0: वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: अमरनाथ के लिए बालटाल बेस कैंप से चौथा जत्था रवाना, अब तक 56,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन।

0: मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते आज स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टी के आदेश, दिल्ली में भी आज बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में भी आज तेज बारिश की चेतावनी के चलते सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल आंगनबाड़ी और अन्य संस्था रहेंगी बंद, लोगों से सतर्क रहने की अपील। देश को इसी महीने मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, 17 जुलाई को पीएम करेंगे उद्घाटन, जींद और सोनीपत के बीच चलेगी हाईटेक ट्रेन सेवा। दक्षिण कोरिया इंचियोन में फुटबॉल रोबोट कप का शानदार आयोजन, सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने जीता लार्ज साइज ह्यूमनॉइड लीग का खिताब।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: ब्रेक के बाद शुभ समाचार में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड में इन दिनों खुशियों का माहौल है। एक तरफ मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपने लंबे समय के साथी गौरी स्प्रैट के साथ शादी कर अपने रिश्ते को नाम दे दिया है, तो वहीं दूसरी ओर आज कपूर परिवार में भी शहनाई गूंजने वाली है।
2: अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर अपने मंगेतर रोहन ठक्कर के साथ सात फेरे लेने जा रही हैं। ऐसे में कपूर परिवार में शादियों की खुशियां चरम पर है। अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की कल मेहंदी सेरेमनी हुई, जिसमें परिवार के साथ साथ बॉलीवुड के कई करीबी सितारे शामिल हुए और होने वाली दुल्हन को नई जिंदगी की शुभकामनाएं दी।
0: दोनों शादियों की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी गलियारों तक जोरों पर है। आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को मुंबई के पाली हिल में घर पर शादी की और इस खास मौके पर सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही मौजूद रहे।
2: देखिए, जाहिर है वो पल बहुत खास था जब बॉलीवुड के भुवन को गौरी का साथ मिला। आमिर खान ने भी जमकर जश्न बनाया, मेहमानों के साथ डांस कर इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर की। ये तस्वीर आप देखिए, जब भुवन को अपनी गौरी मिली, आमिर गौरी की शादी की रस्मों के बाद की ये तस्वीरें।
0: तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं आमिर खान की। आमिर खान ने आखिरकार अपनी लेडी लव गौरी स्प्रैट के साथ शादी कर ली है। शादी में बेहद कम और करीबी दोस्त यहां पर नजर आए हैं, दोनों के परिवार वाले ही शामिल हुए। आमिर खान की शादी में बेटा जुनैद और बेटी भी पहुंचे।
3: सुपर स्टार आमिर खान ने अपनी लेडी लव गौरी स्प्रैट के साथ जिंदगी के एक नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत कर दी है। मुंबई में आमिर के घर पर आयोजित एक शादी समारोह में दोनों ने हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। शादी की तस्वीर भी सामने आ गई है, जिसमें आमिर और गौरी रजिस्टर्ड मैरिज करते दिख रहे हैं। इस फोटो में दोनों के परिवारों को भी देखा जा सकता है। अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट की शादी हो और बॉलीवुड के सितारे जश्न में शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आमिर और गौरी की खुशियों में शरीक होने के लिए बी टाउन के कई नामी चेहरे पहुंचे। आमिर की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान की लगभग पूरी स्टार कास्ट इस शादी में शामिल हुई। न्यूली वेड कपल को जिंदगी की इस नई पारी की शुभकामनाएं देने के लिए अंबानी परिवार और राज ठाकरे भी पहुंचे। आमिर खान की फिल्मों की ही तरह उनकी लव लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही है। गौरी स्प्रैट आमिर का तीसरा प्यार है, जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी बनाया है। इससे पहले आमिर ने साल 1986 में रीना दत्ता से पहली शादी की थी जो करीब 16 साल चली। इसके बाद साल 2005 में उन्होंने फिल्म मेकर किरण राव से दूसरी शादी की। हालांकि दोनों ही रिश्ते वक्त के साथ एक नए मोड़ पर आकर खत्म हुए, लेकिन खास बात यह है कि आमिर आज भी अपनी दोनों एक्स वाइफ के साथ बेहद अच्छा और दोस्ताना बॉन्ड शेयर करते हैं। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को बड़ी ही खूबसूरती से संभालने वाले आमिर खान को अब गौरी स्प्रैट के रूप में अपना नया हमसफर मिल गया है। उम्मीद है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट की असल जिंदगी की ये नई स्क्रिप्ट सुपर हिट साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बॉलीवुड में कपूर परिवार में शहनाई बजने वाली है। अर्जुन कपूर की लाडली बहन अंशुला कपूर अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ सात फेरे लेने वाली हैं। शादी की रस्में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शुरू हो चुकी हैं।
2: शादी से पहले मेहंदी संगीत की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। शादी से पहले आयोजित मेहंदी समारोह में पूरा कपूर परिवार उत्साह से भरा नजर आया। घर को फूलों और रंग बिरंगी सजावट से खूबसूरती से सजाया गया था। अंशुला कपूर पारंपरिक परिधान में बेहद ही खूबसूरत दिखी, जबकि उनके हाथों पर दूल्हे रोहन ठक्कर के नाम की मेहंदी रचाई गई।
0: वहीं मेहंदी समारोह में अर्जुन कपूर बहन के लिए थोड़े इमोशनल नजर आए। बहन की शादी की खुशी भी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। परिवार के बाकी सदस्य भी रस्मों में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और संगीत की धुन पर जमकर डांस किया। वैसे इस मौके पर बॉलीवुड के कई करीबी चेहरे भी शामिल हुए हैं।
2: तो देखिए, बोनी कपूर की लाडली बेटी की शादी समारोह में यहां पर सब पहुंचे। शादी से पहले भव्य मेहंदी सेरेमनी हुई और कई नामी हस्तियां यहां पर शामिल हुई हैं। धूमधाम से शादी की तैयारी हुई और ये शादी से पहले की रस्में आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक और वर्सेटाइल सितारों में शुमार रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह का आज जन्मदिन है। अपनी बेहतरीन एक्टिंग, अलग अंदाज और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस से रणवीर ने इंडस्ट्री में एक खास मुकाम बनाया है। रोमांस हो, कॉमेडी हो या फिर ऐतिहासिक किरदार, हर रोल में उन्होंने खुद को साबित किया है।
0: रणवीर के जन्मदिन के मौके पर GNT की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं।
4: About West. In the West, you have the affluent part, and in the East, you have.
0: और अब बात करते हैं महिला T20 वर्ल्ड कप की, जिसका खिताब ऑस्ट्रेलिया के सिर सजा। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को धूल चटाकर रिकॉर्ड सातवीं बार ये खिताब अपने नाम किया है।
2: लॉर्ड्स में हुए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। मैच में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 151 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 18वें ओवर में ही महज 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया।
0: और देखिए, इस जीत के बाद ICC के चेयरमैन जय शाह ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। जीत का जश्न कुछ इस कदर मनाया गया है।

0: अब बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। कल खेले गए वर्ल्ड कप के लास्ट 16 स्टेज मैच में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर सबको चौंका दिया है।
1: आपको बता दें अर्लिंग हॉलैंड के 2 गोल के दम पर नॉर्वे ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। हॉलैंड ने अपने 6 फुट 5 इंच लंबे शरीर का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपने 79 मिनट में हेडर से पहला गोल किया और फिर दूर से जोरदार शॉट मारकर दूसरा गोल दागा। जाहिर है इस महाजीत के बाद नॉर्वे के फैंस का जोश हाई था। न्यूजर्सी में फैंस ने जबरदस्त जश्न मनाया है।
0: हर किसी की जुबान पर हॉलैंड का नाम था। उन्होंने वाइकिंग रो की धुन पर ड्रम भी बजाया। इस जश्न में गर्मी भी बेअसर दिखी। वहीं ब्राजील के फैंस मायूस दिखे, कुछ ही आंखों में आंसू भी थे तो उन्हें अपनी टीम से 6ठी बार खिताब जीतने की उम्मीद भी थी।
1: और अब बात करेंगे उस टीम की जो पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में उतरी और फुटबॉल की दुनिया में बड़ा धमाका कर दिया। अर्जेंटीना से रोमांचक मुकाबले में हार के बावजूद केप वर्डे की टीम इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी सरप्राइज टीम बनकर सामने आई है। हालांकि टीम का सफर वर्ल्ड कप से खत्म हो चुका है।

0: फीफा वर्ल्ड कप में भले ही केप वर्डे की टीम का सफर थम गया हो, लेकिन स्वदेश लौटी टीम का स्वागत बता रहा है कि अभी तो इस टीम का सफर शुरू हुआ है। ये तस्वीरें केप वर्डे की उस फुटबॉल टीम के स्वागत की हैं, जिसने इस बार फीफा वर्ल्ड कप में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। यही वजह है कि जब टीम अपने मुल्क लौटी तो उनका ऐसा स्वागत हुआ मानो टीम विश्व विजेता बनकर लौटी। वर्ल्ड कप में धुरंधर टीमों को चौंकाने वाली दुनिया के सबसे छोटे देशों में एक केप वर्डे की टीम अब खुद में एक कहानी बना चुकी है। करीब 5.3 लाख की आबादी वाला केप वर्डे दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। तुलना करें तो अकेले नोएडा की आबादी इससे लगभग दोगुनी है। पश्चिमी अफ्रीका के तट से 600 से 850 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में बसे 10 ज्वालामुखीय द्वीपों के इस देश ने अपने पहले ही वर्ल्ड कप में एक तरह से इतिहास रच दिया है। केप वर्डे की इस टीम ने वर्ल्ड कप में धमाकेदार फुटबॉल खेला है। टीम ने ग्रुप स्टेज में स्पेन, उरुग्वे और सऊदी अरब जैसी मजबूत टीमों को ड्रॉ पर रोककर नॉकआउट में जगह बनाई और फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने वाला इतिहास का सबसे कम आबादी वाला देश बन गया। राउंड ऑफ 16 में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ भी केप वर्डे ने जो खेल दिखाया, हार के बावजूद पूरी दुनिया इस टीम की मुरीद हो गई।
1: Uruguay é campeão do mundo também, na passada. Eles são dois campeões do mundo. Não consegui mais um empate. Tudo aqui começa a conchicar o verde a partir de lá. Mas antes disso, ninguém quer ser nada para nós.
0: दिलचस्प बात यह है कि 1975 में आजाद हुआ ये छोटा सा देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद सीमित है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन और विदेशी निवेश पर टिकी है, लेकिन अब ये छोटा सा देश फुटबॉल की एक नई ताकत के तौर पर दुनिया भर में पहचाना जा रहा है।
2: Amigé que joga junto comigo, joga contra mim, nem bife. Hoje em dia, se tu tem, ele tá jogando na televisão, e que ele é tipo, é maior rúdio que pode ter na família, você entende?
0: पहला वर्ल्ड कप महज 5.5 लाख की आबादी और इतिहास रचने वाला प्रदर्शन, केप वर्डे के लोगों के लिए जश्न की इतनी वजह काफी है। फिलहाल पूरा देश जश्न में डूबा है, दुनिया भर में इस टीम के बारे में बातें हो रही हैं और इस बहाने वो छोटा सा देश चर्चा में है, जिसे दुनिया के मानचित्र में अभी तक खोजना भी मुश्किल था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए अब आपको एक हैरत अंगेज तस्वीर दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रेडियो शो के दौरान अनोखा हादसा पेश आया। दरअसल फोल्सम प्रो रेडियो के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अमेरिकी झंडा लेकर नीचे उतर रहा एक स्काई ड्राइवर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्काई ड्राइवर रॉस अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह में इसके तहत विशाल अमेरिकी झंडा लेकर पैराशूट से एंट्री कर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था और हजारों दर्शक उनका स्वागत कर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही रॉस जमीन के करीब पहुंचे, उनके साथ बंधा बड़ा अमेरिकी झंडा पास के एक पेड़ में उलझ गया। इससे पैराशूट का संतुलन बिगड़ गया और वो तय जगह पर उतरने की बजाय पास में लगे एक टेंट पर जा गिरे। अच्छी बात यह रही कि रॉस को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। हादसे के बाद उन्होंने खुद पैदल मैदान में प्रवेश किया जहां दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। चलिए अब बात कर लेते हैं एक ऐसी माँ की जो मुश्किल वक्त में न केवल बेटे का सहारा बनी बल्कि बेटे के सपने पूरे होने की वजह भी बन गई। दरअसल कोटा में पढ़ाई के दौरान गंभीर बीमारी ने एक स्टूडेंट के सपनों को संकट में डाल दिया, लेकिन उस बच्चे की माँ ने हार नहीं मानी। बेटे के लिए माँ ने ऑनलाइन क्लास की, नोट्स बनाए और बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी संभाली। माँ की मेहनत रंग लाई और अब बेटा IIT में एडमिशन लेने जा रहा है।
0: कोटा से आई ये तस्वीरें एक बेटे के लिए माँ के त्याग और तपस्या की कहानी बन गई है। इस तस्वीर में माँ और बेटा एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि परीक्षा बेटे को देनी थी, लेकिन तैयारी माँ ने भी उतनी ही की है जितनी तैयारी IIT के लिए कोई बच्चा करता है। हुआ ये कि बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले गुंजन कुमार दो साल से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहे थे। उनका सपना था आईआईटी से कंप्यूटर साइंस पढ़ने का, लेकिन किस्मत ने ऐसा इम्तिहान लिया कि लगा सब कुछ खत्म हो गया है। जेईई एडवांस से कुछ महीने पहले अचानक गुंजन के सीने में तेज दर्द उठा। जांच में पता चला कि गुंजन का बायां फेफड़ा कोलैप्स हो गया है।
4: जर्नी में अक्टूबर में आखिरी के 3 महीने में मैं बीमार पड़ गया, मेरा फेफड़ा फट गया था, तो मेरा लंग्स का ऑपरेशन हुआ एंड 10 दिन का था हॉस्पिटल में एंड 2.5 महीने का बेड रेस्ट मिला, लेकिन उसके कारण मेरी जर्नी काफी पीछे चलेगी जेई की। आखिरी में मेरे स्टडी आवर्स काफी इंक्रीज हो गए पहले से एंड मम्मी का काफी सपोर्ट रहा है मेरे नोट्स बनाने में, आखिरी में शॉर्ट नोट्स बनाना, मेरे से क्वेश्चन पूछना एंड फाइनली मैंने IIT क्रैक कर लिया जेई एडवांस।
0: न्यूमोथोरेक्स जैसी गंभीर बीमारी ने गुंजन को करीब 3 महीने तक बिस्तर पर रहने को मजबूर कर दिया। उनकी क्लास छूट गई, पढ़ाई रुक गई और सपना भी धुंधला पड़ने लगा। लेकिन जब बेटा कमजोर पड़ा तब माँ उसकी ताकत बन गई। बीएड कर चुकी माँ गुंजन सालों बाद फिर से स्टूडेंट बन गई। उन्होंने हर ऑनलाइन क्लास खुद देखी, हर लेक्चर के नोट्स अपने हाथों से तैयार किए और फिर वही नोट्स बेटे को पढ़ाती रही।
5: जैसे कोई शॉर्ट नोट भी बनाना होता था तो सारे PDF बना के देता था, तो मैं कभी कभी इसका वीडियो भी देता था, तो मैं उसको रुक रुक के मुझे पूरा लिखती थी। फिर नहीं थोड़ा सा थोड़ा वही कुछ जो सर खान राइटिंग होता वो जो मुझे नहीं समझ में आता था, फिर मैं इसे विशेष में रुक रुक के पूछती थी क्या है, तो मुझे बताता था।
0: उस वक्त गुंजन की लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं थी, उनकी आंखों की 70% से ज्यादा रोशनी भी जा चुकी है, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। जेईई मेन में अच्छी परसेंटाइल हासिल की और अब IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ एक बेटे के IIT तक पहुंचने की कहानी नहीं है, ये कहानी एक माँ की तपस्या की ऐसी मिसाल है जिसने अपने बेटे के सपने को अपना सपना बना लिया। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे।
3: अब चलिए बात कर लेते हैं इंस्टा स्टोरी की, जिसमें आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाएंगे जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसा रहे हैं। देखिए अली असगर की फनी इंस्टा स्टोरी,
0: गुड न्यूज टुडे।
3: अब चलिए बात कर लेते हैं इंस्टा स्टोरी की, जिसमें आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाएंगे जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसा रहे हैं। देखिए अली असगर की फनी इंस्टा स्टोरी।
6: खुश रहना चाहते हो जिंदगी में तो पहले दिल की सुनो, फिर दिमाग की सुनो और फिर वही करो जो बीवी कहती है।
7: बहस करने से रिश्ते कमजोर होते हैं, इसलिए तुरंत झापड़ मार कर रिश्ते मजबूत करें। बहस करने
3: के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
9: क्या आपके किए गए कार्यों की प्रशंसा आपको ऑफिस में नहीं मिलती? क्या आपके ऑफिस में आपके सहयोगी आपका सपोर्ट नहीं करते? क्या ऑफिस में एडजस्ट करने में आपको समस्या हो रही है? कौन सी हैं आपके कार्यस्थल की परेशानियां और क्या हैं उनको दूर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads like this one and score more of the content you love. That's more curated news.
11: If one party is saying we will never raise taxes even on millionaires and billionaires,
10: more top sports.
12: And he's gonna go! There's the tying goal!
10: And everything in between.
12: This game is over!
10: Upgrade now for the premium listening experience.
13: परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
3: अमरनाथ के लिए बालताल बेस कैंप से चौथा जत्था रवाना, अब तक 56,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात, जम्मू से श्रीनगर के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू।

आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते आज स्कूल कॉलेज में छुट्टी के आदेश। दिल्ली में भी आज बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में भी आज तेज बारिश की वजह से चेतावनी के चलते सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल आंगनबाड़ी और अन्य संस्था रहेंगी बंद। लोगों से सतर्क रहने की अपील। देश को इसी महीने मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। 17 जुलाई को पीएम करेंगे उद्घाटन। जींद और सोनीपत के बीच चलेगी हाईटेक ट्रेन सेवा। दक्षिण कोरिया इंचियोन में फुटबॉल रोबोट कप का शानदार आयोजन। सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने जीता लार्ज साइज ह्यूमनॉइड लीग का खिताब।

आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आप जहां काम करते हैं, नौकरी हो व्यापार हो, अगर काम करने की जगह आपका कार्य स्थल अगर बेहतर हो तो अच्छा काम भी कर पाएंगे और सफल भी हो पाएंगे। लेकिन बहुत बार कार्यस्थल पर तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके कार्य स्थल पर परेशानियां आ रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 1:47 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 4:07 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 9:57 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। आप जहां पर काम करते हैं, जो आपका कार्य स्थल है, उसका ग्रहों से क्या संबंध है, पहले ये समझिए। देखिए, आप जहां भी काम करते हैं, नौकरी में या व्यापार में, आपके काम करने की जगह का सीधा संबंध होता है शनि के साथ। शनि बताता है कि आपके कार्य स्थल पर जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे हैं। इसके अलावा कुंडली का सप्तम भाव यानी आपके कलीग और दशम भाव आपके काम करने की जगह भी महत्वपूर्ण है। सप्तम और दशम से आप ये समझ सकते हैं कि जहां आप काम करते हैं वहां का माहौल कैसा है। किसी भी कुंडली में बुध बड़ा महत्वपूर्ण है ऑफिस के मामले में, क्योंकि बुध की सहायता से व्यक्ति अपने ऑफिस में अपने कार्य स्थल पर एडजस्ट कर पाता है। राहु और मंगल
आपके ऑफिस में, आपके कार्य स्थल में अलग अलग समस्याएं पैदा करते हैं। कुंडली में अगर सप्तम भाव अच्छा नहीं है तो ऑफिस में अपने कलीग से और बाकी लोगों से सहयोग नहीं मिलेगा। जरूरत के समय आपके साथी, आपके साथ काम करने वाले लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके कार्यस्थल पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचिए। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, पुरस्कार सम्मान आपको मिल सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आपके कार्य स्थल की स्थितियां ठीक नहीं हैं, वहां पर काम करने में आपको परेशानी होती है, तो क्या करेंगे? सबसे पहली समस्या, अगर आपको अनावश्यक काम करना पड़ता है, दूसरे घूम रहे हैं और आपको बेवजह का प्रेशर दिया जा रहा है, अनावश्यक काम करना पड़ता है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण करिएगा शनिवार की शाम को, और अपने काम करने की जगह पर एक सफेद मार्बल का टुकड़ा रखिएगा। अपने सामने अपने डेस्क पर, शीशे के नीचे या सामने की दीवार पर रंग बिरंगे फूलों का चित्र लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बेवजह का प्रेशर नहीं मिलेगा, अनावश्यक काम नहीं करना होगा। बहुत बार ऑफिस में ऐसा होता है कि जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे कलीग हैं, वही हमारे लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, चुगली करते हैं, काम करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो अगर आप
आपको अपने कलीग से, अपने सहयोगियों से समस्या हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिएगा। स्नान करने के बाद हल्की सुगंध लगाइएगा। ऑफिस जब जब जाते हैं, रोज जाते हैं, गुड़ खाकर जाइएगा। और हर मंगलवार को जब भी आपको समय मिले, हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करिए और अपने काम के स्थान पर एक नकली या असली लाल रंग का फूल रखिएगा या उसका चित्र लगाइएगा। सहयोगियों की वजह से आपको समस्या नहीं होगी। कार्यस्थल की समस्याओं पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक

जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। आएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। करियर में लापरवाही ना करें, लिखा पढ़ी में वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में अशांति से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। बहुत बार ऐसा होता है ऑफिस में कि आप काम बड़ी मेहनत से करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन आपके काम का एप्रिसिएशन नहीं होता, आपके काम की प्रशंसा आपको नहीं मिलती है। क्या उपाय करेंगे कि काम का रिकग्निशन हो, काम की प्रशंसा मिले? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, एक तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करिएगा। जहां पर बैठकर आप काम करते हैं, काम के स्थान पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाइएगा। और याद रखिए, एक अपनी पेन हमेशा पर्सनल रखिए, अपनी पेन दूसरों को मत दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके काम की प्रशंसा होगी, काम को आपके एप्रिसिएशन प्राप्त होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिस भी ठीक है, ऑफिस का माहौल भी ठीक है, लेकिन खुद ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप खुद एडजस्ट नहीं कर पा रहे, सब कुछ ठीक होने के बावजूद, तो क्या करेंगे? रोज स्नान करना आपका जरूरी है, रोज नहाइए। इसके बाद सुबह के समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। चंदन की सुगंध लगाइए या चंदन की सुगंध वाला तिलक लगाइए। एक पेरी डॉट या एक मोती सलाह लेकर के धारण करिए। ऐसा करने से आपका काम में, अपने करियर में एडजस्ट करना आसान होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दूसरों के मामलों में ना पड़ें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा,

0: शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम बढ़ा हुआ रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, काम की रुकावट दूर होगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आपके कार्यस्थल में कैसी भी परेशानी आ रही हो, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं कि योग्यता के बावजूद आपको सम्मान नहीं मिलता, आप ऑफिस के पॉलिटिक्स के शिकार हैं, लंबे समय से आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कार्यस्थल पे परेशानियां आ रही हों। दो उपाय आपको जरूर करने चाहिए अगर कार्यस्थल पे परेशानी आ रही हो। रोज शाम को 108 बार शनिदेव के मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप अवश्य करिए और सप्ताह में एक दिन हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप नौकरी वाले व्यक्ति हैं और ऑफिशियल मामलों में प्रॉब्लम हो रही है तो केवल शनि देव की पूजा करके, केवल शनि देव के लिए उपाय करके आप इस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। तो आज हमने आपको बताया कि आपके कार्य स्थल पर अगर परेशानियां आ रही हैं तो उन परेशानियों को दूर करने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए। जिस भगवान के प्रति श्रद्धा है उनका नाम लें, इसके बाद अपना पैर जमीन पर रखिएगा। अगर रोज सुबह की एक आदत ये बना लेते हैं तो हर दिन आपका शुभ होगा और मंगलमय होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करिए, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature? today.
3: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
4: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
5: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल भगवान के दर्शन। अच्छा अब फिर यहां वही बात आ गई, भगवान कहां है? बोले जहां भक्त की हां भगवान वहां। भगवान कहां? जहां भक्त की हां भगवान वहां। प्रहलाद जी ने क्या कह दिया? खंबे में है? बोले हां। भगवान देखो मिले कि नहीं प्रकट भाई। अच्छा देखो, भगवान कर्जा भी तुरंत चुकाते। राम अवतार में पत्थर से भक्तनी प्रकट हुई तो इधर नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बैलेंस बराबर। तो भगवान कहां? बोले जहां भक्त की वहां भगवान। इसमें दूसरी बात सुनो। बोले भगवान कैसा है? बोले जैसा देखो वैसा है। पानी का कोई आकार थोड़ी है। बर्फ फ्रिज में जिस बर्तन में रख दो वैसे ही जम जाती। कटोरी में रखो तो कटोरी, कुल्फी वाली लगाओ तो कुल्फी, गिलास में रखो तो गिलास। अब पानी का कोई आकार नहीं, जिस आकार में रख दो उसी आकार में वो जम जाता। भगवान भगवान दोनों है, निराकार भी है साकार भी। निराकार ब्रह्म ही साकार। हम अभी जब बैठे थे प्रसाद पा रहे थे तो महाराज जी को कह रहे, आठवीं शताब्दी के लगभग आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जब चारों धामों की स्थापना के लिए निकले तो बद्रिकानाथ जब आए, बद्री विशालापुरी जैसे ही आए, यहां आकर उन्होंने अलकनंदा जी में जैसी गोता लगाया तो अपने तपोबल के प्रभाव से भगवान नारायण को, जो निराकार रूप में पर्वत बन करके तपस्या कर रहे थे, उन्हीं को मूर्ति के रूप में प्रकट करके यहां पर विराजमान करवा दिया, साकार रूप में प्रकट कर दिया। है तो वो निराकार। अब पर्वत का कोई आकार है क्या? बोलो बोलो बोलो, कोई ठीक ठाक आकार नहीं, आड़ा टेढ़ा तिरछा, एक अलग ही आकार में, निराकार में। लेकिन भगवान यहां तपस्या कर रहे तो बोले भक्त कैसे पता लगाएं कि कैसी तपस्या कर रहे और तपस्या होती कैसी? बोले भाई तपस्या ऐसी होती, आंख बंद किए ऐसे हाथ रखे हुए। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। जो छोटा बच्चा होता है वो सीधा सीधा नहीं पढ़ पाता, वेद की ऋचाएं नहीं पढ़ पाता, वेद के मंत्र नहीं पढ़ पाता। अब जो संस्कृत पढ़ा ही ना हो उसको सीधी वेद की बातें बताओ तो उसको ना समझ आएगी। जिसे हिंदी नहीं आती उसको आप जो है अंग्रेजी पढ़ाओ तो ना समझ आएगी। और जिसको जो है अभी कुछ सीखा ही नहीं उसको आप हिंदी पढ़ाओ उसे आएगा ही नहीं। तो फिर मास्टर क्या करते हैं? छोटा बड़ा पढ़ाते। लेकिन छोटा बड़ा भी कैसे पढ़ाते? चिन्ह दिखाकर, आ अनार का, ताकि अनार के चक्कर में आ ध्यान रहे। बड़ा आ आम का, आम के चक्कर में बड़ा आया। देखो उदाहरण देकर के समझाते हैं। एक अच्छा बोले अब छोटा लिखना है कैसे लिखे? बोले बेटा दो चूल्हे बनाओ और चूल्हे में लकड़ी लगा दो और लकड़ी के ऊपर फिर लकीर धर दो, दो आ बन गया। समझाते? बोलो समझाते कि नहीं समझाते? क्यों समझाते? ताकि इसको ध्यान में भर जाए, स्मरण में भर जाए। तो भगवान भी जगत आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने क्या किया आठवीं शताब्दी में? बोले बद्रीनाथ भगवान की महिमा जन जन तक पहुंचेगी तो लोग पूछेंगे कैसे हैं बद्रीनाथ, तो कैसे पता लगेगा? तो बोले टेंशन ना लो, निराकार भगवान से कहा आप मूर्ति रूप साकार बनकर अलकनंदा जी में हमें मिलो और डुबकी लगा करके भगवान को निकाल लिया और वो मूर्ति को रख दिया। ऐसा किया तो है वो निराकार, पर हम सबके ज्ञान के लिए वो साकार बन गए। क्या बन गए? साकार बन गए। तो भगवान तो वैसे तो निराकार है, ताहे अहीर की छोहरियां छछिया।

बच्चा चलने लगता तो माँ कहती लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो माँ आगे आगे दौड़ती, बच्चा पीछे पीछे भागता। क्या कभी बच्चा पकड़ पाएगा माताजी को? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। पर माताजी ही ठहर जाती और पकड़ लेती, बच्चे को लगता कि लो लो हमने पकड़ लिया, हो पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अरे पकड़ा नहीं है, माताजी की इच्छा थी तो वो ठहर गई। ऐसे ही भगवान बंधन में नहीं है, वो तो भक्त के भाव के कारण स्वेच्छा से बंध जाते हैं। तो निराकार को पकड़ नहीं सकते, पर भगवान की इच्छा होती है लीला करने की, तो कभी कृष्ण बन जाते, कभी राम बन जाते, कभी जो है हनुमान बन जाते, कभी भोले बाबा बन जाते, कभी कुछ बन करके भगवान निराकार, भगवान साकार बन करके प्रकट हो जाते। क्या हो जाते? बोलो बोलो बोलो बोलो, प्रकट हो जाते। तो भगवान विठ्ठल नाथ, पंडरपुर वाले विठ्ठल नाथ पुंडलिक के घर पर गए। पुंडलिक माँ बाप की सेवा में इतने तल्लीन, होशी नहीं। भगवान ने आवाज लगाई, अरे पुंडलिक बहुत दिन हो गए तुम आए नहीं, तुम नहीं आए तो हम ही आ गए, तुम नहीं आए तो हम ही आ गए। जितनी ललक भक्त के अंदर भगवान के लिए होती, भगवान के अंदर उससे ज्यादा ललक भक्त के लिए होती। तुम नहीं आए तो हम आ गए। पुंडलिक ने कहा हाँ हाँ ठीक है, अच्छे आए, भले आए भले आए, पर अभी ना हमारे माँ बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उनकी सेवा में व्यस्त हैं। ये लो ईंट, भगवान आए ना तो स्वागत तो होना चाहिए, पर अब जा तो नहीं सकते, तो ईंट खिसका दी, इस पर खड़े हो जाओ, हम जैसे ही फ्री होते हैं तो आते हैं। तो भगवान खड़े हो गए उस पर ईंट के ऊपर। रुक्मी माता बोली ये तो गजब का भगत है, ईंट दे रहा है। भगवान बोले जैसा भी है ठीक है, अच्छा है, पर है बहुत प्यारा, अच्छा है, बोला है, माँ बाप की सेवा कर रहा है, थोड़ा व्यस्त है, फ्री होगा आएगा। एक घंटा दो घंटा दिन भर हो गया, अच्छा इसको याद ही नहीं रहा पुंडलिक को माता पिता की सेवा में कि भगवान भी आ रखे। अब भगवान ज्यादा देर कोई आदमी खड़ा होगा तो कमर दर्द होगी कि नहीं होगी? भगवान ने ऐसे हाथ रख लिए। तो आप कभी साक्षी गोपाल जी के दर्शन करना, ये वही दर्शन है। पुंडलिक के यहां पर भगवान ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं, तो इट्ठलनाथ होते होते इनका नाम विट्ठलनाथ पड़ गया। तो भक्त जब बहुत समर्पित होता तो भगवान उनके घर पहुंचते, सबरी को थोड़ी जाना पड़ा।

भगवान सबरी के यहाँ गए, सबरी भगवान के घर नहीं गई, वो तो शरणागत थी गुरु आज्ञा पर। उसके गुरु ने कहा था, मतंग मुनि ने, राम आएंगे। क्या कहा था? राम आएंगे। बस इतना गुरु ने कहा और चली गई। सबरी ने लौट के ये नहीं गुरु से पूछा कब आएंगे, बस उसे भरोसा था गुरु ने कहा राम आएंगे। और परिणाम क्या हुआ? आए। वन में चार प्रकार के महात्मा रहते थे, हमने कई बार ये बात कही भी पर आज फिर से कहते, चार प्रकार के महात्मा, जलाहारी, फलाहारी, जलाहारी, फलाहारी, दूधाहारी और पवनाहारी। चार प्रकार के महात्मा, जल पीकर रहने वाले जलाहारी। जलाहारी कहते कि सुनो, हम बहुत कठोर तप करते हैं, राम जी यदि बनाएंगे तो सबसे पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे। बोले क्यों? बोले हम जलाहारी है, केवल जल पीकर रहते। तो दूसरे बोले रुको चुप रहो, राम जी आएंगे तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे, हमारे घर आएंगे। बोले क्यों? बोले तुम तो दूध ही पीते हो, वो भी दिन में दो बार, हम फलाहारी हैं, एक फल खाते। तो राम जी बनाएंगे सबसे पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे। तीसरे महात्मा बोले चुप रहो, ना जलाहारी के घर आएंगे ना फलाहारी के घर आएंगे, राम जी बनाएंगे तो हमारी झोपड़ी में आएंगे। बोले क्यों? बोले ना हम जलाहारी है ना फलाहारी, हम पयाहारी है, दूध पीते हैं, वो भी एक टाइम, वो भी गाय का, वेद लक्षणा गाय का, जो राम जी को बहुत प्रिय। तब तक चौथे महात्मा बोले चुप रहो, तीनों के यहां नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले भगवान आएंगे तो हमारे यहां आएंगे, बनाएंगे। बोले क्यों? बोले ना हम जलाहारी हैं ना फलाहारी है ना पयाहारी है, हम पवनाहारी। ये पवनाहारी क्या है? बोले हम कुछ खाते ही नहीं, हवा भर खाते, केवल श्वास ले।

लेते हैं, बस कुछ खाते पीते ही नहीं। तो भगवान, तुम लोगों से ज्यादा हमारी कठोरता पै की नहीं है? बोले हाँ है। तो बोले बताओ किसके यहां राम जी आए? हमारे यहां आए, हम तो पवनाहारी है। राम जी आ गए वन में, चारों ने अपने अपने बाहर झोपड़ी के बाहर चौक चंदन लगाया, फूलों को बिछाया, आओ आओ आओ सरकार, आहा आओ ठाकुर जी, आओ आओ बहुत अच्छे आए, आओ आओ पधारो पधारो, आओ बाप जी पधारो पधारो पधारो। भगवान बाहर आके खड़े होके कहते सबरी कहां रहती, सबरी कहां, सबरी कहां रहती। चारों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, बोले ये तो सबरी का पता पूछ रहे, इन्हें पूछना चाहिए कि फलाहारी कहां रहता, पवनाहारी कहां रहते, जलाहारी कहां रहते। और ये चारों के पास आके कहते सबरी कहां रहती है। महात्मा बोले ढूंढ लो, खोज लो, हमें नहीं है पता, हमें नहीं पता, अपना खोजो, जाओ जाओ। किसी महात्मा को दया लगी होगी, उसने सारा किया। राम जी एक दया भगवान की क्यों, मेरे पागलों तुम शरणागत रहोगे ना, खोजता हुआ तुम्हारे घर आएगा, खोजता हुआ तुम्हारे घर आएगा। और हमने पढ़ा सबरी के पास राम जी 10,000 वर्ष बाद पहुंचे। गुरु जी जब से बता के गए तब से राम जी के मिलने की आयु 10,000 साल थी। 10,000 वर्ष तक सबरी ने इंतजार किया। आंखों की रोम के जो रोम कूप होते ना, ये पलकें, पलकों के जो बाल होते ना, सबरी के बाल इतने बढ़ गए 10,000 साल में कि पृथ्वी पर लटकने लगे, आंखों के रोम पृथ्वी पर लटकने लगे। और जब राम जी आए तो वो राम जी को देख नहीं पा रही आंखों से, क्योंकि रोमकूप सामने आ रहे। तो जब राम जी आए और जब वो नहीं देख पाई तो दोनों हाथों से रोम के बालों को ऊपर करके राम जी को देख रहे, राम जी को देख रहे। पर मेरे पागल, यदि तुम शरणागत भगवान के भगत रहोगे तो तुम्हें राम जी के दर पे नहीं जाना पड़ेगा, राम तुम्हारा घर खोजते खोजते आएंगे। भगवान शंकर की वाणी, हमारे भूत भावन महादेव कहते हैं किससे, पार्वती से, देवी ये मेरा अनुभव है। क्या अनुभव है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना, मोह निशा सब सोबन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। ये सारा संसार मोह निशा है और हम सब सपना देख रहे हैं, जगत एक स्वप्न के तरह है। अच्छा, स्वप्न में जब तक रहोगे तब तक दुख रहेगा। स्वप्न में कोई तुम्हें पीट रहा हो या तुम पानी में डूब रहे हो तो बचने का पूरा उपाय करोगे, हाँ जी या ना जी? और रोगे भी, हाँ जी या ना जी? कभी कभी सपना देखना कि एक हाथी पीछे पड़ जाए मारने के लिए तो तुम आगे आगे हाथी पीछे पीछे, और जब तक सपने में दुख बराबर है, इतने में पैर में कुछ चोट लगी और गिर गए और हाथी नजदीक आया और जैसे ही उसने पैर उठाया और रखने ही वाला था तब तक नींद खुल गई। हाँ, बिस्तर पे देखा रहे कोई हाथी बाती नहीं है, कहीं नहीं मर रहे हम, पसीने से लथपथ हो गए। ये पसीना क्यों आया? एसी चल रही थी, अरे बोले हाथी मार रहा था, हाथी मार रहा था। कमरे में हाथी कहां से आए? कमरे में नहीं, सपने में हाथी। मतलब जब तक सपने में थे दुख बराबर था, सपना गायब हुआ दुख गया। ऐसे ही जब तक तुम जगत में रहोगे दुख बराबर रहेगा, और जैसे ही शरीर छूटा दुख अपने आप गायब हो जाएगा। इसलिए बाबा ने इनको इस संसार को स्वप्न संसार कहा। क्या कहा? स्वप्न संसार। स्वप्न संसार में सुख भी है दुख भी है, दोनों ही है। इसलिए इस स्वप्नमयी जगत में हमको हारिए ना हिम्मत विसारिए ना, हिम्मत हारना नहीं हो राम को, भगवान को विसारना नहीं, भगवान का सुमरण सदैव बनाए। देखो भगवान की भक्ति दो प्रकार से की जा सकती है, एक निराकार और एक साकार। अच्छा, निराकार और साकार क्या है? बहुत लोग निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, और बहुत लोग केवल मूर्ति पूजा को मानते, निराकार को नहीं मानते। अच्छा, दोनों ही सही है,

ही सही है। निराकार पिता है, साकार माँ है, दोनों जरूरी है, बाप भी जरूरी है, मां भी जरूरी है, दोनों आवश्यक है। तो निराकार पिता है, साकार। अच्छा ऐसे समझो, पानी जब तक बहता है किसी भी आकार में नहीं रहता तो वो निराकार हो जाता, क्या हो जाता? लेकिन निराकार रूपी पानी को साकार बनाना हो तो फ्रिज में रख दो, कुल्फी बन जाएगा। और कुल्फी बना, बढ़िया आराम से खाओ, पकड़ लो पानी की। अच्छा पानी को पकड़ा जा सकता क्या? बोलो हाँ या ना। अरे जम के बोलो, पानी को पकड़ सकते क्या? लेकिन फ्रिज में जमा दो तो बर्फ तो पकड़ सकते हैं। बर्फ किससे बनती है? पानी से बनती है। उसी प्रकार ये ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म जो घट घट में बैठा। रामायण के अनुसार गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं वर्णी। वो ब्रह्म जो घट घट में बैठा, कण कण में बैठा, तुम में समाया, मुझ में समाया, जीव में समाया, चींटी से लेकर के हाथी में समाया, अजगर से लेकर के भगवान, सर्वत्र पशु पक्षियों में कण कण में व्याप्त है पूर्ण परब्रह्म परमात्मा, पूरे जगत में व्याप्त है। उस ब्रह्म में हवा में भी है और हवा के बाहर भी है, ब्रह्मांड के समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है, स्पेस के ऊपर भी है, स्पेस के नीचे भी है। पर उस ब्रह्म को पकड़ पाना, हवा को पकड़ पाना बहुत कठिन है। तो बोले क्या किया जाए? बोले हवा को तो नहीं पकड़ सकते पर गुब्बारे में भर सकते हैं। हवा को नहीं पकड़ सकते लेकिन हवा का मजा लेने के लिए गुब्बारे में भर सकते हैं। तो जब कभी भक्त निराकार ब्रह्म को नहीं देख पाता, समझ नहीं पाता, तो भगवान कहते कोई बात नहीं पगले, तू हमें नहीं समझ पा रहा, नहीं देख पा रहा, मैं साकार होकर के प्रकट होता। तो वो राम और कृष्ण बन करके प्रकट हो जाता। इसको एक उदाहरण से और समझो। संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतरणिका, सीढ़ी को। सीढ़ी जान गए ना, सीढ़ी को। अच्छा सीढ़ी अवतरण का, उसको संस्कृत में क्या कहते? अवतरण का। अच्छा सीढ़ी के दो उपयोग है, एक ऊपर चढ़ जाओ और दूसरा उतर जाओ। भगवान बैठे छत पे और हम हैं नीचे, तो इन जैसे जो महात्मा होते हैं वो चढ़ जाते हैं, तप के बल पर, जप के बल पर, ध्यान के बल पर। लेकिन जो हमारे जैसे उल्लू होते हैं वो नीचे से ही भगवान से कहते हम ना चढ़ पाएंगे, वाइब्रेशन होता है, बीपी लो होता है हमारा, हम ना चढ़ पाएंगे, भजन ना कर पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम वहीं से दोनों हाथ उठाकर हमें पुकारो, हम खुद नीचे उतर करके आ जाए। हाँ कोई बात नहीं, तुम वहीं रहो, भजन करो, हम आ जाएंगे। और याद रखना मेरे पागल, इस भक्ति को शरणागत भक्ति कहा। क्या कहा? शरणागत। और जिस भक्त के अंदर शरणागत भक्ति है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान चलकर उसके पास आते। महाराष्ट्र के पुंडलीक भगत माता पिता की सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि भगवान के पास गई नहीं, बहुत दिन से नहीं गए। जब बहुत दिन से नहीं गए तो एक दिन भगवान ने ही रुक्माई से कहा, रुक्मी मां से, चलो पुंडलीक नहीं आया, हम ही मिलने चल पड़ते हैं।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffeehouse. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: चलिए अब आपको एक हैरत अंगेज तस्वीर दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रेडियो शो के दौरान अनोखा हादसा पेश आया। दरअसल फोल्सम प्रो रेडियो के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अमेरिकी झंडा लेकर नीचे उतर रहा एक स्काई ड्राइवर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्काई ड्राइवर रॉस अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह में इसके तहत विशाल अमेरिकी झंडा लेकर पैराशूट से एंट्री कर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था और हजारों दर्शक उनका स्वागत कर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही रॉस जमीन के करीब पहुंचे उनके साथ बंधा बड़ा अमेरिकी झंडा पास के एक पेड़ में उलझ गया। इससे पैराशूट का संतुलन बिगड़ गया और वो तय जगह पर उतरने की बजाय पास में लगे एक टेंट पर जा गिरे। अच्छी बात यह रही कि रॉस को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। हादसे के बाद उन्होंने खुद पैदल मैदान में प्रवेश किया जहां दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए रामबाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ,
10: अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360
15: कहता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
19: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
20: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
21: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
22: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
23: Keep it on smooth jazz.
24: This is Roots Reggae
25: exclusively on TuneIn.
26: This is classic hip-hop
27: exclusively on TuneIn.
21: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
28: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
29: और दुर्भाग्य कहता है
28: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
30: अविश्वास में विश्वास बसता है,
28: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
28: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
28: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
30: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
28: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
29: और दुर्भाग्य कहता है
28: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
30: अविश्वास में विश्वास बसता है,
28: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
28: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
9: अरुणाचल प्रदेश में ड्री फेस्टिवल की धूम, पारंपरिक लिबास में सजे धजे लोगों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की, लोक नृत्य करते हुए नजर आए लोग। भारतीय पकवान के दीवाने हुए इंडोनेशिया के लोग, जलेबी, चाट और अन्य पारंपरिक व्यंजनों का मजा ले रहे हैं जकार्ता के लोग। अमरनाथ के लिए बालटाल बेस कैंप से चौथा जत्था रवाना, अब तक 56,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, जम्मू से श्रीनगर के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते आज स्कूल कॉलेजों में छुट्टी के आदेश, दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में भी आज तेज बारिश की चेतावनी के चलते सभी सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य संस्था रहेंगे बंद, लोगों से सतर्क रहने की अपील। साउथ कोरिया के इंचियोन में फुटबॉल रोबोट कप का शानदार आयोजन, सिंगहुआ यूनिवर्सिटी ने जीता लार्ज साइज ह्यूमनाइड लीग का खिताब।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज चौथा दिन, बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ बालटाल बेस कैंप से चौथा जत्था रवाना। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, यात्रियों की सुविधाओं का भी रखा जा रहा है खास ख्याल। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा जारी, कई श्रद्धालु पैदल तो कई घोड़ों और पालकी पर सवार नजर आए। अमरनाथ यात्रा में रविवार को 24,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, 18,700 पुरुष और 5,000 महिला भक्तों ने की पूजा अर्चना। अमरनाथ यात्रा में हर दिन बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की तादाद, 3 दिन में 56,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का रखा जा रहा है पूरा ध्यान, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चंदनबाड़ी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने रविवार को किया था पहलगाम का दौरा, अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप हॉस्पिटल में परखी थी तैयारियां। 57 दिनों तक चलेगी दिव्य अमरनाथ यात्रा, जम्मू बेस कैंप से हर दिन रवाना होता है तीर्थयात्रियों का जत्था। अमरनाथ यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात, जम्मू से श्रीनगर के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। अमरनाथ यात्रियों को आधार, KYC और मौके पर ही पंजीकरण की भी मिलेगी सुविधा, रेलवे बोर्ड से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक की रहेगी सीधी निगरानी। तीन देशों के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, एक्ट ईस्ट नीति, महासागर विजन को देंगे मजबूती। पीएम मोदी 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में करेंगे प्रवास, भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम। इंडोनेशिया में भारतीय व्यंजनों की तेजी से बढ़ रही है लोकप्रियता, भारतीय चाट और जलेबी की बढ़ रही है मांग। जकार्ता के लोग भारतीय मसालों की खुशबू और स्वाद की जमकर तारीफ कर रहे हैं, खासकर भारतीय मिठाइयों और स्ट्रीट फूड को सराह रहे हैं। भारतीय दोस्तों और सहकर्मियों से यहाँ के लोगों को मिल रही भारतीय खाने की जानकारी, कई रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में भी भारतीय खानों को किया गया है शामिल। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में मूसलाधार बारिश के बीच दिखा रोमांचक नजारा। हाईवे पर चहलकदमी करते हुए दिखा शेरों का परिवार। शेरों के परिवार को देखकर सभी ने दूरी पर रोकी गाड़ियां। लोगों ने घटना को कैमरे में कैद किया। जूनागढ़ के भवनाथ में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए महासम्मेलन का आयोजन। सेमिनार में वन्य जीव विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में शेरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अभयारण्य क्षेत्र को बढ़ाने पर किया गया विचार। सरकार से की वन भूमि बढ़ाने की मांग। राजौरी में बीआरओ की टीम ने किला धरल इलाके में पहला पक्का स्टील पुल बनाकर तैयार किया। 60 मीटर लंबे इस पुल से सेना के साथ स्थानीय लोगों की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। पाली जिले के बाड़सा गांव में पशु प्रेम का अनोखा नजारा देखने को मिला। बछड़े की पूरी भव्यता के साथ की गई शादी। बछड़ा बछड़े की शादी में महिलाओं ने गाए मंगल गीत। लोगों ने उत्सव को जमकर डांस किया। पाली में अनोखे विवाह के दौरान कन्यादान में मिले हजारों रुपए रकम को गौशाला के लिए दिया गया। पशुपालन और बढ़ावा देने और डेयरी उद्योग से लोगों को जोड़ने के लिए किया गया शादी का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनकर निपटारे के दिए आदेश। श्रीनगर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं विदेशी पर्यटक। डल झील की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपातनी समुदाय के ने मनाया 4 दिवसीय द्री महोत्सव। अच्छी फसल और बारिश की कामना की। द्री महोत्सव में पारंपरिक नृत्य की रही धूम। कार्यक्रम में मेधावी छात्रों का किया गया सम्मान। टूथ आर्चर गोविंद माली के नाम पर एक और उपलब्धि। पाली में आयोजित प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग गोविंद दांतों से खींचते हैं धनुष की डोरी। कई प्रतियोगिताओं में जीत चुके हैं पुरस्कार। मैदानों के साथ पहाड़ी इलाकों में बारिश का दौर जारी। उत्तराखंड के 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की आशंका। लोगों ने अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। बागेश्वर जिले में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राहत बचाव दल की टीम अलर्ट। बागेश्वर जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को किया गया बंद। मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू किश्तवाड़ हाईवे पर रोकी गई आवाजाही। राहत और बचाव के काम में जुटा प्रशासन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश के साथ फसलों की बुआई का काम हुआ शुरू। हल लेकर खेतों में जुटे किसान। खंडाला एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड। सड़क पर दिखा झरने का नजारा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने किया विकराल रूप धारण। तो वहीं जलमग्न हुई भगवान शिव की विशाल मूर्ति। अमरेली जिले में भारी बारिश के बाद स्टेट हाईवे पानी के बहाव से टूटा। पूरा स्टेट हाईवे रोड 2 हिस्सों में बटा। पुणे के चाकण इलाके में भारी बारिश से हाईवे पर लगा भारी जाम। एक इमारत में करीब 70 से 80 लोग फंसे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश से गर्मी से राहत। आज भी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। अगले 2 दिन में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पंजाब और हरियाणा में अगले 3 दिन में बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी। ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर आज मुंबई में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी के आदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उड़ीसा के तटों पर मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
21: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
7: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
10: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
30: तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
28: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
29: और दुर्भाग्य कहता है
28: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
30: अविश्वास में विश्वास बसता है,
28: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे।
28: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है
तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी,
एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है

0: बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: छह दिनों के विदेश दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा। इंडोनेशिया में पीएम के स्वागत में लगे पोस्टर। भारतीय पकवान के दीवाने हुए इंडोनेशिया के लोग, जलेबी, चाट और अन्य पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं जकार्ता के लोग। अरुणाचल प्रदेश में द्री फेस्टिवल की धूम देखने को मिली। पारंपरिक लिबास में सजे धजे लोगों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की, लोक नृत्य करते हुए नजर आए। अमरनाथ के लिए बालटाल बेस कैंप से चौथा जत्था रवाना। अब तक 56,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। जम्मू से श्रीनगर के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते आज स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी के आदेश। दिल्ली में भी आज बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में भी आज तेज बारिश की चेतावनी के चलते सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य संस्थाएं रहेंगी बंद। लोगों से सतर्क रहने की अपील।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने हर किरदार को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है, लेकिन कैमरे के पीछे उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही। प्यार हुआ, शादी हुई, रिश्ते बदले, दोस्ती कायम रही और फिर जिंदगी ने एक नई शुरुआत का मौका दिया। रीना दत्ता से पहली मोहब्बत, किरण राव के साथ साझेदारी और अब गौरी स्प्रैट के साथ नई जिंदगी की शुरुआत। आखिर कैसा रहा आमिर खान की मोहब्बत का ये लंबा सफर, कैसे गौरी से मिले आमिर खान, जानने के लिए अगले आधे घंटे आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि कल आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने मुंबई के पाली हिल में घर पर शादी की और इस खास मौके पर सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी लोग ही मौजूद रहे, जिनमें कई सितारे और दिग्गज हस्तियां भी शामिल थी। जो तस्वीर उनकी शादी की सामने आई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आमिर खान की लव स्टोरी सिर्फ रिश्तों के बनने और बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये रिश्तों में सम्मान हो, जिम्मेदारी हो और नई शुरुआत की भी कहानी नजर आती है।

0: बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी लेडी लव गौरी स्प्रैट के साथ जिंदगी के एक नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत कर दी है। मुंबई में आमिर के घर पर आयोजित एक शादी समारोह में दोनों ने हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। शादी की तस्वीर भी सामने आ गई है जिसमें आमिर और गौरी रजिस्टर्ड मैरिज करते दिख रहे हैं। इस फोटो में दोनों के परिवारों को भी देखा जा सकता है। अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट की शादी हो और बॉलीवुड के सितारे जश्न में शामिल न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आमिर और गौरी की खुशियों में शरीक होने के लिए बी टाउन के कई नामी चेहरे पहुंचे। आमिर की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान की लगभग पूरी स्टार कास्ट इस शादी में शामिल हुई। न्यूली वेड कपल को जिंदगी की इस नई पारी की शुभकामनाएं देने के लिए अंबानी परिवार और राज ठाकरे भी पहुंचे। आमिर खान की फिल्मों की ही तरह उनकी लव लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही है। गौरी स्प्रैट आमिर का तीसरा प्यार है जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी बनाया है। इससे पहले आमिर ने साल 1986 में रीना दत्ता से पहली शादी की थी जो करीब 16 साल चली। इसके बाद साल 2005 में उन्होंने फिल्म मेकर किरण राव से दूसरी शादी की। हालांकि दोनों ही रिश्ते वक्त के साथ एक नए मोड़ पर आकर खत्म हुए, लेकिन खास बात यह है कि आमिर आज भी अपनी दोनों एक्स वाइफ के साथ बेहद अच्छा और दोस्ताना बॉन्ड शेयर करते हैं। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को बड़ी ही खूबसूरती से संभालने वाले आमिर खान को अब गौरी स्प्रैट के रूप में अपना नया हमसफर मिल गया है। उम्मीद है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट की असल जिंदगी की ये नई स्क्रिप्ट सुपर हिट साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उनकी शादी में परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए जिसमें टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान भी शामिल रहे। आमिर खान और गौरी की शादी में आशुतोष गोवारिकर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और वहीं अंबानी फैमिली भी आमिर खान की शादी में पहुंची हुई नजर आई। आमिर खान के बच्चे जुनैद खान, आयरा खान भी शादी में शामिल हुए, तो वहीं अली एवराम भी शादी में नजर आई और राज ठाकरे भी आमिर खान की शादी में शामिल नजर आए। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती भी शादी में शामिल होने के लिए पहुंची हुई थी। खास बात यह रही कि आमिर खान की पूर्व पत्नियां रीना दत्ता और किरण राव भी शादी में मौजूद नजर आए। आमिर खान बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और गौरी स्प्रैट ब्यूटी हेयर केयर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हस्ती हैं। एक बात तो कॉमन है कि दोनों का संबंध ग्लैमर और एंटरटेनमेंट के फील्ड से है, लेकिन इनका मिलन आखिर कैसे हुआ ये सभी जानना चाहते होंगे। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर आमिर खान और गौरी पहले कब कब मिले और कैसे इनका रिश्ता परवान चढ़कर ब्याह शादी तक पहुंच गया। देखिए रिपोर्ट।

0: बॉलीवुड के नामचीन एक्टर आमिर खान एक बार फिर से प्यार रचा चुके हैं। रीना दत्ता और किरण राव के बाद अब आमिर की हम सफर बनी है गौरी स्प्रैट। मुंबई में रविवार 5 जुलाई को शादी की ऑफिशियल रस्मों के बाद आमिर और गौरी अब जिंदगी के नए सफर पर निकल चुके हैं। करीब 1.5 साल पहले आमिर खान ने गौरी के साथ रिलेशनशिप में होने का खुलासा किया था। और अब दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। वैसे तो देश और दुनिया में उम्र दराज लोगों के प्यार रचने की खबरें आम है, लेकिन 61 साल की आमिर और 67 साल की गौरी की ये प्रेम कहानी किसी फिल्मी दास्तान से कम नहीं है। कहते हैं जोड़िया तो ऊपर वाला ही बनाता है, जोड़ों को मिलाना इंसानों का काम नहीं, किस्मत का खेल है। आमिर और गौरी स्प्रैट के बीच परिचय, उनके बीच प्यार और फिर आपसी संबंधों के शादी के रिश्ते तक परवान चढ़ने की कहानी कुछ वैसी ही है। रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर और गौरी की मुलाकात 25 साल पहले बेंगलुरु में हुई थी और तभी दोनों का एक दूसरे से परिचय भी हुआ था। आमिर की कजिन नुजहत खान के माध्यम से बरसों बाद दोनों एक बार फिर से 2023 में मिले। इससे पहले 2021 में आमिर और उनकी दूसरी पत्नी किरण राव अलग हो चुके थे। 3 जुलाई 2021 को दोनों के बीच तलाक हो चुका था। वहीं बताया ये भी जाता है कि 2023 में गौरी स्प्रैट भी अपने पति से तलाक लेकर अलग हो चुकी थी। जाहिर है वो कुछ वक्त ही रहा होगा जब बरसों बाद आमिर और गौरी को एक बार फिर से आपस में मिलने का मौका मिला या नियति ने उन्हें एक दूसरे से मिलवा दिया। शायद ऐसे वक्त पर जब दोनों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत रही होगी। आमिर और गौरी के अपने अपने पार्टनर से तलाक की वजह जो भी रही हो, लेकिन ये तो साफ है कि जब वो मिले तो ये लम्हा था जब दोनों अपनी जिंदगी में अकेले थे और शायद आगे की जिंदगी के लिए उन्हें किसी भरोसेमंद साथी की तलाश जरूर रही होगी। साल 2025 में अपने जन्मदिन पर मीडिया से बातचीत के दौरान आमिर खान ने बताया कि गौरी से उनकी मुलाकात अचानक हुई और इसके बाद से वो आपस में संपर्क में रहने लगे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे उस रिश्ते में बदल गई जिसे दुनिया प्यार और फिर ब्याह का नाम देती है। 2023 में मुलाकात के बाद आमिर और गौरी करीब 1 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे। इसके बाद मार्च 2025 में वो खास मौका आया जब आमिर खान ने अपने 60वें जन्मदिन के जश्न के दौरान पहली बार सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने कबूल किया कि गौरी उनकी पार्टनर है। इस तरह माना जा सकता है कि आमिर और गौरी ये तय कर चुके थे कि दोस्ती और प्यार के इस रिश्ते को ब्याह तक परवान चढ़ाना है। अपने साथ रिश्ते के आमिर के ऐलान के बाद गौरी अपने बेटे के साथ बेंगलुरु से मुंबई शिफ्ट हो गई और आमिर खान प्रोडक्शन से जुड़ गई, उनके साथ ही काम भी करने लगी। और फिर वो मौका आया जिसका सबको इंतजार था। एक दूसरे को समझने और मजबूत भावनात्मक जुड़ाव के बाद आमिर और गौरी ने 5 जुलाई 2026 को मुंबई के बांद्रा स्थित आमिर के घर पर एक निजी समारोह में शादी कर ली। गौरी के बारे में बात करते हुए आमिर कई मौकों पर कह चुके हैं कि उन्होंने उनके जीवन में शांति और स्थिरता ला दी है। उम्मीद है गौरी के साथ रिश्ते पर रजिस्ट्रेशन की मुहर लगने के बाद अब आमिर की जिंदगी मुकम्मल राह पर चल पड़ी है और रब की नई ये जोड़ी आगे भी खुशहाल जिंदगी का सफर तय करेगी, यही सबकी दुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, कटिस टुडे।
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, ooh, like yeah. Pop stars NSYNC and Britney Spears. Me, baby, one more time. Or rock artists like Sublime. I still remember that. and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s Hits or ask your device to play 90s Hits on TuneIn.
2: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
1: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: छह दिन के विदेश दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री के स्वागत में लगे पोस्टर।

0: रहे जकार्ता के लोग। अरुणाचल प्रदेश में रीफ फेस्टिवल की धूम, पारंपरिक लिबास में सजे धजे लोगों ने दी शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति, लोक नृत्य करते हुए नजर आए लोग। अमरनाथ के लिए बालटाल बेस कैंप से चौथा जत्था रवाना, अब तक 56,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, जम्मू से श्रीनगर के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते आज स्कूल कॉलेजों में छुट्टी के आदेश, दिल्ली में भी आज बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में आज तेज बारिश की चेतावनी के चलते सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य संस्था रहेंगी बंद, लोगों से सतर्क रहने की जा रही अपील।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज चौथा दिन, बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों के साथ बालटाल बेस कैंप से चौथा जत्था रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात, जम्मू से श्रीनगर के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गई। 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक्ट ईस्ट नीति महासागर विजन को देंगे मजबूती। इंडोनेशिया में भारतीय व्यंजनों की तेजी से बढ़ती जा रही लोकप्रियता, भारतीय चाट और जलेबी की बढ़ रही मांग। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में मूसलाधार बारिश के बीच में दिखा रोमांचक नजारा, हाईवे पर चहलकदमी करते दिखे शेरों का परिवार।
2: दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत मिली, आज भी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी, अगले 2 दिन में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पंजाब और हरियाणा में अगले 3 दिन में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी, ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर आज मुंबई में स्कूल कॉलेज में छुट्टी के आदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, ओडिशा के तटों पर मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में ना जाने की सलाह।
0: श्रीनगर में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, डल झील की खूबसूरती का मजा ले रहे। अरुणाचल प्रदेश में अपातनी समुदाय में मनाया 4 दिवसीय द्री महोत्सव, अच्छी फसल और बारिश की कामना की गई। द्री महोत्सव में पारंपरिक नृत्य की रही धूम, कार्यक्रम में मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। टूथ आर्चर गोविंद माली के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, पाली में आयोजित प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग गोविंद दांतों से खींचते हैं धनुष की डोरी, कई प्रतियोगिताओं में जीत चुके हैं पुरस्कार।
2: बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी करने के बाद क्लीन शेव लुक में नजर आए सनी देओल। सनी देओल जल्द ही कोर्टरूम ड्रामा फिल्म इक्का में आएंगे नजर। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने आमिर खान और गौरी की शादी का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, इरफान मेहमान बनकर पहुंचे थे शादी। तो हेरा फेरी थ्री से जुड़ी कानूनी लड़ाई ने लिया एक नया मोड़। प्रियदर्शन की एग्जिट के बाद अक्षय के प्रोडक्शन हाउस ने नोटिस जारी कर दी चेतावनी। आलिया भट्ट और शर्वरी की एक्शन थ्रिलर फिल्म अल्फा ने रिलीज के तीसरे दिन की 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। फिल्म का टोटल कलेक्शन 34 करोड़ पहुंचा। दिलजीत की फिल्म सतलुज रिलीज के बाद दो दिन में ही ओटीटी से हटी। सही वजहों का अब तक नहीं पता चला।
0: दक्षिण कोरिया इचियोन में रोबोट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन हुआ। सिंघवा यूनिवर्सिटी ने जीता लार्ज साइज ह्यूमनॉइड लीग का खिताब। रोबोट वर्ल्ड के फाइनल में चीन के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की शांघाई टीम से हुआ मुकाबला। सिंघवा यूनिवर्सिटी की टीम ने बूस्टर T1 रोबोट की मदद से जीता मैच। इस साल रोबोट कप में अपनाया गया AI ऑपरेटेड फॉर्मेट। मैदान पर खुद फैसले देकर और लेकर रणनीति अपनाते दिखे। चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर पहला स्पेस बेस्ड ग्रीन हाउस गैस डिटेक्टर इंस्टॉल किया गया। पृथ्वी की कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा पर नजर रख सकता है ये डिटेक्टर। चीन के स्पेस स्टेशन पर मौजूद शेंझोउ 23 क्रू कई अहम रिसर्च पर कर रहा है काम। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को ट्रैक करने इकोलॉजिकल एनवायरमेंट के लिए भी मिल सकेगी जानकारी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से आपके लिए। खबरों की प्लेट तैयार है
0: तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
2: सौ साल बाद अंटार्कटिका में बहने वाली खूनी झरने के रहस्य से वैज्ञानिकों ने उठाया पर्दा। शून्य से नीचे तापमान में भी नहीं जमता ये झरना।
0: मूसलाधार बारिश के बीच में मिशन रेस्क्यू में जुटे NDRF और SDRF की टीमें। पुणे और मुंबई से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में भी बचाई जा रही लोगों की जान।
2: मुंबई में जमकर बरस रहे हैं मानसूनी बादल। आज भी कई इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। स्कूल कॉलेज और सभी संस्थान बंद। लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह।
0: उत्साह से जारी है अमरनाथ की यात्रा। चौथे दिन अब तक 56,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन।
2: अरुणाचल प्रदेश में ड्री फेस्टिवल की धूम मची। पारंपरिक लिबास में सजे धजे लोगों ने की शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुति।

0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे रहस्य के साथ जिस पर 100 साल से भी ज्यादा वक्त से पर्दा पड़ा हुआ था। ये रहस्य है अंटार्कटिका में बहते खूनी झरने का, जिस पर से 100 साल के बाद अब वैज्ञानिकों ने पर्दा उठाया है। अंटार्कटिका के माइनस टेम्परेचर में टेलर ग्लेशियर से बहने वाले इस झरने का पानी इंसानी खून की तरह लाल है,
1: जिसके कारण इसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है। और वैज्ञानिक काफी समय से जाने की कोशिश भी कर रहे थे कि आखिर ग्लेशियर के अंदर से खून जैसा लाल पानी क्यों निकलता है, शून्य से नीचे तापमान में भी ये जमता क्यों नहीं, और भारी बर्फ के भीतर से पानी बाहर आखिर आता कैसे है। बर्फ की गहराइयों में छिपे इन तमाम रहस्य को वैज्ञानिकों ने डिकोड कर लिया है। रिपोर्ट के जरिए देखिए।

0: अंटार्कटिका में शून्य से काफी नीचे तापमान में जहाँ सब कुछ जम जाता है, वहाँ ये झरना जमता क्यों नहीं? चारों तरफ बर्फ के साम्राज्य में सब कुछ सफेद है, तो भी इस झरने का रंग लाल क्यों है? अंटार्कटिका का ये रहस्यमय खूनी झरना कुदरत का करिश्मा है या कोई श्राप, या फिर इसके पीछे की वजह ज्वालामुखी है? अंटार्कटिका की बर्फीली वादी में बहने वाले लाल झरने के रहस्य ने एक शताब्दी से भी ज्यादा समय तक दुनिया को अचरज में रखा। पहली नजर में इंसानी खून जैसा नजर आने वाला ये खौफनाक नजारा दुनिया भर के लोगों को डराता रहा। 1911 में अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर से बहते हुए इस रहस्यमय झरने की खोज के बाद इसके रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश लगातार जारी रही, लेकिन 100 साल से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी ये पहेली बना रहा। लेकिन अब इसके रहस्य से पर्दा उठ चुका है। अंटार्कटिक साइंस जर्नल में वैज्ञानिक ने एक नई रिसर्च प्रकाशित कर खूनी झरने के रहस्य से पर्दा उठा दिया है। वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि टेलर ग्लेशियर के नीचे सदियों से आखिर झरने का पानी खून की तरह क्यों लाल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लेशियर के नीचे एक प्राचीन अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व है। इस रिजर्व में बहुत ही ज्यादा खारा पानी भरा हुआ है। ग्लेशियर के मूवमेंट से भारी दबाव पैदा होता है, जिससे खारा पानी बर्फ की छिपे दरारों से बाहर आ जाता है। इस पानी में भारी मात्रा में आयरन घुला होता है। बाहर आते ही आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ये बिल्कुल लोहे पर जंग लगने जैसा ही एक प्रोसेस है। इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है। 1911 में जब ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने इसकी खोज की, तो उन्हें लगा था कि शैवाल की वजह से पानी का रंग लाल है, और उन्होंने तुरंत इस जगह का नाम ब्लड फॉल्स रख दिया। लेकिन बाद में पता चला कि शैवाल इस लाल रंग की वजह से नहीं, और अब ये साफ है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से झरने का रंग लाल है, और भारी दबाव की वजह से भारी बर्फ के नीचे दबा हुआ पानी नेटवर्क चैनलों से बाहर सतह पर आ जाता है। वैज्ञानिकों के सामने एक दूसरा बड़ा सवाल ये भी था कि अंटार्कटिका की बर्फीली वादी में माइनस तापमान में भी ये पानी जमता क्यों नहीं? इस पहेली का जवाब पानी में मौजूद भारी नमक में छिपा है। रिसर्चर्स ने बताया कि इस खारे पानी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अत्यधिक नमक के कारण पानी का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल पानी से काफी नीचे चला जाता है। जब ये पानी जमने की कोशिश करता है तो उसमें से हीट निकलती है। इस हीट और नमक के मिश्रण से पानी कभी नहीं जमता है। इसी वजह से टेलर ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ठंडा ग्लेशियर माना जाता है। यहाँ से लगातार लिक्विड फॉर्म में पानी का बहाव होता रहता है। वैज्ञानिकों के सामने बड़ा सवाल ये है कि ग्लेशियर के नीचे छिपे इस प्राचीन पानी में क्या जीवन संभव है? शोधकर्ताओं को इस प्राचीन खारे पानी में एक नई तरह के सूक्ष्म जीव मिले हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाखों सालों से ग्लेशियर के नीचे बिना धूप के जिंदा है। इन सूक्ष्म कणों से सिलिकॉन, कैल्शियम और सोडियम जैसे कई महत्वपूर्ण एलिमेंट्स मिले हैं। इससे पता चलता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी जीवन मुमकिन है। मंगल ग्रह और बृहस्पति के चांद यूरोपा पर भी ऐसी ही बर्फीली सतह है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वहाँ भी इस तरह का जीवन मौजूद हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये खोज ब्रह्मांड में एलियन लाइफ तलाशने में बहुत मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब देखिए, जो खबरें, जो रिपोर्ट्स हम काफी वक्त से देखते आए हैं कि एलियन लाइफ कहां पर मौजूद है, किन प्लैनेट्स को और भी खोजा जा सकता है, तो ये खबर उसी से जुड़ी हुई है। क्योंकि रहस्य यही है कि अंटार्कटिका में बहने वाले खूनी झरने पर, जिस पर 100 साल के बाद अब आखिरकार वैज्ञानिकों ने पर्दा हटा दिया है, और नई रिसर्च इसको लेकर भी सामने आ रही है।
2: बिल्कुल शगुफ्ता, देखिए माइनस तापमान में ग्लेशियर, जो टेलर ग्लेशियर से बहने वाले इस झरने का पानी इंसानी खून की तरह लाल है, यही रहस्य था जिससे अब पर्दा उठ चुका है। चलिए अब थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर बारिश की वजह से मुसीबत भी आई है। मानसून आने के बाद पूरे देश का कमाबोश यही नजारा है और जहां मूसलाधार बारिश है तो वहां मुसीबतें हैं। ऐसी एक तस्वीर पुणे से आई है जहां लगातार भारी बारिश से मुसीबत में घिरे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलना पड़ा। दरअसल लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और मुंबई पुणे नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद करना पड़ा।
1: अब देखिए पुणे से मुंबई और मुंबई से पुणे दोनों ही दिशाओं में यातायात अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसी बीच पुणे के चाकण इलाके में एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुणे नासिक हाईवे पर अबिंथन रोड पर कुछ इमारतें चारों तरफ पानी से घिर गईं, जिससे उन इमारतों में करीब 70 से 80 लोग फंस गए। फायर ब्रिगेड ने खबर मिलते ही बचाव अभियान शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड ने इमारत से किनारे तक रस्सी बांधी और एक एक कर लोगों को किनारे पर पहुंचाना शुरू किया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इमारत में फंसे लोगों को कंधे पर बिठाकर किनारे सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। ओडिशा के कटक की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। महानदी यहां पर उफान पर है। मूसलाधार बारिश से नदी की धारा इन दिनों पूरी रफ्तार में बह रही है। रविवार को तीन युवक महानदी के नरज स्ट्रेच पर नदी की तेज धार में फंस गए। जानकारी के मुताबिक तीनों लड़के नदी किनारे तफरी करने के लिए गए थे। एक युवक फिसलन की वजह से नदी में गिर गया। उसे बचाने के लिए बाकी दोनों युवक भी नदी में कूद गए, लेकिन नदी की तेज धार में वो फंस गए। स्थानीय लोगों को जैसे ही जानकारी मिली, लोग बोट लेकर वहां पर आ गए और दो युवकों को सुरक्षित किनारे पर बचा लिया, जबकि एक को अचेत अवस्था में किनारे पर ला गया।
2: तो मॉनसून ने देश भर में गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन कई राज्यों में अब बारिश लोगों का कड़ा इम्तिहान ले रही है। जम्मू कश्मीर, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें तमाम सामने आई हैं, जहां उफनती नदियों और बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
3: जिस मानसून ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है, वही मानसून अब कई इलाकों में लोगों की कठिन परीक्षा ले रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सांबा की हैं, जहां अचानक नदी में आए पानी ने पांच लोगों को मुश्किल में डाल दिया। देखते देखते हालात चुनौतीपूर्ण बन गए, लेकिन वक्त गंवाए बिना SDRF और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रस्सियों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। जोरदार बारिश के बाद उड़ीसा के सालूम की नदी उफान पर आ गई। तेज बहाव के बीच दो महिलाएं फंस गई। पानी का रौद्र रूप और तेज धार दोनों ही बचाव अभियान में बड़ी चुनौती थे। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी। करीब चार घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद दोनों महिलाओं को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया। बाढ़ के बीच रेस्क्यू अभियान की ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से भी सामने आई। लगातार बारिश के चलते पुल बनाने के काम में लगे 14 मजदूर चारों तरफ पानी में घिर गए। खबर मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा, घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आखिरकार सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जाहिर है मानसून ने आते ही भले ही लोगों को गर्मी से राहत दी हो, लेकिन कुछ जगहों पर मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। अब जरा सैटेलाइट तस्वीरों से समझिए कि आखिर कई इलाकों में मानसून हदें क्यों लांघ रहा है। दरअसल इस वक्त पूर्व मध्य अरब सागर से लेकर कोंकण तट तक घने बादलों का एक सिस्टम एक्टिव है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक मजबूत वेदर सिस्टम बना हुआ है, जो देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह बना हुआ है। मानसून के मिजाज को और करीब से समझना हो तो इस तस्वीर पर भी गौर फरमाइए। ये इंफ्रारेड तस्वीरें बता रही हैं कि अगले कुछ घंटों में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने वाला है। अरब सागर से लगातार नमी मिलने की वजह से महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं बारिश के सिस्टम को और ताकत दे रही हैं। उधर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम का असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत तक साफ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और उफनती नदियों के करीब न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: एक दिन के विराम के बाद नवसारी डांग जिले में मॉनसून ने एक बार फिर से जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आहवा और वघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश की वजह से मौसम तो बेहद सुहाना हो गया है और इसका मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां खिंचे चले आ रहे हैं।
3: मॉनसून की बारिश जमकर बरस रही है, कहीं राहत बनकर तो कहीं आफत बनकर। लेकिन जो लोग गर्मी से राहत के लिए सैर पर निकल गए हैं, वो इस मौसम का भी खूब आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां घूमने आए सैलानी मूसलाधार बारिश में भी बोटिंग का लुत्फ लेते नजर आए। नीचे झील का पानी और ऊपर आसमान से बरसती बूंदे।
4: कल तक यहाँ पर कोई बारिश नहीं थी, आज बहुत बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वेदर भी बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत सारे आए। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की है, रास्ते में पेड़ भी गिरे हुए थे वो भी हटाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत भीड़ है, बहुत पब्लिक आई हुई है।
3: असल में नवसारी डांग जिले में मॉनसून ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आहवा, वघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम बेहद सुहावना हो गया है और इस मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। आहवा, वघई, सुबीर और सापुतारा जैसी जगहों पर वीकेंड और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक डांग पहुंचे हैं। नवसारी से रौनक जाने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब आपको एक हैरत अंगेज तस्वीर दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रेडियो शो के दौरान अनोखा हादसा पेश आया। दरअसल ओल्सम प्रो रेडियो के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अमेरिकी झंडा लेकर नीचे उतर रहा एक स्काई ड्राइवर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्काई ड्राइवर रॉस अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत विशाल अमेरिकी झंडा लेकर पैराशूट से एंट्री कर रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था और हजारों दर्शक उनका स्वागत कर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है जैसे ही रॉस जमीन के करीब पहुंचे उनके साथ बंधा बड़ा अमेरिकी झंडा पास के एक पेड़ में उलझ गया। इससे पैराशूट का संतुलन बिगड़ गया और तय जगह पर उतरने की बजाय पास में लगे टेंट पर जाकर गिर गए। अच्छी बात यह रही कि रॉस को कोई गंभीर चोट नहीं आई। हादसे के बाद उन्होंने खुद पैदल मैदान में प्रवेश किया जहां दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
1: चलिए अब बात एक ऐसी माँ की जो मुश्किल वक्त में ना केवल बेटे का सहारा बनी बल्कि बेटे के सपने पूरे होने की वजह भी बन गई। कोटा में पढ़ाई के दौरान गंभीर बीमारी ने एक स्टूडेंट के सपनों को संकट में डाल दिया, लेकिन उस बच्चे की माँ ने हार नहीं मानी। बेटे के लिए माँ ने ऑनलाइन क्लास ली, नोट्स बनाए और बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी संभाली। माँ की मेहनत रंग लाई, अब बेटा IIT में एडमिशन लेने जा रहा है।
3: कोटा से आई ये तस्वीरें एक बेटे के लिए माँ के त्याग और तपस्या की कहानी बन गई है। इस तस्वीर में माँ और बेटा एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि परीक्षा बेटे को देनी थी, लेकिन तैयारी माँ ने भी उतनी ही की है जितनी तैयारी IIT के लिए कोई बच्चा करता है। हुआ ये कि बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले गुंजन कुमार 2 साल से कोटा में रहकर JEE की तैयारी कर रहे थे। उनका सपना था IIT से कंप्यूटर साइंस पढ़ने का, लेकिन किस्मत ने ऐसा इम्तिहान लिया कि लगा सब कुछ खत्म हो गया है। JEE एडवांस से कुछ महीने पहले अचानक गुंजन के सीने में तेज दर्द उठा। जांच में पता चला कि गुंजन का बायां फेफड़ा कोलैप्स हो गया है।
5: जर्नी में अक्टूबर में आखिरी 3 महीने में मैं बीमार पड़ गया, मेरा फेफड़ा फट गया था, तो मेरा लंग्स का ऑपरेशन हुआ एंड 10 दिन का था हॉस्पिटल में एंड 2.5 महीने का बेड रेस्ट मिला, लेकिन उसके कारण मेरी जर्नी काफी पीछे चले गई JEE की। आखिरी में मेरे स्टडी आवर्स काफी इंक्रीज हो गए पहले से एंड मम्मी का काफी सपोर्ट रहा है मेरे नोट्स बनाने में, आखिरी में शॉर्ट नोट्स बनाना, मेरे से क्वेश्चन पूछना एंड फाइनली मैंने IIT क्रैक कर लिया एडवांस।
3: न्यूमोथोरेक्स जैसी गंभीर बीमारी ने गुंजन को करीब 3 महीने तक बिस्तर पर रहने को मजबूर कर दिया। उनकी क्लास छूट गई, पढ़ाई रुक गई और सपना भी धुंधला पड़ने लगा। लेकिन जब बेटा कमजोर पड़ा तब माँ उसकी ताकत बन गई। BEd कर चुकी माँ गुंजन सालों बाद फिर से स्टूडेंट बन गई। उन्होंने हर ऑनलाइन क्लास खुद देखी, हर लेक्चर के नोट्स अपने हाथों से तैयार किए और फिर वही नोट्स बेटी को पढ़ाती रही।
6: जैसे कोई शॉर्ट नोटरी बनाना होता था तो सारे हम पीडीएफ बना के देता था, मैं लेते कभी कभी इसका वीडियो भी देता था तो मैं उसको रोक रोक के मुझे पूरा लिखते थे। फिर नहीं अब थोड़ा सा वो थोड़ा हुआ कुछ जो सर खान राइटिंग का तो वो जो मुझे नहीं समझ में आता था फिर मैं विशेष में रोक रोक के पूछती थी क्या है मुझे बताता था।
3: उस वक्त गुंजन की लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं थी, उनकी आंखों की 70% से ज्यादा रोशनी भी जा चुकी है, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। जेईई मेन में अच्छी परसेंटाइल हासिल की और अब आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ एक बेटे के आईआईटी तक पहुंचने की कहानी नहीं है, ये कहानी एक माँ की तपस्या की ऐसी मिसाल है जिसने अपने बेटे के सपने को अपना सपना बना लिया। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे।
2: वक्त बदल रहा है और इस बदलते वक्त के साथ खेती किसानी का अंदाज भी हाईटेक हो रहा है। ड्रोन एक ऐसी तकनीक जिसने हर सेक्टर में क्रांति ला दी है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अगर कहीं है तो वो है हमारा कृषि क्षेत्र। इसी जरूरत को समझते हुए ड्रोन टेक्नोलॉजी को गांव-गांव और खेत-खेत तक पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। दिल्ली में आयोजित नेशनल ड्रोन समिट 2026 में देश की पहली ड्रोन टेक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

0: जो सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत देश के हर पंचायत में ट्रेंड और सर्टिफाइड ड्रोन उद्यमी यानी ड्रोन ऑपरेटर तैयार किए जाएंगे।
1: जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है इसको किसान तक पहुंचाया जाए, और किसान तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाने के लिए हमने एक किस्म से ब्रिज तैयार किया गया है, जिसका नाम रखा है एक पंचायत एक ड्रोन उद्यमी। इस स्कीम के अंतर्गत हम हर एक पंचायत से संपर्क करके उनमें से एक उद्यमी तैयार कर रहे हैं। उस उद्यमी का एम है कि वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग ले और उस ट्रेनिंग को इस्तेमाल करके ड्रोन को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करे। इसके लिए अलग अलग पैकेजेस बनाए गए हैं।
0: लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 2 लाख ऐसे उद्यमी तैयार हों जो गांवों में ही खेती, फसल सर्वे, मैपिंग और सटीक स्प्रेइंग जैसी आधुनिक सुविधाएं किसानों को मुहैया कराएं।
2: पहला ड्रोन टेक मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से एक इनिशिएटिव है, जिसमें एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें 1 ड्रोन उद्यमी 1 पंचायत होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर ड्रोन का इस्तेमाल करना, फार्मर्स को एंड यूज़र बनाना और वो स्प्रे करे ड्रोन के साथ, उसके लिए लोकल लेवल पे एंटरप्रेन्योर होना बहुत ज़रूरी है। हम ये पूरे ड्रोन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि जब तक इकोसिस्टम नीचे बिल्ड नहीं होगा तब तक ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स और ड्रोन से जुड़े हुए कंपनीज जो हैं वो प्रॉपरली स्ट्रेंथन नहीं हो पाएंगी।
0: किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस समिट में एक खास एटीवी भी लॉन्च की गई। अक्सर गांव के कच्चे और सकरे रास्तों से खेतों तक भारी ड्रोन, बैटरी और केमिकल्स ले जाना किसानों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। अब ये एटीवी पंचायतों को ड्रोन के साथ ही दी जाएगी, ताकि किसान बिना किसी झंझट के अपने घर से खेत तक सारा सामान आसानी से ले जा सके।
1: ये एटीवी का लाभ यही है कि जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, जहाँ पे नॉर्मल मोटरसाइकिल नहीं चल सकता, पैदल जाने में बहुत दिक्कत है, कोई और वाहन नहीं चलता है, सिर्फ ट्रैक्टर चलता है, यह एटीवी चलती है।
0: ये ड्रोन मिशन भारत के ग्रामीण और एग्री टेक सेक्टर के लिए एक सच्चा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर ये मिशन रफ्तार पकड़ता है तो वो दिन दूर नहीं जब देश के अन्नदाता आधुनिक खेती के साथ विकास की नई उड़ान भरेंगे।
3: ये है कि हर पंचायत में एक ड्रोन उद्यमी तैयार किया जाए, और आप सोचिए कि जिन कामों को किसान अभी मैन्युअली करता है, इसमें घंटों का समय लगता है, कई बार दिन लग जाते हैं उसे दवाइयों का छिड़काव करने में, केमिकल डालने में, उसे काम को अगर ड्रोन से किया जाएगा तो वो काम कितना आसान हो जाएगा, और किसान का समय जितना बचेगा उतना ही किसान के लिए, देश के लिए भी अच्छा रहेगा। कैनवल चैलेंज के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
4: चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए अमरनाथ यात्रा में अब तक हो चुके हैं 56,000 दर्शन।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
6: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
7: To everyone looking for the coolest flavor of the summer, Culver's has you covered with our Oreo Reese's Cheesecake Concrete Mixer.
8: It's rich and creamy, fresh frozen custard swirled with Oreo cookie pieces, Reese's peanut butter cups, and bites of cheesecake. It's a sweet escape so good, you'll wonder how anything else could compare. From the first bite to the last, you'll taste the chocolatey, crunchy magic in every spoonful. Mm. It's a summer treat every Culver's fan will love. And just what you need, whether you're sitting poolside or making a stop on your next road trip. So what are you waiting for? Come on in and try it for yourself. You know you deserve it. Let us craft one fresh just for you. Order now with the Culver's app. And don't forget to join Delicious Rewards to earn points with every bite. You know, I might go order one for myself.
7: From Wisconsin with love, welcome to Delicious.
8: Oreo is a trademark of the Mondelez International Group, used under license. The Reese's trademark and trade dress are used under license.
9: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn...

0: works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say Open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
1: परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: रामबन में भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते खोले गए बगलेहार डैम के 3 गेट, पूरी कश्मीर घाटी में जमकर हो रही बारिश। बारिश के बाद इस बीच मिशन रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, पुणे और मुंबई से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल कश्मीर में भी बचाई जा रही लोगों की जान। मुंबई में जबरदस्त बारिश के चलते रेल सेवा बाधित, उड़ानों पर भी पड़ रहा असर, 17 फ्लाइट कैंसिल, 217 देरी से चल रही, लोगों से वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई। उत्साह से जारी है अमरनाथ यात्रा, चौथे दिन अब तक 56,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। जम्मू से श्रीनगर के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। छह दिन के विदेश दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री के स्वागत में लगे पोस्टर।
3: भारतीय पकवान के दीवाने हुए इंडोनेशिया के लोग, जलेबी, चाट और अन्य पारंपरिक व्यंजनों का मजा ले रहे जकार्ता के लोग।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।

0: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भव्य दिव्य अमरनाथ धाम में, जहां आस्था और विश्वास की अद्भुत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हर रोज नए जत्थों की रवानगी के साथ ही अमरनाथ यात्रा मार्ग पर आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। अब तक 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा पहुंच चुके हैं और खास बात यह है कि अब युवाओं के बीच अमरनाथ यात्रा तेजी से लोकप्रिय हो चली है।
1: दरअसल अमरनाथ यात्रा के दौरान यहाँ के प्राकृतिक नजारे और रास्ते उन्हें एडवेंचर टूरिज्म का अनुभव दे रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। आंकड़ों से समझें तो अमरनाथ यात्रा के पहले 3 दिन में 54,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल में करीब 18.6% ज्यादा रहा।
0: और देखिए, पिछले साल से करीब 18.6% ज्यादा ये आंकड़ा रहा। 2025 में पहले 3 दिन में 47,972 श्रद्धालु पहुंचे थे। आपको बता दें कि 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई है। 48 किलोमीटर लंबे नुनवान पहलगाम रूट और 14 किलोमीटर वाले छोटे लेकिन कठिन बालटाल रूट से लगातार यात्री दर्शन के लिए अमरनाथ धाम पहुंच रहे हैं।
1: तो अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि श्रद्धालुओं के भारी उत्साह को देखते हुए रेलवे जम्मू से श्रीनगर के बीच स्पेशल ट्रेन चला रहा है, जिससे कि यात्री आराम से बेस कैंप तक पहुंच सके। विशेष ट्रेन सेवा के अलावा तीर्थयात्रियों को आधार, KYC, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, भोजन और डिजिटल सर्विलांस जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिल रही है। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू से श्रीनगर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाए जाने को लेकर पैसेंजर्स भी काफी ज्यादा खुश हैं।
2: नीचे बसों की सुविधा है और बेस कैंप के लिए जाएंगी। हाँ,
3: बहुत बहुत ही अच्छी सुविधा है, रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है। और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है, उससे और ज़्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुंच जा रहे हैं बिना किसी थकान के। हम लोग सुबह उतरे हैं और वहां से डायरेक्ट हम लोग यहां आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम यात्रा रहा।
4: मैं महाराष्ट्र मुंबई से आई हूँ और हम लोग यहाँ से वंदे भारत से आए। बहुत ही सुविधा सुंदर थी। जैसे हम लोग प्लेन में रहते तब जो सुविधाएं रहती है ऑलमोस्ट नियर बाय सुविधाएं ये थी, इसलिए ये जो प्रवास है वो सुखकर लगा।
5: मैं जलंधर पंजाब से आया हूँ और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करने में पहली बार आया हूँ। हमारी जो इंडियन आर्मी के जो भाई लोग हैं वो चप्पे चप्पे पे खड़े हैं।
6: अमृतसर से आ रहा हूँ और वंदे भारत ट्रेन प्लस जो सुविधाएं हैं, जो सिक्योरिटी है, उसको देख के अभी फील हो रहा है कि अभी कोई भी यहाँ पे डर नहीं है, आराम से आ सकते हैं और काफी अच्छा अरेंजमेंट है।
0: और देखिए, अमरनाथ यात्रा का 4th दिन है तो देश भर से तीर्थयात्री आस्था के दरबार में नतमस्तक होने के लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बालटाल बेस कैंप से आज सुबह श्रद्धालुओं का नया जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचा।
1: बालटाल और पहलगाम से यात्री रवाना हुए और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अब 4th जत्था रवाना हो चुका है, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। शुरुआत से ही हमने देखा यात्रियों की सुविधा के लिए हर तैयारी वहां पर की हुई है ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल पाए। तो पहलगाम से भी आस्था और उत्साह के साथ यात्रियों का 4th जत्था रवाना हुआ। यहाँ भी भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आस्था भक्ति का ये मेला 57 दिन तक चलेगा। जाहिर है बाबा बर्फानी के धाम बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
7: Thank you.

0: जो सत्य है वही शिव है, और जहाँ शिव है वही शाश्वत सौंदर्य है। ये उसी शाश्वत सौंदर्य की अनुभूति की यात्रा है। बाबा बर्फानी के दर्शन की यात्रा। श्री अमरनाथ यात्रा। हिमालय की वादी में गूंज रहा हर हर महादेव का ये जय घोष बता रहा है कि आस्था की डोर मजबूत है। समुद्र तल से करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर है बाबा अमरनाथ की गुफा, लेकिन चुनौतियों की परवाह नहीं, बम बम भोले का जय घोष करते हुए बस बढ़े जा रहे हैं। हर दिन श्रद्धालुओं का नया जत्था यात्रा मार्ग की रौनक बढ़ा रहा है। बम बम भोले हर हर महादेव के जय घोष से हिमालय की वादियाँ गूंज रही हैं। मन में बस बाबा बर्फानी के दर्शन की आस है, शिवत्व की चाह है। अब तक 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार इस तीर्थयात्रा में युवा और स्कूली बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उनके लिए ये यात्रा अपनी संस्कृति, अपने धर्म, आध्यात्म को जानने के साथ साथ प्रकृति के साथ कुछ पल बिताने का भी है, कश्मीर की खूबसूरती को करीब से निहारने का भी है, तो कुछ इसे एडवेंचर टूरिज्म का हिस्सा भी मान रहे हैं।
1: न कहीं जो है ये अमरनाथ यात्रा जो है, इसमें कुदरत का हर एक जो खूबसूरती का नज़ारा हो, ग्लेशियर्स हो, झरने हो, दरिया हो, हरियाली हो, पहाड़ हो, बर्फ से ढके पहाड़ हो, सब कुछ एक श्रद्धालु को देखने को मिलता है। यही कारण है कि अब अमरनाथ यात्रा एक एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर भी युवा पीढ़ी में काफी लोकप्रिय हो रही है।
0: अच्छी बात यह है कि ये युवा पीएम मोदी के बताए 5 संकल्पों को भी अपना कर चले हैं। 5 संकल्प जिनमें धर्म स्थान की स्वच्छता से लेकर वहाँ के लोगों की आर्थिक तरक्की और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी जिक्र है। असल में जिस दिन अमरनाथ यात्रा शुरू हुई उस दिन पीएम मोदी ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और सफल यात्रा की शुभकामनाओं के साथ साथ 5 संकल्प लेने का संदेश भी दिया। वो 5 संकल्प हैं: पूरे यात्रा मार्ग में स्वच्छता के नियमों का पालन करना और पवित्रता बनाए रखना, प्रशासन और सुरक्षा निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करना, विशेषकर खराब मौसम और फिसलन वाले रास्तों पर, वोकल फॉर लोकल की भावना के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करना, यात्रा के समापन पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा भेंट करना, देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में पूरे साल अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना। जाहिर है इन संकल्पों के साथ की गई यात्रा से न सिर्फ धार्मिक स्थलों में स्वच्छता और पवित्रता बनी रहेगी बल्कि पर्यावरण को भी बड़ा फायदा होगा। पहलगाम से अशरफ आड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, आम तीर्थयात्रियों के अलावा बड़ी संख्या में साधु संत भी पवित्र बाबा बर्फानी के दर्शन को पहुंचते हैं। ऐसे ही साधु संतों से गुड न्यूज टुडे ने खास बातचीत की है। कोई साधु पिछले 3 सालों से यात्रा पर हर साल आ रहा है तो कोई पिछले 40 सालों से। अमरनाथ यात्रा पर क्या कुछ कहना है उनका देखिए।
1: हर साल अमरनाथ यात्रा में न सिर्फ देश और दुनिया के शिव भक्त जमा हो जाते हैं बल्कि साधु संतों के लिए भी ये एक मिलन का एक अवसर होता है। हम इस वक्त बालटाल में हैं। सैकड़ों की तादाद में देश भर से जो साधु संत है वो अमरनाथ यात्रा पे आते हैं। यहाँ पर कई सारे साधु संत ऐसे भी हैं जो 40 बार अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, कुछ सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ जो है एक मिलन का हम कहें या भक्ति का एक अवसर अमरनाथ यात्रा भी इन साधु संतों को देता है। हम शुरू करेंगे इनसे। आप सर अपना नाम बताइए महाराज जी। और आप
3: भास्करानंद सरस्वती।
1: हाँ, आप कब तक कितनी बार अभी तक अमरनाथ यात्रा कर?
3: हम 3 बार आए हैं।
4: 89 से हम आ रहे हैं परमानेंट। संभवतः 38वीं यात्रा है। दो यात्राएं कोरोना के समय में दो यात्राएं हमारी नहीं हो पाई, नहीं तो 40-41 होती।
1: तो आप 89 यानी 89 से अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं, कितना बदलाव तब से अब तक देख रहे हैं, उस यात्रा के इतिहास को भी थोड़ा दोहराइए, तब किस तरह यात्रा होती थी और अब किस तरह यात्रा।
4: ये सामंजस्य जो मेल जोल का है, इससे बेहतरीन सामंजस्य और मेल जोल का कहीं नहीं हो सकता। और बाबा की यात्राएं अनवरत ऐसे चलती रहे, हमारा जब तक जीवन रहे, बाद में हम नहीं होंगे तो क्या होगा। जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा है? देखने भी कौन आएगा, जब तक है तब तक, जब तक सीना जीना है तब तक सीना है।
5: यात्रा तो एक बहाना है, यात्रा में जाकर तो सब भक्तों को आपस में मिलवाना है। स्वामी जी ने बताया कि प्रेरणा से मैं आया हूँ आज पहली बार और बड़ा आनंद आया।
6: जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा यात्री इससे बहुत प्रसन्न हैं, और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद कश्मीर के लोगों को मैं करना चाहता हूँ। इतना कोऑपरेट करते हैं हर चीज में। मैं साइन बोर्ड तो है ही है, लेकिन यहाँ के जो लोकल आवाम है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ।
1: शुक्रिया स्वामी जी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हर तरह से इस यात्रा को सफल बनाने में जहाँ आम लोगों का सहयोग है, सुरक्षा एजेंसियों, सरकार का, श्राइन बोर्ड का सहयोग है, वहीं पर जो ये धार्मिक हमारे गुरु हैं उनका भी एक बड़ा सहयोग हमेशा बना रहता है। यहाँ तक कि जो सीमाएं तय की गई हैं उम्र को लेकर इस यात्रा में, कि 13 साल से कम जो बच्चे हैं वो यात्रा पे नहीं जा सकते हैं। चाइल्ड केयर की भी सुविधा पहली बार इस तरह के इन भंडारों में रखी गई है, ताकि जो श्रद्धालु अपने बच्चों को यहाँ इन आश्रमों में छोड़ना चाहें, उनका दिन भर इन आश्रमों में ख्याल रखा जाएगा जब तक उनके माता पिता या रिश्तेदार जो हैं वो वापस लौटते हैं। तारिक लोन के साथ अशरफानी, अमरनाथ।
2: ऐसे के साथ यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए लंच टाइम।
7: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
8: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
9: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे
13: गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: चलिए अब बात उस टीम की कर लेते हैं जो पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में उतरी है और फुटबॉल की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गई है। अर्जेंटीना से रोमांचक मुकाबले में हार के बावजूद केप वर्डे की टीम इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी सरप्राइज टीम बनकर सामने आई है।
2: हालांकि टीम का सफर वर्ल्ड कप से खत्म हो चुका है, लेकिन जब केप वर्डे के प्लेयर्स अपने देश लौटे तो उनका स्वागत विश्व विजेता की तरह ही हुआ।

0: फीफा वर्ल्ड कप में भले ही केप वर्डे की टीम का सफर थम गया हो, लेकिन स्वदेश लौटी टीम का स्वागत बता रहा है कि अभी तो इस टीम का सफर शुरू हुआ है। ये तस्वीरें केप वर्डे की उस फुटबॉल टीम के स्वागत की हैं, जिसने इस बार फीफा वर्ल्ड कप में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। यही वजह है कि जब टीम अपने मुल्क लौटी तो उनका ऐसा स्वागत हुआ मानो टीम विश्व विजेता बनकर लौटी। वर्ल्ड कप में धुरंधर टीमों को चौंकाने वाली दुनिया के सबसे छोटे देशों में एक केप वर्डे की टीम अब खुद में एक कहानी बना चुकी है। करीब 5.3 लाख की आबादी वाला केप वर्डे दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। तुलना करें तो अकेले नोएडा की आबादी इससे लगभग दोगुनी है। पश्चिमी अफ्रीका के तट से 600 से 850 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में बसे 10 ज्वालामुखीय द्वीपों के इस देश ने अपने पहले ही वर्ल्ड कप में एक तरह से इतिहास रच दिया है। केप वर्डे की टीम ने वर्ल्ड कप में धमाकेदार फुटबॉल खेला है। टीम ने ग्रुप स्टेज में स्पेन, उरुग्वे और सऊदी अरब जैसी मजबूत टीमों को ड्रॉ पर रोककर नॉकआउट में जगह बनाई और फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने वाला इतिहास का सबसे कम आबादी वाला देश बन गया। राउंड ऑफ 16 में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ भी केप वर्डे ने जो खेल दिखाया, हार के बावजूद पूरी दुनिया इस टीम की मुरीद हो गई।
1: Uruguay é campeão do mundo também, na passada. Eles são dois campeões do mundo. Não consegui mais um empate. Tudo aqui começa a conchicar o verde a partir de lá. Mas antes disso, ninguém gastará nada para nós.
0: दिलचस्प बात यह है कि 1975 में आजाद हुआ ये छोटा सा देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद सीमित है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन और विदेशी निवेश पर टिकी है, लेकिन अब ये छोटा सा देश फुटबॉल की एक नई ताकत के तौर पर दुनिया भर में पहचाना जा रहा है। पहला वर्ल्ड कप महज 5.5 लाख की आबादी और इतिहास रचने वाला प्रदर्शन, केप वर्डे के लोगों के लिए जश्न की इतनी वजह काफी है। फिलहाल पूरा देश जश्न में डूबा है। दुनिया भर में इस टीम के बारे में बातें हो रही हैं और इस बहाने वो छोटा सा देश चर्चा में है, जिसे दुनिया के मानचित्र में अभी तक खोजना भी मुश्किल था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इसी के साथ ही तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
3: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे और पॉजिटिव खबरें जारी है, आप देखते रहिए जीएनडी।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग

0: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: रामबन में भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते खोले गए बगलिहार डैम के 3 गेट, पूरी कश्मीर घाटी में जमकर हो रही है बारिश। मूसलाधार बारिश के बीच मिशन रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, पुणे और मुंबई से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में भी बचाई जा रही है लोगों की जान। मुंबई में जबरदस्त बारिश के चलते रेल सेवा बाधित, उड़ानों पर भी असर पड़ा, 17 फ्लाइट्स कैंसिल, 217 देरी से चल रही हैं, लोगों से वर्क फ्रॉम होम की अपील। दिनों के विदेश के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, इंडोनेशिया में पीएम के स्वागत में लगे पोस्टर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज चौथा दिन, बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ बालटाल बेस कैंप से चौथा जत्था रवाना। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, यात्रियों की सुविधाओं का रखा जा रहा है खास ख्याल। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा जारी, कई श्रद्धालु पैदल तो कई घोड़ों और पालकी पर सवार। अमरनाथ यात्रा में रविवार को 24,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, 18,700 पुरुष और 5,000 महिला भक्तों ने की पूजा अर्चना। अमरनाथ यात्रा में हर दिन बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की तादाद, 3 दिन में 56,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का रखा जा रहा है पूरा ध्यान, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चंदनबाड़ी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने रविवार को किया था पहलगाम का दौरा, अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप हॉस्पिटल में परखी थी तैयारियां। 57 दिनों तक चलेगी दिव्य अमरनाथ यात्रा, जम्मू बेस कैंप से हर दिन रवाना होता है तीर्थयात्रियों का जत्था। अमरनाथ यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात, जम्मू से श्रीनगर के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गई। अमरनाथ यात्रियों को आधार, केवाईसी और मौके पर ही पंजीकरण की भी मिलेगी सुविधा, रेलवे बोर्ड से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक की रहेगी सीधी निगरानी। 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, एक्ट ईस्ट नीति महासागर विजन को देंगे मजबूती। पीएम मोदी 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में करेंगे प्रवास, भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलने का है कार्यक्रम। इंडोनेशिया में भारतीय व्यंजनों की तेजी से बढ़ रही है लोकप्रियता, भारतीय चाट और जलेबी की बढ़ रही है मांग। जकार्ता के लोग भारतीय मसालों की खुशबू और स्वाद की जमकर कर रहे हैं तारीफ, खासकर भारतीय मिठाइयों और स्ट्रीट फूड को किया जा रहा है पसंद। भारतीय दोस्तों और सहकर्मियों से यहां के लोगों को मिल रही है भारतीय खाने की जानकारी, कई रेस्टोरेंट्स का मेन्यू भी भारतीय खानों से शामिल। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले से मूसलाधार बारिश की तस्वीरें आई सामने। रोमांचक नजारा, हाईवे पर चहलकदमी करते हुए दिखा शेरों का परिवार। शेरों को परिवार देखकर सभी ने दूरी पर रोकी गाड़ियां। लोगों ने घटना को कैमरे में कैद किया। जूनागढ़ के भवनाथ में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए महासम्मेलन का आयोजन। सेमिनार में वन्य जीव विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में शेरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अभयारण्य क्षेत्र को बढ़ाने पर किया विचार। सरकार से की वन भूमि बढ़ाने की मांग। राजौरी में बीआरओ की टीम ने किला धरहल इलाके में पहला पक्का स्टील पुल बनाकर किया तैयार। 60 मीटर लंबे इस पुल से सेना के साथ स्थानीय लोगों की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी।

0: पाली जिले के बाढ़ से गांव में पशु प्रेम का अनोखा नजारा, बछड़े की पूरी भव्यता के साथ की गई शादी। बछड़ा बछड़े की शादी में महिलाओं ने गाए मंगल गीत, लोगों ने उत्सव को जमकर डांस किया। पाली में अनोखे विवाह के दौरान कन्यादान में मिले हजारों रुपए, रकम को गौशाला के लिए किया गया दान। पशुपालन को बढ़ावा देने और डेयरी उद्योग से लोगों को जोड़ने के लिए किया गया शादी का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनकर निपटारे के आदेश दिए। श्रीनगर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं विदेशी पर्यटक, डल झील की खूबसूरती का उठा रहे हैं लुत्फ। अरुणाचल प्रदेश में अपतानी समुदाय ने मनाया 4 दिवसीय द्री महोत्सव, अच्छी फसल और बारिश की कामना की। द्री महोत्सव में पारंपरिक नृत्य की रही धूम, कार्यक्रम में मेधावी छात्रों का किया गया सम्मान। टूथ आर्चर गोविंद माली के नाम पर एक और उपलब्धि, पाली में आयोजित प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग गोविंद दांतों से खींचते हैं धनुष की डोरी, कई प्रतियोगिताओं में जीत चुके हैं पुरस्कार। तिरुमाला में दिखा भक्ति की अनोखी शक्ति, 116 साल की नवनीत हम्मा ने खुद चलकर किए भगवान के दर्शन। बुजुर्ग नवनीत हम्मा ने तिरुमाला की लगभग 3,500 सीढ़ियां चढ़ी, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मुजफ्फरपुर में सवर रही अपनी पाठशाला की कक्षाएं, मिथिला पेंटिंग को दिया जा रहा है बढ़ावा। अपन पाठशाला की कक्षा में बनाए जाने वाले पेंटिंग को बेचकर छात्राएं निकाल रही हैं खर्च, 28 बच्चे नियमित शिक्षा के साथ सीख रहे हैं मिथिला पेंटिंग। कोटा के आर्यन सिंह ने बनाया स्मार्ट इमोशन पॉट, अब डिजिटल स्क्रीन पर एनिमेटेड एक्सप्रेशन पता चलेगा पौधे का मूड। देश की पहली पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ 17 जुलाई को होगा, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। फिलहाल जींद और सोनीपत के बीच चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन, आज सीएम सैनी जिंद में समारोह को लेकर कर रहे तैयारियों का जायजा लेंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में होंगे 10 कोच, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। गुजरात में पहले शहरी केबल स्टेट फ्लाईओवर का उद्घाटन, अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। बिहार के नालंदा में शांतामणि पेपर मिल के विस्तार परियोजना का शुभारंभ, उत्पादन क्षमता में होगी बढ़ोतरी। मैदानों के साथ पहाड़ी इलाकों में बारिश का दौर जारी, उत्तराखंड के 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की आशंका, लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। बागेश्वर जिले में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, राहत बचाव दल की टीम अलर्ट। बागेश्वर जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को किया गया बंद, मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू किश्तवाड़ हाईवे पर रोकी गई आवाजाही, राहत और बचाव के काम में जुटा प्रशासन। महाराष्ट्र कोल्हापुर में बारिश के साथ फसलों की बुआई का काम शुरू, हल लेकर खेतों में जुटे किसान। खंडाला एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर दिखा झरने का नजारा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने की लिया विकराल रूप धारण, तो वहीं जलमग्न हुई भगवान शिव की विशाल मूर्ति। अमरेली जिले में भारी बारिश के बाद स्टेट हाईवे पानी के बहाव से टूटा, पूरा स्टेट हाईवे रोड दो हिस्सों में बटा। पुणे के चाकण इलाके में भारी बारिश से हाईवे पर लगा भारी जाम, एक इमारत में 70 से 80 लोग फंसे, फायर ब्रिगेड ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पुणे में भारी बारिश से इंद्रायणी नदी उफान पर, आलंदी को जोड़ने वाला पुल भी पानी में डूबा। इंद्रायणी नदी में पुल पर ओवरफ्लो होने के चलते यातायात प्रभावित हुआ, कई इलाकों से कटा संपर्क। कुल्लू में भारी बारिश के बाद सैंस के पागल नाले में फ्लैश फ्लड आया, सड़क पर आया भारी मलबा और पत्थर। कुल्लू में लार्जी सैंज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से हुआ ठप, 14 पंचायतों का संपर्क कटा। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोरदार बारिश से बढ़ा चिनाब नदी का जलस्तर, बगलेहार बांध के खोले गए 3 गेट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश से गर्मी से राहत, आज भी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी, अगले 2 दिन में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पंजाब और हरियाणा में अगले 3 दिनों में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी, ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर आज मुंबई में स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी के आदेश। झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, ओडिशा के तटों पर मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में ना जाने की सलाह। महाराष्ट्र के सतारा जिले में जोरदार बारिश से पहाड़ों पर खूबसूरत नजारा, वाटरफॉल बने पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। सतारा और रत्नागिरी जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का दौर जारी, कोयना डैम के जलस्तर में बढ़ोतरी। पहाड़ियों से गिरते झरने और बारिश के बीच वादियों में फैली धुंध, सुहाने मौसम का आनंद लेने पहुंचे पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील। महाराष्ट्र में झमाझम बारिश के बाद पहाड़ों पर बदला नजारा, मानसून का मजा लेने बड़ी तादाद में लोनावला पहुंच रहे हैं पर्यटक। गुजरात के हिल स्टेशन सापुतारा में भी पर्यटकों की भीड़ बढ़ी, लगातार हो रही बारिश से सुहाना हुआ मौसम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: और अब बात करते हैं उस टीम की जो पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में उतरी और फुटबॉल की दुनिया में बड़ा नाम बन गई। अर्जेंटीना से रोमांचक मुकाबले में हार के बावजूद केप वर्डे का टीम इस टूर्नामेंट को सबसे बड़ी सरप्राइज टीम बनकर सामने आई है। हालांकि टीम का सफर वर्ल्ड कप से खत्म हो चुका है, लेकिन जब केप वर्डे के प्लेयर्स अपने देश लौटे तो उनका स्वागत विश्व विजेता की तरह हुआ।

0: फीफा वर्ल्ड कप में भले ही केप वर्डे की टीम का सफर थम गया हो, लेकिन स्वदेश लौटी टीम का स्वागत बता रहा है कि अभी तो इस टीम का सफर शुरू हुआ है। यह तस्वीरें केप वर्डे की उस फुटबॉल टीम के स्वागत की हैं, जिसने इस बार फीफा वर्ल्ड कप में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। यही वजह है कि जब टीम अपने मुल्क लौटी तो उनका ऐसा स्वागत हुआ मानो टीम विश्व विजेता बनकर लौटी। वर्ल्ड कप में धुरंधर टीमों को चौंकाने वाली दुनिया के सबसे छोटे देशों में एक केप वर्डे की टीम अब खुद में एक कहानी बना चुकी है। करीब 5.3 लाख की आबादी वाला केप वर्डे दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। तुलना करें तो अकेले नोएडा की आबादी इससे लगभग दोगुनी है। पश्चिमी अफ्रीका के तट से 600 से 850 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में बसे 10 ज्वालामुखीय द्वीपों के इस देश ने अपने पहले ही वर्ल्ड कप में एक तरह से इतिहास रच दिया है। केप वर्डे की इस टीम ने वर्ल्ड कप में धमाकेदार फुटबॉल खेला है। टीम ने ग्रुप स्टेज में स्पेन, उरुग्वे और सऊदी अरब जैसी मजबूत टीमों को ड्रॉ पर रोककर नॉकआउट में जगह बनाई और फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने वाला इतिहास का सबसे कम आबादी वाला देश बन गया। राउंड ऑफ 16 में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ भी केप वर्डे ने जो खेल दिखाया, हार के बावजूद पूरी दुनिया इस टीम की मुरीद हो गई।
1: Jogo é jogo, né? Bota a moça nos valores. Não começa contra um campeão do mundo. Aliás, atual campeão da Europa, Espanha. Não consigo empate, ninguém cataflava. Não consigo. Segundo jogo, contra o Uruguai. Uruguai é campeão do mundo também. Na passada, esse é nosso campeão do mundo. Não consegui mais um empate. Tudo aqui começa a estar com o Chicago Verde a partir de lá. Mas antes disso, ninguém caçará nada para nós.
0: दिलचस्प बात यह है कि 1975 में आजाद हुआ ये छोटा सा देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद सीमित है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन और विदेशी निवेश पर टिकी है, लेकिन अब ये छोटा सा देश फुटबॉल की एक नई ताकत के तौर पर दुनिया भर में पहचाना जा रहा है। पहला वर्ल्ड कप महज 5.5 लाख की आबादी और इतिहास रचने वाला प्रदर्शन, केप वर्डे के लोगों के लिए जश्न की इतनी वजह काफी है। फिलहाल पूरा देश जश्न में डूबा है। दुनिया भर में इस टीम के बारे में बातें हो रही हैं और इस बहाने वो छोटा सा देश चर्चा में है, जिसे दुनिया के मानचित्र में अभी तक खोजना भी मुश्किल था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते हैं। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते हैं। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: रामबन में भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते खोले गए बगलिहार डैम के 3 गेट। पूरी कश्मीर घाटी में जमकर हो रही है बारिश। मूसलाधार बारिश के बीच मिशन रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। पुणे और मुंबई से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में भी बचाई जा रही है लोगों की जान। मुंबई में जबरदस्त बारिश के चलते रेल सेवा बाधित, उड़ानों पर भी असर पड़ा। 17 फ्लाइट्स कैंसिल, 217 देरी से चल रही हैं। लोगों से वर्क फ्रॉम होम की अपील। दिनों के विदेश के दौरे पर रवाना हुए पीएम, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा। इंडोनेशिया में पीएम के स्वागत में लगे पोस्टर। भारतीय पकवान के दीवाने हुए इंडोनेशिया के लोग, जलेबी, चाट और अन्य पारंपरिक व्यंजनों का मजा ले रहे हैं जकार्ता के लोग। फरीदकोट में दस्तार प्रतियोगिता 2026 का आयोजन, 6 से 15 साल के 60 बच्चों ने हिस्सा लिया।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: मुस्कान तो वो मनोहर चाबी है जो हर ताले का दरवाजा खोल सकती है। तो आप भी मुस्कुराइए हमारे साथ, क्योंकि आज खोलेंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट का दरवाजा। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूं पारुल चौधरी। लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए आपका फेवरेट शो सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज का सिलसिला। कैसे? हमारी हेडलाइंस के साथ।
9: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, प्यार के रंग में रंगेंगे नौनिका और ईशान, छाएगी आशिकी,
10: झाके बादलों की जाली के पीछे से
9: मुश्किल में फंसेंगे रक्षित

फिर शुरू होगी आरंभी और ध्रुव की नोकझोंक। राधा को मिलेगा नया टास्क, मेहनत पर फिरेगा पानी।

और मन्नत के सेट पर सीन में तो होगा ड्रामा, लेकिन बिहाइंड द सीन होगी पार्टी। देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: क्या यहाँ पर डॉक्टर आरएमबी की कहानी में फिर से आने वाला है एक नया मोड़? एक्चुअली देखिए, कभी कभी ना इस नए मोड़ से मुझे डर लगता है, क्योंकि कभी कभी तो हो सकता है कि कोई कहानी का ट्विस्ट लेकर आए हमारे लिए कोई गुड न्यूज, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कहानी का नया ट्विस्ट लेकर आए हमारे लिए ढेर सारा ड्रामा। तो चलिए फिर पता कर आते हैं ऐसा क्या होने वाला है डॉक्टर आरएमबी की इस कहानी में। अब लेकर चलते हैं आपको इनके पास।
1: आरएमबी और ध्रुव की शुरू हुई नोकझोंक। असमंजस में आरएमबी। आरएमबी ने बहाए आंसू। कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरएमबी में चल रहे हैं शादी के फंक्शंस, और ऐसे में देखिए आरएमबी कितनी परेशान है। इसी परेशानी की वजह जानने के लिए ध्रुव उसके पास पहुंचा, लेकिन उसने उसे भी डांट फटकार कर वहां से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि आरएमबी ध्रुव से कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि अंदर ही अंदर वो घुट जो रही है।
2: ये जरूरी काम कर तो इतना झूठी बात करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर शिव,
3: मिस्टर रीड चावला, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, आप जाइए यहाँ से।
2: अच्छा, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो मेरे यहाँ आने से बिगड़ जाएगा? और थोड़ी देर पहले तबियत खराब हो रही थी तुम्हारी, याद है? चक्कर आ रहे थे, मैंने तुम्हें पानी पिलाया था, डिहाइड्रेशन हो रही थी, उसकी वजह से सर चकरा गया लगता है तुम्हारा, तभी ऐसे बात कर रही हो।
3: उस टाइम पेपर पे लिख के दूं मैं ठीक हूँ।
2: ओके, तुम ठीक हो।
1: ध्रुव तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन आरएमबी देखिए कैसे खुद से ही बातें कर रही है, उसने चीजें सही की या नहीं इसी बात पर वो आंसू भी बहा रही है और खुद को समझा भी रही है।
3: ओके,

0: हर सात वर्ष की हर पत्नी हर माता ने कहा अपनी अस्मिता अपनी सच्चाई और अपने बच्चे की भलाई के लिए लड़ी है। मैं लड़ रही हूँ हर उस दिन के लिए उसके पास लड़ने के लिए मुझे मार जाए कभी ना काफी
1: तो भाई आरंभी ने तो खुद के लिए आवाज उठाना सीख लिया है, अब देखना होगा।

0: कि आगे आने वाली मुश्किलों का सामना वो कैसे करेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: चाबी वाले खिलौने सी हो गई है मेरी जिंदगी, जिसने जब चाहा अपना मन बहलाने के लिए उतनी चाबी भर देता है। लेकिन यहाँ पर रूही ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में? ये इस तरह की पहेली क्यों बुझा रही हैं? चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको नाहर और रूही के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज, क्योंकि इनकी कहानी में भी रोजाना है नया ड्रामा, यानी हमारे लिए भरपूर मनोरंजन। लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर।

0: रूही और नाहर की हैप्पी फैमिली। इतना सा टुकड़ा दिखा परिवार का प्यार, नाहर और रूही की खुशियाँ। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में काफी टेंशन मुश्किलों के बाद आखिरकार खुशी का माहौल देखने को मिला, जहां नाहर रूही अपने बच्चों संग देखिए कितने खुश है। असल में नाहर को हो गई है सर्दी बारिश में भीगने की वजह से, ऐसे में रूही उसके लिए लेकर आई है काढ़ा। लेकिन देखिए कैसे बच्चों की तरह नाहर आनाकानी कर रहे हैं ये काढ़ा पीने में। ऐसे में दोनों के बीच हो गई है नोकझोंक शुरू।
1: आपको क्या जरूरत थी पानी में डूबने की? अब देखिए जुकाम हो गया ना,
2: लीजिए। लगता है तुम्हारी यादाश्त वापस से ली। तुम एक काम करो, बादाम वादाम खाओ, दिमाग पे जोर लगा। तुमने और बच्चों ने जबरदस्ती मुझे धक्का दिया, तभी मैं पानी में गिरा। नहीं, काढ़ा वाड़ा नहीं पीऊंगा मैं, ऑलरेडी हालत खराब है, इसे पीऊंगा उल्टी हो जाएगी मुझे। नहीं मैंने पीना।
1: मुझे पता था आप ऐसे ही नफरत करेंगे, इसीलिए मैं पहले से ही इंतजाम करके आई हूँ।
0: लेकिन रूही भी चालाक है, वो तो आखिरकार नाहर को ये काढ़ा पिलाकर ही मानेगी, जिसके लिए रूही ने बुला लिए अपने दोनों बच्चे। और देखिए बच्चे ने पकड़ लिए पापा के हाथ और नाक बंद कर रूही ने नाहर को ये काढ़ा पिला दिया।
2: अरे अरे ये क्या, आ छोड़ो। अरे बच्चों अच्छा बच्चों।
0: तो भाई काढ़ा पीते ही नाहर एकदम फिट एंड फाइन हो गए हैं और वो करते हैं बात बच्चों संग घूमने जाने की। और ऐसे में देखिए कैसे आज ये हैप्पी फैमिली देखने को मिल रही है, जहां रूही और नाहर अपने दोनों बच्चों संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और है काफी खुश। इनकी नोकझोंक भी चल रही है, मस्ती भी चल रही है और है ढेर सारा प्यार।
2: अच्छा बच्चू, ये जो मेरे खिलाफ टीम बनाई है ना तुम तीनों ने, चुन चुन कर बदला लूंगा तुम तीनों से। अच्छा सुनो मेरी बात, काढ़ा पी के ना तुम फिट हो जाओ, एक काम करते हैं चलो घूमने चलते।
3: थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया।
2: पापा की फिक्र ले रहे हो, तुम्हें चिढ़ा रहे हो? अभी बताता हूँ, अभी बताता।
0: भाई हम तो यही कहेंगे रूही और नाहर की इस हैप्पी फैमिली को कभी नजर ना लगे, लेकिन ये सीरियल की दुनिया है, इन खुशियों में ट्विस्ट की दस्तक तो जरूर होगी। अब देखना होगा कि इसमें क्या नया ट्विस्ट आता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: सही शब्द पीना चाबी की तरह होते हैं, इनका सही इस्तेमाल कर आप लोगों के मुंह बंद और दिल के ताले खोल सकते हैं। कुछ ऐसा ही कह रही है आज हमसे हमारी राध्या। राध्या बात तो सही है, वो कहते हैं ना कि एक तो गुस्से में हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अग्रेशन में हमें किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक बार ये शब्द आपके मुंह से निकल गए फिर आप उन्हें वापस तो नहीं ले सकते। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको राध्या और प्रथम के पास और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है इस कहानी में आज, क्योंकि कहानी में फिर से आया है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट।

टीवी के सीरियल मनाती सुंदर में राध्या पर कोई ना कोई मुसीबत तो आती ही रहती है, लेकिन वो हर मुसीबत का डटकर सामना करती है। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां दादी ने दे दिया है राध्या को फरमान ढेर सारे दिए बनाने का। ऐसे में दादी की बात मानकर राध्या हो गई है तैयार, और देखिए कैसे वो दिए बना रही है ढेर सारे, वो भी अकेली।

0: भाई इस काम में कोई उसकी मदद भी नहीं करने आ रहा। ऐसे में देखिए कैसे वो दियो पर दिए बनाए जा रही है। भाई दिए तो ढेर सारे बनाने हैं, लेकिन राध्या अकेली है। ऐसे में उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, वो तो बस दिए बनाए जा रही है। चाहे फिर उसे कितनी भी तकलीफ हो, उसकी कमर दुखे या फिर उसे परेशानियां हो, लेकिन राध्या हार नहीं मानेगी। ऐसे में दादी और बाकी घर वाले भी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। राध्या की सासू माँ को ये सब देखकर काफी बुरा लग रहा है, लेकिन वो चुपचाप दूर खड़ी है। ऐसे में राध्या ने ढेर सारे दिए बना लिए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब आ गया आंधी तूफान और तेज बारिश, जिसके चलते राध्या के बनाए सारे दिए खराब हो जाते हैं। ऐसे में बेचारी राध्या की सारी मेहनत पर पानी फिर चुका है। ऐसे में घर वाले तो उस पर चिल्ला ही रहे हैं और वो भी बहा रही है आंसू। अब देखना होगा कि राध्या क्या करेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अब तो एंटरटेनमेंट की इस चाबी से खुल रहा है आपके लिए अगला दरवाजा, जहां आपका फेवरेट सितारा कर रहा है आप सबका इंतजार। जी हाँ, इनसे ही तो की है हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने ये प्यारी सी मुलाकात। यहाँ तो हुई है ढेर सारी बातें और हमने जाना है इन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल। इन्होंने तो बताया है हमें अपनी जिंदगी के सफर के बारे में। कौन है ये, लेट्स चेक इट आउट।
2: बार बार दिन ये आए,
0: शुभी का हैप्पी बर्थडे।
2: हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: माता की चौकी में लगा सितारों का मेला।
2: मैं आया शेरावालिये।
0: हुआ सीरियल्स की बहु बेटियों का मिलन। मौका है शुभी के बर्थडे का। शुभी को आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं, जैसे कि अनुपमा, प्रेम लीला, साथिया 2 और कई और। और ऐसे में आज वो मना रही है अपना हैप्पी बर्थडे कुछ अलग ही अंदाज में। भाई ये केक तो काट ही रही है।

इसी के साथ इन्होंने रखी है माता की चौकी और देखिए सभी सितारे हो गए हैं माता की भक्ति में लीन। यहाँ खास मेहमान बनकर पहुँची हैं कांची कौल, वृंदा दहल, सांची तिवारी, श्रुति चौधरी और कई और सितारे। भरी बारिश में भी सभी पहुँचे हैं माता रानी के दर्शन लेने के लिए। तो आइए देखते हैं इसके सभी नज़ारे, जहाँ पर है नाच गाना, माता रानी की भक्ति, भजन और बहुत कुछ।

की इस चौकी में रखी गई है खास परफॉर्मेंसेस। यहाँ पर आए हैं कलाकार जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ऐसे में सितारे भी भक्तिमय हो चुके हैं।

0: आइए इन सभी से ही जानते हैं कि शुभि के बर्थडे और माता रानी की चौकी में आकर उन्हें कैसा लगा और उन्होंने कितना एंजॉय किया।
1: थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया क्योंकि काफी पॉजिटिव माता रानी
2: की बर्थडे नहीं, माता रानी का प्यार है और आपको तो माता रानी के दरबार में आना था। बेचारी पवई से भाग की बिल्डिंग के नीचे पानी परेशान होके आई है यार।
1: आना ही था, आपने बोला था तो आना ही था और आई थिंक माता रानी भी चाहती थी कि मैं आऊं, तो मैं आ गई। माता रानी की वजह से ही तो हम हैं,
2: तो माता रानी ने हमें मिलाया है।
1: करेक्ट, तो माता रानी पे ऑब्वियसली बहुत बिलीव है मेरा। सारे भगवान
2: ये बिंदी शो से इनके, मैं इनके बिंदी शो के सेट पे पहुंच देखी थी रैंडमली फ्रेंड के साथ, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई पहली बार और मुलाकात ऐसी हुई जब तक कभी खत्म ही नहीं हुई। आज फाइनली 3 साल से रहते रहते 2 साल से इनका रह रहा है, आज फाइनली आ गई। रोबी साड़ी का बोल के सूट में आई है, देखो
3: भाई बरसात देखो, या तो खुद को संभालो या साड़ी को।
4: मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ ऑनेस्टली, और मतलब यहाँ मुंबई में आने के बाद भी मैं फर्स्ट टाइम माता की चौकी में आई हूँ एंड इनके साथ भी मैं पहली बार मिल रही हूँ, तो मेरे लिए तो डबल धमाका है।
5: राइट,
3: अनमोल
4: रतन, अनमोल रतन,
3: अनमोल रतन, रतन
4: रतन। और कैसा है ये रिश्ता अनजाना,
3: दोनों साथ में बहुत होने वाला है। और मैं बृंदा से कितने महीने से बोल रही थी कि लेट्स मीट, अब फाइनली देखो माता रानी की वजह से हम लोग मिले।
6: माता की चौकी वर्णन से परे है, बहुत अच्छी चल रही है अभी तो, और आप मेरे पसीने से देख सकते हैं कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत डांस कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ और भजनों का, संगीत का, म्यूजिक का बहुत आनंद ले रहा हूँ। छोटी गुड़िया अपनी, उसके पापा मम्मी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और अपनी छोटी गुड़िया है वो, और उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। शुभी जी से आज मेरी पहली मुलाकात है, पर बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरी पहली मुलाकात है उनसे, तो इट्स अ डिवाइन रिलेशन, कुछ तो दैवीय है हम लोगों के बीच में, हम लोग एक साथ हैं और इतने अच्छे कार्यक्रम हम लोग एक दूसरे के साथ हैं और यहाँ पर भजन सुन रहे हैं और उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2: जन्मदिन नहीं है, माता रानी का प्यार, माता रानी का श्रृंगार है और मैं हर साल बर्थडे पे माता रानी की जगराता चौकी करती हूँ, बस माता रानी की कृपा है तो हम आप सबके सामने हैं।
1: जी अच्छा लगा, बिलीव नहीं करोगे मेरी पहली माता की चौकी थी, आई एम सो ब्लेस्ड कि शुभी दी के थ्रू हुई है। आई थिंक वो कोई भी देवी से कम नहीं लग रही आज, शी इज अ स्टार टुडे एंड कितनी सुंदर लग रही है, मतलब मैं वैसे भी इनके सारी कलेक्शन की फैन हूँ एंड आई थिंक आज बहुत ही अच्छा लगा, इतना पॉजिटिव लगा ना मुझे आज।
2: इतनी बारिश में सब मेरे लिए समय निकाल के आए, माता रानी के दर्शन करने आए, अभी और भी सारे गेस्ट सारे बहुत सारे तो बारिश के कारण रह गए। मेरी फ्रेंड आरती सिंह बीमार हो गई है बारिश के कारण, बट कोई नहीं सब आ रहे माता रानी के दरबार में, इससे बड़ी खुशी मिल रही और कुछ नहीं है। बस मैं तो चाहती हूँ माता रानी सब पे अपना प्यार बनाए रखे। जय माता दी।
0: तो भाई हमारी तरफ से भी शुभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: हूं अकेले घर पर। आ गया आपका पार्सल जिससे कुरियर वाला बाहर रखकर चला गया। अब आप निकले घर से बाहर उस पार्सल को उठाने और पीछे से हो गया दरवाजा धाड़ से बंद। चाबी तो है अंदर। आ गया ना अब आपकी जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट। अब क्या करेंगे? वेल, अब तो चाबी वाले को बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करें इन तमाम ट्विस्ट का जो आप पहुंचे हैं हमारी एंटरटेनमेंट की कहानियों में। चलिए दिखा देते हैं आपको ये सारे ट्विस्ट, वो भी एक साथ।
1: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है नया तूफान, जहां पर अरमान कमरे में हो गया है बंद। ऐसे में अभीरा और बाकी के घर वाले देखिए कितने परेशान हो जाते हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं अरमान कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहा, लेकिन जब दरवाजा खोलता है तो सभी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। और ऐसे में अभीरा जाकर अरमान के गले भी लग जाती है। भाई यहाँ तो सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है।

0: ऊंचा पहाड़ देख के डर गया था। डांट का धक्का जरूरी था।
1: I'm so sorry. मैंने ज्यादा ही बोल दिया।
0: तुम ओवरडूट तो कर देती हो।
2: वहीं दूसरी तरफ शुरू हो गए हैं फंक्शंस, जिसमें अभीरा रेडी शेडी होकर आ गई हैं और आ गए हैं सभी मेहमान भी, लेकिन यहाँ पर भी कहा सुनी हो जाती है। लेकिन तभी होती है एंट्री अरमान की, जो सज धज कर अभीरा का साथ देने पहुँच गए हैं इस फंक्शन में। तो भाई देखना होगा अब आगे आगे सीरियल में कौन कौन से ट्विस्ट आते हैं।
3: लड़की आ गई।

0: मेहमान की सेहत का क्या भरोसा। सुनीता की सास बता रही थी कि उनके रिश्तेदारों में किसी की सेम अरमान वाली सर्जरी हुई थी। चारा अब चल ही नहीं पाता।
1: अभी तेरी उम्र ही क्या है, पति दो बच्चियां सबका बोझ तेरे कंधों पे आ गया है।
2: तो यानी आपको अपने पति और बच्चे बोझ लगते हैं अंजू आंटी?
1: अरे नहीं नहीं, ऐसा आप कोई बात नहीं।
2: आप पकड़ी गई। आप लोग गेम खेलो, मैं अरमान को देख के आती हूँ अकेला।

0: emotional.
1: अब आप दोनों
2: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में हो रही है अंश और प्रेरणा की शादी, जिसमें सभी लोग हो गए हैं शामिल। देखिए कैसे चल रही है अंश और प्रेरणा की शादी की सभी रस्में। ऐसे में प्रेम और राही अपनी ही धुन में है, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा भी दोनों को देखकर काफी खुश हो रही है और सभी घर वाले खुशी खुशी अंश और प्रेरणा को गठबंधन में बनते हुए देख रहे हैं।
1: वधू की मांग में सिंदूर भरी है।

0: चलो जाओ जाके सारे बड़ों का आशीर्वाद ले लो।
1: लेकिन इसी के साथ शुरू होगा नया तमाशा, जो कि लाएगा कहानी में नया ट्विस्ट। अब देखना होगा कि नई मुश्किल का सामना अनुपमा कैसे करती है।
2: तो एक बार डायरी देख ही लेती हूँ। यहाँ तक इधर भी नहीं है। बाद में आके देखती हूँ।
0: अनुपमा, हाँ आई बा,
3: हमें छेड़ो।
2: तुझे मेरी डायरी से क्या करना है?
3: एक्चुअली मम्मी की डायरी मिल नहीं रही है।
4: अरे अरे अरे, कैसे मिलेगी? प्रेम बाबू ने मम्मी की डायरी चुराई है।
5: रख राई के सिर पे हाथ और खा कसम, अगर झूठ बोला ना प्रेम तो राई का मरा हुआ मुंह देखेगा।
6: मैंने रसोई से इनकी डायरी चुराई थी, से इनकी डायरी चुराई थी।
1: कलर्स टीवी के सीरियल शहर में आ गया है लीप, और लीप के बाद बदल गई है शहर और माहिद की जिंदगानी। देखिए, शहर बन गई है डॉक्टर और कैसे वो कर रही है अपने पेशेंट्स का इलाज अपने ही अंदाज में। जी हाँ, गाने लगाकर।

0: साहबा, क्या आप हमारा इलाज गाने से करने वाली है?
1: नहीं, दवाई से, लंबी सांस लेते।
0: हम बता रहे हैं, हमारे दर्द का इलाज है ही नहीं।
1: हर दर्द की कोई ना कोई दवा होती है, बस कभी कभी ढूंढने में वक्त लगता है।
2: लेकिन लगता है ये बात शहर के सीनियर को पसंद नहीं आई, इसीलिए शहर को लग गई है फटकार।
3: डॉक्टर बे,
1: यस मैम।
3: आपको अपने काम की बहुत नॉलेज है, राइट?
1: मैम, मेडिकल कॉलेज में दिन के घंटों के साथ रात की नींद भी दी है हमने। 24 घंटे में 26 घंटे पढ़ाई करते थे।
3: रियली? तो जरा हमें भी बताइए, कौन सी टेक्स्ट बुक के किस चैप्टर में ये लिखा था कि मरीजों का इलाज करते वक्त म्यूजिक बजाना चाहिए?
1: नहीं मैम, वो एक्चुअली हम
3: आप यहाँ इलाज करने आई हैं मरीजों का या अपना एंटरटेनमेंट?
1: नहीं नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए प्ले नहीं किया था म्यूजिक। पेशेंट का ध्यान दर्द से हटाने की कोशिश कर रहे थे हम। वो बेकाबू हो गई थी, एक नर्स को मुक्का भी मार दिया था उन्होंने।
3: आप जानती हैं हम कौन हैं?
1: डॉक्टर सैबा अहमद।
3: तो हमारे सिग्नेचर तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर पर आपने देखे ही होंगे, राइट? आप हमारे यहाँ रेजिडेंट हैं और हमारे डिपार्टमेंट में हर चीज प्रोटोकॉल के मुताबिक होती है, एक्सपेरिमेंट से नहीं।
1: हम तो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे मैम। अगर वो हमें मार देती, हम नीचे गिर जाते और इंजरी हो जाती तो खामखा एक बेड वेस्ट हो जाता।
2: इसी के साथ अब जल्द ही होने वाला है शहर और माहिद का आमना सामना भी, लेकिन फिलहाल चल रहा है हिट एंड मिस।
4: आपकी कोई मदद?
5: रिश्ता निभाना तो एक ताले से सीखना चाहिए। वो टूट जाता है लेकिन अपनी चाबी नहीं बदलता। क्या कुछ ऐसे ही हैं हमारे रक्षित? क्या इसी तरह देंगे वो हर सिचुएशन में अपराजिता का साथ? क्या कुछ हो रहा है आज इस कहानी में, चलिए पता कर आते हैं। लेकर चलते हैं आप सबको आपकी फेवरेट जोड़ी, जी हाँ, श्रुति झा और शब्बीर आलूवालिया के पास, उनके शो ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर।
2: मुश्किल में रक्षित और अपराजिता, ललित की गुंडों का वार, मुसीबत में बढ़ रही रक्षित और अपराजिता की नजदीकियां, के सीरियल ओ हम नफा तुम देना साथ मेरा में ललित हाथ धोकर अपराजिता के पीछे पड़ा है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए उसके साथ है रक्षित। ऐसे में रक्षित और अपराजिता दोनों ही इन गुंडों से बचकर भाग रहे हैं और गुंडे इन्हें छोड़ नहीं रहे हैं। देखिए कैसे हर जगह कर रहे हैं ये इनका पीछा, और ललित के सर पर तो खून सवार है, उसे तो बस अपराजिता चाहिए। ऐसे में इन गुंडों से बचते फिर रहे हैं रक्षित और अपराजिता और जगह जगह छुप रहे हैं। ऐसे में रक्षित और अपराजिता को मिल जाती है ये जगह जहाँ वो छुप जाते हैं इन गुंडों से बचकर।
6: ए, कहाँ गए दोनों? अभी तो यही थे ना, अचानक गायब कैसे हो गए?
2: ऐसे में इन्हें मिल गया है एक दूसरे से टाइम स्पेंड करने का मौका, तो इनकी नोक झोंक भी होती है और साथ ही साथ शुरू हो गया है ये रोमांस भी।
7: अरे क्या समर आ गया है?
1: क्या करने लग जाएगी?
7: धक्का मार दो तुम्हें तो।
1: अरे नहीं,
7: तुम्हें तो प्रैक्टिस भी है।
1: प्लीज प्लीज चलिए भागिए, प्लीज।
7: क्या भागिए, क्या जमाना आ गया है? चोर के पीछे गुंडे भाग रहे हैं, लोग मूर्ति के पीछे भागते हैं या गुंडे चोरने के पीछे भाग रहे हैं?
1: आपको ऐसी सिचुएशन में मजाक सूझ रहा है?
7: सिचुएशन ये सिचुएशनशिप है, और सिचुएशनशिप का मोटो पता है क्या है? या हंस लो या जिंदगी में फंस लो।
1: चलिए,
7: अरे कितने चलिए, चोरी बन के, चोरी बन के,
1: चलिए
7: मोरनी बन के, मोरनी नहीं चोरी बन के। ओ!

0: कब तक रुकेंगे हम यहाँ?
1: मेरे ख्याल से सुबह होने तक, क्योंकि सुबह होते ही ना मार्केट में लोग आ जाएंगे और पब्लिक के सामने ये गुंडे कुछ करेंगे नहीं, तब सेफ हो जाएंगे हम। तब तक बैठे रहो।

0: मिले दोनों?
1: अरे भाई मिलते मिलते रह गए, मलवा बाजार में दोनों आए हैं, चकमा देके भाग गए।
0: मालवा बाजार?
1: हाँ भाई, पूरी बाजार खाली है, पर आप टेंशन मत लीजिए, ढूंढ लेंगे हम।
0: सुबह होने और किसी इंसान के आने से पहले अपराजिता का नाम खत्म हो जाना चाहिए। ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होनी चाहिए। उनके पास उनके फोन नहीं है, इसलिए ध्यान रहे कि वो किसी भी तरीके से किसी और से मदद ना मांग पाए। अगर किसी को पता चल गया कि आज रात यहाँ क्या होने वाला है तो सारा खेल खराब हो जाएगा। अपराजिता को मार दो और सबको लगेगा कि उसे रक्षित ने मारा है। अब मेरे रास्ते से दोनों साफ हो जाएंगे।
1: जी भाई समझ गए हम।

0: अब रक्षित और अपराजिता इस जगह से भागने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो फंस गए हैं, और यहां भी इनकी तू तू मैं में जारी ही है। अपराजिता और रक्षित को नहीं पता कि ललित इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ पहुँच ही जाएगा, और देखिए कहानी में नया ट्विस्ट आएगा जहाँ ललित अपराजिता पर गन तानने वाला है। अब देखना होगा कि अपराजिता और रक्षित इसका सामना कैसे करते हैं।
1: बहुत हीरोइन बनने का शौक है ना तुझे अपराजिता, लो आ गया तुम्हारी कहानी का क्लाइमेक्स। तेरा हीरो जमीन पे है और तेरी सांसें मेरी उंगलियों पर।
2: आपने हमेशा मुझे कमजोर समझे, लेकिन आप भूल रहे, आपने जितना मुझे तोड़ने की कोशिश की उतनी ही मजबूत बनती बनी।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: चलाइए गुंड, खत्म कर दीजिए आज ये किस्सा, और भले ही मेरी सांसें रुक जाए लेकिन आपका अंत तय।
3: चाबी खोल रही है आपके लिए अगला एंटरटेनमेंट का दरवाजा, और लेकर चल रहे हैं हम आपको एक ऐसे सेगमेंट की ओर जहां पर है आपके लिए एंटरटेनमेंट का हर रंग। जी हाँ, एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ड्रामा सब कुछ एक साथ। अब मैं जानती हूँ हो गया है आपके पेट में दर्द, नहीं हो रहा है आपसे और इंतजार, तो हम भी करते हैं सस्पेंस को खत्म और फटाफट लेकर चलते हैं आपको इसकी ओर।
0: नई कहानी, नए किरदार। देव चंद्रमा और ईशान धवन की जोड़ी। सौम्या और जीत की अजब गजब मुलाकात। स्टार प्लस पर शुरू हुआ है नया सीरियल जिसका नाम है ये फितूर तेरा, जिसमें देव चंद्रमा नजर आएंगी सौम्या के किरदार में।
2: भागती नहीं, पर आज अपने डर का सामना करना चाहती हूँ।
0: और ईशान धवन बने हैं जीत।
4: अनजान दुनिया से कई लड़कियां घबराती हैं, उनमें से ही है हमारी सौम्या।
0: ये कहानी प्रयागराज की है जहां सौम्या पढ़ाई करने के लिए प्रयागराज के एक बड़े से कॉलेज में आई है एक फ्रेशर के तौर पर। भाई सौम्या के किरदार की बात करें तो वो डरी सहमी रहती है, लोगों से बात नहीं करती, और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। देखिए कैसे सिंपल से इस ड्रेस में, सिंपल लुक में सौम्या पहुंच गई है कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए।
5: जिससे कभी अपना नियंत्रण खोने देखता है श्रृंगार उसकी मतलब छटा तेरे रूप में मुस्काती है, तेरे चितवन की कोमलता हृदय बिना झटकृत कर जाती है, तेरे अधरों की मंद हंसी से खिल उठता है ये संसार, जैसे साकार हुआ हो तेरे रूप में।
0: ऐसे में क्लास में भी देखिए कैसे वो डरी सहमी है, तभी उसकी दोस्त आ जाती है और ये दोनों क्लास से चले जाते हैं। भाई कॉलेज के कैंपस में सौम्या घूम ही रही होती है कि उसकी मुलाकात हो जाती है जीत से। जीत के इंट्रोडक्शन की बात करें तो देख लीजिए कैसा हुआ ईशान धवन का इंट्रोडक्शन, जहां वो कर रहा है वर्कआउट बेयर बॉडी, लेकिन उसकी पीठ पर लिखे हैं आंसर्स, क्योंकि वो कर रहा है चीटिंग। भाई कुछ ऐसा ही है जीत का किरदार।

0: purse. Heavy is the head. It's a blessing and a curse.
1: इस कॉलेज के डीन का बेटा है लेकिन नाजायज, इसीलिए बाप बेटे में बिल्कुल नहीं बनती है। हमेशा जीत गुस्से में ही रहता है। तभी तो देखिए कैसे आज जीत सौम्या से टकरा गया, और डरी सहमी सौम्या देखिए कैसे जीत की हर बात मान रही है।

0: इलाहाबाद की लड़की है, लड़की थोड़ी सी डरी हुई है। एग्जैक्टली किस लिए ये इतनी डरी हुई है हमें भी नहीं पता चला है। तो अनजान आदमियों से बात करने में इसको बहुत घबराहट होती है, बात नहीं कर पाती है। नॉर्मल फैमिली वालों से नॉर्मली बात करती है, पर लड़के वाले उनके सामने आ जाते हैं तो वो घबरा जाती है। तो पहली बार वो एमए करने कोएड कॉलेज में पढ़ने आएगी और यहाँ इतने सारे लड़के हैं, वो कैसे रिएक्ट करेगी, उसको समझ नहीं आ रहा है कि लड़के उसके साथ क्या क्या कर देंगे, छेड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। तो वो डरी हुई है लड़की, वैसे बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी जैसी। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, इतना मैं कह सकती हूँ। बिल्कुल, और इसके साथ ये मेरा पहला उसको मैं पहली बार देख रही हूँ, और देखते ही मेरे मुंह से निकल जाता है, मेरी एक दोस्त है वो मुझे रास्ते पर रटवाया है कि कोई तुझे छेड़ने आए उसको बोल देना कि कॉलेज का ओनर मेरा बाप है। तो ये जैसे ही कोई लड़का मेरे सामने आता है मैं बोल देती हूँ, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं किसकी औलाद हूँ, इस कॉलेज का ओनर मेरा बाप है, बाप, ऐसे मैं बोल देती हूँ। तो जीत वो पकड़ लेता है क्योंकि एक्चुअली फादर तो उसका है। तो वो पीछे आके मुझे बोलता है, अच्छा तुम्हारा बाप है। तो मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। और वो मुझे ये बोल रहा है कि तुम्हारा नाम सौम्या माथुर है और तुम्हारा बाप सक्सेना, मतलब क्या इक्वेशन क्या है तुम दोनों का, तुम अडॉप्टेड चाइल्ड हो गया उनका। तो ये सब चल रहा है।
1: तभी वहाँ आ जाते हैं जीत के पापा और देखिए कैसे उन्हें तो मिल गया है मौका जीत को खरी खोटी सुनाकर इस कॉलेज से सस्पेंड करने का, लेकिन जीत भी हार कहाँ मानने वाले हैं। पीठ पर उन्होंने जो आंसर्स लिखे थे वो उन्होंने पानी से मिटा दिए और इस बार भी पापा का बेटे को सस्पेंड करने का मौका चला गया। पर यहाँ देखने को मिली बाप बेटे की टशनबाजी, तो वही हो गई है एक नई कहानी की शुरुआत, यानी जीत और सौम्या की अजब गजब कहानी की शुरुआत। तो आइए इन्हीं से ही जानते हैं इस सीरियल, इनके किरदार और कहानी के बारे में कुछ और बातें।
2: क्या हो रहा है? चीटिंग करवा रहा था। सौम्या घबराओ मत, बोलो क्या ये चीटिंग करवा रहा था? आज फाइनली तुम सबूत के साथ पकड़े गए। आई एम गोइंग टू सस्पेंड यू।

0: इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ है. मैं घूमने जा रही थी और मेरे पास एक दिन कॉल आया कि देवचंद्रिमा तुम्हें एक ऑडिशन के लिए तुम एक ऑडिशन के लिए आ सकती हो क्या सर, आज रात की मेरी फ्लाइट है तो मुझे घर से भेज दो. तो घर से मैंने भेजा और मुझे बोला कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हो. मतलब सर मॉक शूट नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी ना होता है, और कल तो मैं घूमने जा रही हूँ, ऐसे नहीं होता है, तुम कैंसिल कर दो. नहीं होगा सर, मैं घूमने जाऊंगी. तो मैं घूमने चली गई थी, ऑडिशन देके कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मैं घूमने गई थी. और वापस आने के बाद हमारा मॉक शूट हुआ था. मॉक शूट होने के बाद उन्होंने तो पहले ही मुझे बोल दिया था कि तुम ही करोगी ये शो, ये किरदार तुम्हारे लिए है, तुम ही अच्छे से कर सकती हो. मतलब सर थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी. तो ऐसे ही मुझे बहुत अचानक मिल गया था.
1: ऐसा नहीं है कि मेरे पास चॉइस थी, मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए, बहुत सारे मॉक शूट दिए, तब जाके ये मिला है. और बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है. पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिमीन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर का प्रोडक्शन होता तो मैं हाँ बोलता, ना बोल सकता था. यहाँ पे क्या है कि काम काम है एंड चॉइसेस होती हैं आपकी कुछ. हाँ ज़रूर कहूँगा कि आपकी सिलेक्शन होती है कि किस चैनल के साथ आपको काम करना है, किस प्रोडक्शन हाउस के साथ आपको काम करना है, कैसा कैरेक्टर चाहिए आपको. सो वो जब सब खांचों में चीज़ें बैठती हैं तो फिर आप प्रे करते हो कि हे भगवान हे परमात्मा हो जाए. तो ये हो गया और ये मेरे दूसरे कैरेक्टर से बहुत अलग था. और रेज और रॉनेस की बात करें तो वो सब कैरेक्टर में थी, लेकिन अलग अलग तरीके से होती है. जैसे आपको गुस्सा अलग तरीके से आएगा, ये जो कैमरा पकड़े बैठे हैं उनको गुस्सा अलग तरीके से आएगा, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, ठीक है. तो ऐसा होता है. वैसे ही कैरेक्टर है, वुंडेड है, बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है, किसी को नहीं दिखाता है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया हुआ है इसने, जो सोसाइटी की नज़र में गलत है वो उसने खुद को ढाल लिया उस चीज़ में कि अगर वो नाजायज़ औलाद है तो वो है. वो खुद बोलता है कि हाँ मैं हूँ तो हूँ, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं बुरा लगता है व्हेनेवर ही सीज़, यू नो ही सीज़ हिज़ फादर. तो वो है, उसके नुआंसिस हैं छोटे छोटे विद इन द डायलॉग्स, जो स्पेस होता है उसके अंदर मेरे पास खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. बट लेट्स सी अभी क्या करता हूँ, अभी तो पहला दिन है शूट का, तो पता नहीं मुझे, मैं टाइम लगेगा इस कैरेक्टर को पकड़ने में. बट आज शुरू हुआ है, मैं अभी क्लोज भी नहीं हूँ अपने कैरेक्टर के. आई फील जब मैं खुद से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दूंगा कैरेक्टर में, तब मैं 90% पहुँचूंगा कैरेक्टर पे, लेकिन अभी मैं 20% भी नहीं हूँ. सो अगर आपको फिर भी मेरा प्रोमो देखकर या फिर टीजर देखकर अच्छा लग रहा है तो आप सभी का प्यार है.
2: दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अलग है. और ये जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ इसके काफ़ी शेड्स हैं. सो इट ही इज़ अ केयरिंग फादर ऑल्सो, ही इज़ अ वेरी बिग बिजनेस मैन ऑल्सो. और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इसका एक बेटा है जो बोल सकते हैं आप नाजायज़ औलाद है. तो फादर और बेटे का भी काफ़ी अच्छा ट्रैक है. ऐसा नहीं है कि ही हेट्स हिज सन, ही लाइक्स हिज सन, बट कुछ रीजंस की वजह से, प्रेशर्स की वजह से वो अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर पाता सबके सामने. तो और बेटा भी इसी में रहता है कि मेरे फादर मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं. तो उसके अंदर वो गुस्सा, वो कड़वाहट बोल सकते हैं, वो भरी हुई है. तो ट्रैक्स काफ़ी हैं इसके अंदर. एक हमारी वाइफ का ट्रैक है जो अभी तक मुझसे नाराज़ है, क्योंकि 20 साल पहले मैंने कोई अफेयर हो गया था मेरा, वो भी उसके भी रीजंस थे कि अफेयर क्यों हुआ. सो जो भी ट्रैक खुलता है उसके पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कैरेक्टर बिना बात पर इस कहानी में है, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत हैं, बट हर कैरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट जगह है शो में.
3: वही दूसरी तरफ फिर एक बार एक और नया तमाशा शुरू हो गया है. असल में सौम्या पहुंची है टेलर के पास, लेकिन यहां पर टेलर से ही डरकर सौम्या सीटी बजाने लगी और मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए और शुरू हो गया तमाशा. वो तो सही समय पर सौम्या के पापा आ गए जिन्होंने सिचुएशन को संभाला

0: कोई खोट नहीं है।
1: चाचा आपने बल्ला चलना सच लगता है,
0: हमारी नैया डुबो
1: नॉर्मल नहीं, इसमें तो हर एक प्रॉब्लम है।
0: कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी बेटी में, कुछ ना बताया कुछ ना समझाया
2: वैसे आपको बता दे कि ये कहानी कुछ कुछ फिल्म कबीर सिंह जैसी है, जहाँ पर गुस्सेल जीत है तो प्रीति की तरह सीधी सौम्या है। तो हो जाइए तैयार सीरियल की ये कहानी देखने के लिए। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: किसी के लिए किसी की अहमियत खास होती है, एक के दिल की चाबी हमेशा दूसरे के पास होती है। क्या कुछ ऐसा ही है यहाँ पर ईशान और नौनिका का ये रिश्ता। चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको सैराब के सेट पर। देखिए ये जोड़ी तो है कमाल और उतनी ही इंटरेस्टिंग है इनकी ये कहानी, और कहानी में भी आते हैं हमारे लिए इंटरेस्टिंग मोड और नए नए ट्विस्ट जो हमें इस कहानी से बांध कर रखते हैं। अब देखिए रहता है ना हमें बेसब्री से इसके हर नए एपिसोड का इंतजार। चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन सैराब के सेट पर।

टॉपलेस के सीरियल सैराब में आखिरकार नौनिका ने अपने दिल की बात सुन ही ली है। तभी तो देखिए कैसे आज वो घुटनों के बल बैठकर ईशान से अपने प्यार का इजहार कर रही है, उसका हाथ जिंदगी भर के लिए मांग रही है। और ईशान वो तो नौनिका से प्यार करते ही है, ऐसे में भला वो खुश क्यों ना हो और वो अपने नौनिका के करीब क्यों ना जाए।

0: वैसे बता दें कि ईशान और नयनिका की ये नजदीकियाँ सिर्फ एक ख्वाब है, वो भी नयनिका की। असल में नयनिका भी ईशान से प्यार करने लगी है, लेकिन समाज के आगे मजबूर है, इसीलिए चाहकर भी वो ईशान से कुछ कह नहीं रही, लेकिन हाँ उसके हसीन ख्वाब देखने लगी है। और उसी हसीन ख्वाब का आज प्रोमो शूट फिल्माया गया है, लेकिन ये ख्वाब कब सच्चा होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
1: ये ख्वाब जब सच होगा तब होगा। फिलहाल तो हकीकत में ईशान और नयनिका पहुंच गए हैं ईशान के इस फेवरेट रेस्टोरेंट में, जहां वो अक्सर आया करते हैं, और आज वो नयनिका को यहां पर लेकर आए हैं टेस्टी टेस्टी खाना खाने के लिए। वैसे ईशान नयनिका के साथ मुंबई दर्शन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बातों ही बातों में अपने दिल की बात भी कह देते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां खाते खाते ईशान ने फिर एक बार अपने प्यार का इजहार किया।
2: Sorry, are you okay?

0: वैसे नौनिका तो कह नहीं रही है, लेकिन लगता है ईशान का प्यार उसने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उसे एक बेहद अच्छा दोस्त जो मिला है जिसे वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहेगी।
1: सिर्फ नौनिका घूम रही है मुंबई में, ईशान अपना प्यार जताते हुए, सिक्योरिटी देते हुए और अपने प्यार का इजहार करते हुए नौनिका को पूरा मुंबई भ्रमण करवा रहे हैं। मुंबई इज फेमस फॉर बीचेस, जुहू बीच सबसे फेमस है, तो वहाँ से बस अभी हम पानीपुरी और गोलगप्पे, आइस की गोली, ये सब खा के निकले हैं। और अब ईशान मुझे लेकर आए इस ढाबे पर। ये जो ढाबा है यहाँ पर उसने अपना बचपन निकाला है, जब उसका स्ट्रगलिंग पीरियड था तब, और वो अपने इसी जर्नी के बारे में बता रहा है। और नौनिका अपने नो ये सब चीज़ें बहुत इंजॉय कर रही है कि उसे ये लाइफ बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि उसने अपने तरीके से 2 दिन जीने के लिए अपने परिवार से मांगे थे। तो दैट्स हाउ द सीन इज़ अबाउट। इतनी जल्दी तो एक्सेप्टेंस नहीं है, बट अभी नौनिका ने ईशान को बहुत अच्छा दोस्त माना है, क्योंकि उसके प्यार में वो ताकत है, जहाँ पर वो नौनिका की एक जो बाउंड्री है उसको वो पार कर चुका है, कि जब उसके सबसे बुरे वक्त में अगर कोई खड़ा था तो वो ईशान ही था, नॉट इवन हर ओन फैमिली मेम्बर्स। और अभी उसकी बेटी भी उसे गलत ही समझ रही है, वो इंटेंशनली अपनी बेटी को नहीं बताना चाहती है कि उसे कैंसर है, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन ईशान को पता होने के बाद भी वो उसको उसके लिए उस समय पर खड़ा है जब नौनिका को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो प्यार का इजहार इनडायरेक्टली एक्सेप्टेंस है।
0: तो भाई अब ये तो वक्त ही बताएगा ईशान और नौनिका के प्यार की ये गाड़ी कितनी आगे बढ़ती है और कब दोनों में इजहार होता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अब तो हम सब के फेवरेट दी वेरी हैंडसम एंड दी वेरी हैपनिंग राजीव खंडेलवाल यहाँ कर रहे हैं हम सबका इंतजार। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इनके शो तुम हो ना के सेट पर, जहाँ ये खोल रहे हैं हमारे लिए एंटरटेनमेंट का दरवाजा, क्योंकि इस शो में भी है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का हर रंग। तो क्या कुछ हुआ है इस वीकेंड तुम हो ना के इस मंच पर, लेट्स चेक इट आउट।
3: जोरदार तालियां हमारी अगली सुपरस्टार विक्रोली से आई अफरोज शेख जी के लिए। अफरोज जी, आपके ऊपर ये इल्जाम है कि आप एक बहुत ही बेधड़क, बेझिझक और बिंदास महिला हैं।
4: जी।
3: आपको शर्माना नहीं आता। उन मूर्ख लोगों का ये कहना है कि शर्म ही तो महिला का गहना होती है। आपका क्या कहना है?
4: मेरा ये कहना है कि महिला सिर्फ किचन तक ही रह सकती है, नहीं ऐसे नहीं, महिला सिर्फ किचन के बाहर निकल के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर अपनी जिद पे आ जाए तो सारी दुनिया को अपनी उंगली पे नचा सकती है।
3: बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोशल मीडिया पे आपने 50 लाख लोगों का फैमिली बनाई, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी है, किसी ने मदद की होगी आपकी, किसी ने बोला होगा?
4: बेटा बेटा, मेरा बड़ा बेटा।
5: मम्मी बहुत पहले से अच्छा खाना बनाते, तो मैं बोला, जब सोशल मीडिया का टाइम था आज से कुछ 6-7 साल पहले, तो मैं मम्मी को बोला, मम्मी एक वीडियो अपन निकालते करके देखते क्या होता है। तो पहली रेसिपी मम्मी ने
4: दाल गोश
5: अपलोड किए थे नॉनवेज की, तो वो मतलब उस पर काफी व्यूज चले गए थे, तो उधर से हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुई।
4: मुझे जैसे कि जब मैं वीडियो बनाने लगी, जब मैं बोलने लगी, तो बहुत लोग जैसे कि मुझे कमेंट में बोलने लगे कि यार ये तोतली है, ये तोतला के बात करती है, ये है वो, कम सुनने के बावजूद भी मैं उनके ऊपर कभी ध्यान नहीं दी। बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, मगर उनका सुन के हम अपने आप को क्यों ये करें? मैं पीछे नहीं हटी, जलने वाले जलते रहेंगे।
3: वो हमारे चार
4: उनको ही तो सिखाते
3: हैं, उनको बता दें हम कि ये ना तोतली नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है।
4: एकदम सही।
3: नेहा जी, आप पर ये इल्जाम है कि आप अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करती।
4: बिल्कुल नहीं।
3: आप अपने स्वाभिमान को समाज के तकियानुसी विचारों से ऊपर रखती हैं, क्या ये सच है?
6: जी सर, ये सच है। ऐसे सिचुएशन आ गई थी कि मुझे सिलेक्ट करना था सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर गुलामी, और मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सिलेक्ट किया।
3: लाइफ में ऐसा कब कोई मोड़ आया जहां पर आपको लगा कि अब स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते?
6: मेरी लाइफ में बहुत सारे टर्न्स आए, ट्विस्ट आए,

0: था कि जहर खाने के भी पैसे हमारे पास नहीं थे। फिर पापा ने मुझे सपोर्ट किया। फिर भी पति मेरा सुधर नहीं रहा था, वही उसकी पुरानी आदतें चालू थी। मुझे घर चलाने के लिए पैसे पापा से मांगने पड़ते थे, जो मुझे नहीं अच्छा लगता था। मुझे कहीं ना कहीं अंदर से फील होता था कि मेरे पापा ने इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, फिर भी मुझे आज पापा के पास पैसे मांगने पड़ रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो भगवान हमें सब सिखा देता है। बेटे को भी सब सिखाया उसने, मेरा घर भी संभाला, पढ़ाई भी की। बोलते ना पापा माँ बाप हमें एक जन्म देते, मेरे माँ बाप ने मुझे दो जन्म दिए हैं, दूसरा जन्म भी मेरे पापा का है। पापा अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन पापा ऊपर से देख रहे हैं। और जब से पापा मेरे साथ नहीं है, मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि मेरे पापा मेरे साथ स्ट्रांगली खड़े और मुझे हिम्मत देते रहते। थक चुकी हूँ लेकिन मैं हारी नहीं हूँ, एंड तक लड़ूंगी, उन मूर्खों को बताऊंगी।
1: नक की कहानी में जो एंटरटेनमेंट है ना, बस उसकी चाबी से भी खुलता है हमारे लिए मनोरंजन का दरवाजा। कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जो लेकर आता है हमारे लिए थ्रिल एंड एक्साइटमेंट। क्योंकि देखिए, जैसे ही कहानी में आता है ना एक छोटा सा सीधा साधा मोमेंट, वैसे ही आ जाता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो बदल देता है इस कहानी के मोड को कम्प्लीटली। तो क्या कुछ हो रहा है मन्नत की इस कहानी में, आज लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास।
2: एक तरफ मेजबानी में बंदूक लीला, तो वहीं दूसरी तरफ रसोई में सम्रागी और मान्यता की पाक कला। एक तरफ मन्नत के सामने हुआ धैर्य का खुलासा, तो दूसरी तरफ सम्रागी और मान्यता संग मॉनसून का मजा लेते अभिमन्यु। कलर्स के सीरियल मन्नत में आज मन्नत के सामने आ गया है धैर्य का रौद्र रूप। और तो और ये भी आ गया है कि धैर्य विक्रांत के खून के प्यासे बन गए हैं। असल में धैर्य को लगा कि वो विक्रांत का पीछा करते हुए मेजबानी के अंदर आए हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि वहाँ विक्रांत नहीं बल्कि मन्नत है जो धैर्य से छिपी हुई है। ऐसे में अनजाने में आज धैर्य ने खुद अपने कर्मों का बखान कर दिया और उसकी सारी बातें मन्नत सुन रही है।

0: मेरी गलती नहीं है, मरने जी की गलती है ना।
1: वो मरने के लिए तैयारी नहीं है कि तुम नहीं हो, वो तुमको भूलना ही नहीं चाह रही है।
0: तुमको भूलेगी नहीं, मेरी जिंदगी में किसी आएंगे तो मेरी जिंदगी में नहीं आएगी, तो तेरे साथ मैंने किया है वो सब बेकार। मैं क्या बेवकूफ हूं, मैं क्या बेवकूफ हूं। अगर वो ये भी मान लेती ना, मर चुके सब कुछ आसान था, मैं सब कुछ हैंडल कर लेता, लेकिन तुम्हारी लाश ही नहीं मिली। तुम तैर के निकल जाओ पता नहीं कहां पर।
2: भाई धैर्य ने गुस्से में ना सिर्फ ये बताया कि वो मन्नत से पागलों की तरह प्यार करता है, बल्कि उसी प्यार की खातिर उसने ना सिर्फ विक्रांत बल्कि नीतू माँ का भी कत्ल कर दिया। और ये सुनकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक रही है।
0: मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ की बदवाएं मेरा पीछे ही नहीं छोड़ लगी। अरे लेकिन मैं उनको मारना चाह ही नहीं रहा था यार, उनको तो मैंने मां समझा, उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। बावजूद उसके उनको मैंने कभी एक शब्द नहीं बोला, वो तो तुम्हारे बीच में आ गई। मैं तुमको थोड़ी मार रहा था, मैं तो तुमका मार रहा था, मैं बीच में आ गई।

0: मन्नत अभिमन्यु को बुलाती है क्योंकि उसको क्लियर करना है कि वो विक्रांत है, उनको याद दिलाना है और कुछ कुछ डाउट्स हैं जो आरंभी जी ने बोले कि करने चाहिए क्लियर, तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड वहाँ पे वो पहुँचती है तो ऑलरेडी धैर्य जी हैं, उनके पास गन है, एंड देन ही कन्फेसेस एंड शी लिसन्स, एंड फिर वो गोली मारते हैं। उनको अंधेरे में लग रहा होता है कि विक्रांत है तो वो गोली चला देते हैं, एंड देन वो बट विक्रांत नहीं होता, विक्रांत का स्टैंड ही होता है, बट वो जो गोली होती है वो मन्नत को लग जाती है, बट तो मतलब उनकी सच्चाई सामने आ जाती है।
1: भाई सच जानने के बाद न सिर्फ मन्नत को झटका लगा है बल्कि धैर्य को भी सदमा लग गया है, क्योंकि धैर्य ने विक्रांत पर नहीं विक्रांत के पोस्टर पर बंदूक चलाई है। ऐसे में गुस्सा कर धैर्य वहाँ से निकल तो जाता है, लेकिन मन्नत वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही क्योंकि उसे अपने साथ हुए धोखे को लेकर गुस्सा आ रहा है। और तो और वो विक्रांत को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन आज उसकी आंखों से वो पर्दा भी हट गया है। हालांकि उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं है।
0: उसकी जर्नी है उस मोनोलॉग में कि पहले उसको उसको लगता है कि विक्रांत की जान खतरे में है, नीतू मार उनको, विक्रांत को धैर्य जी ने मारा, पर फिर उसको लगता है नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इज़ बिन थ्रू थिक एंड थिन, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो शी गोज थ्रू दिस जर्नी ऑफ डिनाइल से मेकिंग सेंस, फिर उसको फ्लैश कट्स आते हैं कि वो पॉइंट कर रहे थी वो नीतू मां, वो दैट वॉज इट दैट वॉज नॉट टूवर्ड्स विशाखा, दैट वॉज एक्चुअली टूवर्ड्स धैर्य। तो उसको लगता है कि नहीं नहीं कहती, बट उन्होंने कन्फेस किया कि वो कातिल है, कोई खुद को कातिल क्यों बोलेगा, कोई खुद गोली क्यों चलाएगा, उन्होंने गोली चलाई। तो शी गोज थ्रू द होल जर्नी एंड देन शी रियलाइजेस कि ये रियलिटी है कितनी भी हार्श हो, एंड देन उसको गुस्सा आता है कि कैसे किया आपने, दुआ का नहीं सोचा, मेरा नहीं सोचा, एंड शी इज डिसगस्टेड एट वन पॉइंट के मेरी मतलब वॉट अ लैप्स इन जजमेंट कि इतने गलत इंसान पे भरोसा किया, यू नो आपको खुद पे गुस्सा आता है, आपको डिसगस्टेड फील होता है कि आपने इतनी इंपॉर्टेंट जगह दे दी उस इंसान को एंड बेटी की लाइफ में इंपॉर्टेंट जगह दे दी। तो ऑल दोज थॉट्स एंड देन शी डिसाइड्स कि नो वी डोंट वॉन्ट दैट, वी अब मतलब नहीं होने दूंगी। ऐश्वर्या राय सिंह ने जो यूज़ किया मुझे और मलिका को और ये सब, वो नहीं होने दूंगी दुआ के साथ। तो शी डिसाइड्स एंड शी लीव्स होम टू टेल कन्फ्रंट धैर्य।
1: बेचारी मन्नत आज तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है क्योंकि उसने अपने दोस्त के हाथों से ही अपना प्यार खोया है। इतना ही नहीं आज तो धैर्य की बातें सुनकर वो इस बात को लेकर भी परेशान है कि इन सब के बीच उसकी बेटी दुआ भी फंस गई है। खैर इस धोखे के बाद मन्नत ने फैसला किया है कि अब वो धैर्य से किसी भी बात को लेकर कन्फ्रंटेशन नहीं करेगी और तो और उसकी सच्चाई एक एक कर सभी के सामने लाएगी। इतना ही नहीं, मन्नत ने तो ये भी तय किया है कि वो अभिमन्यु को उसके अतीत की याद दिलाएगी और चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यहाँ मन्नत ने आगे की लड़ाई के लिए अपनी हिम्मत जुटा ली है, तो वहीं दूसरी ओर विक्रांत यानी कि अभिमन्यु को नया परिवार मिल गया है जिनके साथ वो ऑफ कैमरा मुंबई के मॉनसून का मजा ले रहे हैं। और ऐसे में आज सास बहू और बेटियां भी उनके साथ होली हैं और पहुंच गई हैं उनके सेट की रसोई में, जहां हंसी ठहाकों के साथ गर्मा गर्म इंस्टेंट नूडल्स बन रहे हैं और रिश्तों में प्यार बांटा जा रहा है। तो आइए हम भी शामिल हो जाते हैं इनकी रसोई में।
2: आज हम आ चुके हैं यहाँ पर मन्नत के सेट पर और हमारे साथ विक्रांत है, मान्यता है, समरागी है और हम आज ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं बिकॉज मॉनसून इज हियर। तो हाउ इज द जोश?
3: वेरी मच,
4: बहुत ज्यादा।
2: प्लीज बताइए व्हेन इट कम्स टू मॉनसून किस तरह का माहौल बनता है अदरवाइज एज वेल?
3: देखिए मॉनसून आया तो चाय और पकौड़े तो बनते ही है ना।
4: Absolutely.
3: तो जो जो डाइट कर रहे हैं वो नहीं खाएगा, लेकिन जो डाइट नहीं कर रहा है वो चाय और पकौड़े खाएगा।
4: यार आई थिंक ये मौसम ब्रिंग्स अबाउट लाइक अ सेंस ऑफ काम एंड पीस एंड जस्ट इट्स सो नाइस यार, यू नो यू गेट दैट वेट, मेरे को वो मिट्टी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। एंड देन स्पेशली कंसिडरिंग कि हम लोग कितनी मुंबई में कितना गर्म था इससे पहले, सो इट ब्रॉट अबाउट अ सेंस ऑफ रिलीफ। मेरे को आई जस्ट लव मॉनसून।
3: Yeah, I love, love, love monsoon. और मुंबई की बारिश तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ इतनी बारिश नहीं होती है, तो मैं तो बस पागल ही हो जाती हूँ बारिश देख के, वाह बारिश हो रही है, मेरा मूड ही अच्छा हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे समोसे पसंद है तो मैं खा लेती हूँ कभी कभी चीट करके, बस यही है यार और क्या।
4: नहीं शी इज राइट, ये इन्होंने मेंशन मुझे किया था कि आपको बैठ के कुछ नहीं करना चाहिए और दो घंटे बारिश को देखना चाहिए। She actually said that, so she does love, love, love.
3: I love बारिश। मतलब मैं बहुत वैसी हूँ कि मैं बालकनी में बैठ के दो घंटे सिर्फ बारिश देख सकती हूँ बिना कुछ किए, बिना किसी से बात किए, तो मुझे तो बहुत पसंद है बारिश।
1: बिल्कुल सही कहा, बारिश सभी को पसंद होती है, लेकिन बारिश में स्वाद का जायका अलग ही होता है और अगर उसमें गर्मा गर्म इंस्टेंट नूडल मिल जाए तो बात ही किया। ऐसे में समरागी, मान्यता और अभिमन्यु तीनों जुट गए हैं स्वादिष्ट पकवान बनाने में, वो भी सास बहू और बेटियां संग।
2: तो आज सास बहू और बेटियां की जो टीम है वो आप लोगों को मॉनसून का पूरा फायदा देने वाली है और आई थिंक इंस्टेंट नूडल्स एक चीज होती है। आई मीन पीपल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स टू मॉनसून कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, फ्राइंग आइटम्स चाय एंड एवरीथिंग, वी हैव गॉट दिस फॉर यू, तो इज दिस इन योर लिस्ट?
3: यस यस, व्हाई नॉट।
4: I will give you an in-between nod and aisa aap samajho to
3: samajh le. I mean it's fine, like I don't like it that much, but barish mein to kha sakte hain.
2: Acha chalo, kanda hai jo ki rulata hai aur tomato khatta khatta hota hai, mirchi is mirchi, to aap tino ek ek cheez utha lijiye apne apne hisab se ki kaun kya kaatega, apne kirdaar ko thoda dhyan mein rakhe.
3: Mirchi, oh my god, the kanda se
4: mirchi.
3: Oh God, तब तो मुझे यही उठाना पड़ेगा क्योंकि मैं रुलाती हूँ। बेचारी क्या ही करेगी? कुछ नहीं बचा। I don't have any option. Real life में भी वो खट्टी मीठी सी है ना, तो it's good.
2: चलिए तो शुरू कीजिए, देखते हैं कौन कितना अच्छा है अपने कुकिंग स्किल्स में और
3: मेरी हेल्प करेगी इसे। देखा? चलो बेटा आ जाओ काम पे।
4: The thing is वो सबसे best काटती है।
3: हाँ, yes.
4: Yeah, she is. Guys, आप लोगों को पता नहीं, she's told me she's fantastic. Like it's just amazing. So हम लोग है ना, we हम लोगों को पसंद है कि जब कोई इंसान किसी चीज में अच्छा होता है ना, we give yeah we appreciate it, we make, so we're gonna root for you guys. Please everyone root for.
3: ये onions, give it.
4: बढ़िया. We're all with you. Come on.
3: See देखो नए होने का क्या ऐसा फायदा उठाया जा रहा है?
4: जरा भी नहीं, we want
3: बहुत फायदा उठा रहा जा रहा है. हम आज तक को तुम्हारा skill दिखा रहे हैं.
2: जूनियर्स के साथ यहाँ पर जाती
3: होती है, बहुत जाती होती है. मैं अभी तारीफ कर रही थी ना कि सेट पे सब बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शन एक्टर्स दे आर वेरी हेल्पफुल. इवन कि हम टैलेंट दिखा रहे हैं, हम तो उसका टैलेंट दिखा रहे हैं कि एक्टिंग के अलावा भी ये कुशल गृहिणी है.
4: एब्सोल्युटली यार, अरे फुल मोटिवेटेड.
3: चलो
4: Look at this fine slice here. Look at that fine slice right now. That's an outstanding slice. We are with you.

0: घी वाले इंस्टेंट नूडल्स खिला रहे हैं. अभी तक आपने बटर वाले खाए होंगे और ऑलिव ऑयल और समथिंग, बट टुडे इट्स घी वाला.
1: घी वाला मैगी इज लाइक घी वाला
0: इंस्टेंट नूडल्स.
1: सोडियम बाइकार्बोनेट.
2: यहाँ सम्राज्ञी और मान्यता दोनों ही अपनी पाक कला दिखाने में बिजी है, तो वहाँ अभिमन्यु बन गए हैं रिपोर्टर, वो भी सास बहू और बेटिया के, और कर रहे हैं कुकिंग रिपोर्टिंग स्पेशली अपने फैंस के लिए.
1: Look at that, we've got a gorgeous stir fry happening right now. Look at that. Oh my god, the slices are excellent. Look at that. This is very interesting, guys. मेरे को बोला गया अभी फिलहाल के लिए, मैंने पूछा ये क्या चल रहा है, हम लोग उबालने के वाले इंस्टेंट नूडल्स को, तो मेरे को कहा गया है फर्स्ट वी गोना स्टर फ्राई द वेजीज, जो हमारी कलाकार शेफ जिन्होंने काटा है. Look at that slice. So everything is being stir fried right now. फिर मुझे बोला गया ये ट्विस्ट है स्टोरी में, मुझे कहा गया है इट्स गोइंग टू बी पुट टू द साइड एंड उसके बाद हम इसको इंस्टेंट नूडल्स को तोड़ेंगे, वी गोना ब्रेक द इंस्टेंट नूडल्स एंड वी गोना पुट इट इन द स्टर फ्राई. अभी तक पानी नहीं आया, उसके बाद पानी आएगा. सो अपेरेंटली क्या उससे क्या होता है, क्रिस्पी,
0: थोड़ा
1: द वेजीज क्रिस्पी रहेंगे थोड़ा, या नूडल्स की बात
0: है,
1: नूडल्स के आई डोंट माइंड ट्राइंग, अगर टेस्ट देखो सब ऑनेस्ट रिव्यू देने वाले, इधर कोई झूठ नहीं बोलने वाला, वी आर डन विद लाइफ, वी गोना टेल यू
0: खाएंगे ये तीनों
1: ही. ऑफ कोर्स तू पार्टी इधर ही खड़ा है, हम लोग के साथ खड़ा है, ये जनाब हमारे साथ खाने वाले, एंड ये शी इज नॉट गोना टू लाइ, शी इज प्रॉमिस ऑनेस्ट ट्रू, एंड ये जो कैमरा आगे पीछे करे ना, आप भी खाओ. अभी क्या डाल रहे हैं हम उसमें,
0: ये जो टमाटो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए.
1: ओके मेरा सवाल बहुत सिंपल है, बिकॉज आई वॉज सरप्राइज कि ये इस स्टाइल में बनाया जा रहा है. आपने भी पहले ऐसे बनाया कि यू डू द नॉर्मल ट्रेडिशनल, पहले पानी ये वाला ऐसे वाला. हैव आई बीन लिविंग अंडर अ रॉक, ऐसा फील. माय ब्रदर वेयर आर यू इन दुबई ब्रो, दे आर मेकिंग फन ऑफ मी, यू नीड टू कम एंड शो देम हाउ टू मेक मूवीज. यस ब्यूटीफुल यार, आई लव इट. दैट्स सो नाइस, शी गॉट अ नाइस वॉइस.
2: यहाँ इंस्टेंट नूडल्स को धीमी आंच में धीरे धीरे पकाया जा रहा है, तो वहाँ ढेर सारी बातें हो रही हैं और अभिमन्यु अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपने इस नए परिवार के साथ.
1: पहली शिफ्ट थी इन लोगों के साथ रात में, एंड आई एम नॉट अ नाइट शिफ्ट पर्सन, लाइक इट्स रियली चैलेंजिंग मेरे लिए, क्योंकि मैं कॉफी नहीं पीता हूँ, चाय नहीं पीता हूँ, तो लाइक आई हैव टू डू लाइक क्रेजी थिंग्स, आई हैव टू सिंग विच दे एक्सपीरियंस. या तो मैं गाता हूँ अपने आप को जगा के रखने के रात में. What was the song I was singing? चल ये तो बता.
0: तो मैं हम मतलब हमारी वैनिटी सेम थी, तो बड़ी वैनिटी, एक साइड ये थी एक साइड मैंने, मुझे नहीं पता था कि ठीक है, और रात के 2:30 बजे बंदा गा रहा है. Which song? But कौन सा? I remember the song. I'll tell you. I remember the song.
1: पहला था तो मैं पहली रात नहीं जज कर पाऊंगा बराबर से, बिकॉज आई एम स्लीपी, आई एम लाइक अ लिटल आउट ऑफ द जोन, एंड मैं अपने सिर्फ अपने आप को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ. देन वी शॉट एट होम, जो हम लोग का घर था, एंड देयर वाज पुनीत देयर, मैम वाज देयर, एंड शी वाज देयर, एंड आई थिंक अमित जी वाज आल्सो देयर, एंड विवा दिस अमेजिंग एक्ट्रेस वाज देयर, एंड इट फेल्ट लाइक वी बीन फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. I don't know why. I guess because their energies and like their inka ego in check hai, and you know, that's why it just felt like a very friendly group, very quick. And mere liye bhi, main jhooti bolunga aapko, mere liye bhi naya character tha wo. Abhimanyu was like my day two, day three, and I'm freaking out. So even I'm not like really comfortable, you know. But it just felt great working with them, yeah. It felt really nice. Chalo, update dekhenge.
0: Yes.
1: Yaar.
0: दिखने
1: में थोड़ा अलग लग रहा है. No, because I've never cooked my Maggie like this in my life. So I'm a little skeptical, but she's looking really confident right now. Look at those hand strokes. She's like locked in and she's going at it without left or right. So I'm pretty sure she knows what she's doing.
0: Yes. Be suffer. छोटी मैंने अपना काम कर लिया है. मैंने अपना काम कर दिया है काटने वाला.
1: Okay, starting to look good, yeah. It's starting to look good.

0: लीजिए, गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार है। और अभिमन्यु वो तो खुशबू लेकर ही बेहद खुश हो रहे हैं। अब बारी है इंस्टेंट नूडल्स को चखकर बताने की कि आखिर ये बने कैसे हैं।
1: Really nice, yaar. It looks very good. Okay, so ये थी हमारी शेफ, स्टार शेफ ये थी, एंड मैंने बहुत टाइम पास किया, मैंने बहुत टाइम पास किया। बट अभी हमारे जज आने वाले, लुक एट दिस, ये जो कैप्चर करने वाली है, ये है हमारे जज नंबर 2 एंड जज नंबर 3। ऑलराइट गाइस, लेट्स डू इट। फर्स्ट वन यू, कम ऑन।
2: रोशनी,
1: हाँ चल, रोशनी इज टेकिंग बाइट, लेट्स डू इट। ओके ओके, इधर हमारे को रिएक्शन इधर देना। आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10? 10 आउट ऑफ 10? ओके गौरव, योर टर्न ब्रदर, चलो लेट्स डू इट। जज नंबर 2 गोइंग इन, इट्स इंटेंस राइट नाउ, इट्स टेंस, वी डोंट नो इफ ही इज गोना लाइक इट और नॉट। आउट ऑफ 10?
3: 10, माय मॉम यूज्ड टू मेक लाइक मैगी लाइक दिस।
1: अच्छा,
4: एवरीवन इज ईटिंग द सेम वे।
1: हाँ, हमारे लास्ट जज जो छुपने की कोशिश करे, देख तू नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। आजा, एक बाइट ले ले, चल कम ऑन। या एंड ऑनेस्ट रहना, ये तू लुक इधर, टेन टेन नहीं,
5: ऑनेस्ट एक्चुअली
1: इट्स रियली गुड, सच बजा, सच में चल। ओके,
6: So guys, judge 1, 2 and 3 have just voted it 10 out of 10. That means this is probably duniya ki sabse behtareen Maggie right here with us. What's up?
1: Dekho, sach bolna hai.
4: Haan. Very banana.
1: Sach bolna hai.
4: Shout out to
7: him. Wow, nice man.
1: Yeah. So judges have decided this is the ye behtareen SJ ki nahi, ye pure Mumbai ki best Maggi hai. Please aaiye idhar khane ke liye. Hum log yahi karte time pass.
0: इस मानसून में सम्रागी और मान्यता की मेहनत रंग लाई और जमकर मानसून का मजा भी लिया गया। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ

0: तो एंटरटेनमेंट की चाबी लगाकर खोल रहे हैं हम आपके लिए अगला एंटरटेनमेंट का दरवाजा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग सेगमेंट। जी हां, दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग खबरें, क्योंकि जिस तरह हमारी लाइफ में होते हैं ना अलग अलग मोमेंट्स, एग्जैक्टली ऐसी ही होती है हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया। सही पहचाना आपने, रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: हड़ताल करनी है, खाना है।
2: मैंने नहीं खाना है।
3: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं लॉकअप सीजन 2 की। भाई इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री की है शिल्पा शिंदे ने, और आते ही देखिए शुरू हो गया है नया बवाल।
4: मैं खाती हूँ, तुम लोग मत खाओ, भाड़ में जाओ।
5: उनको आपके बारे में सोचना चाहिए, अगर आप उनके बारे में सोच रही है तो।
6: मेरे से शायद गलती हो गई, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे प्लीज आप निकाल दीजिए, बिकॉज मैं इस शो के लिए नहीं बना हूँ।
5: ये वो फिल्म नहीं है, आप अपना खर्चा पानी नहीं संभाल पाते तो वो हमारी गलती नहीं है। वी आर ब्लडी डिलीवरिंग एवरीथिंग दैट वी हैव प्रॉमिस्ड।
7: हेलो एवरीवन,
8: वाइल्ड कार्ड
9: इज अ डिफिकल्ट पर्सन टू टॉक टू।
10: झगड़ा शिल्पा के साथ हो सकता है।
11: तुमको सेव करना था, डोंट शाउट, मैंने पैसे बचाए।
12: व्हाट द हेल आर यू डूइंग?
13: आप बहुत ऐसे।
14: It's me. I'm not like you.
15: ठीक है मैम, तो मैं भी ऐसे नहीं हूँ।
16: Why you are shouting?
17: झुंड में खेलना है, बेशक खेलो।
3: बिग बॉस 6 के कंटेस्टेंट्स का हुआ रियूनियन, साथ साथ नजर आए अब्दू रोजेक और शिव ठाकरे।

के सास भी कभी बहू थी के पूरे हो चुके हैं 26 साल। ऐसे में हुआ इनका रियूनियन। देख लीजिए बिहाइंड द सीन की ये तस्वीरें, जहां सभी कलाकार साथ साथ नजर आ रहे हैं।

0: रवि दुबे और सरगुन मेहता लेकर आ रहे हैं स्टार प्लस पर नया शो जिसका कॉन्सेप्ट है ट्विंस का। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि इस शो में नजर आ सकती हैं रश्मि देसाई जो बनेंगी ट्विंस की माँ, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है।
1: फ्रेंड्स, लगता है ये नया फ्रेंड आगे जाके काफी महंगा पड़ने वाला है।
0: जल्द आने वाली है फिल्म तेरा यार हूँ में सामने आया है इसका ट्रेलर, आप भी डाल लीजिए इस पर एक नजर।
2: तो उसे सॉल्व करने वाला लवर ही होता है,
1: पर जो प्रॉब्लम आने ही ना देना उसे फादर कहते हैं।
3: मैं तेरे ही घर में रहता हूँ और अब तेरी बेटी से प्यार करने लगा हूँ।
4: ये क्यों भूल जाता है कि अनु तुझसे प्यार ही नहीं करती है भाई।
5: एक महीने, अगर इस एक महीने में तुझे लगे कि मैं अनु के लिए बेस्ट नहीं हूँ
3: तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा।
0: आमिर खान और गौरी शादी के बंधन में बन चुके हैं, ऐसे में देख लीजिए इनकी शादी की ये तस्वीरें। साथ ही इनको बधाइयाँ देने पहुँचे कई सारे सितारे जैसे कि इरफान पठान। मुकेश अंबानी अपने परिवार संग, और कई और सितारे जो पहुंचे आमिर और गौरी को शादी की बधाइयां देने के लिए।

सनी देओल का हो गया है ट्रांसफॉर्मेशन। देख लीजिए कैसे उन्होंने अपना वेट लॉस किया और इनका ये क्लीन शेव वाला नया लुक। तो क्या है इनके ये नए प्रोजेक्ट का लुक? माही विच मिली ओरिजिनल सहर यानी कि ऋषिता कोठारी संग, ऐसे में हुआ इनका रियूनियन।

शैलेश लोधा की बिटिया रानी जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाली है। ऐसे में शुरू हो चुकी है शादी की रस्में। देख लीजिए शादी की रस्मों के ये नज़ारे।

0: दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज ओटीटी पर रिलीज हुई थी, लेकिन दो दिन में ही वो आउट हो चुकी है। असल में फिल्म्स में काफी कंट्रोवर्सीज हैं, ऐसे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने उन्हें सजेस्ट किया था 120 कट्स जो किए नहीं गए, इसीलिए उसे ओटीटी पर से भी निकाल दिया गया है। ऐसे में दिलजीत का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
1: मूवी हटा तो नहीं, पता नहीं भाई, कोई नहीं पता, और कोई टेंशन नहीं, हटा देने कोई गल नहीं, लोगों ने कर ली डाउनलोड, कोई नहीं गल नहीं, और नहीं जाती, एक बारी चीज आ गई वो नहीं जाती होंगी। पहले दिन मेनू फिकर सी, बस हुण मेरा खत्म है फिकर भाई, मैं हुण टेंशन फ्री बैठा, जमा यहां देख के मैं आपा टेंशन फ्री होके बैठे होना, कोई टेंशन नहीं होना आपां।
0: अंशुला जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाली है, ऐसे में सामने आई है इनकी शादी की रस्मों की ये तस्वीरें।

0: सामने आया है फिल्म गॉड ऑफ डेथ का ट्रेलर, आप भी डालीजिए इस पर एक नजर।
1: मर गए या मार दिया? लोगों को लगता है कि अगर कानून उन्हें पकड़ ना पाए तो वो आजाद है, लेकिन इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, नरक से कोई नहीं बच पाता।
2: मान इस स्वर्ग नरक जो भी है ना इधर ही है, और अगर है भी तो किसने देखा है?
0: शाम हुआ एक कॉन्सर्ट जिसमें नजर आए कई सारे सितारे, जैसे कि आकृति कक्कर, कुनिका सदानंद, लकी मोरानी, शादाब फरीदी, विपुल रॉय, जसपिंदर नरूला और कई और सितारे। फिर एक बार बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं अली फैजल और ऋचा चड्ढा साथ साथ। खबरों की माने तो ये दोनों नजर आएंगे शशि वर्मा की आने वाली नई फिल्म में, जो कि दिल्ली सेट सिचुएशनल कॉमेडी पर बेस होगी। अफसाना खान पहुंच गई है महाकालेश्वर मंदिर लेने महादेव का आशीर्वाद अपने हस्बैंड संग। भाई इन्होंने मुंबई में अपना नया घर खरीदा है, ऐसे में वो भगवान जी का आशीर्वाद लेने पहुंची।

0: तो देखा आपने, आज एंटरटेनमेंट की इस चाबी से हमने खोला आपके लिए एंटरटेनमेंट का दरवाजा और करवा दिया आपको एंटरटेनमेंट की इस दुनिया का नॉन स्टॉप सफर। लेकिन क्या करें, अब तो घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपसे फिदा लेने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Right field, and it will...
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: नौसेना ने स्वदेशी P-17A क्लास के छठे स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी के क्रेस्ट का किया अनावरण। साहस, तेजी और सटीकता का है प्रतीक, 11 जुलाई को नेवी में शामिल होगा ये जहाज। रामबन में भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते खोले गए बगलिहार डैम के 3 गेट, पूरी कश्मीर घाटी में जमकर हो रही बरसात। मूसलाधार बारिश के बीच में मिशन रेस्क्यू में जुटी NDRF और SDRF की टीमें, पुणे और मुंबई से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में भी बचाई जा रही लोगों की जान। मुंबई में जबरदस्त बारिश के चलते रेल सेवा बाधित, उड़ानों पर भी पड़ रहा इसका असर। 17 फ्लाइट्स कैंसिल, 217 देरी से चल रही, लोगों से वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई। छह दिन के विदेश दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री के स्वागत में लगे पोस्टर। फरीदकोट में दस्तार प्रतियोगिता 2026 का आयोजन, 6 से 15 साल के 60 बच्चों ने लिया हिस्सा, विरासत, अनुशासन और मानव सेवा का दिया संदेश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: पवित्र अमरनाथ यात्रा का चौथा दिन बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ बालटाल बेस कैंप से चौथा जत्था रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यात्रियों की सुविधाओं का भी रखा जा रहा पूरा ख्याल। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा जारी, कई श्रद्धालु पैदल तो कई घोड़ों और पालकी पर सवार। अमरनाथ यात्रा में रविवार को 24,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 18,700 पुरुष और 5,000 महिला भक्तों ने की पूजा अर्चना। अमरनाथ यात्रा में हर दिन बढ़ती जा रही श्रद्धालुओं की संख्या, 3 दिन में 56,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का रखा जा रहा पूरा ख्याल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चंदनवाड़ी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने रविवार को किया था पहलगाम का दौरा। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप हॉस्पिटल में परखी थी तैयारियां। 57 दिनों तक चलेगी दिव्य अमरनाथ की यात्रा। जम्मू बेस कैंप से हर दिन रवाना होता है तीर्थ यात्रियों का यह जत्था। अमरनाथ यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात, जम्मू से श्रीनगर के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू हुई। अमरनाथ यात्रियों को आधार, केवाईसी और मौके पर ही पंजीकरण की भी सुविधा मिलेगी। रेलवे बोर्ड से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक रहेगी सीधी निगरानी। 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक्ट ईस्ट नीति महासागर विजन को देंगे मजबूती। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में करेंगे प्रवास, भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम। इंडोनेशिया में भारतीय व्यंजनों की तेजी से बढ़ती जा रही लोकप्रियता, भारतीय चाट और जलेबी की बढ़ रही मांग। जकार्ता के लोग भारतीय मसालों की खुशबू और स्वाद की जमकर तारीफ कर रहे, खासकर भारतीय मिठाइयों और स्ट्रीट फूड को पसंद किया जा रहा। भारतीय 200 सहकर्मियों से यहां के लोगों को मिल रही भारतीय खाने की जानकारी, कई रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी भारतीय खानों को शामिल किया गया। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में मूसलाधार बारिश के बीच में दिखा रोमांचक नजारा, हाईवे पर चहलकदमी करते दिखा शेरों का परिवार। शेरों के परिवार को देखकर सभी ने दूरी पर ही रोक दी गाड़ियां, लोगों ने घटना को कैमरा में कैद किया। जूनागढ़ के भवनाथ में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सेमिनार में वन्यजीव विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। इस सेमिनार में शेरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अभयारण्य क्षेत्र को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा, सरकार से की वन भूमि बढ़ाने की मांग। राजौरी में बीआरओ की टीम ने किला धरहल इलाके में पहला पक्का स्टील पुल बनाकर किया तैयार। 60 मीटर लंबे इस पुल से सेना के साथ स्थानीय लोगों की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। पाली जिले के बारसा गांव में पशु प्रेम का दिखा अनोखा नजारा, बछड़े की पूरी भव्यता के साथ की गई शादी। बछड़ा बछड़े की शादी में महिलाओं ने गाए मंगल गीत, लोगों ने उत्सव को लेकर जमकर डांस किया। पाली में अनोखे विवाह के दौरान कन्यादान में मिले हजारों रुपए रकम को गौशाला के लिए दान किया गया। पशुपालन को बढ़ावा देने और डेयरी उद्योग से लोगों को जोड़ने के लिए किया गया शादी का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनकर निपटारे के आदेश दिए। श्रीनगर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे विदेशी पर्यटक डल झील की खूबसूरती का मजा ले रहे। अरुणाचल प्रदेश में अपातानी समुदाय ने मनाया 4 दिवसीय द्री महोत्सव, अच्छी फसल और बारिश की कामना की। द्री महोत्सव में पारंपरिक नृत्य कर रही तमाम महिलाएं, कार्यक्रम में मेधावी छात्रों ने हिस्सा लिया। टूथ आर्चर गोविंद माली के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, पाली में आयोजित प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। एक हाथों एक पैर से दिव्यांग गोविंद दांतों से खींचते हैं धनुष की डोरी, कई प्रतियोगिताओं में जीत चुके हैं पुरस्कार। तिरुमाला में दिखा भक्ति की अनोखी शक्ति का रंग, 116 साल की नवनी थम्मा ने खुद चलकर किए भगवान के दर्शन। बुजुर्ग नवनी थम्मा ने तिरुमाला की लगभग 3,550 सीढ़ियां चढ़ी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुजफ्फरपुर में संवर रही अपन पाठशाला की कक्षाएं, मिथिला पेंटिंग को दिया जा रहा बढ़ावा। अपन पाठशाला की कक्षा में बनाए जाने वाले पेंटिंग को बेचकर छात्राएं निकाल रही खर्चा, 28 बच्चे नियमित शिक्षा के साथ सीख रहे मिथिला पेंटिंग। कोटा के आर्यन सिंह ने बनाया स्मार्ट इमोशन पॉट, अब डिजिटल स्क्रीन पर एनिमेटेड एक्सप्रेशन पता चल सकेगा पौधे का मूड। देश की पहली पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ 17 जुलाई को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। फिलहाल जींद और सोनीपत के बीच में चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। आज मुख्यमंत्री सैनी जींद में समारोह को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लेंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में होंगे 10 कोच, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी रफ्तार। गुजरात में पहले शहरी केबल स्टेट फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है। अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति। बिहार के नालंदा में शांतमणि पेपर मिल के विस्तार परियोजना का शुभारंभ हुआ। उत्पादन क्षमता में होगी बढ़ोतरी। मैदानों के साथ पहाड़ी इलाकों में बारिश का दौर जारी। उत्तराखंड के 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की भी आशंका। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। बागेश्वर जिले में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राहत बचाव दल की टीमें मौजूद। बागेश्वर जिले के सभी स्कूलों आंगनबाड़ी केंद्रों को किया गया बंद। मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू किश्तवाड़ हाईवे पर रोकी गई आवाजाही। राहत बचाव के काम में जुटा प्रशासन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश के साथ फसलों की बुआई का काम शुरू। हल लेकर खेतों में जुटे किसान। खंडाला एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड हुआ। सड़क पर दिखा झरने का नजारा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने किया विकराल रूप धारण। जलमग्न हुई भगवान शिव की विशाल मूर्ति। अमरेली जिले में भारी बारिश के बाद स्टेट हाईवे पानी के बहाव से टूटा। पूरा स्टेट हाईवे रोड दो हिस्सों में बटा। पुणे के चाकण इलाके में भारी बारिश से हाईवे पर लगा लंबा जाम। एक इमारत में करीब 70 से 80 लोग फंस गए। पुणे में भारी बारिश से इंद्रायणी नदी उफान पर। आलंदी को जोड़ने वाला पुल भी पानी में डूबा। इंद्रायणी नदी में पुल पर ओवरफ्लो होने के चलते यातायात प्रभावित हुआ। कई इलाकों से कटा संपर्क। कुल्लू में भारी बारिश के बाद सैंज के पागल नाले में फ्लैश फ्लड आया। सड़क पर आया भारी मलबा और पत्थर। कुल्लू में लारजी सैंज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हुआ था। 14 पंचायतों का संपर्क कट गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोरदार बारिश से बढ़ा चिनाब नदी का जलस्तर। बगलिहार बांध के खोले गए 3 गेट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश से गर्मी से राहत मिल रही है। बारिश का आज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। अगले 2 दिन में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पंजाब और हरियाणा में अगले 3 दिन में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी। ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर आज मुंबई में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी। झारखंड छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। ओडिशा के तटों पर मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में
गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज, सिर्फ नुस्खों से करें।

0: नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: नौसेना ने स्वदेशी P-17 ए क्लास के 6th स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी के क्रेस्ट का किया अनावरण, साहस तेजी और सटीकता का है प्रतीक, 11 जुलाई को नेवी में होगा शामिल। रामबन में भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते खोले गए बगलेहार डैम के 3 गेट, पूरी कश्मीर घाटी में जमकर हो रही बारिश। मूसलाधार बारिश के बीच में मिशन रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें, पुणे और मुंबई से लेकर उत्तराखंड हिमाचल और कश्मीर में भी बचाई जा रही लोगों की जान।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
10: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए हम अपने इस खास शो में रोजाना कुछ न कुछ रोचक और कल्याणकारी बातें आपको बताते हैं जिनका होता है आपसे सीधा संबंध, और इसी कड़ी में आज हम आपको सदियों से चली आ रही परंपराओं के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आपको परंपराओं के धार्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व भी बताएंगे। देखिए माना जाता है कि भारत में सदियों से चली आ रही इन परंपराओं में मानव का कल्याण छिपा हुआ है, तो चलिए जानते हैं इन मान्यताओं को जो सनातन धर्म का आधार है।

0: भारत जिसके कण कण में आस्था का प्रवाह है, जहाँ प्रकृति के साथ ही जीव जंतु भी पूजनीय है, जहाँ नदियाँ, पहाड़, वन और कंकर कंकर में शंकर का वास माना जाता है। भारत में तरह तरह के रीति रिवाज और परंपराएं हैं। ये परंपराएं सदियों पुरानी हैं और आस्था से जुड़ी हैं, जिनका न सिर्फ धार्मिक महत्व है बल्कि इन मान्यताओं में विज्ञान भी समाहित है। जानकार बताते हैं कि अगर आप इन परंपराओं का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ऋषि मुनियों और पूर्वजों ने गहन अध्ययन और प्रामाणिकता के आधार पर ही इन रिवाजों को अपने जीवन शैली में स्थान दिया था, जो अनादिकाल से हमारी सनातनी परंपरा का वाहक बन गई हैं और हमारी मान्यताओं में अंदर तक रच बस गई हैं। जानकार बताते हैं कि ये परंपराएं ईश्वर के प्रति आस्था तो बढ़ाती ही हैं, बहुत सी बीमारियों और समस्याओं से भी बचाती हैं। इसे वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसी ही परंपराओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं व्रत या उपवास की, जो हिंदू धर्म की आत्मा है।
1: व्रत हम अपने कर्म, अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए लेते हैं। हम जब भगवान की प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं या हम कोई कार्य संकल्प पूर्वक करते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, उसको ही हम व्रत कहते हैं।
0: हिंदू धर्म में व्रत रखने का बहुत महत्व है। लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। लोग सप्ताह में एक दिन या खास मौकों पर अपने इष्ट के लिए व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार व्रत रखने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, कष्टों और परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।
1: सामान्यतः हम लोग मानते हैं कि व्रत का अर्थ है भोजन का त्याग करना, लेकिन भोजन का ही नहीं, जब हम व्रत लेते हैं या उपवास करते हैं तो भोजन के साथ साथ मानसिक कुंठाओं का भी त्याग करते हैं, तो शरीर की नाड़ियां स्वयं से सिद्ध होने लगती है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि जो व्यक्ति 24 से 48 घंटे तक मात्र जल आदि या सात्विक भोजन पे रहे तो उसके शरीर के अंदर की अशुद्धियां अपने आप समाप्त होकर, और जब वो समाप्त हो जाती है तो ऐसा कहते हैं जैसे खाओ वैसा अन्न वैसा हो जाए मन, उसी प्रकार से उसके मानसिक स्थितियों में भी सुधार आने लगता है।
0: सप्ताह में एक दिन व्रत रखना वैज्ञानिक दृष्टि से भी फायदेमंद है। आयुर्वेद के अनुसार व्रत रखने से पाचन क्रिया को आराम मिलता है, जिससे पाचन तंत्र ठीक रहता है, शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर और सेहत ठीक रहता है। भारतीय परंपरा में पैर छूना या चरण स्पर्श सबसे खास परंपराओं में शुमार है, तो आइए इस परंपरा के बारे में भी जान लेते हैं।
1: हमारे ये माना जाता है कि जब हम किसी व्यक्ति के चरण छूते हैं तो हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो इसी प्रकार से गुरु और पिता के चरण हमेशा ऐसे दाएं हाथ से बाएं और बाएं हाथ से दाएं पांव को छू के अंगूठों के माध्यम से आशीर्वाद लेते हैं और उनके मुख से निकला हुआ वचन हमें तुरंत प्राप्त होता है।
0: बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनका आदर करने के लिए उनके पैर छूते हैं। पैर छूना या चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कारों का एक हिस्सा है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। यही संस्कार बच्चों को भी सिखाए जाते हैं ताकि वे भी अपने बड़ों का आदर करें और सम्मान करें। पैर छूने से बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से भगवान भी प्रसन्न होते हैं।
1: चरण छूने में दो प्रकार से विधि बताई गई है। चरण छूने के लिए या तो उकड़ू बैठकर हम उनके चरणों में दोनों हाथ रख के उस पर सिर रखते हैं, या बिल्कुल साष्टांग जमीन पर धारण करके और फिर उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। साष्टांग करने वाला व्यक्ति तुरंत ऊर्जा को ग्रहण करता है और साथ में उस व्यक्ति के शरीर के होने वाले विकार तुरंत समाप्त होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति करते हैं तो शरीर के अंदर जो जितने भी वायु तत्व हैं जो अशुद्ध हो जाते हैं वो तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। कई महिलाओं को जो होने वाली परेशानियां हैं और पुरुषों को उनको उदर रोग हैं उसमें तुरंत से पहले उनका समाप्त हो जाते हैं।
0: इंसान के शरीर में मस्तिष्क से लेकर पैरों तक लगातार ऊर्जा का संचार होता है, जिसे कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं। जब हम किसी के पैर छूते हैं तब उस व्यक्ति के पैरों से होती हुई ऊर्जा हमारे शरीर में और हमारे हाथों से होते हुए उसके शरीर में पहुंचती है। जब वो व्यक्ति आशीर्वाद देते समय हमारे सिर पर हाथ रखता है तब वो ऊर्जा दोबारा उसके हाथों से होती हुई हमारे शरीर में आती है। इस तरह पैर छूने से हमें दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा मिलती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इससे मन को शांति मिलती है। सनातन संस्कृति में तिलक को माथे की शोभा माना जाता है। कहते हैं कि तिलक लगाने से हमारे मस्तक के बीचों बीच आज्ञा चक्र नियंत्रित होता है। माथे पर तिलक या चंदन लगाना भारतीय संस्कृति की अहम परंपरा है और ये रीति सदियों से चली आ रही है। हम इसके बारे में आगे आपको बताएंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: हमें बचपन से ही सदाचार और संस्कार का पाठ पढ़ाया जाता है। इनसे ना सिर्फ हमारी आस्था जुड़ी हुई है बल्कि इनके अंदर मानव के मूल्य समाहित हैं, जैसे हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करना, तिलक लगाना या फिर सूर्यदेव को अर्घ देना। इन सभी परंपराओं की एक वजह है। देखिए, आस्था से जुड़ी ये परंपराएं हमें ईश्वर के नजदीक ले जाती हैं और इनका वैज्ञानिक महत्व भी है। तो आइए इन परंपराओं के बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं।

0: भारत वो देश है जहां आस्था और धर्म की पावन गंगा बहती है। यहां की परंपराएं सदियों पुरानी हैं और लोगों को आकर्षित भी करती हैं। सनातनी परंपरा में ऐसे न जाने कितने अटूट बंधन हैं जो हमारी मान्यताओं में रचे बसे हैं, और ये सारी परंपराएं हमारे धर्म के साथ ही विशुद्ध विज्ञान के साथ जुड़ी हैं। हमारी खास पेशकश में आज हम आपको सनातनी परंपराओं से ही रूबरू करवा रहे हैं और उनसे जुड़े लाभ आपको बता रहे हैं। जैसे कलावा बांधना, जनेऊ धारण करना, कर्ण छेदन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान लगाना, योगाभ्यास करना, कई ऐसे कार्य हमारे संस्कार ही तो हैं। इसी तरह सनातनी परंपरा का हिस्सा है हाथ जोड़कर नमस्ते करना और दंडवत प्रणाम करना। इस परंपरा के पीछे भी वजह है, तो आइए जानते हैं हाथ जोड़कर नमस्ते करने का महत्व। किसी से मिलते समय या अभिवादन करते समय हाथ जोड़कर नमस्ते किया जाता है। पूजा पाठ के समय हाथ जोड़े जाते हैं। दरअसल हाथ जोड़ना सम्मान का प्रतीक है।
1: हमारे हथेली हमारे जो है रिसेप्टर्स कहे जाते हैं, मतलब हमारी ऊर्जा के कक्ष हैं। जब हम विनम्रता पूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़ के किसी को प्रणाम करते हैं तो हाथ जोड़ने के साथ साथ हम मस्तक भी रखते हैं, और हमारे मस्तक के हमारी जो प्रथम उंगलियां हैं उनका मस्तक का हमारा जो ऊर्जा क्षेत्र है दोनों भावों के बीच का वो स्पर्श आता है। ऐसा करने वाले की तुरंत ही ऊर्जा सुरक्षित हो जाती है, उसको देवताओं का और उन पुण्य आत्माओं का लाभ और पुण्य तुरंत प्राप्त होने लगता है। आशीर्वाद में ही इतनी शक्ति है कि किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है।
0: हाथ जोड़ने पर हाथ की सभी उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे उन पर दबाव पड़ता है। ये दबाव एक्यूप्रेशर का काम करता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुसार इसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। इसका असर आँख, कान और दिमाग पर पड़ता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति हमें लंबे समय तक याद रहता है। इसी तरह भारत की परंपराओं का एक हिस्सा है तिलक लगाने का। लोग अक्सर अपने और दूसरों के माथे पर तिलक लगाते हैं, तो आखिर क्या है तिलक का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, चलिए जानते हैं।
1: तिलक के विषय में स्पष्ट कहा गया है, चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो व्यक्ति तिलक लगाता है सबसे पहले तो उसके पुण्य उदय हो जाते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी प्रकार की आपदा आने वाले व्यक्ति के ऊपर आपदा नहीं आती जिसके मस्तक पर चंदन स्थापित होता है, साथ में उस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी सदैव स्थापित रहती है।
0: धार्मिक अवसरों, शादी विवाह, त्योहार या पूजा पाठ के समय तिलक लगाते हैं। चंदन, कुमकुम या सिंदूर से माथे पर तिलक लगाया जाता है। माथे पर तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना गया है।
1: ऐसा माना जाता है कि हमारे चक्रों में हमारे जो बिल्कुल दोनों भावों के बीच में जो स्थान होता है ये आज्ञा चक्र है। ऐसा व्यक्ति का जिसको यहाँ तिलक लगा हो या चंदन लगा हो वो हमारी नाड़ियों को शांत करता है। हमारे शरीर के अंदर जाने वाली जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो यहीं से एकदम आज्ञा लेते हैं, तो व्यक्ति के चंदन अथवा तिलक लगाते ही सार व्यक्ति के मन में शांति होने लगती है, और जिस व्यक्ति के आज्ञा चक्र शांत हो जाए उस व्यक्ति के मन में हमेशा पुण्य विचार आते हैं, नकारात्मकता समाप्त होने लगती है।
0: मानव शरीर में दोनों आंखों के बीच में एक चक्र होता है, इसी चक्र पर तिलक लगाया जाता है। इस चक्र पर एक नस होती है जिससे पूरे चेहरे पर रक्त का संचार होता है। जब माथे पर तिलक लगाया जाता है तो उस चक्र पर उंगली या अंगूठे से दबाव बनता है जिससे वो नस ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इससे पूरे चेहरे की मांसपेशियां बेहतर तरीके से रक्त संचार करती हैं। इससे ऊर्जा का संचार होता है और एकाग्रता बढ़ती है, साथ ही चेहरे पर रौनक आती है। चलिए अब आपको सूर्य की साधना से जुड़ी महिमा बताते हैं। भारत में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सूर्य उपासना की परंपरा है। माना जाता है कि यह न सिर्फ हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य से भी संबंधित है।
1: ऐसा माना जाता है कि सूर्य से पड़ने वाली किरणों में से कुछ किरणें ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए विशेष हानिकारक होती हैं। तो जब हम अपने सिर से ऊपर तांबे के पात्र आदि पीतल के चांदी के जैसे पात्रों से या मिट्टी के पात्रों से जब हम जल अपने सिर से ऊपर उठाकर सूर्य को देते हैं तो सूर्य की जल के बीच में से आने वाली सूर्य की रश्मियां जल के बीच में से आने वाली सूर्य की रश्मियां हमारे साक्षात शरीर पे पड़ती हैं, वो हानिकारक रेज को रोकती है और साक्षात बाकी ऊर्जाओं का हमारे शरीर की जितनी अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं उन सबको तुरंत से पहले सुधारती है और सुरक्षित करती है।
0: सूर्य को जल चढ़ाना भी भारतीय परंपरा का ही हिस्सा है, इसके धार्मिक और वैज्ञानिक वजह भी है, साथ ही सूर्य की कृपा पाने के लिए ये एक अचूक उपाय भी है। तो चलिए अब इस परंपरा को भी जान लेते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा बहुत पुराने समय से है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, मनुष्य पर सूर्य का प्रकोप नहीं होता, उसके राशि दोष खत्म हो जाते हैं।
1: धार्मिक महत्व ये कहता है क्योंकि सूर्य को जो जल ना दिया जाए तो सूर्य की क्षमता समाप्त होने लगती है, एक अंधकार स्वरूप रहने वाले राक्षस सूर्य को ग्रहण करने लगते हैं। जब हम जल देते हैं तो सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है और सूर्य की ऊर्जा से हमें लाभ होता है।
0: सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें ज्यादा तेज नहीं होती, जो शरीर के लिए एक औषधि का काम करती है। उगते सूर्य को जल चढ़ाते वक्त जल की धार में सूर्य दिखाई देता है, सूर्य की किरणें जल में से छनकर आंखों और शरीर पर पड़ती हैं, जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है। इससे पीलिया, क्षय रोग और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। सूर्य के किरणों से विटामिन डी भी प्राप्त होता है। सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलती है। हर परंपरा का अपना महत्व है और इनके लाभ भी हैं। धार्मिक नजरिए से जहां परंपराएं आस्था को मजबूती देती हैं, वहीं वैज्ञानिक नजरिए से भी इनका लाभ है। कुछ और परंपराओं के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: तो आज हम आपको परंपराओं का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व बता रहे हैं। देखिए, तुलसी के पौधे की पूजा करना भी हमारे देश की परंपरा का ही अहम हिस्सा है, लेकिन इस परंपरा का भी धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। आइए आपको बताते हैं कि तुलसी पूजा के क्या लाभ और महत्व हैं।

0: भारत में जहाँ बरगद, पीपल और आंवले के वृक्ष को पूजा जाता है, उसके परिक्रमा की जाती है। माना जाता है कि इससे हमारी आयु में वृद्धि होती है। प्रकृति की उपासना को समर्पित हरियाली तीज और पट सावित्री का व्रत किया जाता है। भारत परंपराओं का अद्भुत देश है। यहाँ हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। नित्य संध्या को उसका पूजन किया जाता है। संध्या बाती की जाती है। भारत में तुलसी पूजन का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। तो आखिर तुलसी के पौधे का पूजन क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। आज भी ज्यादातर घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तुलसी पूजन से देवता प्रसन्न होते हैं। तुलसी को देवी की उपाधि दी गई है।
1: इसके अंदर ये माना जाता है कि पीपल के अतिरिक्त सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला इंडोर प्लांट तुलसी ही है। इसीलिए जिस व्यक्ति के घर का हमारा जो सबसे ज्यादा वायु तत्व आने वाला है, अर्थात पूर्व और उत्तर के कोने में इसको रखना चाहिए, ताकि वहां से आने वाली ऊर्जा हवा इसके माध्यम से होती हुई ऑक्सीजन लेवल को हमारे घर में फैलाती रहे और व्यक्ति के घर के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे।
0: तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर का वातावरण शुद्ध होता है। तुलसी मच्छरों और कीटाणुओं को दूर भगाता है, जिससे वायु शुद्ध होती है। इसके अलावा तुलसी में रोग प्रतिरोधी गुण होते हैं। इसकी पत्तियां खाने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। परंपराएं चाहे कोई भी हो, उनका प्रतिफल हमेशा मानव कल्याण करने वाला होता है। आस्था और मान्यताओं को समर्पित ये भूमि महान है। देश में ऐसी कई परंपराएं हैं जिनकी वजह से हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आप इन परंपराओं को हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखिए, जिससे न सिर्फ आपका कल्याण होगा बल्कि ये आने वाली पीढ़ी को भी भारत की संस्कृति का बोध करवाएंगी, जिसके लिए ये महान देश जाना जाता है।
2: तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: देखिए, शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता, ये सपनों, यादों और बेशुमार भावनाओं का सबसे खूबसूरत उत्सव होता है। हर दुल्हन का सपना होता है कि अपने सबसे खास दिन पर वो सबसे खूबसूरत दिखे और सहज भी महसूस करे। तो आज की दुल्हन ऐसा परिधान चुन रही है जिसमें शान भी हो, सुकून भी हो, परंपरा और मॉडर्न स्टाइल की झलक भी दिखे। और यही नहीं, एक नई सोच भारतीय ब्राइडल फैशन को नई पहचान दे रही है। भारी भरकम परिधान की जगह अब फोकस ऐसे डिजाइनर लिबास पर होता है जो शादी के हर फंक्शन में अलग स्टाइल दे और शादी के बाद भी वार्डरोब का हिस्सा बना रहे।
5: शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो गया है एक बड़ा सवाल, 2026 वेडिंग ट्रेंड्स में एग्जैक्टली क्या है? हैवी लहंगास या एफर्टलेस ग्लैम, ट्रेडिशनल रेड्स या कुछ नए कलर्स? देखिए, 2026 का ब्राइडल फैशन पुरानी परंपराओं के साथ एक मॉडर्न ट्विस्ट चाहता है। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि इस सीजन में एग्जैक्टली क्या ट्रेंडिंग है।

0: भारतीय शादियां बदल रही हैं और उनके साथ बदल रहा है ब्राइडल फैशन भी। कभी जहां कढ़ाई वाला भारी लहंगा दुल्हन की पहचान माना जाता था, वहीं आज की ब्राइड हल्के, खूबसूरत और आसानी से पहने जा सकने वाले आउटफिट्स को प्राथमिकता दे रही हैं। आज ब्राइडल कॉट्योर सिर्फ शादी के लिए तक सीमित नहीं रह गया है। अब दुल्हनें ऐसे कपड़ों में निवेश कर रही हैं जिन्हें वे शादी के बाद भी खास मौकों पर पहन सके। फैशन अब सिर्फ एक दिन की बात नहीं बल्कि लंबे समय तक साथ निभाने वाला स्टाइल बन चुका है। भारी भरकम लहंगे जो शादी के बाद हमेशा के लिए अलमारी में टंग जाते थे, अब धीरे धीरे बीती बात बन रहे हैं। उनकी जगह ले रहे हैं ऐसे डिजाइनर परिधान जो फैशन के साथ उपयोगिता को भी उतनी ही अहमियत देते हैं।
1: एक टाइम था जब ब्राइड्स बंदी होती थी, उनका सिर्फ ये था कि सेरेमनीज करें, वापस जाएं, सेरेमनी आफ्टर सेरेमनी। बट नाउ द ब्राइड्स दे वांट टू एंजॉय देयर ओन वेडिंग। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डे उनके लिए भी। ये नहीं कि पूरी दुनिया सारे जो आए हैं गेस्ट वो मजा कर रहे हैं और वो थक हार के सोने जा रही है। वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। एंड नॉट टुडे, इट इज बीन इन अ लास्ट वन डेकेड इट हैज चेंज्ड कम्प्लीटली। आज की ब्राइड ना बड़ी कॉन्फिडेंट है एंड शी लव्स हर सेल्फ। शी वॉन्ट्स टू लुक प्रिटी, शी वॉन्ट्स टू लुक ग्लैमरस। वो खुश होना चाहती है, मजे करना चाहती है। सो हेंस दे ऑलवेज कम टू मी एंड से वी डोंट वॉन्ट टू वेयर हील्स। क्या हम इनको कंफर्टेबल शूज के साथ पहन सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, व्हाई कैन यू नॉट वेयर समथिंग लाइक दिस एंड हैव अ ग्रेट टाइम।
0: आज ब्राइडल के लिए ऐसे लिबास तैयार किए जाते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ पहनने में भी आसान हो और कई मौकों पर दोबारा भी पहने जा सके। दिल्ली का फैशन लेबल नॉट सो सीरियस इसी सोच को अपने डिजाइन्स में उतारता है।
1: फ्रेंड ने मुझे एनकरेज किया था टू कॉल इट नॉट सो सीरियस क्योंकि दे सेड ई आई एम वेरी नॉट सो सीरियस व्हेन आई एम हैविंग फन और मौज मस्ती जो भी, बट आई एम वेरी वेरी सीरियस व्हेन इट कम्स टू माय वर्क। इसीलिए ये नॉट सो सीरियस नाम आ गया।
2: वैसे नॉट सो सीरियस से मुझे ये भी रियलाइज हो रहा है कि वेडिंग इतना सीरियस बिजनेस है कि वेडिंग के टाइम पे, वेडिंग की शॉपिंग करते हुए आप इतना हर चीज, इतना प्रेशर होता है, यू टेक एवरीथिंग सो सीरियसली। मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये जो मैंने स्टनिंग आउटफिट पहना है ये इतना लाइट वेट है, इट इज सो अमेजिंग, ये एग्जैक्टली है क्या पल्लवी?
1: सो दिस गाउन, सी आज की ब्राइड what they want to do, they want to have fun, they want to be comfortable. Destination weddings hoti hai, they don't like to be tied down. Freedom chahiye aaj ki bride ko. So whatever you see not so serious mein, chahe wo lehenga ho, chahe evening gown ho, chahe short dresses ho, you will find them bahut halka in weight but they give a very heavy glamorous look. So this is also not so serious ki USP. Lightweight, comfortable, jo ki you know makes you feel happy is the concept that we go by. So yes,
2: par yahi baat hai kyunki ye fabric itna light hai viewers, main aapko batana chahti hu, mujhe itna comfortable feel ho raha hai. Feathers hum dekh sakte hain, feathers seems to be coming back. Pallavi, aap feathers hamesha se karte aayi hai, maine aapke bahut collection dekhe hain.
0: यहाँ मॉडर्न फैमिलिटी को भारतीय शिल्प कौशल के साथ जोड़ा जाता है। सॉफ्ट पेस्टल कलर्स, महीन हैंड एम्ब्रॉयडरी और बेहद हल्के परिधान, यही इसकी खास पहचान है। लेकिन इन खूबसूरत डिजाइन्स के पीछे सिर्फ फैशन नहीं, महीनों की मेहनत भी छिपी होती है। हर धागा, हर टाका, हर मोटिव कारीगरों की बेमिसाल कला का परिणाम होता है। एक परिधान तैयार होने में हजारों टांके लगते हैं, कई हफ्तों की बारीक कढ़ाई होती है, तब जाकर तैयार होता है ऐसा लिबास जो पहनने वाले की खूबसूरती के साथ भारतीय हस्तकला की विरासत भी बयां करता है।
2: ये स्टनिंग कलेक्शन को देख सकती हूँ। अगर आप आज की मॉडर्न ब्राइड, जो 2026 की मॉडर्न ब्राइड है, जिसे ये हैवी लहंगाज नहीं पहनने हैं, हमें कंफर्टेबल रहना है, हम हमेशा हमारी शादी अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। आपके इस वेडिंग सीजन के क्या स्पेशल पिक्स होंगे?
1: सो नॉट सो सीरियस में आफ्टर पार्टी ड्रेसेस आपको लेना ही चाहिए, आपकी वेडिंग कंप्लीट नहीं हो सकती हमारे आफ्टर पार्टी आउटफिट के बगैर। एंड इफ़ यू सी, जब आप देखोगे हमारे लहंगेज भी इस तरीके से बनाए हुए कि आपका एक टाइम यूज़ नहीं होगा, आप उन लहंगों को बाद में भी टोन डाउन करके पहन सकते हो। सो आज की ब्राइड ये नहीं चाहती कि हम ऐसी चीज़ लें जो कि एक ही बार पहने, वी वॉन्ट टू वेयर इट अगेन एंड अगेन। जो गाउन आपने पहना है इसके ऊपर अगर आपने अगर वाइट शर्ट, नॉटेड वाइट शर्ट डाल लिया होता और कैच पहन लिया होता, तो ये आपका एक सेमी कैजुअल फॉर्मल लुक भी बन सकता है। सो इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ स्कर्ट, ऊपर नॉटेड शर्ट। सो यू कैन एक्चुअली स्टाइल एवरीथिंग सो एफर्टलेसली विद NSS। इफ यू कम हियर वी विल टेल यू हाउ टू डू दैट। जैसे कि मैंने शर्ट पहना है, आई एम वेयरिंग वन ऑफ माई केप्स, ये केप मैं साड़ी के साथ भी पहन सकती हूँ, आई कैन वेयर इट ओवर माई लहंगा, आई कैन वेयर इट ओवर माई सलवार सूट, आई कैन वेयर इट विद फॉर्मल पैंट। सो हर चीज आप रीयूज कर सकते हो, रीस्टाइल कर सकते हो।
0: रंगों की पसंद ही अब बदल रही है। चटक लाल और गहरे रंगों के साथ साथ आज की दुल्हन आइवरी, शैम्पेन गोल्ड, म्यूटेड ब्लश, पाउडर ब्लू और सॉफ्ट शिमर जैसे शेड्स को खूब पसंद कर रही है। इन रंगों में सादगी भी है, शालीनता भी, और एक ऐसी एलिगेंस जो बिना ज्यादा चमक दमक के अपनी अलग पहचान बना लेती है।
2: आपका 2026 ब्राइड के लिए क्या कलर पैलेट होगा?
1: पेस्टल्स रियली ट्रेंड में है, वाइट्स, ब्लश कलर्स बहुत पसंद कर रहे हैं, शिमर बहुत पसंद कर रहे हैं, गोल्ड बहुत पसंद कर रहे हैं, तो ये कलर्स आई थिंक आप 2026 में काफ़ी देखोगे। और इवनिंग फंक्शंस के लिए नेवी ब्लूज, बर्गंडी, जैसे कि ये देखिए आप।
2: वाओ,
1: सो यस, इसमें भी सारा हाथ का क्या हुआ है, दे कैच लाइट रियली वेल, आपकी फोटोग्राफ्स अच्छी आती है। 2026 की ब्राइड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी शूट्स, उनके फोटोज अच्छे आए,
2: फोटोज अच्छे आने चाहिए, दैट्स ट्रू।
1: दीज आर द काइंड ऑफ कलर्स जिससे फोटोग्राफ भी अच्छी आती है आपकी।
0: भारतीय शादी सिर्फ एक दिन का समारोह नहीं होती, सगाई, मेहंदी, संगीत, हल्दी, कॉकटेल, शादी और रिसेप्शन, हर फंक्शन का अपना अलग रंग और अपना अलग मूड होता है। इसीलिए अब हर अवसर के लिए अलग स्टाइल तैयार किए जा रहे हैं। सगाई के लिए एलिगेंट गाउन, कॉकटेल के लिए स्टेटमेंट ड्रेप्स, संगीत के लिए डांस एंड फ्रेंडली लहंगे और रिसेप्शन के लिए रिफाइंड ग्लैमरस लुक।
2: क्या है ये?
1: They're very comfortable, like you said, lightweight cocktail outfits hai, very easy to wear. And they are, so for example, ये वाला outfit आपकी जो है,
2: wow.
1: Now, इसमें ये trail है, तो brides like की उनकी entry grand हो, so ये उसके लिए है, और ये फिर आप detach कर सकते हो,
2: wow.
1: तो ये फिर आप डांस करो, पार्टी करो, इसके साथ हम ग्लव्स भी देते हैं, वी गिव यू हेड गेयर्स, वी ऑल्सो हेल्प यू एक्सेसराइज, सो जितना आपको ग्लैमरस इसको बनाना चाहे आप, वो बन सकता है।
0: आज की दुल्हन सिर्फ तस्वीरों में खूबसूरत दिखना नहीं चाहती, बल्कि वो पूरी शादी को खुलकर जीना चाहती है। आज की दुल्हनें डांस भी करना चाहती हैं, यात्रा भी, और पूरी शादी आराम से एंजॉय भी करना चाहती हैं। मेहमानों से मिलना, लंबी रस्में निभाना और अपनी हर मुस्कान को सहज बनाए रखना चाहती हैं। यही वजह है
3: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: At Byers Volkswagen, we've been family owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at columbusvw.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
5: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
6: Swing and a foul out of play off to the left.
5: Big 12 Radio.
7: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
5: Talk Sport.
8: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
5: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
11: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
12: अविश्वास में विश्वास बसता है.
9: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. TIT भोपाल जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स. सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन.
9: भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत. 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी. अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस. देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा. बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए. खराब मौसम पर भी भारी दिखी आस्था. रामबन में भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते खोले गए बगलिहार डैम के 3 गेट. पूरी कश्मीर घाटी में जमकर हो रही है बारिश. मूसलाधार बारिश के बीच मिशन रेस्क्यू में जुटी NDRF और SDRF की टीमें. पुणे और मुंबई से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में भी बचाई जा रही है लोगों की जान. फरीदकोट में दस्तार प्रतियोगिता 2026 का आयोजन. 6 से 15 साल के 60 बच्चों ने हिस्सा लिया. विरासत, अनुशासन और मानव सेवा का संदेश दिया.

0: सुपर इफेक्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चर्चा इसी को लेकर करनी और समझेंगे अपने खास मेहमानों से कि उपाय क्या किए जा सकते हैं। पूरे देश में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस साल मॉनसून कमजोर रहेगा और ये अल नीनो की वजह से होगा। और इसी अल नीनो को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट भी सामने आई है। तो क्या अल नीनो के चक्रव्यूह में फंस गया मॉनसून? दुनिया के मौसम विभाग की क्या है बड़ी चेतावनी? क्यों लगातार बढ़ रहा है समंदर का पारा और क्यों धधक रही है प्रशांत महासागर की लहरें? ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मौसम और पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो मॉनसून पर अल नीनो का साया दिख रहा है, दुनिया के मौसम पर बड़ी रिपोर्ट भी सामने आई है। हमारे साथ स्टूडियो में सुभाष जी जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, उस रिपोर्ट को एक बार देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा शुरू करेंगे। WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की यह रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है वो जरा समझिए। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच कहा गया कि अल नीनो तेजी से मजबूत होगा, सूखा पड़ेगा, भारी बारिश हो सकती है, कई जगह लू के थपेड़े भी लोगों को झेलने पड़ सकते हैं, समुद्री हीट वेव भी बढ़ेगी। प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो की सुगबुगाहट है और प्रशांत महासागर के मध्य पूर्वी हिस्से में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। और इस अल नीनो की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में सूखा या फिर बहुत कम बारिश हो सकती है। पहले द यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की भी रिपोर्ट थी, उसने भी इतिहास का सबसे शक्तिशाली अल नीनो होने का अनुमान जताया था। साल 2026 जो कि अभी चल रहा है, यानी इसी साल तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहने का अनुमान है। पिछला अल नीनो साल 2023-24 में आया था और 23-24 में इतिहास के 5 सबसे शक्तिशाली अल नीनो में शामिल रहा है। 2024 में वैश्विक तापमान ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब अल नीनो से भारत समेत दुनिया भर में असर पड़ेगा, यानी कि जो अब इतिहास में नहीं हुआ, ऐसी गर्मी अब आपको देखने को मिलेगी। कहीं बारिश बहुत ज्यादा होगी, कहीं बहुत ज्यादा लू के थपेड़े झेलने पड़ेंगे, कहीं सूखा देखने को मिलेगा। तो ये तब है जब भारत में मानसूनी सीजन चल रहा है। तो मैदानी इलाके हो या फिर पहाड़ी इलाके, इस साल मॉनसून का रुख कुछ कमजोर रह सकता है, जिसकी वजह से सामान्य से 10% कम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। जाहिर है कि इससे किसानों की खेती बागवानी की चिंताएं जरूर बढ़ेंगी। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर औसतन 730 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि यह घटकर 670 मिलीमीटर या फिर उससे भी कम होने का अनुमान है। और जानकारों के मुताबिक अल नीनो के साथ ही हिंद महासागर में दबाव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से मौसम में अनचाहे बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं।
1: इस बार हमारा बिल्कुल प्रेडिक्शन है कि नॉर्मली हमारे हिमाचल प्रदेश में पूरे मानसून पीरियड में 730 मिलीमीटर यानी कि 730 मिलीमीटर बारिश होती है। इस साल का हमारा प्रेडिक्शन है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 670 मिलीमीटर या उससे कम बारिश होने की पॉसिबिलिटीज है। तो कहीं ना कहीं अगर हम परसेंटेज में के टर्म्स में देखें तो 10% या उससे भी अधिक की कमी हमें इस बार देखने को मिल सकती है पूरे प्रदेश में।
2: क्या कारण है सर?
1: मुख्य रूप से अगर कम बारिश की हम कारणों को देखें तो जितने भी हमारे ग्लोबल पैरामीटर्स होते हैं मानसून को लेकर के, इस बार कोई भी पैरामीटर हमारा फेवरेबल नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें कि इस समय हमारा जो पैसिफिक ओशन में है, इल नीनो की कंडीशंस डेवलप हो चुकी हैं और आगे आने वाले महीनों में ये कंडीशंस और ज़्यादा स्ट्रांग होती रहेंगी। जब जब हमारा इल नीनो ईयर्स होते हैं पूरे प्रदेश सहित पूरे देश में हमें बारिश कम मिलती है। दूसरा जो मुख्य कारण है हमारा मेन जो इंडियन ओशन डाइपोल जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारा इंडियन ओशन में प्रेशर कंडीशंस होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल बनी हुई हैं। जब भी हमारा इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव फेज में होता है हमें काफ़ी अच्छी बारिश मिलती है। इस बार वो न्यूट्रल ही रहेगा आगे भी, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश हमें नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही जो हमारा यूरेशियन रीजन है वहाँ पर जो स्नो कवर है वो भी हमारे मानसून को इफेक्ट करता है, इस साल वो भी फेवरेबल नहीं है। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो जितने भी ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो इल नीनो की कंडीशन हो, चाहे वो इंडियन ओशन डाइपोल हो, या यूरेशियन प्लेट की जो हमारा स्नो कवर है, यूरेशियन रीजन का जो हमारा स्नो कवर है, कोई भी पैरामीटर बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है अच्छी बारिश के लिए।
0: तो इससे पहले कि हम मौसम के अचानक बदलते पैटर्न पर चर्चा करें, हम पहले ये समझ लेते हैं कि अल नीनो होता क्या है और इससे मानसून और मौसम पर कितना असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है। दरअसल अल नीनो प्रशांत महासागर में पैदा होने वाली जटिल जलवायु घटना है। जब समंदर की सतह पर पानी का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है तब ये स्थिति पैदा होती है। अमूमन 2 से 7 साल के गैप में प्रशांत महासागर में ऐसी स्थिति पैदा होती है। अल नीनो का असर 9 से 12 महीने तक रहता है और इस दौरान एक वेदर सिस्टम एक साथ एक्टिव दिखते हैं। साथ ही साथ कहीं भारी बारिश होती है, कहीं सूखा तो कहीं आंधी जैसे हालात पैदा होते हैं। मौजूदा हालात में अल नीनो की वजह से क्या स्थिति बन रही है और इसका असर कितना रहेगा, इसके बारे में आगे हम तफसील से बात करेंगे। और फिलहाल जानकारी सीनियर मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत से भी ले लेते हैं।
3: अल नीनो की बात करें तो अल नीनो का मतलब होता है कि जब भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री या ऊपर चले जाते हैं और लगातार 3 महीने तक इसी तरह का एपिसोड रहता है तो उसको अल नीनो कहा जाता है। साउथ अमेरिका और पेरू में फ्लडिंग रेन होती है और साउथ वेस्ट मानसून जो होता है साउथ ईस्ट एशिया का वो कमजोर हो जाता है। तो ये तो अल नीनो हुआ और सुपर अल नीनो वैसे कोई टर्म नहीं होती लेकिन कहा जा रहा है कि सुपर अल नीनो या कह सकते हैं उसको वेरी स्ट्रॉन्ग अल नीनो, जब समुद्री सतह के तापमान 1.5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर हो जाते हैं तो उसको वेरी स्ट्रॉन्ग अल नीनो कहा जाता है और उस समय हमारे मानसून पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है और उस समय मानसून काफी हद तक कमजोर हो जाता है। इस बार एक और बात हो रही है कि मैदानी भागों में काफी ज्यादा ये कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग वेदर चल रहा है। कहीं पर सूखे जैसे हालात हैं, अगर देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, इन इलाकों में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, जबकि राजस्थान के कई इलाकों में हमने देखा कि फ्लडिंग रेन हो रही है। तो ये क्या हो रहा है कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाते हैं और चूंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहे हैं वो पाकिस्तान पर बन रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं पहाड़ों पर हालांकि कमजोर हैं और साउथ वेस्टर्ली विंड जो है जो अरब सागर से वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में नमी बढ़ा रही है। तो इन इलाकों में कभी कभी क्या होता है कि गरजने वाले बादल काफी ज्यादा बड़े बन जाते हैं और वो फ्लडिंग रेन देते हैं, जबकि जो पूर्वी हवाएं हैं जो बंगाल की खाड़ी से आनी चाहिए वो बिहार और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए उन इलाकों का मौसम लगभग सूखा बना हुआ है। तो यही फर्क है कि किसी इलाके में सूखे जैसी स्थिति है और किसी इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है।
0: तो पूरी दुनिया में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। यूरोप में के कई देश ऐसे हैं जो इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेल रहे हैं। मौसम में बदलाव से जुड़ी एक दिलचस्प तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से दक्षिण अमेरिका के इगुआजू फॉल्स की ये खूबसूरत तस्वीर है। इसे दुनिया की प्रकृति के नए 7 अजूबों में से एक माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ के खूबसूरत नजारों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इन दिनों इगुआजू फॉल्स के दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये झरना पराग्वे के पास अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर मौजूद है। लेकिन इस खूबसूरत नजारे के पीछे की हकीकत ये है कि यहाँ पानी का बहाव 4 गुना बढ़ गया है। ब्राजीलियाई मीडिया की माने तो 1.5 मिलियन लीटर प्रति सेकंड के औसत बहाव के मुकाबले इस झरने का बहाव लगभग 6 मिलियन लीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गया है। पानी का स्तर बढ़ने के बाद से इगुआजू नेशनल पार्क का एक सर्किट बंद करना पड़ा है। मौसम के जानकार इस बदलाव की वजह अल नीनो के प्रभाव को ही बता रहे हैं।
4: É claro que existem cenários climáticos que apontam para eventos mais extremos, mas o que a gente tem agora de mais imediato mesmo seria essa resposta do El Niño nos próximos meses, especialmente entre primavera e verão, bem mais chuvoso do que normalmente já é.
0: चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौसम के इसी बदलते मिजाज और अल नीनो इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा वेदर एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष शर्मा फॉर्मर आईएएस ऑफिसर एंड एनवायरमेंटलिस्ट। हमारे साथ डॉक्टर सुशील द्विवेदी भी मौजूद हैं, साइंस कम्युनिकेटर एंड एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और आनंद आर्य जी एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर गुरुदत्त, आप ही से शुरू करना चाहूंगी। अल नीनो इफेक्ट कहा जा रहा था और इसको लेकर हमारा यही पैनल लास्ट टाइम भी इसको लेकर हमने चर्चा की थी, लेकिन इस वक्त इसका असर देखने को मिल रहा है भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। एक तस्वीर हमने हाल फिलहाल में दिखाई भी है।
5: देखिए, आपके जितने भी पैनल में मुझे बैठने का मौका मिला, मैं लगातार यही बात कह रहा हूं कि जुलाई में तो हमको वर्षा मिलेगी अलिनो से, लेकिन अगस्त सितंबर हमारे लिए खतरनाक होगा, और जो ठंड का अगला रबी फसलों के लिए भी खतरनाक होगा, और ये करीब फरवरी तक जाएगा। आज की स्थिति में ईश्वर की कृपा कहें या प्राकृतिक कहें कि अभी एक सिस्टम बना हुआ बंगाल की खाड़ी में, अगले 3-4 दिन तक ये अच्छी वर्षा दे रहा है सेंट्रल इंडिया में और जहां भी है, और इस समय 3-4 सिस्टम बने हुए, सियर जोन है, ऑफशोर ट्रफ है, वेस्टर्न डिस्टर्न, ये जो मौसम प्रणालियां हैं WD की, मौसम द्रोणिका बनी हुई है साउथ वेस्ट राजस्थान से पूर्वी बंगाल तक, तो ये वर्षा तो अभी दे रही है। तो पहले भी मैंने यही बात कही कि जुलाई में तो हमको रेन कहीं ज्यादा, कहीं असमान वितरण तो होगा, लेकिन कुछ वर्षा मिलेगी, वो हालत ऐसी नहीं होगी कि बहुत ज्यादा तकलीफ। जैसे एक शहर में कह दूं, भोपाल में मैं रह रहा हूँ, भोपाल में पूरे भोपाल हरा वाला और जीरो का शहर, 4 बार अलग अलग वर्षा होती है, कहीं गिरेगा कहीं, जबकि मानसून में ऐसा नहीं होता, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो प्रणालियां हैं, आसमान पर वर्षा नहीं होती थी, एक सी वर्षा पूरे शहर या पूरे इलाके में होती थी। तो अलिनो का असर कहीं ना कहीं शुरू हो गया है, और 15 जुलाई के बाद इसको ज्यादा थोड़ा देखने में मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अगस्त सितंबर और आगे आने वाले दिनों में, खासकर जब ठंड पड़ेगी, तो यहाँ हमको गर्मी, चिपचिपा मौसम और हालात बहुत अच्छे नहीं होने की संभावना है, लेकिन अभी घबराने की बात नहीं है। जो रेन जहां जिसको मिल रही, छुटपुट किसानों ने अपना काम शुरू कर दिया है, बस हम ये चाह रहे हैं कि किसान थोड़ा सा जागरूक हो, कम पानी और कम दिनों वाली फसल में अगर आ जाएगा तो हो सकता है कि उसका नुकसान कम होगा, लेकिन आम जनता, जानवर जिसके लिए चारे की व्यवस्था है, और बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इनके लिए भी हमको कुछ ना कुछ कुछ सोचना पड़ेगा, हर आदमी जानता है। लेकिन ये चूंकि प्रशांत महासागर में तापमान 0.5 से अभी 0.9 मिल रहा है, जब ये 2 से 4 डिग्री बढ़ने की ओर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार, तो जब 2 डिग्री हो रहा है, हालत क्या होगा आपको पता है। अभी भारत में 738 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 27% डिस्ट्रिक्ट की नॉर्मल वर्षा है आज तक की डेट में, जो अभी होना चाहिए, और बाकी 41% डिफिसिट है, 16% लार्ज डिफिसिट है, और 1% जिलों में तो वर्षा ही नहीं हुई।
0: गुरुदत्त जी, ये कहा जा रहा है कि जुलाई से सितंबर तक इस अलनीनो का सबसे ज्यादा असर होगा, और ये वो समय है जब भारत में मॉनसून का समय रहता है, तो क्या ये कहें, क्योंकि देखिए असर बहुत अनप्रडिक्टेबल है, कहीं सूखा भी पड़ सकता है, कहीं बहुत तेज बाढ़ बारिश भी आ सकती है, तो भारत में स्थिति इस वक्त क्या नजर आ रही है मॉनसून की?
5: देखिए, जो भारत में वर्षा की स्थिति की बात करें, तो जुलाई अगस्त पीक पीरियड होता है, और 15 सितंबर के बाद वर्षा में कमी आ जाती है, लेकिन कुछ पिछले कुछ दिनों से पैटर्न ने देखा गया है कि हमको पूरा सितंबर वर्षा मिलती थी और 15 अक्टूबर तक हमको वर्षा मिलती थी, जिसमें आगे रबी की फसलों के लिए पानी और आखिर में जो धाने नहीं पक पाई हैं, जो मोट फसलें हैं, तो उनके लिए काम आ जाता था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये 15 जुलाई के बाद वर्षा की कमी होने की संभावना बन रही है फिर से, और अभी ये सिस्टम तो 12 तारीख तक पानी दे जाएगा जो
0: लेकिन
5: सेंट्रल
0: देखिए
5: इंडिया।
0: ये स्थिति ऐसी है जब उत्तर भारत में बहुत जगह मौसम मॉनसून अभी तक पहुंचा भी नहीं। सुभाष जी, स्थिति कहां तक जाएगी भारत की बात की जाए तो?
6: वास्तव में
5: मौसम तो
6: दुर्भाग्य
0: गुरु जी, मैं लौटती हूँ डॉक्टर शर्मा से, मेरा सवाल है डॉक्टर सुभाष शर्मा से जी।
6: वास्तव में 15 से 20 जून के बीच में बिहार और यूपी में बारिश, पहली बारिश हो जाती है, और उसके बाद किसान अपना जरई लगाना शुरू कर देते हैं, धान की जरई, जो कि बाद में ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है उसको। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार बारिश हुई नहीं, और मैं उस क्षेत्र में गया था तो ट्यूबवेल से लोग, इतना महंगा हो गया है सिस्टम कि वो पानी भरना बहुत मुश्किल हो गया, और बिजली की सप्लाई भी कम हो गई है, तो ये बहुत कठिनाई किसानों को हो रही है। और अभी तक 6 जुलाई तक भी पानी यूपी बिहार आदि में नहीं बरसा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। और एक खरीफ का मौसम ऐसा होता है जो कि वर्षा आधारित फसलें उगाई जाती हैं,
0: बिल्कुल पानी पे टोटली डिपेंड।
6: हाँ,
0: है।
6: और अश्योर्ड इरिगेशन हमारे देश में 50% से अधिक नहीं है, जो ट्यूबवेल से है या नहर से है और जगह से। तो ऐसी स्थिति में जब वर्षा आधारित फसलें हमारी सफल नहीं हो पाएंगी तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। और पहले से प्लानिंग हम लोगों का ये करना है कि जो फसलें लगाएं उसमें कम पानी की आवश्यकता हो, कम ड्यूरेशन वाली फसलें हों, लेकिन वो अचानक तो हो नहीं सकता है। पहले से कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती रही है, लेकिन अभी उतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाई है कि कम पानी वाले बीज और कम समय में पक जाने वाली फसलें लगाई जाएं, ऐसी स्थिति में एक दोहरा अभिशाप किसानों के ऊपर है और भगवान करें कि जल्दी से बारिश हो जाए।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: और कहते हैं, दुर्भाग्य है, कहते हैं कि मानसून आ गया लेकिन वर्षा तो है ही नहीं।
0: हाँ।
6: दिल्ली एनसीआर में सब कह रहे हैं कि मानसून आ गया लेकिन बारिश तो हो नहीं रही है।
0: बारिश हो नहीं रही है,
6: फुहारें पड़ जाती हैं, हल्की फुहारें पड़ जाती हैं और उससे उमस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल डॉक्टर द्विवेदी, आप ही को इंक्लूड करना चाहूंगी, यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। तैयारी क्योंकि पहले से नहीं थी, देखिए अल्नीनो इफेक्ट है ये तो हम सभी कह रहे थे, इससे पहले द यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की भी यही रिपोर्ट आई थी 2026 के में, सबसे ज्यादा कहा जा रहा था कि 3 से 4 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। क्या तैयारियां पहले से ऐसी नहीं थी, क्योंकि अब देखा जाए तो इसका इफेक्ट हम और आप सभी लोग झेल भी रहे हैं।
7: नवजोत जी, मुझे कहते हुए ये दुख हो रहा है कि हम और आप लोग तब जागते हैं जब हमें आपको प्यास लगती है, अर्थात तब हम कुआं कूदने की बात करते हैं। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर अपने देश में देखें तो हमारे यहाँ मानसून आधारित खेती होती आई है और हम ऐसे देश से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पर पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और हमारे यहाँ एक सुव्यवस्थित, एक बहुत ही सिस्टमेटिक वैज्ञानिकों का तंत्र है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की अलग अलग प्रयोगशालाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में विस्तृत रूप से पाई जा रही हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इतना वैज्ञानिकों का इतना जाल होते हुए भी, लेकिन दुर्भाग्य वो है कि वो जो शोध है वो लैब से लैंड तक नहीं आ पा रहा है। जैसा मेरे पहले आदरणीय सुभाष जी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्यों नहीं ऐसी स्थिति के लिए सूखा प्रतिरोधी फसलें, जिन्हें हम ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप कहते हैं, या ऐसी फसलें जो कम पानी में और कम ड्यूरेशन में ग्रो हो जाएं, या क्यों नहीं हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे जीन मैनिपुलेटेड फसलों को तैयार किया जो कोर्स ग्रेन कहलाते हैं, मोटे अनाज कहलाते, श्री अन्न कहलाते, जो कम पानी में भी उगते हैं और उनकी अंदर पोषण शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो ये एक दुखद स्थिति है आज की डेट में। एक तरफ किसान सीधे सीधे मानसून से तो जूझ ही रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि एक प्रकार का हमारे आपके चारों तरफ हीट थ्रेट, मतलब तापमान का बढ़ना अकेला नहीं है बल्कि अधिक तापमान के कारण हवा में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है। तो जो ये परेशानियां हो रही हैं, ये उनका, किसान बंधुओं का या आसपास के लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। उसका कारण आप और हम सब लोग जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम और आप लोगों ने शहरों का विस्तार किया है, एक प्रकार का अर्बन हीट आइलैंड पिछली बार खूब चर्चा हुई हमारी, आपने खूब चर्चा की, हीट डोम की भी चर्चा की हम लोगों ने। तो ये सब चीज मिलके, कुल मिला के भारत के अन्नदाता को बुरी तरह से परेशान किए हुए हैं और आने वाला समय बहुत ही दुखदायी होने वाला है। मेरी आपकी थाली में सीधे सीधे भोजन कम होने वाला है। दुनिया का भोजन का कटोरा कहा जाता है भारत, दुनिया को अन्न देता है, ना केवल 145 करोड़ लोगों को बल्कि दुनिया को भी। तो आगे चल के उनकी भी खाद्य सुरक्षा सीधे सीधे प्रभावित होने जा रही है। जी
0: बिल्कुल, आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ तो भारत की स्थिति और क्या असर भारत की कृषि पर होगा, इस पर चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आनंद जी साथ ही साथ देखिए इसका असर हर जगह पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत महासागर में ही तापमान बढ़ रहा है। जो देश सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं उसमें दक्षिण एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, ये तमाम ऐसे देश हैं। अगर भारत में इसका असर हो रहा है, हम अभी सुशील जी ने कहा कि धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इसका सीधा असर दूसरे मुल्कों, बाकी देशों पर भी इसका असर पड़ेगा, यानी पूरी धरती एक तरीके से इसके इफेक्ट में है। आनंद जी
8: देखिए आप सबने अभी तक जो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर आप लोगों ने चर्चा करी है उससे थोड़ा सा मैं डर गया हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि माहौल भी काफ़ी टेंस हो गया है। तो उसको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए एक साइड पे हमारे सारे साइंटिफिक इफेक्ट्स हैं, दूसरी साइड पे एक हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है जो वो हम लोगों ने निकाल के रखी हुई है। अब जैसे इस समय मैं इसको साइंटिफिकली नहीं कह रहा हूँ, पर एक फोकलोर है कि हमारे यहाँ एक बर्ड है टिटहरी, रेड वॉटर लैपरिंग, सारे भारत में पाई जाती है, और इसके अंडे, इसके नेस्ट बनाने से कि जो जून मई जून के महीने में बनाती है, तब पता चल जाता है कि अगले मौसम का कितनी बारिश होने वाली है। जिस समय वो थोड़े गहरे एरिया में नेस्ट बनाती है तो उस समय लगता है कि बारिश कम होगी, पर जब समय वो थोड़ा ऊपर बनाती है उस समय लगता है कि बारिश ठीक आएगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो फोकलोर है, क्योंकि इस बार बहुत जगह से मैं बर्डिंग के ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो वहां से ये खबरें आई हैं कि इस बार लेफ्ट विंग जो टिटेरी है वो ऊंचे स्थान के ऊपर अपने अंडे दे रही है और दो या तीन अंडे की जगह चार अंडे दे रही है। तो आशा करता हूं कि जो जितनी भी हमारे पास इस समय की जो पिक्चर हमारे सामने रखी गई है उसमें शायद कहीं एक आशा की किरण आए। पर जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ खेती के ऊपर ही असर नहीं पड़ेगा, इसका असर पड़ेंगे आपकी हेल्थ पे पड़ेंगे, आपकी इंडस्ट्री पे पड़ेंगे, आपके हर एरिया में पड़ेंगे। और जैसा मैंने शायद आपसे पिछली बार कहा था कि जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ है, ये एक तरह से जो हमारा प्रणाली है पूरी ये ध्वस्त हो चुकी है और इससे हमको बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो जिस चीज़ को हम नॉर्मल कहा करते थे 10 साल पहले या 20 साल पहले, आज वो नॉर्मल नहीं है। जैसा कि आपने बताया, दक्षिण एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह जहाँ पे भी इस तरह की सिचुएशन आज पैदा हुई हुई है। तो एक तो हमें न्यू नॉर्मल डिफाइन करने पड़ेंगे और जिसके बेसिस पे आप प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए, आज हम किसान से कहते हैं कि आप जून के अंदर बुआई करेंगे धान की, पर अगर यही चीज अगर हम ये डिसाइड करें कि नहीं ये जून में नहीं होगा, मई में होगा या जुलाई में होगा या जो भी हमारा नया नॉर्मल होगा, हाँ। उसकी वजह से दो चीजें होंगी कि एक तो आपको अपनी जो हमारी IARI है उनको एक नई प्रजातियां निकालनी पड़ेंगी के जिस तरह से हम धान की हैं नई, जिसमें पानी कम लगे, और दूसरा यह है कि हमको जो और टेक्निक्स वर्ल्ड वाइड हैं जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है जिसको इजराइल ने बहुत ही अच्छा काम उसके वो पूरा यूज करते हैं उसको 365 दिन उसको यूज करते हैं और जिससे पानी की, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है, हमारे पास इतना पानी तो है और इतना पानी रहेगा, क्योंकि देखिए जो 40 इंच बरसात हमारे यहाँ होती है वो शायद किसी समय कम होगी कभी ज्यादा होगी।
0: बिल्कुल।
8: तो जिस तरह से हम नए नॉर्मल डिफाइन करेंगे, तो जैसे हमारा पानी का स्टोरेज सिस्टम है थ्रू द डैम्स, अगर उन्हीं के साथ जो हमारा कमांड एरिया इरिगेशन चैनल्स का बना हुआ है अगर हम उसको डबल कर देते हैं और जो टेक्नोलॉजी आज हमें अवेलेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और पुराना डेटा इतना है, सिर्फ इंडिया का नहीं है, हमारे पास वर्ल्ड वाइड डेटा है, अगर उसके बेसिस पे हम अपना डैम मैनेजमेंट चेंज कर लें कि जिस समय हमको पता हो कि अब ये 90% कैपेसिटी हमारे जो फोरकास्ट है वो ठीक पड़ेगी, उसका मैनेजमेंट इस तरह से करना है, और अगर हम अपना कैनाल नेटवर्क डबल कर देते हैं तो देखिए उससे दो चीज होगी। नंबर एक कि जिस समय एक्सट्रीम बारिश हो रही है आप उसको कैनाल्स के अंदर छोड़ सकते हैं, आपकी फ्लड्स कम हो जाएंगी।
0: ठीक है,
8: दैट्स वन। एंड दी अदर पार्ट ऑफ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जिस समय, आपको पता है कि जिस समय आपके पास कनाल सिस्टम है और ये सारी देश में फैला हुआ है तो उससे आपका ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है वो एकदम से डबल हो जाएगा।
0: बिल्कुल, वाटर कंजर्वेशन की तरफ।
8: उस पानी को आप कभी भी निकाल सकते हैं और खेती के लिए यूज कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, यहाँ से आप अपनी बात आगे बढ़ाएगा सर आनंद जी।
8: छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, एक हेक्टेयर में ऑन ए जनरल बेसिस 30 लाख

0: लेकिन जो वर्षा का असमान वितरण है।
1: नहीं सर, आप एक्चुअल स्थिति भी बताइएगा, आप एक्चुअल स्थिति भी बताइएगा, क्योंकि देखिए आज 6 जुलाई है, अभी तक यूपी बिहार तक मानसून कहने को पहुंच गया है लेकिन उतनी बारिश हो नहीं रही है।
0: देखिए, मानसून का पहुंचना और वर्षा का होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मानसूनी हवाएं हैं दक्षिण पश्चिम, जब वो लगातार वर्षा होती है और तो वो मानसून डिक्लेयर कर देते हैं वहां कुछ क्षेत्र में, कुछ जो क्राइटेरिया के तहत, लेकिन उस क्राइटेरिया उस मानसूनी वर्षाओं के लिए सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। जैसे भी बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बना हुआ है, तो वो जो डिप्रेशन है अभी एक बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा होते हुए झारखंड होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा, तो इससे क्या होगा कि हमको अच्छी वर्षा मिलेगी, खासकर सेंट्रल इंडिया का विदर्भ है, मध्य प्रदेश का इलाका है और छत्तीसगढ़ है, यहाँ हमको अच्छी वर्षा मिलेगी। तो मानसून के समय सिस्टम की वर्षाएं होती है तभी मानसून गति पकड़ता है। तो अभी वो स्थिति है, सिस्टम बन रहे हैं, 10 तारीख के आसपास मुझे लग रहा है एक और सिस्टम बन रहा, तो अभी तो ये वर्षा देते जाएंगे। लेकिन जो अलीनो है, अलीनो के कारण से असमान तापमान, असमान वितरण, कहीं 20 मिलीमीटर वर्षा हो रही, कहीं 200 मिलीमीटर वर्षा हो रही, यानी समान वितरण नहीं हो रही। अगर पूरे देश में 90% वर्षा होती है तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा ऐसा होता आया है और अच्छी फसलें होंगी, लेकिन वो 90% कहीं पूर्वोत्तर में ज्यादा वर्षा होगी, कहीं बिहार में बाढ़ आएगी, कहीं सेंट्रल इंडिया में सूखा पड़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल टोटल तो हमें 90% पहुंच जाएंगी। किसी को 2 रोटी मिलेगी, किसी को 20 रोटी मिलेगी,
1: लेकिन वही है कि वो अनइवन पैटर्न उसका रहेगा। ऐसी स्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आनंद आर्य जी उपाय सुझा रहे हैं वो प्रैक्टिकली कितने पॉसिबल होंगे, ग्राउंड रियलिटी उसकी क्या है। डॉक्टर सुशील और सुभाष दोनों हमारे साथ है, इसी पर मैं आपसे एक जवाब लूंगी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, चर्चा जारी रहेगी।

0: असर कितना देश और दुनिया पर पड़ रहा है, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ आनंद आरा जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि अगर इस तरह का पैटर्न रहता है, अलनीनो का इफेक्ट रहता है, तो फिर कैसी तैयारी हमारी होनी चाहिए, खासतौर पर खेती किसानी को लेकर। डॉक्टर सुभाष, आप ही के पास आना चाहूंगी, ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल हो सकता है? हालांकि अभी आपने सुना, गुरुदत्त जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बारिश होती है, लेकिन अगर हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं 90% बारिश, तो वो कहीं बहुत ज्यादा होगी और कहीं बिल्कुल सूखा होगा। हम इसको ओवरऑल देखते हैं तो किस तरीके से प्लानिंग की जरूरत होगी?
1: जाहिर है कि जिस इलाके में कम बारिश हो रही है, वहां की समस्या काफी गंभीर है। और मान लीजिए कि हम लोग कुछ वैकल्पिक खेती करते हैं, तो उसकी प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी। अब हम लोग उस समय बिता चुके हैं जो हमको मई जून में करना चाहिए था, अब नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बात, ये जो प्रयोगशाला से खेत तक की दूरी, ये पट नहीं रही है, जो गैप अंतर मिट नहीं रहा लैब टू लैंड। बहुत सारी फसलों के नए बीज, हाई यील्डिंग वैराइटीज बीज, कम समय में और कम वर्षा कम पानी के साथ विकसित किए गए हैं, लेकिन किसानों को वो जानकारी नहीं मिल रही है। पहले जनसेवक ग्राम सेवक जैसे होते थे कर्मचारी प्रत्येक प्रदेश में, और वो एक्सटेंशन का काम करते थे, कृषि विस्तार का काम करते थे, लेकिन अब वो काम छोड़ के बाकी सब काम करते हैं। तो दुर्भाग्य है कि किसानों का की जो प्राथमिकता थी वो पिछले 20 सालों में 25 सालों में काफ़ी कम हुई है। तीसरी बात है कि खेती सिर्फ बुआई या सिंचाई पर ही नहीं निर्भर करती है, या ये कह देना कि अन्नदाता सुखी भव, इसी काम नहीं चलता। आजकल पिछले कई वर्षों से सांड, नीलगाय, जंगली सुअर, इन लोगों ने खेती को ऐसे बर्बाद कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में मैंने भ्रमण किया और पाया है कि वहाँ जो पहले अरहर की बुआई होती थी, मटर की बुआई होती थी, चना की बुआई होती थी, अब बंद हो गई, क्योंकि ये पशु जो हैं सब चर लेते हैं। शकरकंद

0: आलू भी नहीं बो रहे हैं लोग, तो ये भी समस्या हो गई है। जो ये फालतू जानवर हैं, जंगली जानवर से लेकर के जो पालतू थे, अब उनको इसे छोड़ दिया गया है, और पहले कुछ पकड़ते भी थे, अब वो भी नहीं पकड़ रहे हैं। तो किसान की हालत बहुत ख़राब है। जो अमीर किसान हैं, उन्होंने कहीं बांस गाड़ करके या तार लगाया है जो झटका देते हैं पशुओं को जब वहाँ वो जाते हैं तो। लेकिन 99% किसानों के पास ये सुविधा नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान कई तरह से मारे जा रहे हैं। एक तो प्राकृतिक रूप से पानी का अभाव,
1: जी
0: दूसरा है कि पशुओं का इस तरह से गड़बड़ करना, और तीसरी बात है कि जो एक्सटेंशन वर्कर्स थे, खेती के विस्तार कार्यक्रम को किसानों तक पहुंचाते थे
1: हाँ
0: और उनकी गोष्ठियां करते थे, सेमिनार करते थे, गांव गांव भ्रमण करते थे और अच्छी खेती को दिखाते थे, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता था, उसका भी काफ़ी कम हो गया है।
1: ठीक है,
0: ये इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किसानों के ऊपर बहुत सारी
1: बिल्कुल। और
0: समस्याएं हैं।
1: ये सिर्फ हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर हो रहा है। बहुत से ऐसे देश हैं जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो भी रहे हैं, असर वहां पर भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हम अगर स्पेसिफिकली, आनंद आर्य जी ने जो बात की इसी पर, डॉक्टर सुशील, मैं आपसे एक जवाब जानना चाहूंगी, कितना प्रैक्टिकली ये पॉसिबल, और क्या हमें तैयारी कर लेनी चाहिए अब?
2: बिल्कुल, हमें आपको तैयारी कर लेनी चाहिए थी और किया है। हम लोग नॉर्मन बोरलॉग साहब के जमाने से, जब उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाई पूरी दुनिया में, और हम और आप लोग कहाँ, हमारे आपकी जरूरतों के लिए अनुसार अनाज नहीं हो रहा था, और हमारे भारत में स्वामीनाथन साहब ने उसको अपनाया और फिर हमारे किसानों के पास और हम अन्नदाताओं के पास, सबके पास भोजन पहुंचा। इसके बाद जो बीच का समय आया, इसमें जैव प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बढ़ी और ऐसी फसलें तैयार की करने की टेक्नोलॉजी विकसित की गई जिसमें जीनेटिक मैनिपुलेशन कहते हैं, अर्थात कुछ ना कुछ जीनियागिरी की गई, मतलब कोई ऐसे कोई जीन डाला गया, कोई जीन हटाया गया, नॉकआउट किया गया, कोई हाई यील्डिंग वेराइटी बनाई गई, कोई ड्रॉट रेजिस्टेंट। लेकिन वही बात हुई ना कि लैब से लैंड तक का सफर और साथ में इन्वायरमेंटल लिटरेसी, या एक लिटरेसी की जरूरत है, साक्षरता की जरूरत है। किसान को भी हमें बताना है, अन्नदाताओं को बीच में जाना है, उनके बीच में चर्चा करना है कि ये जो फसल बनाई गई है इसमें मान लीजिए कोई भी हमने जीन डाला है, तो उनके भी उनकी जो भी क्वेरीज हैं, उनकी जो शंकाएं हैं, उन्हें हमें दूर करना है। और साथ में हमें आपको अपने पारंपरिक ज्ञान को अपनाते हुए और दुनिया के अलग अलग देशों से, चाहे वो सिंगापुर हो सकता है, चाहे वो इजराइल हो सकता है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो सकते हैं, कि वो कैसे पानी की एक एक बूंद को बचाते हैं। इस समय प्रधानमंत्री जी ने कैच द रेन वेयर इट फॉल, वेयर इट, जहां भी गिर रही है वहां पर उसको हमें आपको कंजर्व करना है। तो ये छोटे छोटे बदलाव आगे चल के हमारे आपके जीवन को बदलने में सहायक होंगे, और हर चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि एक छोटे छोटे बदलाव से ही तो हमारा आपका जो जरूरतें हैं वो पूरी होंगी। क्योंकि हम और आप लोग हाईवे चौड़े करते जा रहे हैं, हमारी कारें बड़ी होती जा रही हैं, हमारी जरूरतें बड़ी होती जा रही हैं, जलवायु के प्रति हम लोग असंवेदनशील होते जा रहे हैं, जबकि होनी चाहिए संवेदनशीलता ज्यादा। तो धरती तो उतनी ही है ना, धरती तो नहीं बढ़ रही ना, मेरी आपकी दराज में कपड़े बढ़ रहे हैं, मेरे आपके आसपास संसाधन हमारे आपके बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, मकान बढ़ रहे हैं, खेत कम हो रहे हैं। तो हमें आपको दूसरी तरफ भी सोचना पड़ेगा कि धरती का एरिया तो उतना ही है और हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और यही कारण है कि हमें आपको अर्थ ओवर सूट डे भी बार बार हमें ये चीज बता रहा है कि हमें आपको अपने जीने के तरीके भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपको भी अपने अंदर स्वाभाविक बदलाव, इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये एक प्रकार से कंप्रिहेंसिव वे में हम लोग बदलाव ला पाने में सफल हो पाएंगे।
1: बिल्कुल, एक बार डॉक्टर गुरुदत्त जी आपके पास आऊंगी, फिर आनंद जी के पास जाऊंगी। सर, एक अपडेट हमें दे दीजिए, अभी तक की मानसून की रफ्तार कैसी रही है और आने वाले समय में क्या अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से?
3: देखिए, पिछली बार मैं एक बात बताना भूल गया था कि जब ये अल्लीनो का असर होगा या जो वर्षा होगी तो उसमें तापमान भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो आपकी जो अभी फसलें हैं उनमें दिक्कत होगी। पानी आप लगा के तो रोपा लगा देंगे धान का, लेकिन टेम्परेचर अभी जो 35 से 38 डिग्री बना हुआ है वो सूटेबल नहीं है। आज की स्थिति में 738 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ भारत में 27% ही जो सामान्य जिले हैं, और करीब 41 जिले हैं जिसमें सामान्य से कम वर्षा हुई है। 16% ऐसे जिले हैं भारत में जो कि सामान्य से बहुत नीचे वर्षा, मतलब लार्ज डिफिसिट जिसको बोलते हैं। 1% में नो रेन है, और सिर्फ 4% ही ऐसा जिले है भारत में जिसमें कि सामान्य से अधिक वर्षा हुई है और 1% एक्सेस हुई है। तो बहुत स्थिति गंभीर है पूरे देश की, कुछ 5% मतलब की बात करें हम कि एक्सेस और लार्ज एक्सेस है, बाकी हालात बहुत अच्छी नहीं है। लगातार तापमान बढ़ने से आप कितना भी फसल बो लें, आपको प्रकृति का जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा आपकी ग्रोथ नहीं होगी। पानी कितना भी बहा दे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आगे बिजली भी आपको नहीं मिलेगी जब वर्षा कम होगी, खाद सब्जियां महंगी होंगी, फिर हमारा जेब खर्च भी बढ़ जाएगा, तो काफी दिक्कत आने वाली है। इसलिए जितना पानी जो भी जिसके पास गिरा हुआ है बहुत सहेज के रखें, उसका बिल्कुल सदुपयोग करें, जिसके पास रखने की जगह नहीं तो कम से कम जमीन में दाने दें वो पानी।
1: लेकिन मानसून की रफ्तार को लेकर क्या अनुमान है?
3: देखिए मानसून अभी तो अपने लगभग देश के 90% भागों में कवर कर गया है और ये लगातार सिस्टम बन रहे हैं, अरब सागर से नमी आ रही, बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल हमको अच्छी स्थिति है मानसून की, जहां भी पहुंच रहा है मानसून वर्षा बराबर दे रहा है दुरुस्त है। लेकिन अभी जुलाई में उम्मीद है कि पानी अच्छा मिलेगा, अगस्त सितंबर ईश्वर करे मदद करे, लेकिन अगस्त सितंबर में लीनो का प्रभाव बढ़ने की संभावना दिख रही है, लेकिन जुलाई में देश में हमको अच्छी वर्षा मिलेगी, खासकर 15 जुलाई तक।
1: ठीक है, एक एक सवाल और, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि बारिश सितंबर तक भी बारिश हो रही थी बहुत से ऐसे इलाकों में, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज इस बार भी है?
3: देखिये हमारे यहाँ बता रहा था, मैं पहले ही बताया था कि पहले 15 सितंबर के बाद वर्षा हमारे यहाँ कम हो जाती थी, जब कहते थे ना गांव में कि कांस में फूल आ गया तो वर्षा नहीं होगी, लेकिन अभी लगातार पिछले 10-20 सालों का आंकड़ा देखें तो 15 अक्टूबर तक हमको बराबर वर्षा मिलती जा रही थी, यानी मानसून वहां देर से शुरू होता था और यहाँ आगे तक लगभग मानसून खिसक गया है। लेकिन अगर यह लीनू की स्थिति जल्दी आ गई अगस्त के शुरुआत में तो वो स्थिति गंभीर हो सकती है, सितंबर फिर वर्षा की संभावना बहुत कम होगी।
1: ठीक है आनंद जी, अब आपके पास आना चाहूंगी, आपने सभी लोगों की बात सुनी भी है और आप एक पॉजिटिव नोट के साथ अपनी बात रख भी रहे हैं, रखी भी है। सर अब तस्वीर कुछ इस तरह की है कि मॉनसून हर जगह पहुंच रहा है लेकिन बारिश अगर कम होती है तो असर सीधी सी बात है कि हर किसी पर पड़ेगा, और ये सिर्फ भारत ही अकेला ऐसा देश नहीं जो सफर कर रहा है, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिन पर इसका असर सीधे तौर पर हो रहा है। आपने जिस तरीके से सुझाव दिया है सर, वो भी प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल हो पाएगा जब मौसम विभाग खुद ही इस तरह का प्रेडिक्शन नहीं लगा पा रहा है कि बारिश कहां सबसे ज्यादा होगी, कहां सूखा सबसे ज्यादा पड़ेगा, किस तरीके से सर तैयारी हो पाएगी फिर?
4: नहीं देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था और आज भी कहा है कि हमको एक न्यू नॉर्मल जिसको मैं कहूँगा उसको डिफाइन करना है, और दूसरा ये है कि जो हमारा जलवायु प्रणाली है इंडिया में ही नहीं बल्कि सारे देश में, इसको हमें वॉर फुटिंग के ऊपर इसको टैकल करना होगा। तीसरा ये है कि जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरह से हम खेती करते हैं उसको हमें कम्प्लीटली ओवरऑल करना पड़ेगा। और जो मैं कह रहा था आपसे कि पानी बेशक ज़्यादा आए या कम आए, आज की डेट में हमारा क्या है कि हम 15-20% ही बारिश का पानी यूज़ कर पाते हैं, बाकी सब बह जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए दो ही तरीके हैं, एक कि आपके जो डैम का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए और उसके अंदर पानी जो है ना वो एक तरह से पूरा का पूरा भरा रहना चाहिए सारे टाइम, जब तक कि आपकी बरसात का मौसम है, और ये तभी संभव है जब आप डाउन द लाइन जो हमारा उसका एक कमांड एरिया होता है जिसमें आपकी नहरें होती हैं, उन नहरों को हमें डबल करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आप वहाँ से पानी कहीं दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं जिस जगह सूखे की जगह है, और इसी तरह हमको जितनी हमारी वेटलैंड्स है ना उनको तो बिल्कुल वॉर फुटिंग पे उनको बचाना होगा, क्योंकि आपने जैसे कहा सिर्फ 55% के करीब एरिया है जहाँ पे आपको इरिगेशन वाटर मिलता है, बाकी तो आपको ग्राउंड से ही उठाना है। तो जब तक आपका ग्राउंड के अंदर जो पानी है वो एक तरह का बैंक है, अगर उसके अंदर से आप निकालेंगे ज्यादा और डालेंगे कम तो बहुत जल्द बैंकरप्सी आ जाएगी। तो आपको निकालने से आपको जितना निकालना है उससे ज्यादा आपको अंदर डालना है। वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे को 40 इंच के करीब बरसात होती है, पर इसको हमें संजोना है, जो हम 15-20% है अगर उसको 25-30 भी रेंज में आ जाते हैं तो इस देश में मैं समझता हूँ जो कि कैलकुलेशंस के हिसाब से कि हमारे देश में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो चीजें तो हमें भगवान ने दी हैं। एक तो कोई देश का हिस्सा ऐसा नहीं है कि जहां पे हमें नदियां नहीं है और जहां पे हमारे पास वेटलैंड्स नहीं है, क्योंकि ये इतना अच्छा रिसोर्स है। पर वही है कि हम सेमीकंडक्टर को जितनी आज इंडस्ट्री को जितनी आप हम तवज्जो दे रहे हैं, जितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा हमें अपना क्लाइमेट चेंज पे, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड, नाउ दैट वी आर नॉट जस्ट के भाई हम सिर्फ इस देश ही के नहीं है, हम तो अब इस समय दुनिया के लीडर्स में एक हैं, तो इसलिए हमको दिशा दिखानी है। और वो जो क्लाइमेट चेंज का जो सिस्टम है, सारे ये जो हमारी जलवायु प्रणाली है टोटली ऑल ओवर द कंट्री, दुनिया के अंदर आपको हर जगह उसके लिए आपको काम करना है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई अमेरिका अलग है, इंडिया अलग है और आपका अफ्रीका अलग है, ये सब नहीं है। ये एक सारे दुनिया का एक ही सिस्टम है जहां तक कि जलवायु प्रणाली का है। अगर कुछ इंडिया में होता है तो उसका आपको साउथ अमेरिका में भी मिलेगा, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रशांत महासागर के अंदर जो हो रहा है उसका इफेक्ट हमें आज मिल रहा है। तो जब तक हम एक बेसिक प्लानिंग करके आगे तक बिल्कुल वॉर फुटिंग के ऊपर ये काम नहीं करेंगे, तो हम ऐसे ही आपसे चर्चा करते
1: हैं। आपने एक सेमीकंडक्टर की बात की, सुमा जी आपके पास आना चाहूंगी। इसको लेकर अगर देखा जाए, देखिए कहने को हम तरक्की कर रहे हैं, हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी को लेकर पिछले दिनों अमेरिका में भी विरोध हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी इसमें यूज होता है। विरोध वहां पर, विरोध की आवाज शुरू हो गई, भारत में भले हो रही हो या नहीं हो रही हो।
0: वास्तव में देखा जाए तो हमारे देश में करीब दो तिहाई हिस्सा खेती के रूप में पानी खर्च होता है। करीब 15-20% खर्च होता है इंडस्ट्री में और 5-7% खर्च होता है घरेलू कामों में। जो औद्योगिक मशीनें लगाई जा रही हैं, खास करके सेमीकंडक्टर या आपका ये जो कोल्ड ड्रिंक्स बनता है, 1 लीटर बनाने में उसमें सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद होता है। और वो हम लेते हैं पानी कहाँ का, ग्राउंड वाटर, भूजल लेते हैं। इसीलिए प्लाचीमाड़ा जो केरल में है वहाँ पर लोगों ने आंदोलन किया और बाद में कोर्ट ने उनको स्थगन आदेश दिया कि यहाँ आप नहीं लगाएं। तो ये निश्चित रूप से है कि हमारी जो ओवरऑल प्राथमिकता है वो खेती पर होनी चाहिए, जल के सदुपयोग पर होनी चाहिए, क्योंकि खेती इंतजार नहीं कर सकती, उसका समय तय है, उसके बुआई का, सिंचाई का, फसल कटाई का, गुड़ाई का सब तय है। और अगर उसमें जरा भी प्रोसेस में कमी हुई तो निश्चित रूप से बहुत नुकसान होगा।
1: ठीक है डॉक्टर सुशील, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी ये आनंद जी की बात भी और सुभाष जी की बात को भी कंटिन्यू कीजिएगा। वाटर कंजर्वेशन की बात आप भी हमेशा सुझाते रहे, होनी चाहिए ऐसे, हम किस तरीके से वैकल्पिक खेती की तरफ भी आगे जाएं। लेकिन सर बड़ी बात यह है जो आपने शुरुआत में भी कही थी कि हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम एक डेवलप्ड नेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी यहां पर लगा रहे हैं या फिर दूसरी इंडस्ट्री भी यहां पर लग रही है, बट ये नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हमारी जो अपनी पारंपरिक खेती है या फिर जीवन शैली है उसकी कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नवजोत जी, अगर मेरी पॉकेट अगर खराब हो, फटी हो और मैं उसमें पैसे डालूं तो वो पैसे तो रहेंगे नहीं, गिरते जाएंगे। तो ठीक ऐसी स्थिति है कि मैं और आप, मेरे आसपास खूब बारिश का पानी जो भी गिर रहा है अगर उसको भी हम कंजर्व कर लें तो एक तो हम अपने आसपास पानी बचा सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है और कहते हैं ना जल नहीं तो कल नहीं। दूसरी बात, आपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात कही या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे माना जा रहा है, एआई को, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को, कि अप्रत्यक्ष रूप से पानी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यह खतरा पानी की भारी खपत और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को और बढ़ाता है। मैं कुछ आंकड़ों से बताना चाहूंगा, क्योंकि बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं जहां पर उनकी कूलिंग की जाती है, तो एआई मॉडल को चलाने के लिए लाखों कंप्यूटर वाले विशाल डेटा सेंटर को की जरूरत होती है, और ये सिस्टम बहुत अधिक गर्म होते हैं और उन्हें ठंडा रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं से पानी की जरूरत होती है। तो ये भारी पानी की खपत को बढ़ाते हैं। हम मान लीजिए एक एक एक शोध कह रहा है कि 2030 तक डेटा सेंटर अरबों लोगों के पानी के हिस्से को घटक जाएंगे, पी जाएंगे, मतलब मुझे आपके पानी नहीं आएगा अरबों लोगों को। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी की भी बड़ी डिमांड बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत खपत होती है। तो कुल मिला के ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से हमारे आपके लिए खतरा है। हमें आपको देखते हुए कि हमें पर्यावरण पे इसके दुष्प्रभावों का भी अध्ययन करना है, साथ में अपने जो प्राचीन ज्ञान था, जो हमारे पूर्वज हमें आपको सिखा गए थे, जो वो भी बहुत बुद्धिमान थे, ऐसे थोड़े हमारे भारत की जो सभ्यता है करोड़ों साल पुरानी है, तो वहां से भी हमें आपको उनके जीने के तरीके भी सीखना है। और साथ में ये पर्यावरण और जो जो हमारे आसपास की जलवायु है उसके कोडेड जो मैसेज हैं, ये संकेत जो छिपे हुए हैं, उनको भी डीकोड करना है। नहीं तो आज जैसी स्थिति में हम आ गए कि आप देखिए सामने, हमारे सामने सुपर एल निनो जैसी स्थिति है, लेकिन हमारे पास किसानों के लिए कोई विशेष विकल्प नहीं है। तो हमें ऐसी परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना है, और नहीं तो आने वाला समय में हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी धरती दे पाने में सफल नहीं रहेंगे। और नवजोत जी, भगवान मुझे आपको अपने कर्मों की सजा दे देगा, लेकिन ये धरती पक्का देखिएगा मुझे आपको माफ नहीं करेगी, और इसका अभी और आने वाले कुछ ही सालों में मुझे आपको इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा।
1: बिल्कुल, आखिरी 30 सेकंड सर।
0: ये वास्तव में किसानी खेती एक घाटे का सौदा हो गया है। बीज हो, उर्वरक हो, या खरपतवार नाशक हो, कीटनाशक हो, जुताई हो ट्रैक्टर से, या लेबर का हो, ये इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि किसान की कमर तोड़ दे रहा है। पहले खुद खेती लोग करते थे, बैल रखते थे और खुद जोतते थे, या हलवाहे से जोतते थे, या श्रमिकों से जोतते थे, लेकिन अब कहीं भी आपको बैल हल नहीं मिलेगा, सब जगह ट्रैक्टर से खेती हो रही है, और ट्रैक्टर की जुताई दर बहुत बढ़ गई, 1000 रुपया घंटे इस तरह से, और इसी तरह से सिंचाई भी ट्यूबवेल की 1000 रुपया घंटे हो गई है। तो किसान तो चारों ओर से मर गया। जब बीज हमारे पहले घर में ही हम लोग उसको जब फसल उगती थी तो अच्छे बीज निकाल कर रख लेती थी माताएं, उसको साफ सुथरा करके रखती थी, लेकिन अब टर्मिनेटर बीज आ गया, टर्मिनेटर बीज आ गया, उसको आप दोबारा नहीं बो सकते।
1: यानी कुल मिलाकर असर जो है वो खेती किसानी और हम सभी पर पड़ रहा है, धरती पर पड़ रहा है। इसको लेकर उपाय क्या किए जा सकते हैं, इसी को लेकर आज हमने चर्चा की खास मेहमानों से। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: क्या आपको नींद आने में परेशानी होती है? क्या बेवजह की चिंताओं की वजह से आपको नींद नहीं आती? क्या आलस्य तो बना रहता है लेकिन नींद कभी पूरी नहीं हो पाती? कौन से ग्रह हैं नींद के लिए जिम्मेदार, और अच्छी नींद के क्या हैं ज्योतिषीय उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
7: Lee looks for someone, finds the right someone. And Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
6: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
8: Because people who all watch games, they hear the voice.
6: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: वक्त बदल रहा है और इस बदलते वक्त के साथ खेती किसानी का अंदाज भी हाईटेक हो रहा है। ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जिसने हर सेक्टर में क्रांति ला दी है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अगर कहीं है तो वो है हमारा कृषि क्षेत्र, और इसी जरूरत को समझते हुए ड्रोन टेक्नोलॉजी को गांव-गांव और खेत खेत तक पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में आयोजित नेशनल ड्रोन समिट 2026 में देश की पहली ड्रोन टेक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को लॉन्च किया गया, जो ग्रामीण भारत में एक नई सुबह की शुरुआत है।

0: सिर्फ सरहदों की निगरानी और रक्षा क्षेत्र तक सीमित रहने वाले ड्रोन अब हमारे देश के गांवों और खेतों की तकदीर बदलने जा रहे हैं। आसमान से खेतों की निगरानी करनी हो या फिर मिनटों में कीटनाशक का सटीक छिड़काव, ड्रोन टेक्नोलॉजी अब भारतीय किसानों का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में नेशनल ड्रोन समिट 2026 का आयोजन किया गया, जहां भारत की पहली ड्रोन टेक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च हुई। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण एक पंचायत एक ड्रोन उद्यमी राष्ट्रीय मिशन रहा, जो सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत देश के हर पंचायत में ट्रेंड और सर्टिफाइड ड्रोन उद्यमी यानी ड्रोन ऑपरेटर तैयार किए जाएंगे।
1: जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है इसको किसान तक पहुंचाया जाए, और किसान तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाने के लिए हमने एक किस्म से ब्रिज तैयार किया गया है, जिसका नाम रखा है एक पंचायत एक ड्रोन उद्यमी। इस स्कीम के अंतर्गत हम हर एक पंचायत से संपर्क करके उनमें से एक उद्यमी तैयार कर रहे हैं। उस उद्यमी का एम है कि वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग ले और उस ट्रेनिंग को इस्तेमाल करके ड्रोन को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करे। इसके लिए अलग अलग पैकेजेस बनाए गए हैं।
0: लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 2 लाख ऐसे उद्यमी तैयार हों जो गांवों में ही खेती फसल सर्वे मैपिंग और सटीक स्प्रेइंग जैसी आधुनिक सुविधाएं किसानों को मुहैया कराएं।
2: पहला ड्रोन टेक मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से एक इनिशिएटिव है, जिसमें एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें 1 ड्रोन उद्यमी 1 पंचायत होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर ड्रोन का इस्तेमाल करना, फार्मर्स को एंड यूज़र बनाना और वो स्प्रे करे ड्रोन के साथ, उसके लिए लोकल लेवल पे एंटरप्रेन्योर होना बहुत ज़रूरी है। हम ये पूरे ड्रोन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि जब तक इकोसिस्टम नीचे बिल्ड नहीं होगा तब तक ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स और ड्रोन से जुड़े हुए कंपनीज जो हैं वो प्रॉपरली स्ट्रेंथन नहीं हो पाएंगी।
0: किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस समिट में एक खास एटीवी भी लॉन्च की गई। अक्सर गांव के कच्चे और सकरे रास्तों से खेतों तक भारी ड्रोन बैटरी और केमिकल्स ले जाना किसानों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। अब ये एटीवी पंचायतों को ड्रोन के साथ ही दी जाएगी, ताकि किसान बिना किसी झंझट के अपने घर से खेत तक सारा सामान आसानी से ले जा सके।
1: ये एटीवी का लाभ यही है कि जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, जहाँ पे नॉर्मल मोटरसाइकिल नहीं चल सकता, पैदल जाने में बहुत दिक्कत है, कोई और वाहन नहीं चलता है, सिर्फ ट्रैक्टर चलता है, यह एटीवी चलती है।
0: ये ड्रोन मिशन भारत के ग्रामीण और एग्री टेक सेक्टर के लिए एक सच्चा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर ये मिशन रफ्तार पकड़ता है तो वो दिन दूर नहीं जब देश के अन्नदाता आधुनिक खेती के साथ विकास की नई उड़ान भरेंगे।
3: ये है कि हर पंचायत में एक ड्रोन उद्यमी तैयार किया जाए, और आप सोचिए कि जिन कामों को किसान अभी मैन्युअली करता है, इसमें घंटों का समय लगता है, कई बार दिन लग जाते हैं उसे दवाइयों का छिड़काव करने में, केमिकल डालने में, उसे काम को अगर ड्रोन से किया जाएगा तो वो काम कितना आसान हो जाएगा, और किसान का समय जितना बचेगा उतना ही किसान के लिए देश के लिए भी अच्छा रहेगा। कैनवल शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे दिल्ली।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
6: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.

0: क्या आपको नींद आने में परेशानी होती है? क्या बेवजह की चिंताओं की वजह से आपको नींद नहीं आती? क्या आलस्य तो बना रहता है लेकिन नींद कभी पूरी नहीं हो पाती? कौन से ग्रह हैं नींद के लिए जिम्मेदार और अच्छी नींद के क्या हैं ज्योतिषीय उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: College shouldn't waste your time or your money. That's why WGU's programs are built with input from industry experts and updated regularly. So what you learn is what employers need right now. Practical skills, recognized certifications, real-world relevance that opens doors. Get an education that actually delivers. It's one that prepares you for the career you're chasing today and the opportunities that will shape your tomorrow. Learn more at wgu.edu.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। आज अमरनाथ यात्रा की आस्था के अद्भुत रंग हम आपको दिखाएंगे। हिमालय की वादियों में इंद्रों बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। देश भर में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। यात्रा में तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं कैसी हैं, सहूलियत कैसी है, किस तरह के इंतजाम, इस पर आगे चर्चा होगी।
5: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए साथी, हम आपको मानसून की चाल भी दिखाएंगे। देश के कुछ हिस्सों में इन दिनों जमकर बादल बरस रहे हैं। इस बदले मौसम में कई जगहों पर कुदरत की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और ये भी जानेंगे कि मानसून के इस मौसम में कहां पर आई है सैलानियों की बहार।
6: नमस्कार, मैं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। चाय पर चर्चा में बॉलीवुड की बात तो करेंगे ही, बड़े पर्दे पर अक्षय कुमार की कॉमेडी आलिया के अल्फा एक्शन पर भी भारी पड़ती हुई देखी जा सकती है। क्या कहते हैं कमाई के आंकड़े और क्या भूत बंगला के बाद ये अक्षय की दूसरी सुपरहिट फिल्म बनेगी, इस पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
8: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने किया रिसीव। द्विपक्षीय बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल डील पर लग सकता है मोहर। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। खराब मौसम पर भी भारी दिखी आस्था। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के 51वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन, विश्व शांति सद्भावना और मानवता का संदेश। रामबन में भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते खोले गए बगलिहार डैम के 3 गेट, पूरी कश्मीर घाटी में जमकर हो रही है बारिश।
5: और चलिए शुरुआत करते हैं चाय पर चर्चा की अमरनाथ यात्रा के साथ। आपको बता दें अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है और पूरी दिव्यता और अलौकिक आस्था और एहसास देने वाली ये अमरनाथ यात्रा पूरी आस्था और निष्ठा के साथ जारी है। धाम पहुंचते ही जहां आस्था और विश्वास की अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है, वहीं हर रोज नए जत्थों की रवानगी के साथ ही अमरनाथ यात्रा मार्ग पर भी आस्था की अनोखी तस्वीरें देखने लायक है। अब तक आपको बता दें 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री यहां पर पहुंच चुके हैं और वाकई मुझे लगता है हमारे देश में इससे खूबसूरत तस्वीर सनातन की और क्या हो सकती है, आस्था की और क्या हो सकती है कि देखिए कठिनाइयां कितनी, दुश्वारियां कितनी, मौसम की दुश्वारियां और प्लस साथ ही साथ आप जहां जा रहे हैं इतना कठिन मार्ग है, उसके बावजूद देखिए हर साल वही उत्साह वही उमंग देखने को मिलता है
9: और वैसे ही रंग देखने को मिलते हैं। आज हमने इनफैक्ट दो तीन लोगों की बात वो बाइट भी चलाई है, आई थिंक कुछ 70 के आसपास एज ग्रुप के आसपास वो शख्स होंगे, उन्होंने बोला कि मैं पिछले 2-3 साल से लगातार ये चढ़ाई करते आ रहा हूं और चल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन वही अगेन जो हमने पहले दिन भी बात की थी ना कि आस्था इतनी बड़ी है इन लोगों के लिए कि इनको उससे ऊपर कुछ नजर नहीं आता, तो ये मुझे लगता है यहाँ पर जाकर शायद भाव अलग होता है। यहाँ बैठकर फील करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है।
10: सबसे ज्यादा और बड़ा क्रेडिट शासन प्रशासन को जाना चाहिए क्योंकि इस बार और हम कहें कि लगातार हर साल इंतजाम बहुत अच्छे हो रहे हैं वहां पर, बहुत खास इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं, जगह जगह पर वहां पर ऑक्सीजन बूथ भी बनाए गए हैं अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है। इसके अलावा तमाम एजेंसियां जो हैं वो मिलकर काम कर रही हैं। आपने देखा होगा कि उससे पहले मॉक ड्रिल्स कितनी हुई थी यात्रा शुरू होने से पहले, यानी हर चीज को सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी एक बड़ा कारण है कि श्रद्धालुओं में भी उत्साह बहुत ज्यादा देखा जा रहा है।
5: और पता है यही एक बड़ी वजह है कि पहले जब लोग जाया करते थे पुराने समय में, तो जब गांव वाँव से लोग निकलते थे और हम कहते हैं बुजुर्ग ही जाते थे उस समय यात्राओं पे इस तरह के धाम में, तो बाकायदा भोज भात सब करा के फिर वो जाते थे क्योंकि ये था कि पता नहीं है वापस नहीं लौटेंगे, दुश्वारियां इतनी थी ना, तो उनको ये लगता था कि ये अब जा रहे तो ये इनकी आखिरी यात्रा है, अब सीधे वहीं पर सीधे वो पंचतत्व में विलीन होंगे, कुछ इस तरह की खबरें सामने आएंगी, उनको लगता था। लेकिन ये श्रद्धा और आस्था की वाकई जो नवजोत ने भी बात की कि देखिए प्रशासन जो है यहाँ पर वो क्रेडिट देना उनको बनता है कि अब देखिए रास्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज इतनी हो गई है जिसकी वजह से देखिए इतनी अनोखी और खूबसूरत तस्वीरें हर साल हमारे सामने आती हैं।

तरफ भोलेनाथ के जयकारे, मन में भक्ति का सागर और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते कदम। हिमालय की ये वादियाँ इन दिनों शिव भक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पूरे देश से भक्त उमड़ रहे हैं। हर भक्त जानता है कि अमरनाथ गुफा के दर्शन आसान नहीं है, लेकिन आस्था का जोश हर चुनौती पर भारी पड़ रहा है। अमरनाथ यात्रा शुरू हुए अभी 3 दिन ही हुए हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, भक्तों का जोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 2 रूट से पूरी की जा रही है। कुछ श्रद्धालु बालटाल रूट से यात्रा कर रहे हैं तो कुछ पहलगाम के रास्ते से। आज बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा का 4th जत्था रवाना हो गया। पहला जत्था 3 जुलाई को दर्शन के लिए निकला था और श्रद्धालुओं के 3 जत्थे दर्शन कर चुके हैं। बालटाल बेस कैंप पर रोजाना सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन नजर आ रही है।

वहीं पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से भी आज श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रवाना हुआ। बालटाल रूट के मुकाबले इस रास्ते पर वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन ये भक्त भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए यात्रा के हर पल को अपने

0: इस बीच प्रशासन भी अमरनाथ यात्रियों की सुख सुविधाओं और सहूलियत का पूरा ख्याल रख रहा है। रेलवे ने अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू से लेकर श्रीनगर तक स्पेशल ट्रेन चलाई है। इससे तीर्थ यात्रियों का सफर आसान हो गया है। रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट कर यात्रियों को हर जरूरी जानकारी भी दी जा रही है।
1: बहुत बहुत ही अच्छी सुविधा है, रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है। और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है, उससे और ज़्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुंच जा रहे हैं बिना किसी थकान के। हम लोग सुबह उतरे हैं और वहां से डायरेक्ट हम लोग यहां आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम यात्रा रहा।
2: तो आगे आसान हो गया,
1: बहुत बहुत बहुत आसान रहा और बहुत ही सबको, मतलब जितने लोग हैं साथ में सबको बहुत ही, कोई मुश्किल नहीं आई।
3: मैं महाराष्ट्र मुंबई से आई हूँ और हम लोग यहाँ से वंदे भारत से आए। बहुत ही सुविधा सुंदर थी। जैसे हम लोग प्लेन में रहते तब जो सुविधाएं रहती है ऑलमोस्ट नियर बाय सुविधाएं ये थी, इसलिए ये जो प्रवास है वो सुखकर लगा।
0: पूरे रास्ते पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत के साथ साथ सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रविवार को चंदनवाड़ी में बने बेस हॉस्पिटल का जायजा लेने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचे।
4: जितने भी अधिकारी और कर्मचारी लगे हैं सभी विभागों के, पूरी शिद्दत से वो यात्रियों की और श्रद्धालुओं के लिए खिदमत में लगे हैं। यहाँ पिछले 2 वर्ष से 100 बेड का अस्पताल भी काम कर रहा है। कश्मीर डिवीजन का हेल्थ डिपार्टमेंट और बाहर से भी अनेक डॉक्टर यहाँ आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आते हैं। और जो मुझे बताया गया, करीब 2,500 पेशेंट्स यहाँ रोज आ रहे हैं आउटडोर में। अभी मैं मिला भी हूँ कई मरीजों से जिनको हाई एल्टीट्यूड की सिकनेस हो गई थी, किसी को ऑक्सीजन की कमी थी, तो बेहतर इलाज की सुविधा भी है। हर तरह से इंतजाम बेहतर किए गए हैं।
0: इस साल 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ अवसर है और इसी मौके पर ये यात्रा संपन्न होगी। इस यात्रा में अब तक 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री शामिल हो चुके हैं और दिलचस्प बात ये है कि इस बार इस तीर्थयात्रा में नई पीढ़ी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। यात्रा में जिस रफ्तार से भक्तों की संख्या बढ़ रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इस साल अमरनाथ यात्रा में भी श्रद्धालुओं की संख्या एक नया कीर्तिमान बनाएगी। पहलगाम से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो तस्वीरों में आपने देख ही लिया है किस तरीके से दर्शन के लिए तांता लगा हुआ है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ जहां दर्शन कर लौटे श्रद्धालु खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यात्रा पर निकले भक्तों के बीच बाबा के दर्शन का उत्साह भी देखने लायक है।
6: हालांकि आपको बता दें, इस बीच एक खबर चर्चा में यह भी है कि जिस प्राकृतिक हिम शिवलिंग का दर्शन करने श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं, उसका आकार धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में बाबा के प्रति अटूट श्रद्धावानों के मन में अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इस बार ये प्रक्रिया सामान्य से तेज है।

0: हर हर महादेव, बम बम भोले के जय घोष के बीच अमरनाथ यात्रा पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ जारी है। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा पहुंच रहे हैं। दर्शन कर लौटने वाले श्रद्धालुओं के चेहरों पर संतोष और आस्था की चमक साफ नजर आ रही है। वहीं यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु पूरे उत्साह और विश्वास के साथ कठिन रास्ता तय कर रहे हैं।
1: हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमने प्रोसेस से सारा काम किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के घर से ही आए थे और जरा सा भी यहाँ पे कोई तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई।
2: सरकार द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं बहुत अच्छे किए गए हैं, जो जम्मू सरकार है वो भी हमारी पूरी मदद कर रही है।
0: इस बीच अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक हिम शिवलिंग के आकार को लेकर चर्चा तेज हो रही है। कहा जा रहा है कि पवित्र शिवलिंग का आकार धीरे धीरे घट रहा है। बताया गया कि जून के महीने में हिम शिवलिंग की ऊंचाई करीब 7 फीट देखी गई थी। अमरनाथ गुफा में बनने वाला शिवलिंग पूरी तरह प्राकृतिक है। हर साल प्राकृतिक रूप से पवित्र गुफा में शिवलिंग बनता है और दर्शन के लिए भक्त यहाँ पहुँचते हैं।
3: आप पहले जत्थे में थे, पहले दर्शन करके आप वापस लौटे हैं?
4: हाँ जी। बहुत
3: कैसे रहे दर्शन?
4: बहुत अच्छे रहे जी, बहुत ही अच्छे लगे।
3: बहुत चिंता है भक्तों के बीच में कि शिवलिंग का आकार बहुत घट रहा है, तो कैसा आपको फील हुआ वहाँ पर? क्या
4: ऐसे तो फील हुआ भाई, क्या वो बहुत ही कम था शिवलिंग, लेकिन बड़ा मजा आया देखने में, बहुत ही ज्यादा मजा आया, आनंद आया।
5: यात्रा जब भी स्टार्ट होती है तो शिवलिंग फुल पूरे होते हैं, तो आज हमें देख के ऐसे थोड़ा दुख हुआ कि शिवलिंग जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, इससे भक्तों में थोड़ी सी निराशा जरूर है।
0: विशेषज्ञों के अनुसार मौसम में बदलाव, तापमान बढ़ने, गुफा के भीतर नमी और श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही जैसे कारणों से ही हिम शिवलिंग का आकार कम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
3: अमरनाथ गुफा पर आने वाले श्रद्धालुओं में सबसे बड़ी मायूसी इस बात को लेकर है कि हमेशा अमरनाथ गुफा में अब पिछले कुछ सालों के दौरान शिवलिंग का आकार ज्यादा समय तक नहीं रह पाता है। पिछले साल भी यात्रा शुरू होते ही शिवलिंग ने आकार घटाना शुरू कर दिया था और कुछ ही दिन तक मात्र अमरनाथ गुफा में श्रद्धालुओं को शिवलिंग के दर्शन हो पाए थे।
0: आमतौर पर यात्रा के दौरान कई हफ्तों में धीरे धीरे हिम शिवलिंग का आकार घटता है, मगर कई बार गर्मी बढ़ने पर आकार तेजी से भी घट सकता है। आस्था और विश्वास यही कहता है कि बाबा बर्फानी का स्वरूप प्रकृति के साथ बदलता है, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा और उनका विश्वास हमेशा अटल रहता है। अमरनाथ से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए, आम तीर्थ यात्रियों के अलावा बड़ी संख्या में साधु संत भी अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, तो वहीं बाबा बर्फानी के दर्शन पाकर धन्य होने की इच्छा लिए यात्रा मार्ग पर नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ साधु संतों से गुड न्यूज टुडे ने भी बातचीत की है। कोई साधु पिछले 3 सालों से यात्रा पर हर साल आ रहा है, तो कोई पिछले 40 सालों से यहाँ पर आ रहा है।
3: यहाँ पर कई सारे साधु संत ऐसे भी हैं जो 40 बार अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, कुछ सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ जो है एक मिलन का हम कहें या भक्ति का एक अवसर अमरनाथ यात्रा भी इन साधु संतों को देता है। हम शुरू करेंगे इनसे। आप सर अपना नाम बताइए महाराज जी, और आप कहाँ?
7: बात करा नाम सरस्वती। हाँ,
3: तो आप कब तक, कितनी बार अभी तक अमरनाथ यात्रा कर?
7: हम 3 बार आए हैं।
3: अच्छा, 3 बार,
7: तीसरी बार।
3: आप?
8: हम पुष्कर पीठाधीश्वर महंत दंडी स्वामी श्रवण देवाश्रम जी महाराज, 89 से हम आ रहे हैं परमानेंट। संभवतः 38वीं यात्रा है। दो यात्राएं कोरोना के समय में, दो यात्राएं हमारी नहीं हो पाई, नहीं तो 40-41 होती।
3: तो आप 89 यानी 89 से अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं, कितना बदलाव तब से अब तक देख रहे हैं? उस यात्रा के इतिहास को भी थोड़ा दोहराइए, तब किस तरह यात्रा होती थी और अब किस तरह यात्रा?
8: हमारे हिसाब से यात्रा तो हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अच्छी ही होगी।
9: मैं बस यही चाहता हूँ, जो भी हमारे साधु महात्मा आते हैं, ये अमरनाथ यात्रा बहुत पवित्र यात्रा है, तो साधु महात्माओं के लिए सरकार से बस यही हमारी विनती है कि उनके लिए कुछ ऐसे इंतजाम कर दे कि उनको थोड़ा सा उनके लिए अलग व्यवस्था करें। हालांकि साइन बोर्ड ने बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं, जैसे साधु महात्माओं के लिए जम्मू से निःशुल्क बस सेवा भी की हुई है, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए यात्रा पास के लिए भी कुछ अच्छी सेवा करें।
8: ये सामंजस्य जो मेल जोल का है, इससे बेहतरीन सामंजस्य और मेलजोल का कहीं नहीं हो सकता। और बाबा की यात्राएं अनवरत ऐसे चलती रहे, हमारा जब तक जीवन रहे, बाद में हम नहीं होंगे तो क्या होगा? जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा, है? देखने भी कौन आएगा? जब तक है तब तक, जब तक सीना जीना है तब तक सीना है। एक छंद के माध्यम से कहना है कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, और ध्यान बढ़े तपसी संग की ने, और मोह बढ़े परिवार की संगति, और लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नर मूड की संगति, और काम बढ़े तिय में चित दीने, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े कभी दीन सुसजन संगति की ने, बोले संगति ही गुण उपजही, संगति ही गुण जाही, क्यों? बोले बांस फांस अरुमीसरी एक ही भाव बिका, बोल बर्फानी बाबा की।
6: और सावन से पहले का महीना होता है आषाढ़ का महीना, जिसमें अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, लेकिन इसके बाद ही भगवान भोले का प्रिय सावन महीना भी आने वाला है, जिसके हर सोमवार को करोड़ों शिव भक्त बाबा भोले की न केवल पूजा आराधना करते हैं, बल्कि दूर दूर से कांवड़ लेकर भगवान का जलाभिषेक भी करते हैं।
10: और यही वजह है कि सावन महीने से पहले भोलेनाथ के धाम पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने लगी हैं, और इन धामों में देवघर के बाबा बैद्यनाथ का धाम भी शामिल है। झारखंड में स्थित इस धाम में श्रद्धालुओं की संख्या सुविधा के लिए प्रशासन तैयारी में जुटा है।
11: के बाद सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है, और झारखंड के देवघर में स्थित महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के धाम पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने वाली है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक श्रद्धालु सावन में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं। वैसे तो बाबा बैद्यनाथ धाम पूरे साल भर शिवमय रहता है, और भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए हमेशा यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने की बात ही और है, क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। और खास बात ये भी है कि सावन में हर साल बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला लगता है, जिसका शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बैद्यनाथ धाम में इस बार श्रावणी मेला 31 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये मेला 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगा। इस दौरान कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर आएंगे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे सावन भर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए स्पर्श पूजा पूरी तरह बंद रहेगी, और कांवड़िये अर्घा के माध्यम से यहाँ पर स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। वही हर साल की तरह इस साल भी श्रावणी मेले में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में देवघर में झारखंड और बिहार के सरकारी अफसरों की इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें कांवड़ियों के आवागमन और मेले के इंतजामों को लेकर अहम फैसले किए गए।
12: जहाँ भी इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में समन्वय स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफ़ी मुद्दों पर बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्प का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है आपस में शेयर करेंगे ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया से करें।
11: बताया गया है कि मेले में भीड़ पर नियंत्रण के लिए अलग अलग स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। कावड़ियों के ठहरने, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था होगी, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार श्रावणी मेले के दौरान कावड़ियों की डबल डेकर गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।
13: सबसे ज्यादा मेजर इशू था ये डबल डेकर जो गाड़ी, जो मॉडिफाइड गाड़ी आती है उसके लिए, तो मॉडिफाइड गाड़ी के बारे में अभी हुआ कि आप अभी से ही बिहार साइड में ही अभी से प्रचार हो कि मॉडिफिकेशन हो ही ना, यहाँ पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ से इनिशिएट ही नहीं हो, इसके बारे में चर्चा हो और उन्होंने इस बारे में अभी से ही कार्रवाई करने के बारे में।
11: ये भी तय किया गया है कि अब सुल्तानगंज से हर दिन जल उठाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी पहले से ही देवघर और दुमका जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों के बेहतर उपयोग में काफी सुविधा होगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी जिलों में तालमेल बिठाकर इंतजाम किए जाएंगे ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से देवघर पहुंचकर बाबा को जल अर्पित कर सके। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: कोचिंग हब कोटा शहर से करीब 33 किलोमीटर दूर चारचोमा नाम का एक गांव है जहां भोलेनाथ का बेहद पुराना मंदिर है। मंदिर की खासियत यह है कि यहां पर स्थापित शिवलिंग पंचमुखी है, यानी शिवलिंग के पांचों मुख अलग अलग आध्यात्मिक शक्तियों और रूपों को दर्शाते हैं।
14: वहीं आपको बता दें कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना कला गुप्त काल की बताई जाती है, जिसके मायने ये है कि मंदिर काफी पुराना है और यही वजह है कि यहाँ पर दूर दूर से शिव भक्त आते हैं और पंचानन के पंचमुखी शिवलिंग का दर्शन कर अपना जीवन धन्य करते हैं।
11: भगवान शिव को पंचानन कहा जाता है। पंचानन मतलब पांच आनन वाले, यानी पांच मुखों वाले। भगवान भोले अपने पंचानन नाम को पूर्णता के साथ सार्थक करते हैं राजस्थान के कोटा जिले में स्थित चोमेश्वर महादेव मंदिर में, क्योंकि कोटा के चारचोमा गांव में स्थित चोमेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान शिवलिंग पंचमुखी है, जिसमें भगवान शिव के पांच स्वरूपों के दिव्य और अलौकिक दर्शन होते हैं। इस पंचमुखी शिवलिंग में महादेव के तत्पुरुष अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस प्राचीन मंदिर में महादेव के अलावा ब्रह्मा, विष्णु, गणेश और साक्षात जगदम्बा के भी दर्शन होते हैं।
15: चोमेश्वर महादेव जो है ये शिव रूप में है, ये पंचमुखी मूर्त है। पंचमुखी जो मूर्त है, सामने श्री चोमेश्वर महादेव जी विराजमान है, एक विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी महाराज है, जगत जननी जगदम्बा मैया है, फिर पीछे जो गर्भगृह में है वो माता पार्वती विराजमान है।
11: मंदिर की प्राचीनता को लेकर भी कई तरह की धारणाएं सामने आती हैं। कुछ लोग इस मंदिर को 5000 साल से भी ज्यादा प्राचीन कहते हैं। हालांकि गुप्तकालीन स्थापत्य शैली में बने होने के कारण इतना तो तय है कि मंदिर का निर्माण कम से कम 18 या 1900 साल पहले हुआ होगा। मंदिर के गर्भगृह, विशाल स्तंभ और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी आज भी उस दौर की शिल्पकला की सरगोशी करती है। समय के साथ मंदिर के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण जरूर हुआ, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पहचान आज भी बनी हुई है।
15: बहुत मान्यता है मंदिर की, असीम गर्भा है, सुबह डेली नाथ होके बड़े दर्शन होते हैं भोलेनाथ के अच्छे, और श्रद्धालु बहुत आते हैं। महाशिवरात्रि कहाँ पे मेला लगता है, चार मसूरती के नाम से जो प्रसिद्ध है, 15 दिन का मेला लगता है सर, बहुत अच्छा मेला लगता है, बड़ा मान्यता है।
0: मंदिर के प्रांगण में एक प्राचीन कुंड भी मौजूद है। स्थानीय मान्यता कहती है कि इस कुंड में श्रद्धा के साथ स्नान करने से त्वचा संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। हालांकि मेडिकल साइंस की कसौटी पर इस दावे की पुष्टि उपलब्ध नहीं है। वैसे श्रद्धालु इस विश्वास के साथ यहां आते हैं और कुंड में स्नान के बाद त्वचा से जुड़ी व्याधियों में लाभ का दावा भी करते हैं।
15: कुंडे यहाँ पे उसमें ना दे दो दिन लोग आते हैं, बढ़िया चरम रोग वगैरह हटते हैं, बढ़िया अच्छी मान्यता है, बहुत अच्छी जगह है। अभी सावन का महीना आ रहा है, बहुत श्रद्धालु आएंगे, बढ़िया दर्शन करेंगे भोलेनाथ के, सबके ऊपर आसीन करवाए भोलेनाथ।
0: मंदिर परिसर में मौजूद प्राचीन ब्राह्मी शिलालेख, देवी प्रतिमा और ऐतिहासिक बावड़ी इस बात की गवाही देते हैं कि लंबे समय से ये मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। साफ है कि आस्था और विश्वास के साथ प्राचीन विरासत को अपने अंदर समेटे चारचोमा का पंचमुखी महादेव मंदिर कोटा जिले की धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और महादेव के पंचमुखी स्वरूप का दर्शन कर खुद को धन्य महसूस करते हैं। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे बारिश के बीच मिशन जिंदगी।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने किया रिसीव। द्विपक्षीय बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल डील पर लग सकती है मोहर। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर के साथ लैस। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम पर भी भारी दिखी आस्था। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन, विश्व शांति सद्भावना और मानवता का संदेश दिया। रामबन में भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते खोले गए बगलिहार डैम के 3 गेट, पूरी कश्मीर घाटी में जमकर हो रही बारिश।
3: देखिए कहा तो यही जा रहा है कि मॉनसून पहुंच चुका है देश के कई राज्यों में, लेकिन फिलहाल हमें दिल्ली एनसीआर में ना बारिश देखने को मिल नहीं रही है।
1: बट आपने बोला कि सैटरडे आपने देखी थी
3: थोड़ी सी बारिश,
1: थोड़े
3: से इलाके में मॉनसून की बारिश होती है पूरे इलाके में और झमाझम बारिश होनी चाहिए, वैसा कुछ था नहीं।
1: बट कल संडे वाज प्लेजेंट।
4: आई नो, जैसे सैटरडे आप बता रही हैं थोड़े से इलाके में, तो उस दिन मैंने तो नहीं देखी, लेकिन संडे मैंने बारिश देखी अपने इलाके में, वही संडे मेरे इलाके में हुई। तो वो मॉनसून वाली बारिश नहीं हुई है, जो अच्छी वाली बारिश जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो नहीं हुई है।
3: और इतना इलाका दूर भी नहीं है मेरे ख्याल से, इस पूरे एरिया में होनी चाहिए। अच्छा हाल ये हो रहा है कि नोएडा के एक सेक्टर में बारिश हो रही है और दूसरे में बारिश ही नहीं।
1: तो यही तो है ना, आपका और हमारे घर का ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, तो इधर हुई है तो उस सेक्टर में अभी नहीं पहुंची।
4: एग्जैक्टली,
1: तो वेट ही चल रहा है अभी तो।
3: और कुछ ऐसे राज्य है जहां पर लोग मॉनसूनी बारिश को खूब एंजॉय भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे राज्य भी जहां पर ये बारिश लोगों का कड़ा इम्तिहान भी ले रही है।
1: बिल्कुल, अब देखिए जम्मू कश्मीर, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से पनपे हालातों के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं, जहां उफनती नदियों और बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।
5: जिस मानसून ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है, वही मानसून अब कई इलाकों में लोगों की कठिन परीक्षा ले रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सांबा की हैं, जहां अचानक नदी में आए पानी ने 5 लोगों को मुश्किल में डाल दिया। देखते देखते हालात चुनौतीपूर्ण बन गए, लेकिन वक्त गंवाए बिना एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रस्सियों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जोरदार बारिश के बाद उड़ीसा की सालुंकी नदी उफान पर आ गई। तेज बहाव के बीच 2 महिलाएं फंस गई। पानी का रौद्र रूप और तेज धार दोनों ही बचाव अभियान में बड़ी चुनौती थे। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी। करीब 4 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद दोनों महिलाओं को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया। बाढ़ के बीच रेस्क्यू अभियान की ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से भी सामने आई। लगातार बारिश के चलते पुल बनाने के काम में लगे 14 मजदूर चारों तरफ पानी में घिर गए। खबर मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा, घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आखिरकार सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जाहिर है मॉनसून ने आते ही भले ही लोगों को गर्मी से राहत दी हो, लेकिन कुछ जगहों पर मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। अब जरा सैटेलाइट तस्वीरों से समझिए कि आखिर कई इलाकों में मॉनसून हदें क्यों लांघ रहा है। दरअसल इस वक्त पूर्व मध्य अरब सागर से लेकर कोंकण तट तक घने बादलों का एक सिस्टम एक्टिव है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक मजबूत वेदर सिस्टम बना हुआ है, जो देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह बना हुआ है। मॉनसून के मिजाज को और करीब से समझना हो तो इस तस्वीर पर भी गौर फरमाइए। ये इंफ्रारेड तस्वीरें बता रही हैं कि अगले कुछ घंटों में

0: मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने वाला है। अरब सागर से लगातार नमी मिलने की वजह से महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं बारिश के सिस्टम को और ताकत दे रही हैं। उधर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम का असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत तक साफ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और उफनती नदियों के करीब न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कहीं बारिश कम तो कहीं मूसलाधार बारिश। मॉनसून आने के बाद पूरे देश का कमोवेश यही नजारा है और जहां मूसलाधार बारिश है वहां मुसीबतें हुई हैं। ऐसे ही एक तस्वीर पूना से आई है जहां पर लगातार भारी बारिश से मुसीबत में घिरे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। दरअसल लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और मुंबई पुणे नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। पुणे में से मुंबई तथा मुंबई से पुणे दोनों दिशाओं में यातायात अगले आदेश तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
2: इस बीच पुणे के चाकण इलाके में एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुणे नासिक हाईवे पर अम्बेथन रोड पर कुछ इमारतें चारों ओर पानी से घिर गई, जिससे इन इमारतों में करीब 70 से 80 लोग फंस गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया।
3: ओडिशा के कटक की तस्वीरें दिखाते हैं। महानदी यहां पर उफान पर है। मूसलाधार बारिश से नदी की धारा इन दिनों पूरी रफ्तार में बह रही है। रविवार को 3 युवक महानदी के नरज स्ट्रेच पर नदी की तेज धार में फंस गए। जानकारी के मुताबिक तीनों लड़के नदी किनारे तफरीह करने के लिए गए थे। एक युवक फिसलन की वजह से नदी में गिर गया। उसे बचाने के लिए बाकी दोनों युवक भी नदी में कूद गए, लेकिन नदी की तेज धार में वो फंस गए। स्थानीय लोगों को जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद वो तमाम लोग यहां पर बोट लेकर पहुंचे और दो युवकों को सुरक्षित किनारे पर बचा लिया गया, जबकि एक को अचेत अवस्था में किनारे लाया गया।
1: और एक दिन के विराम के बाद नवसारी डांग जिले में मॉनसून ने एक बार फिर से जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आहवा, वघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम बेहद सुहाना हो गया है और इसका आनंद लेने बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां पहुंच रहे हैं।
0: मॉनसून की बारिश जमकर बरस रही है, कहीं राहत बनकर तो कहीं आफत बनकर। लेकिन जो लोग गर्मी से राहत के लिए सैर पर निकल गए हैं वो इस मौसम का भी खूब आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां घूमने आए सैलानी मूसलाधार बारिश में भी बोटिंग का लुत्फ लेते नजर आए। नीचे झील का पानी और ऊपर आसमान से बरसती बूंदे।
4: कल तक यहाँ पर कोई बारिश नहीं थी, आज बहुत बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वेदर भी बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत सारे आए। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की है। रास्ते में पेड़ भी गिरे हुए थे वो भी हटाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत भीड़ है, बहुत पब्लिक आई हुई है।
0: असल में नवसारी डांग जिले में मॉनसून ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आहवा, वघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम बेहद सुहावना हो गया है और इस मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। आहवा, वघई, सुबीर और सापुतारा जैसी जगहों पर वीकेंड और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक डांग पहुंचे हैं। नवसारी से रौनक जाने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आधुनिक समय में अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को कैसे सहेज कर रखा जाए, इस कला को बाखूबी निभा रहा है अरुणाचल प्रदेश का आपातानी समुदाय। इस समुदाय की ही ओर से ड्री महोत्सव मनाया गया, जिसकी खूबसूरत और अनोखी रिवायत वाकई देखने लायक है।
3: बिल्कुल, देखिए समृद्ध खेती बाड़ी की कामना से जुड़ा ये त्योहार गांव के साथ शहर में भी बखूबी मनाया जाता है, जिसमें आपातानी समुदाय के पारंपरिक गीत, लोक नृत्य और सांस्कृतिक झलकियां आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें इस समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, रीति रिवाज की झलक भी देखी गई।

0: क्यों मनाते हैं ड्री फेस्टिवल?
1: हम लोग का तचंतियो बोल के ना पुक को मरुआ और डान को नहीं खाने के लिए और कीड़ा नहीं खाने के लिए ऐसे पूजा करते हैं।
0: अच्छा, ये मतलब ये क्यों लगाते थे आप लोग?
1: ये जो पहले सुंदर होने के लिए तेतुल लगाया है।
0: आप भी मैडम लगाते? सब लोग लगाते थे?
1: सब लोग लगाता है। हाँ, आजकल जो पूरा बंद हो गया।
0: हाँ, लगता है सुंदर होने के लिए?
1: हाँ, सुंदर होने के लिए हम लोग को पहले इतना सुंदर है बोल के देखा था।
2: पहले जमाना में ऐसे नहीं खेलते थे और जंगल में शिकार करने के लिए जाते थे। आजकल वो उसका ट्रेडिशन नहीं है तो लड़का बच्चा को थोड़ा सा सिखाने के लिए वो खेला में आ जाता है।
3: ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है तो द्री का जो जीवू पुजारी कल सुबह को पूरा कर चुका गांव गांव में, तो पौधा में कीड़ा ना लगे और जो भी मिट्टी का जो बीमार को ये पुजारी लोग द्री फेस्टिवल में ठीक करता है दिन को।
4: द्री फेस्टिवल जो है हम लोग का जो एग्रीकल्चर जो भी गार्डन है एग्रीकल्चर है वहाँ पे कीड़ा मकोड़ा ना खाए तो उसके लिए पूजा किया जाता है द्री में। तब ये मॉडर्न वे में यहाँ पे कल्चर वगैरह कॉमन में सेलिब्रेट करते हैं। पहले जमाना में अपना अपना विलेज लेवल में मनाया जाता था तो अभी कॉमन में मनाया जाता है।
5: हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखेंगे बड़े पर्दे पर अक्षय की कॉमेडी, पड़ रही है आलिया के एक्शन पर भारी।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: Die Hard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: क्या आपको नींद आने में परेशानी होती है? क्या बेवजह की चिंताओं की वजह से आपको नींद नहीं आती? क्या आलस्य तो बना रहता है लेकिन नींद कभी पूरी नहीं हो पाती? कौन से ग्रह हैं नींद के लिए जिम्मेदार और अच्छी नींद के क्या हैं ज्योतिषीय उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: भाई फिल्में देखी कोई वीकेंड में आप लोगों ने?
12: एक देखने का मूड तो है जो अभी आपने सजेस्ट किया मुझे.
14: वो भी देखनी चाहिए. लेकिन भाई मैंने सुना है कि आलिया से ज्यादा अक्षय की डिमांड ज्यादा हो रही है.
12: मैं तो आलिया और शर्वरी के तारीफें भी सुन रही थी लेकिन शर्वरी इज ऑन द एज. आपको समझ में आ गया मैं किसकी बात कर रही हूँ?
14: नहीं, हम अल्फा की बात कर रहे हैं.
15: अल्फा की बात कर रहे हैं. लेकिन हाँ, लेकिन
12: नहीं, अगर चॉइस दी जाए तो व्हाट वुड यू सिलेक्ट?
15: देखिए, मन तो ऑफकोर्स था कि भाई अल्फा देखे. हाँ. क्योंकि एक्शन भाई लीड रोल में फीमेल है तो ऑफकोर्स. हाँ. हम देखे कि भाई वो किस तरह से एक्शन मूवीज करती है क्योंकि प्रियंका को हमने एक्शन मूवीज में देखा है. हुँ. अब ये कैसे करती है वो देखने वाली बात होती. लेकिन हाँ, जो खबरें आ रही है बताया जा रहा है कि वेलकम टू द जंगल जो है वो छा गई है और लोगों को बड़ा मजा आ रहा है उनकी कॉमेडी देखकर.
12: आपने देखी नवजोत?
14: नहीं, मैंने देखी नहीं है लेकिन मैंने इसकी रिव्यू सुना है कि बहुत अच्छी फिल्म है. तो बॉक्स ऑफिस का हाल आपको दिखा देते हैं.
16: वेलकम टू द जंगल का कॉमेडी धमाल जारी. हाई ऑक्टेन एक्शन अल्फा के तूफान में भी डट कर खड़ी रही अक्षय की कॉमेडी फिल्म. करीब दो वीकेंड पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल का बॉक्स ऑफिस पर धमाल लगातार जारी है. 26 जून को बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने धमाकेदार एंट्री की थी और पहले वीकेंड पर दर्शकों का भरपूर एंटरटेनमेंट किया. दूसरे वीकेंड पर वेलकम टू द जंगल के सामने अल्फा की तगड़ी चुनौती थी. आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की एक्शन पैक्ड मूवी के सामने अक्षय की कॉमेडी की पकड़ हल्की मानी जा रही थी लेकिन कयासों को गलत साबित करते हुए वेलकम टू द जंगल ने दूसरे वीकेंड भी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई जारी रखी. पहले वीकेंड में वेलकम टू द जंगल ने 93 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. दूसरे वीकेंड फिल्म ने भारत में 22 करोड़ का नेट कारोबार किया. 10 दिन में फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 115 करोड़ जा पहुंचा, जबकि वर्ल्ड वाइड फिल्म की कमाई 155 करोड़ के पार जा चुकी है. 125 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है. वेलकम टू द जंगल की इस कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं अल्फा का कमजोर प्रदर्शन भी कहा जा सकता है. यशराज की स्पाई यूनिवर्स एक्शन फिल्म को दर्शकों का उतना प्यार नहीं मिला जितनी की उम्मीद की थी. नतीजा अल्फा की कमजोर ओपनिंग वेलकम टू द जंगल के लिए फायदेमंद साबित हुई. पहले वीकेंड के मुकाबले कम कमाई के बावजूद वेलकम टू द जंगल का दूसरे वीकेंड कारोबार शानदार कहा जा सकता है. बड़ी बात ये भी है कि भूत बंगला के बाद अक्षय की ये लगातार दूसरी हिट है. 120 करोड़ के बजट में बनी भूत बंगला ने 270 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. एक्शन से करियर की शुरुआत करने वाले अक्षय ने कॉमेडी जॉनर में भी जबरदस्त मुकाम बनाया है. भूत बंगला और वेलकम टू द जंगल इसका लेटेस्ट सबूत हैं और विकेट सनी इसकी अगली कड़ी होगी. इस फिल्म का डायरेक्शन प्रियदर्शन करेंगे. भूत बंगला से अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी ने कई सालों बाद वापसी की. एक्टर डायरेक्टर जोड़ी की 8वीं फिल्म हैवान रिलीज के लिए तैयार है और फिर इनकी नवी फिल्म होगी विकेट सनी, जिसके इसी साल दिसंबर में फ्लोर पर जाने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि विकेट सनी से अक्षय एक नए कॉमिक अवतार में कमबैक करेंगे. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
14: ब्रेक के लिए रुकेंगे, चाय पर चर्चा जारी है, रहिए हमारे साथ.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
17: जाए. K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए अब आपको एक ऐसी माँ की कहानी बताते हैं जिसने मुश्किल वक्त में न केवल बेटे का साथ दिया बल्कि बेटे के सपने पूरे होने की वजह वो बन गई। कोटा में पढ़ाई के दौरान गंभीर बीमारी ने एक स्टूडेंट के सपनों को संकट में डाल दिया था,
2: लेकिन उस बच्चे की माँ ने हार नहीं मानी। बेटे के लिए माँ ने ऑनलाइन क्लास की, नोट्स बनाया और बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी संभाली। माँ की मेहनत रंग लाई, अब बेटा IIT में एडमिशन लेने जा रहा है।
3: कोटा से आई ये तस्वीरें एक बेटे के लिए माँ के त्याग और तपस्या की कहानी बन गई है। इस तस्वीर में माँ और बेटा एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि परीक्षा बेटे को देनी थी, लेकिन तैयारी माँ ने भी उतनी ही की है जितनी तैयारी IIT के लिए कोई बच्चा करता है। हुआ ये कि बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले गुंजन कुमार 2 साल से कोटा में रहकर JEE की तैयारी कर रहे थे। उनका सपना था IIT से कंप्यूटर साइंस पढ़ने का, लेकिन किस्मत ने ऐसा इम्तिहान लिया कि लगा सब कुछ खत्म हो गया है। JEE एडवांस से कुछ महीने पहले अचानक गुंजन के सीने में तेज दर्द उठा। जांच में पता चला कि गुंजन का बायां फेफड़ा कोलैप्स हो गया है।
4: जर्नी में अक्टूबर में आखिरी के 3 महीने में मैं बीमार पड़ गया, मेरा फेफड़ा फट गया था, तो मेरा लंग्स का ऑपरेशन हुआ एंड 10 दिन का था हॉस्पिटल में एंड 2.5 महीने का बेड रेस्ट मिला, लेकिन उस कारण मेरी जर्नी काफी पीछे चलेगी। जे की आखिरी में मेरे स्टडी आवर्स काफी इंक्रीज हो गए पहले से एंड मम्मी का काफी सपोर्ट रहा है मेरे नोट्स बनाने में, आखिरी में शॉर्ट नोट्स बनाना, मेरे से क्वेश्चन पूछना एंड फाइनली मैंने IIT क्रैक कर लिया जे एडवांस।
3: न्यूमोथोरेक्स जैसी गंभीर बीमारी ने गुंजन को करीब 3 महीने तक बिस्तर पर रहने को मजबूर कर दिया। उनकी क्लास छूट गई, पढ़ाई रुक गई और सपना भी धुंधला पड़ने लगा। लेकिन जब बेटा कमजोर पड़ा तब माँ उसकी ताकत बन गई। BEd कर चुकी माँ गुंजन सालों बाद फिर से स्टूडेंट बन गई। उन्होंने हर ऑनलाइन क्लास खुद देखी, हर लेक्चर के नोट्स अपने हाथों से तैयार किए और फिर वही नोट्स बेटे को पढ़ाती रही।
5: जैसे कोई शॉर्ट नोट भी बनाना होता था तो सारे PDF बना के देता था, तो मैं कभी कभी इसका वीडियो भी देता था, तो मैं उसको रुक रुक के मुझे पूरा लिखती थी। फिर नहीं थोड़ा सा थोड़ा हुई कुछ जो सर खान राइटिंग होता वो जो मुझे नहीं समझ में आता था, फिर मैं इसे विशेष में रुक रुक के पूछती थी क्या है, तो मुझे बताता था।
3: उस वक्त गुंजन की लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं थी, उनकी आंखों की 70% से ज्यादा रोशनी भी जा चुकी है, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। JEE मेन में अच्छी परसेंटाइल हासिल की और अब IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ एक बेटे के IIT तक पहुंचने की कहानी नहीं है, ये कहानी माँ की तपस्या की ऐसी मिसाल है जिसने अपने बेटे के सपने को अपना सपना बना लिया। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए अब बात उस टीम की जो पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में उतरी है और फुटबॉल की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गई। अर्जेंटीना से रोमांचक मुकाबले में हार के बावजूद केप वर्डे की टीम इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी सरप्राइज टीम बनकर सामने आई है।
2: हालांकि टीम का सफर वर्ल्ड कप से खत्म हो चुका है, लेकिन अब केप वर्डे के प्लेयर्स अपने देश लौटे तो उनका स्वागत जोरदार हुआ।

0: फीफा वर्ल्ड कप में भले ही केप वर्डे की टीम का सफर थम गया हो, लेकिन स्वदेश लौटी टीम का स्वागत बता रहा है कि अभी तो इस टीम का सफर शुरू हुआ है। यह तस्वीरें केप वर्डे की उस फुटबॉल टीम के स्वागत की हैं, जिसने इस बार फीफा वर्ल्ड कप में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। यही वजह है कि जब टीम अपने मुल्क लौटी तो उनका ऐसा स्वागत हुआ मानो टीम विश्व विजेता बनकर लौटी। वर्ल्ड कप में धुरंधर टीमों को चौंकाने वाली दुनिया के सबसे छोटे देशों में एक केप वर्डे की टीम अब खुद में एक कहानी बना चुकी है। करीब 5.3 लाख की आबादी वाला केप वर्डे दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। तुलना करें तो अकेले नोएडा की आबादी इससे लगभग दोगुनी है। पश्चिमी अफ्रीका के तट से 600 से 850 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में बसे 10 ज्वालामुखीय द्वीपों के इस देश ने अपने पहले ही वर्ल्ड कप में एक तरह से इतिहास रच दिया है। केप वर्डे की इस टीम ने वर्ल्ड कप में धमाकेदार फुटबॉल खेला है। टीम ने ग्रुप स्टेज में स्पेन, उरुग्वे और सऊदी अरब जैसी मजबूत टीमों को ड्रॉ पर रोककर नॉकआउट में जगह बनाई और फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने वाला इतिहास का सबसे कम आबादी वाला देश बन गया। राउंड ऑफ 16 में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ भी केप वर्डे ने जो खेल दिखाया, हार के बावजूद पूरी दुनिया इस टीम की मुरीद हो गई।
1: Uruguay è campione del mondo também. Na passada, è stato il nostro campione del mondo. Non conseguì mai un empate.

0: nesta da Conchi Calverde para tirar lá. Mas antes disso, ninguém quer ser nada para nós.
1: दिलचस्प बात यह है कि 1975 में आजाद हुआ ये छोटा सा देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद सीमित है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन और विदेशी निवेश पर टिकी है, लेकिन अब ये छोटा सा देश फुटबॉल की एक नई ताकत के तौर पर दुनिया भर में पहचाना जा रहा है।
2: Amigé que joga junto comigo, joga contra mim, nem bife. Hoje em dia, se tu tem, ele tá jogando na televisão, e que ele é tipo, é maior rúdio que pode ter na família, você entende?
1: पहला वर्ल्ड कप महज 5.5 लाख की आबादी और इतिहास रचने वाला प्रदर्शन, केप वर्डे के लोगों के लिए जश्न की इतनी वजह काफी है। फिलहाल पूरा देश जश्न में डूबा है, दुनिया भर में इस टीम के बारे में बातें हो रही हैं और इस बहाने वो छोटा सा देश चर्चा में है, जिसे दुनिया के मानचित्र में अभी तक खोजना भी मुश्किल था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए अब आपको एक हैरतअंगेज तस्वीर हम दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रेडियो शो के दौरान अनोखा हादसा पेश आया। दरअसल फॉल्सम प्रो रेडियो के दौरान शो के दौरान उस वक्त की अफरा तफरी मच गई जब अमेरिकी झंडा लेकर नीचे उतर रहा एक स्काई डाइवर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया।
4: अब देखिए, रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं कि स्काई डाइवर रॉस अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के तहत विशाल अमेरिकी झंडा लेकर पैराशूट से एंट्री कर रहे थे। एंट्री का ये प्रोसेस शुरुआत में तो सामान्य सा लग रहा था, हजारों दर्शक उनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रॉस जमीन के करीब पहुंचे उनके साथ बंधा हुआ अमेरिकी झंडा पास के एक पेड़ में उलट गया। इससे पैराशूट का संतुलन बिगड़ा और वो तय जगह पर उतरने की बजाय पास में लगे एक टेंट पर जा गिरे। अच्छी बात यह रही कि रॉस को कोई गंभीर चोट नहीं आई। हादसे के बाद उन्होंने खुद पैदल मैदान में एंट्री ली जहां दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका वेलकम किया।
3: खबर चर्चा में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन गुड न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला जारी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
7: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
6: Learn more at emory.edu.
8: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
9: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
8: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
9: They score!
8: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें।

0: News Today. अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
7: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने किया रिसीव। द्विपक्षीय बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल डील पर लग सकती है मोहर। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर के साथ लैस। देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। खराब मौसम पर भी भारी दिखी आस्था। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन। विश्व शांति, सद्भावना और मानवता का संदेश। रामबन में भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते खोले गए बगलिहार डैम के 3 गेट। पूरी कश्मीर घाटी में जमकर हो रही बारिश।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। तो जेएनटी स्पेशल में आज बात आस्था की यात्रा से जुड़ी। इस समय देश में कई धार्मिक यात्राओं उत्सवों का दौर चल रहा है। पिछले कई हफ्तों से चारधाम यात्रा चल ही रही थी। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ भी हमने देखा। तो वहीं 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का भी श्री गणेश हो गया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली है अमरनाथ धाम से जुड़ी, दूसरी जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई और तीसरी देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम की तस्वीर। पिछले 4 दिनों से अमरनाथ यात्रा मार्ग पर आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। खूबसूरत वादियों में बोलबम का जय घोष है। 3 जुलाई की सुबह से बाबा बर्फानी के भक्तों के जोश जज्बे से भरी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। इसी बीच झारखंड के देवघर में मौजूद बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जब आस्था की एक और यात्रा कांवड़ यात्रा का श्री गणेश होगा, लेकिन उससे पहले अब से ठीक 10 दिन बाद पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज होने वाला है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा एक अनोखा उत्सव है, जब भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारते हैं। पुरी में चारों तरफ आस्था का जन समुद्र नजर आता है। जगन्नाथपुरी में भगवान की रथ यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है, जिसमें अब बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पुरी और दिखाते हैं तैयारी जगन्नाथ यात्रा की।

0: नगरी के लिए इस लकड़ी का हर टुकड़ा पूजनीय है। लकड़ी पर पड़ती औजार की हर चोट आस्था का जयघोष है। चोट से निकलती हर ध्वनि शंखनाद सी पवित्र है, क्योंकि ये ध्वनि संकेत है कि जगन्नाथ प्रभु के पधारने की घड़ी अब समीप आ चुकी है। पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए भव्य रथ बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है।
1: अभी रथ का शीर्ष पर यह काम चल रहा है, जो रथ के चारों तरफ चार चार द्वार भड़ा जो है अभी तीनों बन चुका है और एक बनना बाकी है। अभी रथ के ऊपर का काम जो है पोर्टल बढ़धरा पोर्टल लगाया गया है, उसके बाद जो 13 परस्त पोर्टल में 12 परस्त पोर्टल और पाराबाड़ी वो सब लगाया जाएगा। उसके बाद कलश का काम भी अभी चल रहा है, कलश का पिंडी और पखुड़ा वो अभी तैयार हो रहा है। उसको तैयार करने के बाद उसके ऊपर टीन का छप्पर डालने के बाद और चित्रकार लोगों को दिया जाएगा, वो चित्र करेंगे। अभी जो द्वार का जो नाट गोड़ है उसका खुदाई अभी रूपकार सेवक के द्वारा हो रहा है।
0: पुरी में भव्य रथ यात्रा का संयोग भले ही आषाढ़ के महीने में बनता है, लेकिन रथ के निर्माण और उसके श्रृंगार की यात्रा कई महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। भगवान का ये रथ महीनों के कठिन परिश्रम और तपस्या के बाद तैयार होता है।
2: आप देख सकते हैं काम अब तेजी से चल रहा है, काम अभी तेजी से पूरा चल रहा है। कैसे काम में पूरा जो कारीगर लोग हैं यहाँ पूरा काम में जुटे हुए हैं। ये रथ कला है और रथ कला में मैं मौजूद हूँ, आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ कैसे रथ का पहिया का काम खत्म हो चुका है, ये रथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बन रहा है और इसके बाद और जो काम है वो काम आहिस्ता आहिस्ता काम हो ही जाएगा। आप ये देख सकते हैं, मैं रथ का विजुअल भी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो जगन्नाथ मंदिर के पास पूरा 3 रथ अब एक जो इसका जो बड़ी पार्ट है यह बन चुका है। आप देख सकते हैं 3 रथ मौजूद हैं, ये 1, 2 और 3, ये पूरा 3 रथ यहाँ तैयार हो चुका है। बड़ी का जो है पार्ट ये पार्ट बन चुका है और इसमें जो जो पार्ट अभी लगेगा ये काम के लिए पूरा जो कारीगर लोग हैं ये लगे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे मार्किंग हो रहा है, पहिया कहीं पे, ये रथ का अलग जो हिस्सा, बाहर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा, जो जो हिस्सा है और इसका डिजाइनिंग, कलर, ये सब काम के लिए पूरा कारीगर लोग हैं वो लगे हुए हैं।
0: हर साल सैकड़ों कारीगर मिलकर इन 3 रथों को तैयार करते हैं। जब तक रथ बन नहीं जाता तब तक उसे बनाने वाले सभी कारीगर और कलाकार सात्विक तरीके से रहते हैं। आस्था की ये पूरी यात्रा समाज को एक सूत्र में पिरो देती है। पुरी में रहने वाले महाराणा परिवार पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। परिवार की हर पीढ़ी से एक सदस्य रथ निर्माण में सेवा देने का दायित्व उठाता है। भले ही वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, कोई भी काम करता हो, लेकिन रथ निर्माण के समय यहाँ सेवा देने जरूर पहुँच जाता है।
1: देखिए ये सेवा है, भगवान जी को बनाने का, रथ बनाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तो मैं बोलूँगा जो हर विश्वकर्मा सेवक ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन महाप्रभु को तिर कर तैयार करना, हर साल रथ बनाना किसी के नसीब में ही आता है। तो हमारे नसीब में हर साल हम उसी परिवार में जन्म ग्रहण किए हैं, उनके सेवा के लिए साड़ी बनाया है, तो उनकी सेवक के रूप में आज जीवन भर हमें रहना है और हर साल एक सेवा हमें प्रदान करना है। हमारे बाद हमारे नेक्स्ट पीढ़ी जो हमारे बच्चे आएंगे वो भी ये काम करेंगे, चाहे कोई भी नौकरी करे या कोई भी व्यवसाय करे, लेकिन यहाँ सेवा करना जरूरी है। तो ये बाउंड है, आप करना, आपको ही करना है और कोई दूसरा नहीं कर सकता।
0: हर साल की तरह इस बार भी अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर पुरी में रथों के निर्माण की शुरुआत हुई थी। जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर 3 रथों को बनाने के लिए वर्कशॉप मौजूद है, जहां इन रथों को बेहद मेहनत और श्रद्धा के साथ तैयार किया जाता है। इन रथों के निर्माण में 12 तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिनमें आसन, धौरा और फांसी नाम की लकड़ियों का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। आसन की लकड़ी से रथ का मुख्य खम्बा यानी दंडा बनता है, फांसी से 3 रथों के पहिए बनाए जाते हैं, तो वहीं धौरा से रथों के दूसरे कलात्मक हिस्से तैयार किए जाते हैं। इस बार भी 7 तरह की कलाओं में निपुण 200 से ज्यादा कारीगर रथों के निर्माण में पूरी आस्था के साथ जुटे हैं।
1: कुल 200 से ऊपर कारीगर लगे हुए हैं, 7 तरीके के कारीगर लगते हैं एक एक रथ बनाने के लिए। पहले चरण में मुख्य भूमिका यहाँ कारीगर लोग जो विश्वकर्मा सेवक लोग महाराणा लोग लेते हैं, उनके सहयोगी रूप में भोई सेवक रहते हैं। तो तीसरे कारीगर में आते लोहार जो लोहे का कांटा वगैरह रथ के लिए बनाते हैं, और रूपकार जो खुदाई का काम करते हैं, कार्विंग का काम करते हैं। उसके बाद चित्रकार आएंगे, उसके बाद दर्जी आएंगे जो कपड़े का काम करते हैं, रथ के ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है उसको, उसके बाद जो कपड़ा डालेंगे जो ऊपर के कलश लगाएंगे वो कोठोश्वासिया सेवक है, उनका काम आएगा। इस तरह के 7 तरीके के कारीगर मिलकर एक रथ बनाते हैं।
0: यानी हुनर के आधार पर कारीगरों की जिम्मेदारियां तय हैं। ढांचे का निर्माण, कार्विंग, चित्रकारी, रंग रोगन, कलश स्थापना और भगवान की पोशाक बनाने की जिम्मेदारी अलग अलग कारीगरों में बटी हुई है। यहाँ तक कि रथों के निर्माण में काम आने वाली कीले बनाने के लिए भी अलग कारीगर हैं, जो भगवान के विशाल काय रथों के लिए 2 इंच से लेकर 4.5 फीट तक की कीले तैयार करते हैं।
3: यह कील देखिए 16 mm की, ये जो कील है ये चेसिस में रहता है, ये जैसे नट बोल्ट है वो घुमा के इसको अंदर देते हैं, ये ऊपर बांध के रखेगा, ये नीचे ऐसे पलटा के ये बांध के रखेगा, ये जाने में मैंने सकपचर जैसे काम करता है, ये कील ऐसे ही बनता है।
2: सबसे बड़ा कील जो है,
3: सबसे बड़ा कील दिखा रहे हैं हम आपको,
2: ये कील देखिए,
3: ये देखिए ये कील है, ये 4.5 फुट की कील, ये जब भी ऊपर ये सबसे ऊपर लगता है, ये 13 परस्त पोटोल है, उसको बोलते हैं पोटोल, उस पे पूरा घुसा में पूरा भेद के जाएगा नीचे तक।
0: यात्रा में दिन कम बचे हैं और काम ज्यादा, लेकिन टाइम टेबल इस तरह बनाया गया है कि रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले यानी 15 जुलाई को ये तीनों रथ जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में संसार की सबसे खास सवारियों को बैठाने के लिए सजे धजे तैयार खड़े नजर आएंगे।
4: जुलाई 15 तारीख को ये सब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों रथ का काम यहाँ पर चल रहा है, हर कारपेंटर ज़्यादा खुश होकर काम कर रहे हैं। रथा और जो काम बाकी है, जितना दिन हमारा हाथ में है, इस दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा।
0: जगन्नाथ के जयकारों के बीच रथों के निर्माण का काम अब अंत की ओर बढ़ रहा है। इंतजार उस दिन का है जब इन दिव्य रथों में सवार होकर जगत के नाथ अपना जग देखने निकलेंगे और सारी पूरी नगरी आस्था के उत्सव में रम जाएगी। लेकिन उससे पहले फिलहाल वर्कशॉप में रथों का निर्माण देखने के लिए भी रथ यात्रा से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथपुरी पहुंच रहे हैं।
2: हर तरह की इंतजाम हो रही है और भक्तों का यहाँ भीड़ भी हो रही है, यहाँ बहुत सारे भक्त आ रहे हैं। आपको ये दिखाऊंगा, बहुत सारे भक्त यहाँ ये रथ का काम देखने के लिए, भगवान का ये अपूर्व लीला, ये रथ का काम देखने के लिए कई प्रांतों से जो भगवान को देखने के लिए आते हैं, भगवान का ये रथ का काम भी देखने के लिए यहाँ खड़े हो जाते हैं और भगवान का ये रथ का काम देखते हैं। खुशी लगता है कि भगवान का ये जो अपूर्व लीला ये सालों में एक बार होता है, इसके लिए, इसको देखने के लिए, इसका सानिध्य लेने के लिए एक बड़ा इसमें हिस्सा बनने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल रथ यात्रा कैसे मनाया जाएगा ये देखने के लिए बाकी है। पूरी संजय कुमार, गुड न्यूज टुडे।
5: पुरी के साथ साथ देश के कई और शहरों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी इन दिनों उत्साह के साथ जारी है। पुरी के बाद जिन शहरों में सबसे भव्य यात्रा का आयोजन होता है उनमें गुजरात के अहमदाबाद और राजस्थान के उदयपुर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उदयपुर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान को चांदी के रथ की सवारी करवाई जाती है। उदयपुर में इन दिनों कारीगर इस रथ को यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। 16 जुलाई को उदयपुर के जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ इसी शानदार रथ में सवार होकर यात्रा के लिए निकलेंगे।

0: नाथ वही है, आस्था भी वही, भक्त और भाव भी दूसरे नहीं, बस कुछ बदला है तो रथ। जहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ अपनी काया के समान ही काष्ठ यानी लकड़ी के रथ में विराजते हैं, वहीं उदयपुर में जगन्नाथ प्रभु को चांदी के रथ में सवारी करवाई जाती है। जिस तरह पुरी धाम में रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, ठीक वैसे ही इन दिनों राजस्थान के उदयपुर में भी जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उदयपुर की रथ यात्रा में हर साल भगवान जगन्नाथ इस भव्य चांदी के रथ पर विराजमान होते हैं। पुरी की रथ यात्रा के बाद अहमदाबाद और फिर उदयपुर की रथ यात्रा को ही सबसे भव्य माना जाता है। आपको बता दें, 80 किलो चांदी से बना ये रथ 16 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 21 फीट ऊंचा है। वहीं भक्तों के द्वारा रथ के लिए दान किए गए चांदी के सिंहासन और दूसरे सामान को भी जोड़ दिया जाए तो चांदी का कुल भार 195 किलो हो जाता है।
1: रथ की चौड़ाई है 8 फीट, लंबाई है 16 फीट, ऊंचाई है 21 फीट। इसमें लगभग 80 किलो चांदी लगी हुई है और इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे लमादमा है, रेवाड़ी है, सिंहासन है, इस तरह सारे आइटम करके 115 किलो चांदी सभी भक्तों के सहयोग से रथ समिति ने इस चीज को निर्माण में सहयोग किया।
0: उदयपुर के जगदीश मंदिर से ये भव्य रथ यात्रा निकलती है। उदयपुर के सिटी पैलेस के पास मौजूद जगदीश मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 17वीं सदी में मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर में सारा मेवाड़ बेहद आस्था के साथ सिर झुकाता है और उतनी ही आस्था के साथ शामिल होता है हर साल यहाँ से निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में, जिसके केंद्र में होता है ये चांदी का रथ और उस पर सवार भगवान जगन्नाथ। बताया जा रहा है कि रथ यात्रा से एक हफ्ते पहले यानी 9 जुलाई को दर्जनों कारीगर मिलकर भगवान के इस रथ के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर इसे अंतिम रूप प्रदान करेंगे।
1: 8 तारीख को हम पूरे रथ यात्रा मार्ग को सजाएंगे और 9 तारीख को ठाकुर जी के रथ को अलग अलग जो भागों में है, जो 58 खंड में है, उन सबको जगदीश चौक प्रांगण में लाके सभी कार्यकर्ता के सहयोग से लगभग 100-100 कार्यकर्ता वहाँ लगेंगे और इसको जोड़ा जाएगा। और 16 जुलाई को जब निकलेगा रथ, एक अलग तरीके की छटा होगी। जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में जो रथ निकलता है, रथ यात्रा निकलती है, उसी अंदाज में, उसी तर्ज पे हमारे उदयपुर में भी निकलती है। नंबर 1 जगन्नाथपुरी है, नंबर 2 अहमदाबाद है, तीसरे नंबर पे हमारे उदयपुर में, और राजस्थान में नंबर 1 रथ यात्रा है।
0: अब भक्तों को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 16 जुलाई का बेसब्री से इंतजार है, जब भगवान जगन्नाथ अपने इस रजत रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और उनके आगे पीछे नाचते झूमते हजारों भक्त अनंत आस्था की इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब आपको लेकर चलते हैं भव्य दिव्य अमरनाथ धाम में, जहां आस्था और विश्वास की अद्भुत तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। हर रोज नए जत्थों की रवानगी के साथ ही अमरनाथ यात्रा मार्ग पर आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। अब तक 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। खास बात यह है कि अब युवाओं के बीच भी अमरनाथ यात्रा तेजी के साथ लोकप्रिय होती जा रही है। दरअसल अमरनाथ यात्रा के दौरान यहां के प्राकृतिक नजारे और रास्ते उन्हें एडवेंचर टूरिज्म का अनुभव दे रहे हैं और बड़ी संख्या में युवा यात्रा के लिए आ रहे हैं। आंकड़ों से समझा जाए तो अमरनाथ यात्रा के पहले 3 दिन में 56,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल से करीब 18.6% ज्यादा रहा। 2025 में पहले 3 दिन में 47,972 श्रद्धालु पहुंचे थे। आपको बता दें कि 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई है। 48 किलोमीटर लंबे नुनवान पहलगाम रूट और 14 किलोमीटर वाले छोटे लेकिन कठिन बालटाल रूट से लगातार यात्री दर्शन के लिए अमरनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के उत्साह को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने अब की बार यात्रा के लिए कई खास इंतजाम किए हैं। सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है, वहीं सुरक्षा के भी इंतजाम कड़े किए गए हैं। वहीं एक सौगात रेलवे की तरफ से यात्रियों को भी मिली है। श्रद्धालुओं के भारी उत्साह को देखते हुए रेलवे जम्मू से श्रीनगर के बीच में स्पेशल ट्रेन चला रहा है, जिससे यात्री आराम से बेस कैंप तक पहुंच सके। विशेष ट्रेन सेवा के अलावा तीर्थयात्रियों को आधार, KYC, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, भोजन और डिजिटल सर्विलांस जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिल रही हैं। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू से श्रीनगर के बीच में स्पेशल ट्रेन चलाए जाने को लेकर पैसेंजर्स काफी खुश हैं।
3: बहुत बहुत ही अच्छी सुविधा है, रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है। और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है, उससे और ज़्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुंच जा रहे हैं बिना किसी थकान के। हम लोग सुबह उतरे हैं और वहां से डायरेक्ट हम लोग यहां आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम यात्रा रहा।
4: मैं महाराष्ट्र मुंबई से आई हूँ और हम लोग यहाँ से वंदे भारत से आए। बहुत ही सुविधा सुंदर थी, जैसे हम लोग प्लेन में रहते तब जो सुविधाएं रहती है ऑलमोस्ट नियर बाय सुविधाएं ये थी, इसलिए ये जो प्रवास है वो सुखकर लगा।
5: मैं जलंधर पंजाब से आया हूँ और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करने में पहली बार आया हूँ। हमारी जो इंडियन आर्मी के जो भाई लोग हैं वो चप्पे चप्पे पे खड़े हैं।
6: अमृतसर से आ रहा हूँ और वंदे भारत ट्रेन प्लस जो सुविधाएं हैं, जो सिक्योरिटी है, उसको देख के अभी फील हो रहा है कि अभी कोई भी यहाँ पे डर नहीं है, आराम से आ सकते हैं और काफी अच्छा अरेंजमेंट है।
2: जगन्नाथ रथ यात्रा और अमरनाथ यात्रा के साथ ही तैयारी एक तीसरी यात्रा की भी है। सावन से पहले का महीना है आषाढ़ का महीना, जिसमें अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, लेकिन इसके बाद ही भगवान शिव का प्रिय सावन महीना भी आने वाला है, जिसके हर सोमवार को करोड़ों शिव भक्त बाबा भोले की ना केवल पूजा आराधना करते हैं, बल्कि दूर दूर से कांवड़ लाकर भगवान का जलाभिषेक भी करते हैं। और यही वजह है कि सावन महीने से पहले भोलेनाथ के धामों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने लगी हैं। इन धामों में देवघर के बाबा बैद्यनाथ का धाम भी है। झारखंड में स्थित इस धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है।
7: के बाद सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और झारखंड के देवघर में स्थित महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के धाम पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने वाली है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक श्रद्धालु सावन में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं। वैसे तो बाबा बैद्यनाथ धाम पूरे साल भर शिवमय रहता है और भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए हमेशा यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने की बात ही और है, क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। और खास बात ये भी है कि सावन में हर साल बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला लगता है, जिसका शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बैद्यनाथ धाम में इस बार श्रावणी मेला 31 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये मेला 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगा। इस दौरान कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर आएंगे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे सावन भर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए स्पर्श पूजा पूरी तरह बंद रहेगी और कांवड़िये अर्घा के माध्यम से यहाँ पर स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। वही हर साल की तरह इस साल भी श्रावणी मेले में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में देवघर में झारखंड और बिहार के सरकारी अफसरों की इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें कांवड़ियों के आवागमन और मेले के इंतजामों को लेकर अहम फैसले किए गए।
8: जहाँ भी इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में समन्वय स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफ़ी मुद्दों पर बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके, डेटा शेयरिंग करके, और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्प का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है, या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है वो आपस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया से करें।
7: बताया गया है कि मेले में भीड़ पर नियंत्रण के लिए अलग अलग स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। कांवड़ियों के ठहरने, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था होगी। उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार श्रावणी मेले के दौरान कांवड़ियों की डबल डेकर गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।
9: सबसे ज्यादा मेले भी सुविधाएं डबल डेकर जो गाड़ी जो मॉडिफाइड गाड़ी आती है उसके लिए, तो मॉडिफाइड गाड़ी के बारे में अभी हुआ कि आप अभी से ही बिहार साइड में ही अभी से प्रचार हो कि मॉडिफिकेशन हो ही ना, यहाँ पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ से इनिशिएट ही नहीं हो, इसके बारे में चर्चा हो और उन्होंने इस बारे में अभी से ही कार्रवाई करने के बारे में।
7: ये भी तय किया गया है कि अब सुल्तानगंज से हर दिन जल उठाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी पहले से ही देवघर और दुमका जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों के बेहतर उपयोग में काफी सुविधा होगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी जिलों में तालमेल बिठाकर इंतजाम किए जाएंगे ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से देवघर पहुंचकर बाबा को जल अर्पित कर सके। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
2: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। गुंडी
4: भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा गया। प्रभु श्री राम पर अमर्यादित टिप्पणी किसने की? ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भारत आकर बना मजदूर। आ गया उड़ने वाला छाता। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
5: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव।

0: क्या आपको नींद आने में परेशानी होती है? क्या बेवजह की चिंताओं की वजह से आपको नींद नहीं आती? क्या आलस्य तो बना रहता है लेकिन नींद कभी पूरी नहीं हो पाती? कौन से ग्रह हैं नींद के लिए जिम्मेदार और अच्छी नींद के क्या हैं ज्योतिषीय उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने किया रिसीव। द्विपक्षीय बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल डील पर लग सकती है मोहर। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन। खराब मौसम के बावजूद आस्था परंपर। दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन। विश्व शांति, सद्भावना और मानवता का संदेश। हिमाचल की मंडी से अब महज 30 मिनट में पूरा होगा चंडीगढ़ तक का सफर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ। ₹3500 होगा हेलीकॉप्टर का किराया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: देवभूमि में धूमधाम से जा रही है चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी। रोजाना लगभग 9 से 10 हजार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के कर रहे हैं दर्शन। मानसून सक्रिय होने के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था अडिग। जुलाई के पहले हफ्ते में ही भक्तों की संख्या 14.5 लाख के पार। मानसून के चलते बद्रीनाथ में उफान पर अलकनंदा नदी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ जगह भूस्खलन से यातायात प्रभावित। मौसम की परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं प्रशासन। श्रद्धालुओं से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज चौथा दिन। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। यात्रियों की सुविधाओं का भी रखा जा रहा है विशेष ख्याल। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा लगातार जारी। कई श्रद्धालु पैदल तो कई घोड़ों और पालकी से कर रहे हैं सवार। अमरनाथ यात्रा में रविवार को 24,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा बर्फान के दर्शन। 18,000 पुरुष, 5,000 महिला भक्तों ने दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा में हर दिन बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की तादाद। 3 दिन में 56,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। अमरनाथ यात्रियों की सुविधाओं का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चंदनवाड़ी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने रविवार को दिया था पहलगाम का दौरा। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप हॉस्पिटल में परखी थी तैयारियां। 57 दिनों के भीतर दिव्य अमरनाथ यात्रा चलेगी। जम्मू बेस कैंप से हर दिन रवाना होता है तीर्थयात्रियों का जत्था। अमरनाथ यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात, जम्मू से श्रीनगर के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा। अमरनाथ यात्रियों को आधार, केवाईसी और मौके पर ही पंजीकरण की भी मिलेगी सुविधा। 91 वर्ष के हुए

0: दलाई लामा लेह के जवित साल में मनाया गया दलाई लामा का जन्मदिन। इस मौके पर तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं और तिब्बती समुदाय के लोगों ने विशेष प्रार्थना सभाओं का किया आयोजन। इस दौरान उनके लंबे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और विश्व शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर परम पावन दलाई लामा ने श्रद्धालुओं का जताया आभार। बौद्ध भिक्षुओं ने दलाई लामा की दीर्घायु की कामना की। तिब्बती बौद्ध गुरु अपने अनुयायियों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। पोस्ट पर लिखा, दलाई लामा का शांति, सद्भाव और मानवता का मैसेज दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पहुंचकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने गर्मजोशी के साथ रिसीव किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बीच स्वागत किया गया। दिखे इंडोनेशियाई परंपरा की झलक। जकार्ता में होटल के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़ा चंद सैलाब, लगे भारत माता के जयकारे। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स ने किया स्वागत। इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर इंडोनेशियन लड़ाकू विमानों ने किया स्कॉर्ट। अपने तीन देशों के दौरे के दौरान 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का कार्यक्रम। प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित की। यमुना नदी में वोट रैली का शुभारंभ किया गया। प्रेरणा स्थल पर लगाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंगर की प्रतिमाओं की लोकार्पण हुआ। प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री ने बड़े हनुमान के दर्शन की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। भगवान परशुराम पुरी होगा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद तहसील का नाम। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सिविल लाइंस में पूर्व मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को अब स्टेट गेस्ट हाउस और अत्याधुनिक कल्चर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। नौसेना के P-17A क्लास के छठे जंगी जहाज महेंद्रगिरी के क्रेस्ट का अनावरण। इसके क्रेस्ट में सबसे ऊपर शिकारीबाज की एक प्रजाति क्रेस्टेड गोशार्क। ग्यारह जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। ओडिशा स्थित महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया इस पोत का नाम। इसके निर्माण में लगभग 75% स्वदेशी सामग्री का हुआ इस्तेमाल। भारतीय वायुसेना जोधपुर में एयर एक्सरसाइज तिरंग शक्ति की करेगी मेजबानी। मंडी में चंडीगढ़ के बीच शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस रूट पर लोगों को मिलेगी रोजाना 2 उड़ानें। 3,500 रुपए किराए के साथ मात्र 30 मिनट में सिमटेगी मंडी से चंडीगढ़ की दूरी। पंजाब युवक को इंडोनेशिया के शाही परिवार ने दिया प्रिंस का खिताब। टाला के नजदीक गांव उमरवाल के रहने वाले कुंवर अमृतबीर सिंह, इंडोनेशिया के शाही परिवार ने औपचारिक रूप से प्रिंस की उपाधि देकर सम्मानित किया। जॉनसन की दांपत्य ने दिखाई अनोखी भक्ति, 3 साल की बेटी के साथ शुरू की खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा। गुजरात के गीर सोमनाथ जिले में मूसलाधार बारिश के बीच दिखा रोमांचक नजारा। हाईवे पर चहलकदमी करते हुए नजर आए शेरों का परिवार। शेरों के परिवार को देखकर सभी दूर पर खड़े हो गए। लोगों ने घटना को कैमरे में कैद किया। जूनागढ़ के भगवान में एशियाई आशेरों के संरक्षण करने के लिए महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सेमिनार में वन्यजीव विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में शेरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अभ्यारण्य क्षेत्र को बढ़ाने पर किया गया विचार। राजौरी में बीआरओ की टीम ने खिला धरहल इलाके में पहला पक्का स्टील पुल बनाकर किया तैयार। तिरुमाला में दिखा भक्ति ज्ञानों की शक्ति। 116 साल की नवनीथम्मा ने खुद चलकर भगवान के दर्शन किए। बुजुर्ग नवनीथम्मा ने तिरुमाला की लगभग 3,550 सीढ़ियां चढ़ी। मुजफ्फरपुर में सवर रही है अपन पाठशाला की कक्षाएं। मिथिला पेंटिंग को दिया जा रहा है बढ़ावा। अपन पाठशाला की कक्षा में बनाए जाने वाले पेंटिंग्स को बेचकर छात्राएं निकाल रही हैं खर्च। कोटा के आर्यन सिंह ने बनाया स्मार्ट इमोशन पोर्ट। अब डिजिटल स्क्रीन पर एनिमेट एक्सप्रेशन पता चलेगा पौधे का मोड। पाली जिले के पारसा गांव में पशु प्रेम का दिखा अनोखा नजारा। बछड़े की पूरी भव्यता के साथ शादी। बछड़ा बछड़े की शादी में महिलाओं ने गाए मंगल गीत। पाली में अनोखे विवाह के दौरान कन्यादान में मिले हजारों रुपए रकम को गौशाला के लिए दान किया गया। पशुपालन को बढ़ावा देने और डेयरी उद्योग से लोगों को जोड़ने के लिए किया गया शादी का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनकर जल्द निपटारे के आदेश दिए। श्रीनगर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं विदेशी पर्यटक। डल झील की खूबसूरती का उठा रहे हैं लुत्फ। अरुणाचल प्रदेश में आपादानी समुदाय ने मनाया 4 दिवसीय द्री महोत्सव। द्री महोत्सव में पारंपरिक नृत्य की रही धूम। कार्यक्रम में मेधावी छात्रों का सम्मान। टूथ आर्चर गोविंद माली के नाम एक और बड़ी उपलब्धि। पाली में आयोजित प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग गोविंद दादू से खींचते हैं धनुष की डोरी। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी। मरीन ड्राइव पर समुद्र में हाई टाइड अलर्ट पर प्रशासन और रेस्क्यू टीम्स। मुंबई के वसई विरार और नालासोपारा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रायगढ़ के पास पुणे से मुंबई के लिए आने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड। लगा लंबा जाम। महाराष्ट्र में दिखा रहा है मानसून का जबरदस्त जोर। लोनावला के पास ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पर भर गया पानी। लोनावला और कर्जत के बीच भूस्खलन के कारण बदल गए ट्रेनों के रूट्स। मैदानों के साथ पहाड़ी इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी। उत्तराखंड के 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। उत्तराखंड के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की आशंका। लोगों ने अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। बागेश्वर जिले में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। बागेश्वर जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को किया गया बंद। मौसम को देखते हुए प्रशासन सख्त। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू किश्तवाड़ हाईवे पर रोकी गई आवाजाही। राहत और बचाव के काम में जुटा प्रशासन। वाराणसी में मानसून ने दी दस्तक। पहली बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। भोपाल में बारिश के दौरान आने वाली आपदाओं से निपटने की जबरदस्त तैयारियां। बड़े तालाब में हुई मेगा मॉक ड्रिल। भोपाल में मॉक ड्रिल में रेस्क्यू टीमों को दिए गए अलग अलग टास्क। सेना एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें शामिल हुई। मॉक ड्रिल में लगाई गई प्रदर्शनी। लोगों को बाढ़ में राहत सामग्री पहुंचाने और बचाव के तरीके समझाए गए। महाराष्ट्र के सतारा जिले में वेणा नदी पर बना एक छोटा सा पुल भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त। कल भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच नॉटिंगम में खेला जाएगा। मैच कल के मैच के समय में हुआ है बदलाव। भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे शुरू हो जाएगा मैच। 5 मैचों की इस श्रृंखला में भारत जीत के साथ खाता खोलने के लिए बेकरार। पहला मैच बारिश से धुल जाने के बावजूद दूसरे मैच पर हार। 5 बार चैंपियन ब्राजील फुटबॉलर वर्ल्ड कप से हो गई बाहर। प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हरा दिया। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार ने ले लिया संन्यास। हालांकि क्लब फुटबॉल खेलते रहेंगे। फिल्म फुकरे के बाद फिर लौटेगी भोली पंचावन और जफर की जोड़ी नई कॉमेडी फिल्म का हुआ ऐलान। अर्जुन रामपाल ने अपने हमजा यानी रणवीर सिंह को दी जन्मदिन की बधाई, शेर रणवीर के लिए शेर किया स्पेशल पोस्ट। 8 जुलाई को सौरभ गांगुली के बर्थडे पर वापस रिलीज होने जा रही है उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक। हल्की फुल्की रोमांटिक ड्रामा फिल्म तेरा यार हूं मैं का ट्रेलर हुआ रिलीज। लव लॉटरी का फर्स्ट लुक निकलकर सामने आया, कोर्टरूम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री के साथ दिखेगा सस्पेंस। बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी करने के बाद क्लीन शेव लुक में नजर आए सनी देओल। सनी देओल जल्द ही कोर्टरूम ड्रामा के लिए इक्का में आएंगे नजर। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने आमिर खान और गौरी की शादी का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। फिल्म हेरा फेरी 3 से जुड़ी कानूनी लड़ाई ने लिया एक नया मोड़, प्रियदर्शन की एग्जिट के बाद अक्षय के प्रोडक्शन हाउस ने नोटिस जारी करके चेतावनी दी। आलिया भट्ट और शर्वरी की एक्शन थ्रिलर फिल्म अल्फा ने रिलीज के तीसरे दिन 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। दिलजीत की फिल्म सतलुज रिलीज के बाद 2 दिन में ही ओटीटी से हटाई गई। दक्षिण कोरिया इंचियोन में रोबोट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन, सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने जीता लार्ज साइंस ह्यूमनॉइड लीग का खिताब। रोबोट वर्ल्ड के फाइनल में चीन की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की शानहाई टीम ने मुकाबला किया। इस साल रोबोट कप में अपनाया गया एआई ऑपरेटेड फॉर्मेट, मैदान पर खुद फैसले लेकर रणनीति अपनाते नजर आए रोबोट्स। चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर पहला स्पेस बेस्ड ग्रीन हाउस गैस डिटेक्टर इंस्टॉल किया गया। चीन के स्पेस स्टेशन पर मौजूद शेनजो 23 क्रू कई अहम रिसर्च पर कर रहा है काम। चीन के शिनजियांग उइगुर में तारों को देखने के लिए शौकीनों की भारी भीड़, विशेष प्राकृतिक स्थितियों के कारण साल में 240 दिनों तक आसमान रहता है साफ। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए बनाया गया है स्टारी स्काई ड्राइविंग कॉरिडोर। मैक्सिको में फुटबॉल फैंस पर वर्ल्ड कप का खुमार, टीम के समर्थन में विशेष नस्ल के डॉग्स भी नजर आए। मेक्सिको टीम के फैंस ने डॉगी को पहनाई जर्सी, इंग्लैंड के साथ मैच से पहले जोश आया। मेक्सिको फुटबॉल वर्ल्ड कप का रोमांच, मेक्सिको सिटी के एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस के पास जुटे फैंस।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा गया, प्रभु श्री राम पर अमर्यादित टिप्पणी किसने की, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भारत आकर बना मजदूर, आ गया उड़ने वाला छाता। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's global hits to start listening now.
4: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
5: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
1: खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
0: चलिए अब आपको उस रहस्य से पर्दा उठा देते हैं जो 100 साल से भी ज्यादा वक्त से एक पहेली बना हुआ था। यह रहस्य दरअसल अंटार्कटिका में बहने वाला खूनी झरना है, जिस पर से 100 साल के बाद अब वैज्ञानिकों ने पर्दा उठा दिया है। अंटार्कटिका के माइनस तापमान में टेलर ग्लेशियर से बहने वाली इस झरने का पानी इंसानी खून की तरह लाल नजर आता है, जिसके चलते इसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है।

0: अंटार्कटिका में शून्य से काफी नीचे तापमान में जहां सब कुछ जम जाता है, वहां ये झरना जमता क्यों नहीं? चारों तरफ बर्फ के साम्राज्य में सब कुछ सफेद है, तो भी इस झरने का रंग लाल क्यों है? अंटार्कटिका का ये रहस्यमय खूनी झरना कुदरत का करिश्मा है या कोई श्राप, या फिर इसके पीछे की वजह ज्वालामुखी है? अंटार्कटिका की बर्फीली वादी में बहने वाले लाल झरने के रहस्य ने एक शताब्दी से भी ज्यादा समय तक दुनिया को अचरज में रखा। पहली नजर में इंसानी खून जैसा नजर आने वाला ये खौफनाक नजारा दुनिया भर के लोगों को डराता रहा। 1911 में अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर से बहते हुए इस रहस्यमय झरने की खोज के बाद इसके रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश लगातार जारी रही, लेकिन 100 साल से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी ये पहेली बना रहा। लेकिन अब इसके रहस्य से पर्दा उठ चुका है। अंटार्कटिक साइंस जर्नल में वैज्ञानिक ने एक नई रिसर्च प्रकाशित कर खूनी झरने के रहस्य से पर्दा उठा दिया है। वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि टेलर ग्लेशियर के नीचे सदियों से आखिर झरने का पानी खून की तरह क्यों लाल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लेशियर के नीचे एक प्राचीन अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व है। इस रिजर्व में बहुत ही ज्यादा खारा पानी भरा हुआ है। ग्लेशियर के मूवमेंट से भारी दबाव पैदा होता है, जिससे खारा पानी बर्फ के छिपे दरारों से बाहर आ जाता है। इस पानी में भारी मात्रा में आयरन घुला होता है। बाहर आते ही आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ये बिल्कुल लोहे पर जंग लगने जैसा ही एक प्रोसेस है। इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है। 1911 में जब ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने इसकी खोज की, तो उन्हें लगा था कि शैवाल की वजह से पानी का रंग लाल है, और उन्होंने तुरंत इस जगह का नाम ब्लड फॉल्स रख दिया। लेकिन बाद में पता चला कि शैवाल इस लाल रंग की वजह से नहीं, और अभी साफ है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से झरने का रंग लाल है, और भारी दबाव की वजह से भारी बर्फ के नीचे दबा हुआ पानी नेटवर्क चैनलों से बाहर सतह पर आ जाता है। वैज्ञानिकों के सामने एक दूसरा बड़ा सवाल ये भी था कि अंटार्कटिका की बर्फीली वादी में माइनस तापमान में भी ये पानी जमता क्यों नहीं। इस पहेली का जवाब पानी में मौजूद भारी नमक में छिपा है। रिसर्चर्स ने बताया कि इस खारे पानी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अत्यधिक नमक के कारण पानी का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल पानी से काफी नीचे चला जाता है। जब ये पानी जमने की कोशिश करता है तो उसमें से हीट निकलती है। इस हीट और नमक के मिश्रण से पानी कभी नहीं जमता है। इसी वजह से टेलर ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ठंडा ग्लेशियर माना जाता है। यहाँ से लगातार लिक्विड फॉर्म में पानी का बहाव होता रहता है। वैज्ञानिकों के सामने बड़ा सवाल ये है कि ग्लेशियर के नीचे छिपे इस प्राचीन पानी में क्या जीवन संभव है। शोधकर्ताओं को इस प्राचीन खारे पानी में एक नई तरह के सूक्ष्म जीव मिले हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाखों सालों से ग्लेशियर के नीचे बिना धूप के जिंदा है। इन सूक्ष्म कणों से सिलिकॉन, कैल्शियम और सोडियम जैसे कई महत्वपूर्ण एलिमेंट्स मिले हैं। इससे पता चलता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी जीवन मुमकिन है। मंगल ग्रह और बृहस्पति के चांद यूरोपा पर भी ऐसी ही बर्फीली सतह है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वहाँ भी इस तरह का जीवन मौजूद हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये खोज ब्रह्मांड में एलियन लाइफ तलाशने में बहुत मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या आपको नींद आने में परेशानी होती है? क्या बेवजह की चिंताओं की वजह से आपको नींद नहीं आती? क्या आलस्य तो बना रहता है लेकिन नींद कभी पूरी नहीं हो पाती? कौन से ग्रह हैं नींद के लिए जिम्मेदार, और अच्छी नींद के क्या हैं ज्योतिषीय उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
1: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
10: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने किया रिसीव। द्विपक्षीय बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल डील पर लग सकता है मोहर। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम पर भी भारी दिखी आस्था। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 51वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन, विश्व शांति सद्भावना और मानवता का संदेश। हिमाचल के मंडी से अब महज 30 मिनट में पूरा होगा चंडीगढ़ तक का सफर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ, 3500 रुपये होगा हेलीकॉप्टर का किराया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार।
10: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। बम बम भोले के जयकारों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। अमरनाथ यात्रा लगातार रफ्तार पकड़ रही है। आज श्रद्धालुओं का चौथा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का मेला। आपको बता दें कि अब तक 56,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। वहीं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जम्मू से श्रीनगर के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा भी शुरू कर दी गई है।
11: महादेव का सबसे पवित्र धाम अमरनाथ धाम इन दिनों आस्था और भक्ति के रंग में पूरी तरह सराबोर है।
12: बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले।
11: घाटी में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं के चेहरों पर बाबा के दर्शन की उत्सुकता और मन में अटूट श्रद्धा साफ झलक रही है। कठिन पहाड़ी रास्तों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद भक्त पूरे उत्साह और विश्वास के साथ पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा के पहले 3 दिनों में ही 56,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले यह आंकड़ा करीब 18.6% ज्यादा है। 2025 में 3 दिन में 48,000 श्रद्धालु पहुंचे थे।
13: जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा यात्री इससे बहुत प्रसन्न हैं और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद कश्मीर के लोगों को मैं करना चाहता हूं। इतना कोऑपरेट करते हैं हर चीज में। मैं साइन बोर्ड तो है ही है, लेकिन यहाँ के जो लोकल आवाम है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ।
11: यात्रा मार्गों पर बने शिविरों में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के भजन गाकर माहौल को शिवमय बना रहे हैं। देश ही नहीं विदेश से भी भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए रास्ते भर जगह जगह लंगर, मेडिकल कैंप, विश्राम स्थल और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
14: महादेव
15: यात्रियों को अमरनाथ यात्रा के लिए जाना है, उनके लिए नीचे टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे आरएफआईडी की सहूलियत है और वहाँ पे
11: यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने भी बड़ी पहल की है। जम्मू से श्रीनगर के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है। इससे श्रद्धालु कम समय में कश्मीर घाटी तक पहुँच सकेंगे। ट्रेन सेवा शुरू होने से सड़क मार्ग पर दबाव भी कम होगा और यात्रा पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक बनेगी।
16: रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है उससे और ज्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुंच जा रहे हैं।
17: सबसे अच्छी बात लगी कि टीटी और जो सीआरएफ के जवान हैं हमारे, वो जवान भी सपोर्टेड थे। जहाँ कुछ गलत है वहाँ वो रोक रहे थे, पर डेफिनेटली यात्रा बहुत सुविधाजनक थी।
11: रेलवे के अलावा यात्रा मार्ग पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। ड्रोन, सीसीटीवी और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: भगवान भोले का प्रिय सावन महीना आने वाला है। सावन महीने से पहले बाबा भोले के धामों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने लगी है। झारखंड के बाबा धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम करने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा के लिए प्रशासन चौकस। आपको बता दें इस बार सावन के महीने में वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं झारखंड के अधिकारी बिहार के अधिकारियों को साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिससे कि बिहार से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो।
11: से 24 दिनों के बाद सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने जा रही है। इस मौके पर झारखंड के देवघर में स्थित महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने वाली है। लिहाजा प्रशासन पूरी तरह चौकस है और यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। बाबा वैद्यनाथ धाम यात्रा को लेकर देवघर में झारखंड और बिहार के सरकारी अफसरों की इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें कांवड़ियों के आने जाने और मेले के इंतजामों को लेकर अहम फैसले लिए गए।
14: जहाँ भी इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में समन्वय स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफ़ी मुद्दों पर बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आएँ उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है।
11: पूरे सावन भर बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में VIP या आउट ऑफ टर्न दर्शन पूरी तरह से बंद रहेगा, जिससे जल चढ़ाने आए कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सावन में यहां पर श्रावणी मेला का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। ऐसे में यहां आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इस साल बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला 31 जुलाई से शुरू होने वाला है और ये मेला 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगा। इस दौरान कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर आएंगे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। ऐसे में पड़ोसी राज्य बिहार के अधिकारियों के साथ भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है।
14: सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग एस्टेब्लिश करके, डेटा शेयरिंग करके, और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्प का जरूरत पड़ता है, या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है, या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है वो आपस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया से।
11: सावन के दौरान मंदिर में भारी भीड़ जुटने की आशंका है, लिहाजा मेले में भीड़ पर नियंत्रण के लिए विभिन्न स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। कांवड़ियों के ठहरने, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था होगी, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार श्रावणी मेला के दौरान कांवड़ियों की डबल डेकर गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी जिलों में तालमेल बिठाने का भी इंतजाम किया जा रहा है, जिससे कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो और वो आसानी से देवघर पहुंचकर बाबा को जल अर्पित कर सके। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे।
18: और दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के रहने वाले रऊफ ने स्वच्छता अभियान के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। ये पिछले 5 सालों से पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। ऐसे में आज के हमारी अगली यानी कि जो तीसरे गुड न्यूज है वो है पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता अभियान। आपको बता दें कि पर्यटक स्थलों पर जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है, वहां पर सफाई का बीड़ा उठाया है शोपियां के युवा रऊफ ने, जो कि इन स्थानों पर जाकर सैलानियों के कचरे की सफाई करते हैं।
19: बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी मखमली घास से सजे मैदान और दिल को छू लेने वाले नजारे, कुछ ऐसा है हमारा कश्मीर। वो कश्मीर जहां कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती का खजाना बिखेर रखा है। तभी तो हर साल लाखों सैलानी कश्मीर की इन बेहद हसीन वादियों को देखने के लिए उमड़ते हैं। लेकिन कभी कभी सैलानियों की ये रौनक इस हसीन और खूबसूरत घाटी के लिए चुनौती बन जाती है। जैसे जैसे पर्यटकों की तादाद बढ़ती है, कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पर गंदगी और कचरा भी बढ़ने लगता है। और इसी चुनौतियों से निपटने के लिए कश्मीर के ही रहने वाले रऊफ ने एक बेहतरीन पहल की है।
20: लोग आते हैं, लोगों को आना चाहिए, ये आपके लिए ही है। तो मैं चाहता हूं कि ये लोगों का एसेट है, ठीक है, ये हर किसी बंदे का एसेट है, और आप इसको उसी तरह से ले लो, ताकि ये आपको अपना है, उसी हिसाब से इसको मेंटेन रखिए।
19: कश्मीर की जन्नत को बेदाग रखने के लिए दक्षिण कश्मीर के शोपियां का एक युवा एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा है। मिलिए केलर इलाके के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से उन सभी पर्यटक स्थलों पर लगातार स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
21: केलर के रहने वाले रऊफ ने एक प्रेरणा जरूर दी है उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जो पिकनिक के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें जब बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से हमारी जो सरसब्ज जमीन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर इंसान में अच्छे इखलाक हो, अच्छा सोच हो, तो बंजर को आबाद कर सकता है।
19: शोपियां की इन खूबसूरत और मनमोहक वादियों के बीच रऊफ की ये पहल साबित करती है कि जब युवा अपने समाज और पर्यावरण की जिम्मेदारी उठाते हैं तो तस्वीर यकीनन बदलती है। रऊफ की ये कोशिश न सिर्फ कश्मीर को साफ रख रही है बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। शोपियां से इरशाद मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
18: और दुनिया भर में सनातन संस्कृति के प्रति बढ़ते आकर्षण और नई पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गीता प्रेस ने श्रीमद् भगवद गीता का एक अनूठा संस्करण तैयार किया है। इस संस्करण में संस्कृत के मूल श्लोक यथावत रहेंगे लेकिन उनके ठीक नीचे रोमन लिपि में उच्चारण दिया जाएगा जिससे कि हिंदी या फिर संस्कृत ना जानने वाले लोग भी श्लोकों का सही और शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है गीता प्रेस का जेन जी को उपहार। जी हाँ, गीता प्रेस ने युवाओं के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का एक अनूठा संस्करण तैयार किया गया है। गीता प्रेस का ये नया प्रयास केवल एक पुस्तक का प्रकाशन नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसमें इस तरह के श्लोक को लिखा गया है कि उसे हर वर्ग समझ सकता है यानी वो लोग भी जिन्हें संस्कृत पढ़ना नहीं आता। गीता के इस संस्करण में हर श्लोक के साथ पहले उसका हिंदी में अर्थ लिखा गया है सरल तरीके से, फिर अंग्रेजी में अनुवाद भी दिया गया है। चार रंगों में आठ पेपर पर प्रकाशित ये संस्करण देखने में भी आकर्षक है। गीता प्रेस का मानना है कि इसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहने वाले पाठकों और युवाओं तक गीता का संदेश आसानी से पहुंचेगा और उम्मीद की जा रही है कि ये विशेष संस्करण नई पीढ़ी के साथ साथ विदेशी पाठकों के बीच भी काफी लोकप्रिय होगा। और भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तरह ही जयपुर में स्थित 151 साल पुराने रेलवे स्टेशन गांधीनगर का कायाकल्प किया जा रहा है। इस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा और इसके लिए स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन पिछले करीब 8 वर्षों से देश का दूसरा ऑल वुमन रेलवे स्टेशन है। अब इसकी ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखते हुए इसे विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
0: जयपुर का 151 साल पुराना गांधीनगर रेलवे स्टेशन इतिहास को समेटे इस स्टेशन को अब आधुनिक बनाया जा रहा है। 211 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। 3 साल से चल रहे इस प्रोजेक्ट में स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाएं, अत्याधुनिक तकनीक और जयपुर की सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप बनाया जा रहा है।
2: जयपुर का गांधीनगर स्टेशन एक बड़ी सौगात लेकर आया है जयपुर वासियों के लिए भी और देश भर से जो भी लोग जयपुर में ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी के लिए, क्योंकि इसका जो रीडेवलपमेंट है उसका काम पूरा हो चुका है। पूरे 3 साल का समय लगा है इसका ये पूरा रीडेवलपमेंट होने में और अब ये समय है कि इसका सिर्फ फिनिशिंग टच चल रहा है और जल्द ही पूरा काम खत्म हो चुका होगा और ये जितने भी नई चीजें हैं, नई फैसिलिटीज हैं, उन सभी का फायदा यहाँ पे आने वाले और जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सभी उठा पाएंगे।
0: स्टेशन पर मुख्य और द्वितीय प्रवेश द्वार की नई G+2 इमारतें लगभग तैयार हो चुकी हैं और फिलहाल फिनिशिंग का काम तेजी से जारी है। दोनों भवनों को जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म के ऊपर 72 मीटर चौड़ा और करीब 2700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला विशाल एयर कॉनकोर्स बनाया गया है। यही कॉनकोर्स स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत होगा जहां यात्रियों के लिए 2 आधुनिक सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन सिटिंग एरिया तैयार किए गए हैं। इनमें एक पेड लाउंज और दूसरा अनपेड वेटिंग एरिया होगा ताकि हर वर्ग के यात्रियों को सुविधा मिल सके। इसके अलावा यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, गेम जोन और अन्य व्यवसायिक सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर 8 लिफ्ट, 4 एस्केलेटर और दिव्यांगजन अनुकूल व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से पूरे स्टेशन परिसर में 217 हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमराज लगाए गए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आधुनिक कचरा प्रबंधन और ऊर्जा दक्ष तकनीकों के कारण इस परियोजना को ग्रीन बिल्डिंग की प्रतिष्ठित प्लैटिनम रेटिंग भी मिली है। स्टेशन की पूरी वास्तुकला जयपुर की गुलाबी नगरी की हेरिटेज थीम और स्थानीय कला से प्रेरित रखी गई है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
18: पाली जिले के बारसला गांव में एक अनोखी शादी का आयोजन किया गया, जिसमें तीन दिनों तक गांव में जश्न मनाया गया। एक खास शादी थी एक बछड़े की और इसमें शादी की सभी रस्मों का पालन किया गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है बछड़े की शादी में तीन दिनों का भव्य आयोजन। जी हाँ, देखिये जैसे आम लोगों की शादी होती है वैसे ही शादी बासड़ा गांव में बछड़े और बछड़ी की कराई गई। बछड़े की शादी से पहले पारंपरिक तरीके से पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें बछड़े और बछड़ी को चुनरी ओढ़ाकर तिलक लगाकर पूजा किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने मंगल गीत गाए और शादी से पहले की रस्में निभाई। इसके बाद गणपति पूजन और पीपल और बड़का पूजन किया गया। दूसरे दिन देर रात को बैंड बाजे के साथ मुख्य यजमान रथ पर पीपल का पौधा लेकर बैठे और पीछे ट्रैक्टर में बछड़ा बछड़ी को बैठाया गया। इस दौरान महिलाओं ने नृत्य करके जश्न मनाया। तीसरे दिन बछड़े को यजमान की गोद में बैठाकर मंदिर तक पहुंचाया गया, जहां बछड़ी उनका इंतजार कर रही थी। यहां पर बछड़े बछड़ी के फेरे कराए गए। इस मौके पर बछड़े को साफा और बछड़ी को चुनरी पहनाई गई।
4: लगन विधि विधान से लिखा गया और रात को महिलाओं द्वारा मेला संगीत और गीत गाए गए और सुबह उनका अगला जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम वहाँ जारी रहा और कल उनकी भव्य बिंदोरी निकाली। बिंदोरी के अंदर बछड़े को सापा और बछड़ी को चुनरी ओढ़ा करके महिलाओं ने नाचते गाते बिंदोरी के अंदर भाग लिया और पूरे ग्रामीण 36 कौम की महिलाओं ने बहुत सजग होकर के भाग लेकर के इस बिंदोरी का महत्व बढ़ाया। और इसका मुख्य कारण है कि गौ माता को किस तरह से संरक्षण देना है। हर घर में गौ माता रहती है, ये आज तक का इतिहास है। गौ माता के लिए ही ये कार्यक्रम मेला मन।
18: अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी एक बार फिर रंगों, परंपराओं और सांस्कृतिक उल्लास से सराबोर हो उठी। आपातानी समुदाय का सबसे प्रमुख कृषि पर्व ड्री महोत्सव इस वर्ष भी पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, अरुणाचल में आपातानी समुदाय के ड्री महोत्सव की धूम। आपको बता दें कि अच्छी फसल, समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अनूठी झलक पेश करता है।

0: रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, पारंपरिक अनुष्ठान और सामुदायिक सहभागिता, ये तस्वीरें हैं अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत जीरो घाटी की, जहां इस साल ड्री महोत्सव पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। ड्री महोत्सव के इस शुभ अवसर पर जनप्रतिनिधियों से लेकर लोक कलाकारों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जबकि पारंपरिक अनुष्ठानों के जरिए अच्छी फसल, समृद्धि और समाज के कल्याण की कामना की।
1: ये दिरी की ब्रदरहुड, हारमोनी, पीस और इसका सभी समाज में शांति बहाल हो, प्रकृति को बचाए और उसके साथ मनुष्य का अच्छा जीवन मिलेगा।
0: ड्री महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं बल्कि वो पर्व बन गया है, जो सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। अरुणाचल प्रदेश में इस पर्व का सबसे बड़ा आयोजन लोअर सुबनसिरी जिले की जीरो घाटी और राजधानी ईटानगर में हुआ है। ये ड्री महोत्सव हर साल 4 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ये महोत्सव आपातानी समुदाय का कृषि एवं सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें अच्छी फसल, समय पर मॉनसून, उर्वरता और मानव कल्याण के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती है और इस दौरान लोग अच्छी बारिश, भरपूर पैदावार, सूखा और अकाल से रक्षा और परिवार की सुख समृद्धि के लिए विशेष पूजा पाठ भी करते हैं।
2: ड्री फेस्टिवल जो है, हम लोग का जो एग्रीकल्चर जो भी गार्डन है, एग्रीकल्चर है, वहाँ पे कीड़ा मकोड़ा ना खाए, तो उसके लिए पूजा किया जाता है ड्री में।
0: खास बात है कि यहाँ की संस्कृति और इस महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए विदेश से भी पर्यटक पहुँचे हैं। इस साल महोत्सव में स्पेन से 7 पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया। दरअसल जीरो घाटी अपनी सीढ़ी नुमा धान की खेती, देवदार के जंगलों और पारंपरिक सिंचाई प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। आपातानी समुदाय की टिकाऊ कृषि पद्धति भी उनकी सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा मानी जाती है। जीरो घाटी से युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा गया, प्रभु श्री राम पर अमर्यादित टिप्पणी किसने की, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भारत आकर बना मजदूर, आ गया उड़ने वाला छाता। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
6: बोला था?
7: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
8: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
7: Enjoy non-stop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
9: Williams keeps it. First down. Touchdown.
7: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
4: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
2: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
3: कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को

0: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
1: continue to face political pressure to reach a peace deal,
0: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने किया रिसीव। द्विपक्षीय बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल डील पर लग सकती है मोहर। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी। अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। खराब मौसम पर भी भारी दिखी आस्था। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन। विश्व शांति, सद्भावना और मानवता का संदेश।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं बल्कि यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो ये तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान के शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पुलिस से पिट रहा शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। ये शख्स भगवान श्री राम के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और इसकी जमकर पिटाई की गई। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, करेंगे आगे पड़ताल। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पासपोर्ट चोरी होने के कारण आगरा में मजदूरी करने को मजबूर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंडरसन। इस वायरल दावे की सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में पुलिसकर्मी एक युवक को थाने में जमकर पीट रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस से पिट रहा शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता सुरेश जाटव है, जो भगवान श्रीराम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसे पीटा। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
5: पुलिस स्टेशन का ये दृश्य है, जहां एक शख्स हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन पुलिस के जवान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक लाठियों की बरसात की जा रही है, मानो ये तय करके आए हैं आज इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसकी गलती माफी लायक नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के दावे पर यकीन करें तो पुलिस से पिट रहा ये शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता सुरेश जाटव है, जो भगवान श्री राम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।

0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक युवक को थाने में जमकर पीटा जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पुलिस से पिट रहा यह शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता सुरेश जाटव है, जो भगवान श्री राम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने इसे पीटा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसकी पड़ताल जरूरी हो गई थी, तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना भी। इस दौरान हमें बैकग्राउंड में आ रही जो आवाजें सुनाई दी वो मराठी जैसी लग रही थी। इसके अलावा वायरल हो रहे वीडियो के क्वालिटी को देखने से ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल का वीडियो नहीं है। साथ ही साथ वीडियो में पुलिसकर्मियों के चेहरों पर मास्क लगा हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये कि वीडियो कोरोना के समय का हो सकता है, क्योंकि सर्च के दौरान हाल फिलहाल में हमें इस दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में इस वीडियो के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित पुराने वीडियो को नया एंगल देकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 28 मई 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना महाराष्ट्र के जालना जिले की थी, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सचिव शिवराज नारियल वाले की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की थी। दरअसल अप्रैल 2021 में जालना के एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ किया। जब पुलिस भीड़ को हटा रही थी तब शिवराज वहां इस घटना का वीडियो बना रहे थे। इसी बात से नाराज हुए पुलिसकर्मियों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी थी। पड़ताल के दौरान 28 मई 2021 को एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई वीडियो रिपोर्ट में भी यह वीडियो मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि यह घटना महाराष्ट्र के जालना स्थित दीपक अस्पताल की है, जहां भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी शिवराज नारियल वाले को पुलिस ने लाठियों से पीटा था। रिपोर्ट में पीड़ित व्यक्ति का बयान भी मिला। इस मामले को लेकर 27 मई 2021 को एक समाचार एजेंसी ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद हैं। बतौर रिपोर्ट जालना पुलिस थाने के इंस्पेक्टर प्रशांत महाजन ने बताया था कि 10 अप्रैल को एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की थी। उन्हें अस्पताल से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया था। पड़ताल के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर 29 मई 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में आरोपी 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि भीम आर्मी कार्यकर्ता की पिटाई के दावे से वायरल हुआ यह वीडियो 5 साल पुराना है। यह वीडियो महाराष्ट्र का है, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने लाठियों से पीटा था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि आगरा घूमने आए ऑस्ट्रेलियन नागरिक एंडरसन का पासपोर्ट और दूसरा सामान चोरी हो गया, जिसके चलते उसे ईंट भट्टे पर मजदूरी करनी पड़ रही है। इस वायरल वीडियो के जरिए लोग ये अपील कर रहे हैं कि जिसने भी इसका सामान लिया है कृपया इंसानियत दिखाएं और वापस लौटा दें। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो क्या सच और झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
2: नाम ताजमहल देखना था, इसका वीजा पासपोर्ट बैग आगरा का चोरी होगा, आज इस बाइक मजबूरी करनी पड़ रही है।
3: सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक का बताकर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक को ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के एंडरसन को आगरा में सामान और पासपोर्ट चोरी होने के बाद मजदूरी करनी पड़ रही है। यूजर्स इसे देश को शर्मसार करने वाली घटना बताकर कथित रूप से चोरी किया गया एंडरसन का सामान लौटाने की भी अपील कर रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि कि अतिथि देवो भव के देश से आई इस तस्वीर ने सभी को शर्मसार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया से भारत की संस्कृति और खूबसूरती को निहारने आए एंडरसन नाम के एक विदेशी पर्यटक के साथ आगरा में एक बेहद दुखद और शर्मनाक वाक्या पेश आया है। आगरा घूमने के दौरान चोरों ने एंडरसन का पासपोर्ट, सारे पैसे और उसका पूरा सामान पार कर दिया। विदेशी धरती पर सब कुछ खो जाने के बाद एंडरसन पूरी तरह लाचार हो गए। हालात ये हो गए हैं कि अब उन्हें दो वक्त की रोटी और अपना पेट भरने के लिए एक ईंट के भट्टे पर कड़ा शारीरिक श्रम और मजदूरी करनी पड़ रही है। जिस सैलानी का स्वागत पलकों पर होना चाहिए था, वो आज दाने दाने को मोहताज है। हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये प्रशासन तक पहुंचे। साथ ही जिसने भी इसका सामान चुराया है, कृपया इंसानियत के नाते इसका पासपोर्ट और सामान लौटा दें, ताकि ये मासूम विदेशी नागरिक अपने वतन सुरक्षित वापस लौट सके।
2: देखो भाई, इसका नाम है एंड्रूसन।
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है और वीडियो में एक युवक को ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एंडरसन को आगरा में सामान और पासपोर्ट चोरी होने के बाद मजदूरी करनी पड़ रही है। यूजर्स इसे देश को शर्मसार करने वाली घटना बताकर कथित रूप से चोरी किया गया एंडरसन का सामान लौटाने की भी अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा और वीडियो को देखने पर ऐसा लग रहा है कि इसके जरिए गलत दावा किया जा रहा है। जिस शख्स को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बताया जा रहा है, वो शख्स इतनी निपुणता से ईंट को ऊपर फेंक रहा है, उससे ये इशारा मिल रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नहीं हो सकता। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि युवक आगरा में ताजमहल देखने आया था, जहां पर उसका सामान चोरी हुआ और इस आधार पर हमने आगरा ताजगंज थाने के प्रभारी जसवीर सिंह से संपर्क भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अगर किसी पर्यटक का सामान चोरी होता है तो वो पुलिस में शिकायत जरूर करता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी मामला सामने नहीं आया। इसके अलावा यदि किसी भी विदेशी नागरिक का पासपोर्ट भारत में खो गया है या फिर चोरी हो गया, तो उसे मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कानूनन वो अपने देश के दूतावास से संपर्क करके तुरंत आपातकालीन पासपोर्ट या फिर यात्रा दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है, वो अपने रंग के कारण चर्चा में नजर आया है। दरअसल त्वचा और बालों को रंग मेलानिन नामक के एक पिगमेंट से मिलता है और इसका प्राथमिक कार्य सनस्क्रीन की तरह हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण से त्वचा की रक्षा करना है। कुछ लोगों में ये बहुत कम होता है, जिससे उनकी त्वचा, बाल और आंखें बहुत पीली होती हैं। हो सकता है कि ये शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ हो, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो जिसमें नजर आ रहा जो शख्स है, उसकी पहचान क्या है। हमारा दूसरा सवाल ये कि अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। तीसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या इस रिपोर्ट में देखिए।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये वीडियो नहीं मिला जहां वायरल दावे की पुष्टि की गई हो। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर अकाउंट पर पोस्ट किया गया एक वीडियो मिला। इसे 25 जून 2026 को अपलोड किया गया था। इसमें इनसेट में वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट देखने को मिले। जानकारी के अनुसार एंडरसन के दावे से जिस युवक की कहानी वायरल हो रही है, वो यूपी के बागपत जिले के काठा गांव का है और उसका नाम साहिल देशवाल है। वीडियो में साहिल कह रहा है कि ये सब फेक है और मुंशी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था।
4: कहाँ के हैं आप, बताइए अपने बारे में।
5: बागपत जिला यूपी काठा से।
4: बागपत जिला के हैं, यूपी से है, आप तो ऑस्ट्रेलिया के बताए जा रहे हैं।
5: नहीं, ये सब फेक न्यूज,
4: फेक न्यूज है। कौन है वीडियो बना के वायरल किया है?
5: भट्टे मुंशी ने बना दी थी,
4: मुंशी ने बना दिया था।
3: साहिल ईट भट्टे पर काम करता है। इस अकाउंट से साहिल के कुछ और वीडियोस भी देखने को मिले। 16 फरवरी 2025 को साहिल की ईट भट्टे पर मजदूरी करने का एक और वीडियो पोस्ट किया गया था। एक इंस्टाग्राम यूजर ने 25 जून 2026 को वायरल वीडियो के बारे में जानकारी पोस्ट की है। इसमें वायरल क्लिप को भी देखा जा सकता है। वीडियो में एंडरसन के नाम से वायरल किए जा रहे युवक और उसके भाई ने इसे फेक बताया है। हमारी पड़ताल में मिले साक्षियों से स्पष्ट है कि वायरल वीडियो में मौजूद व्यक्ति का नाम साहिल है और वो यूपी के बागपत का रहने वाला है। आगरा में पासपोर्ट चोरी होने से ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंडरसन के मजदूरी करने का दावा बेबुनियाद है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चले।
0: बाबा के दर्शन के लिए एक और जत्था रवाना, भक्तों के लिए चल पड़ी स्पेशल ट्रेन। कोटा के हॉस्टल का पारिवारिक कल्चर, एक मंदिर में महादेव के 5 स्वरूप। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
7: It's storming, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
8: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
7: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
9: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
10: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
11: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: और वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
15: ए
1: इंसानियत की मिसाल पेश करने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी क्षेत्र में स्कूल के एक वार्डन ने तेज बुखार से पीड़ित छात्रा को समय पर इलाज दिलाने के लिए करीब 6 किलोमीटर तक अपनी पीठ पर उठाकर पैदल सफर तय किया। इस भावुक पल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पर लोग इमोशनल कमेंट कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल वार्डन हेमा बीमार छात्रा को अपनी पीठ पर लेकर पहाड़ी और जंगल वाले कठिन रास्ते से गुजरती दिखाई दे रही है। बताया गया कि इलाके में वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद छात्रा को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का फैसला किया। करीब 6 किलोमीटर लंबे सफर में श्रीमती हेमा ने उबड़ खाबड़ रास्तों और पहाड़ियों को पार किया। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि छात्रा को बिना देर किए इलाज मिल सके।
14: अखियां मेरे पूछ रही है तुमको, मेरे चैन नहीं है कि तिलैयां वे, दुखिया कि तिलैयां वे।
1: इंटरनेट पर अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के वांचो समुदाय की 3 नन्ही बच्चियों का एक वीडियो तेजी से तहलका मचा रहा है। अपनी कमाल की गायकी, जबरदस्त डांस मूव्स और गजब के स्वैग से इन बच्चियों ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है।
14: अखियां मेरे पूछ रही है तुमको, मेरे चैन नहीं है कि तिलैयां वे, दुखियां कि तिलैयां वे।
1: जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जा रही है। वीडियो का बैकग्राउंड भी बेहद खूबसूरत है, जहां अरुणाचल की हरी भरी वादियां दिखाई दे रही है। इन हसीन वादियों के बीच 3 छोटी बहनों को बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाना और थिरकना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है।
14: अखिया

0: ছে কমবে
1: इन दिनों एक नन्ही बच्ची का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग उसकी प्यारी आवाज और आत्मविश्वास की खूब तारीफ कर रहे हैं। वायरल वीडियो में छोटी बच्ची नीले रंग की फ्रॉक पहने बेहद मासूम अंदाज में बैठी दिखाई देती है। उसके हाथ में एक छोटा सा गिटार है, जिसे बजाते हुए वो गाना गाती है। उसकी मीठी आवाज, मासूम मुस्कान और गाने का अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले कई यूजर्स का कहना है कि बच्ची की सादगी और आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो किसी बड़े कलाकार या मजेदार कॉमेडियन का नहीं, बल्कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चों का है। बच्चों की मासूमियत और उनकी अलग सोच ने इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया है। जो भी इसे देख रहा है वे अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा। वीडियो में एक स्कूल की क्लास का नजारा दिखाई देता है। टीचर बच्चों को एक आसान सा काम देते हैं। उनसे कहा जाता है कि वे भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की ड्राइंग बनाएं। सुनने में यह काम बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में मोर बनाकर दिखाते हैं, तब असली मजा शुरू होता है। हर बच्चे ने अपनी कल्पना के हिसाब से मोर बनाने की कोशिश की। किसी ने उसकी गर्दन इतनी लंबी बना दी कि वह जिराफ जैसी लगने लगी। किसी ने पंखों को ऐसे बना दिया कि उन्हें देखकर समझ ही नहीं आता कि यह मोर है या कोई दूसरी चिड़िया। कुछ बच्चों ने तो मोर का आकार और रंग भी अपनी पसंद के हिसाब से बना दिए। उनकी ड्राइंग देखकर साफ समझ आता है कि उन्होंने किताबों की तस्वीर की नकल करने के बजाय अपने दिमाग में जो तस्वीर बनाई उसे ही कागज पर उतार दिया। सबसे मजेदार बात यह रही कि बच्चों की इन अनोखी ड्राइंग्स को देखकर टीचर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। क्लास का माहौल हल्का फुल्का और खुशियों से भर गया। बच्चों के चेहरे पर भी अपनी बनाई तस्वीर दिखाने की खुशी साफ नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों की आंखों को नम और दिलों को खुश कर दिया है। एक कमर्शियल पायलट बेटे ने जब पहली बार अपनी माँ को प्लेन में बतौर कैप्टन सफर कराया, तो वह पल बेहद भावुक कर देने वाला बन गया। वीडियो की शुरुआत में तपेश बोर्डिंग गेट पर खड़े होकर अपनी फ्लाइट के एक बेहद खास मेहमान का इंतजार करते दिखते हैं। जैसे ही उनकी माँ प्लेन में चढ़ने के लिए आगे बढ़ती हैं, दोनों के चेहरे की मुस्कान और एक दूसरे को गले लगाने का अंदाज यह बता देता है कि यह सफर दोनों के लिए कितना खास है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उड़ान भरने से पहले दोनों ने प्लेन के सामने एक शानदार तस्वीर खिंचवाई और फिर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए, जहां पहुंचने के बाद इस माँ बेटे की जोड़ी ने साथ में बेहतरीन समय बिताया। तपेश अपनी माँ को एक आलीशान होटल में ले गए। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे माँ ने अपनी जिंदगी में पहली बार स्विमिंग पूल का आनंद लिया और होटल में लजीज खाने का लुत्फ उठाया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इन दोनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स सिर के बल लगातार सीढ़ियां चढ़ते हुए अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता नजर आ रहा है। यह कारनामा देखकर लोग भी दंग रह गए और वीडियो पर तरह तरह के कॉमेंट आ रहे हैं। इस वीडियो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो में चीन के ली किंगबो बिना हाथों का सहारा लिए सिर के बल लगातार 40 सीढ़ियां चढ़ते दिखाई देते हैं। इसी के साथ उन्होंने इस अनोखे कारनामे का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया। बारिश का मौसम शुरू होते ही छाते की जरूरत पड़ती है, लेकिन छाता पकड़कर चलना कई बार मुश्किल हो जाता है। एक हाथ में छाता, दूसरे में बैग या मोबाइल और कभी कभी बच्चे को संभालना, ये सब बहुत परेशान करने वाला होता है। अब इस समस्या का क्रांतिकारी समाधान सामने आ गया है। कनाडा के इंजीनियर जॉन ने एक ऐसा उड़ने वाला छाता बनाया है जो हाथ में पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने देगा। यह फ्लाइंग अम्ब्रेला ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें डेप्थ सेंसिंग कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है, जो मालिक को पहचान लेता है और लगातार उसके सिर के ऊपर उड़ता रहता है। व्यक्ति जहां भी जाएगा छाता उसके साथ साथ चलेगा, यानी हाथ पूरी तरह फ्री रहेंगे। छाता बनाने वाले जॉन से के अनुसार यह प्रोटोटाइप धूप में छांव और हल्की बारिश में सुरक्षा दे सकता है। अभी एक बैटरी चार्ज पर यह 10 से 15 मिनट तक हवा में रह सकता है। यह अभी रिसर्च और डेवलपमेंट स्टेज पर है और बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी वायरल तस्वीरों और वीडियो ने दुनिया भर में चर्चा मचा दी है। सोशल मीडिया पर लोग इसे भविष्य की तकनीक बता रहे हैं। कभी कभी खुशियाँ बहुत छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। एक प्यारी सी पूंछ का हिलना, मासूम आंखों की चमक या फिर किसी ऐसे जीव का मुस्कुराता चेहरा जिसे आखिरकार अपना घर मिल गया हो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो भी कुछ ऐसी ही भावनाओं से भरा है। इसमें गोद लिए गए कुत्ते का पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन यह सिर्फ केक और सजावट की कहानी नहीं है। यह उस भरोसे, प्यार और अपनेपन की कहानी है जिसने एक बेघर कुत्ते की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुत्ता अपने परिवार के बीच बैठा है। जब मालिक ने उसके सामने जन्मदिन का केक रखा, उसके चेहरे पर खुशी के आंसू थे, मानो वो उन सब का धन्यवाद कर रहा हो कि उन्होंने उसे अपना लिया। परिवार के सदस्यों ने न केवल उसे खाना दिया बल्कि उसे गले लगाकर वह एहसास कराया कि अब वह इस घर का एक अहम हिस्सा है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
3: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
4: में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से
5: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए एक और जत्था रवाना, भक्तों के लिए चल पड़ी कई स्पेशल ट्रेनें। कोटा अब दे रहा है करियर के साथ केयरिंग सिटी का भरोसा। कोटा के हॉस्टल बच्चों को देने में जुटे पारिवारिक कल्चर। और कोटा का अनोखा शिव मंदिर भी आपको दिखाएंगे, जहां पर एक मंदिर में महादेव के 5 स्वरूप के दर्शन होते हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने किया रिसीव। द्विपक्षीय बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल डील पर लग सकती है मुहर। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी। अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। खराब मौसम पर भी भारी दिखी आस्था। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 51वें में जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन। विश्व शांति सद्भावना और मानवता का संदेश। हिमाचल के मंडी से अब महज 30 मिनट में पूरा होगा चंडीगढ़ तक का सफर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का शुभारंभ किया। 3500 रुपए होगी हेलीकॉप्टर की किराए की कीमत।

अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा के पांचवें दिन भी शिव भक्तों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आज तड़के बालटाल और नुनवान से यात्रियों का चौथा जत्था पूरे धूमधाम के साथ रवाना हुआ, तब पूरा यात्रा मार्ग बाबा बर्फानी के जय घोष से गूंज उठा।

0: साथ श्रद्धालुओं का नया जत्था अमरनाथ यात्रा की शोभा बढ़ा रहा है। बम बम भोले, हर हर महादेव और बाबा बर्फानी के जय घोष से हिमालय की वादियां गूंज रही हैं। मन में बस भोले भंडारी के दर्शन की आस है, शिव भक्ति की चाह है और इसी निर्मल पावन भावना के साथ कार वहाँ बढ़ता ही जा रहा है। शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर गुजरते दिन के साथ यात्रा से जुड़े उमंग में उफान है। ज्यादातर श्रद्धालु जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर में रुके बिना सीधे बालटाल और पहलगाम मार्ग से होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंच रहे हैं। आज बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालुओं का चौथा जत्था रवाना किया गया है। दूसरी तरफ ननवान बेस कैंप से भी भक्तों का चौथा जत्था जयकारे लगाते हुए निकला है।
1: व्यवस्था देखिए तो व्यवस्था हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमने प्रोसेस से सारा काम किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के घर से ही आए थे और जरा सा भी यहाँ पे कोई तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई।
2: प्रार्थना करने जा रहे हैं ना, व्यवस्था अच्छी रखे है, सब सुरक्षा अच्छा है।
3: फिलहाल तो मैं गुरु के पास से अकेले हूँ, बाकी सब लोग तो मेरे ही साथ हैं।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ऐसे ही जाएंगे?
3: जी मैं पैदल ही जाता हूँ।
4: पैदल?
3: जी पिछले साल मैं आया था तो अगस्त में आया था, शिवलिंग कर गया था।
4: अच्छा,
3: तो मैंने बाबा से वादा किया था कि बाबा अगर मैं सही सलामत रहा तो मैं फिर जल्दी से आपके पास दर्शन करने के लिए आऊंगा।
5: जो सरकार द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं बहुत अच्छे किए गए हैं, जो जम्मू सरकार है वो भी हमारी पूरी मदद कर रही है, पूरी मिलिट्री और जम्मू पुलिस और बीएसएफ सीएफएफ सभी अपने देश की सुरक्षा करने वाली सीमाओं की जो फौज है वो हमारी यात्रा पूरी कंप्लीट करा रही है। पूरे प्यार से वो अपने आप को हमारे लिए जोक रखा है उन्होंने।
0: यात्रा मार्गों पर बने शिविरों में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के भजन गाकर माहौल को शिवमय बना रहे हैं। देश के कोने कोने के साथ साथ विदेश से भी भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कई दिव्यांग श्रद्धालु भी पूरे उत्साह से यात्रा कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा दी है और जम्मू से श्रीनगर के बीच विशेष ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य यात्रा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक सफर उपलब्ध कराना है। इसको लेकर जम्मू और श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं और यात्रियों को जानकारी भी दी जा रही है।
6: यात्री कृपया ध्यान दें, जिन यात्रियों को अमरनाथ यात्रा के लिए जाना है उनके लिए नीचे जो रिसेप्शन सेंटर पे आरएफआईडी की सहूलियत है और वहाँ पे आप लोगों के लिए गाड़ियाँ भी लगी हुई है।
0: अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं ने रेलवे की इस पहल का स्वागत किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेन में मिले अनुभव की सराहना करते हुए पहले की कठिन रेल यात्राओं को भी याद कर रहे हैं, फिर अब सुविधाओं में सुधार का हवाला भी दे रहे हैं। सुरक्षित और सुविधाजनक रेल यात्रा के बाद टिकट निरीक्षकों और सुरक्षा कर्मियों की प्रशंसा करना भी नहीं भूल रहे।
7: बहुत बहुत ही अच्छी सुविधा है, रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है उससे और ज़्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुँच जा रहे हैं बिना किसी थकान के। हम लोग सुबह उतरे हैं और वहाँ से डायरेक्ट हम लोग यहाँ आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम यात्रा रहा।
8: तो आगे आसान हो गया,
7: बहुत बहुत बहुत आसान रहा।
9: हम लोग यहाँ से वंदे भारत से आए, बहुत ही सुविधा सुंदर थी। जो हमारे पहले यात्रीगण हैं उन्होंने बताया कि जब वो पहले ट्रैवल करते थे तो बहुत ही कठिनाइयाँ आती थी, टचूड अभी वंदे भारत के कारण एसी और होने के कारण जो उन लोगों ने बताया जो उन लोगों को झेलना पड़ रहा था टचूड हम लोगों को नहीं झेलना पड़ा।
10: वंदे भारत ट्रेन प्लस जो सुविधाएं हैं जो सिक्योरिटी है उसको देख के अभी फील हो रहा है कि अभी कोई भी यहाँ पे डर नहीं है, आराम से आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी अरेंजमेंट और रहना चाहिए और इसमें कोई 1% की भी गुंजाइश नहीं की और कुछ करें, काफ़ी बेटर है।
11: आने वाले दिनों में मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगा, सभी लोग आइए भोले बाबा के दर्शन कीजिए, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेफ हो, आप सिक्योर हो। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: 60,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री अब तक अमरनाथ यात्रा कर बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 50,000 था। दिलचस्प बात यह है कि इस बार तीर्थ यात्रा में युवा और स्कूली बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उनके लिए ये यात्रा अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अध्यात्म को जानने के साथ साथ प्रकृति के साथ कुछ पल बिताने का भी है, कश्मीर की खूबसूरती को करीब से निहारने का भी है। तो कुछ इस सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा के दौरान एडवेंचर टूरिज्म का भी मौका देख रहे हैं।
8: आपने यात्रा की?
12: हाँ जी, कल कर ली।
8: एक तो ये भक्ति है, दूसरा इसको एक एडवेंचर टूरिज्म भी देखा जाता है, क्योंकि हर तरह की जो भी कुदरत की खूबसूरती है वो आपको नजर में आती है। क्या क्या चीज आपको अलग जिसको आप एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर देखेंगे
12: यहाँ पे? मतलब बहुत, एक तो ऊंचाई बहुत है और यहाँ पे मजा भी बहुत आता है। जैसे हम लोग घोड़े पर गए थे तो वहाँ पे उस पर बैठ के गए थे तो देखा था यार, फिर सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, नजारे अच्छे होते हैं, ऊपर दर्शन भी बहुत अच्छे हुए थे।
8: आप कहाँ से हैं?
12: गुड़गांव से।
8: गुड़गांव से ही है यात्रा हुई?
12: हाँ।
8: कब दर्शन किया आपने?
12: कल ही कर दिए।
8: जो एडवेंचर टूरिज्म इस यात्रा को माना जा रहा है, ग्लेशियर्स आपको देखने मिलते हैं, झरने मिलते हैं, तो कैसा क्या आपको लगा, कुछ फील की ये?
12: बहुत सुंदर नजारे थे वहाँ पे, मतलब बीच में झरने भी आ रहे थे, वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे, ऊपर दर्शन भी बहुत अच्छे हुए थे, मतलब लाइन इतनी नहीं थी कल, तो बहुत अच्छे नजारे थे।
13: आए जरूर यात्रा करें, पहली बात तो शंकर भगवान के दर्शन होंगे, दूसरी बात इतना सुंदर नजारे हैं, और मतलब इससे अच्छा पहाड़ और झरने नदियां कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, तो जरूर आए, भक्ति में लीन हुए।
0: अमरनाथ यात्रा के भक्तों में राष्ट्रभक्ति का भी जोश भरने के लिए भारतीय सेना ने पहलगाम जिले के चंदनवाड़ी में एक हाई मास्ट राष्ट्रीय ध्वज लगाया है। चंदनवाड़ी पारंपरिक पहलगाम रूट पर अमरनाथ यात्रा का मुख्य बेस स्टेशन है। अमरनाथ यात्री चंदनवाड़ी तक गाड़ियों से पहुंचते हैं और वहां से आगे की यात्रा पैदल या टट्टू पर करते हैं और अमरनाथ की गुफा तक पहुंचते हैं। भीड़ के भारी दबाव के कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 9 जुलाई तक सभी पंजीकरण स्लॉट फुल होने की जानकारी दी है। बिना आधिकारिक रजिस्ट्रेशन के यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल रुकने की सलाह दी गई है। अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम से है और दूसरा रास्ता गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबे बालटाल से होकर जाता है। दोनों रूटों से लगातार यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन तक चलेगी। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
14: और बात राजस्थान के कोटा की। पिछले 3 दशक में जिसकी छवि कोचिंग फैक्ट्री की बन चुकी है, हर साल 12वीं में पढ़ने के दौरान या फिर पास करने के बाद लाखों युवा IIT नीट क्रैक करने के लिए यहां तैयारी करने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से यह शहर देश के फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पर बना हुआ है। हालांकि भारी फीस, कंपटीशन के दबाव और कोचिंग शिक्षा के व्यवसायीकरण की वजह से छात्र भारी दबाव महसूस करते हैं, जिसकी वजह से अब हॉस्टल संचालक भी अपने रवैये में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हॉस्टल में घर और परिवार जैसा माहौल देने में जुटे हैं ताकि तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को करियर के साथ केयरिंग सिटी का भरोसा भी मिल सके।

0: कोटा यानी हजारों लाखों बच्चों के दिलो दिमाग में इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने की गारंटी। पूरे देश में एजुकेशन कैपिटल के तौर पर मशहूर कोटा प्लस टू में पढ़ रहे या बारहवीं पास कर चुके लाखों बच्चों के लिए फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन है। हर साल देश के अलग अलग राज्यों के करीब 2.5 लाख बच्चे देश के किसी अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए कोटा शहर में जीतोड़ मेहनत करते हैं। इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में दाखिले का दबाव छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। महंगी फीस, घर से हजारों किलोमीटर दूर और परीक्षा में नाकाम होने का डर यहां तैयारी करने वाले बच्चों को तनाव देता है। गाला काट प्रतियोगिता और होम सिकनेस जैसे फैक्टर उन पर हावी होने लगते हैं। इसलिए अब कोटा के कई हॉस्टल संचालक छात्रों को मानवता के आधार पर सहयोग कर रहे हैं। दरअसल घर परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले इन छात्रों के लिए हॉस्टल केवल रहने की जगह नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी करने तक उनकी पूरी दिनचर्या और व्यक्तित्व का अहम हिस्सा बन जाता है। ऐसे में अब कोटा के हॉस्टल्स भी सिर्फ रूम और टिफिन तक सीमित नहीं रहे। शिक्षा की इस नगरी में प्रतिस्पर्धा के बीच हॉस्टल कल्चर तेजी से बदला है। वहाँ अब पढ़ाई लिखाई के अलावा छात्रों की मानसिक सेहत, सुरक्षा और घर जैसा माहौल देने की भी कोशिश की जा रही है।
1: काफी अच्छा है, हर चीज मतलब सही है। सबसे अच्छा खाना है क्योंकि खाने की बहुत दिक्कत होती है अगर अदर हॉस्टल्स वगैरह में जाओ तो, और हर चीज़ की फैसिलिटी है वैसे तो काफ़ी अच्छी से। यहाँ का स्टाफ मतलब जो मैम्स है ये काफ़ी अच्छी है नेचर में, अगर कोई प्रॉब्लम तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब कि रहने के लिए आराम से रह सकते हैं। अगर बच्चे को अपने रूम में किसी किसी बच्चे को जैसे ना नींद आती है, अगर बेड है अपने तो सो जाएगा, तो इसलिए वो लाइब्रेरी में जाके आराम से पढ़ सकता है। काफ़ी कम्फर्टेबल, वहाँ भी एसी है, सब चीज़ है रूम जैसी, इन्वायरमेंट अच्छा है और अपन अपने दोस्त के साथ पढ़ सकते हैं अगर डाउट वगैरह पूछना है। इसलिए
2: झूला भी लग रहा है, कभी झूला झूला?
1: हाँ झूला है, मोस्टली झूल लेते हैं, काफी बढ़िया लगता है वो।
2: घर जैसी फीलिंग आती है?
1: हाँ घर जैसी फीलिंग आती है।
0: अब छात्रों को हाई स्पीड इंटरनेट, जिम और कॉमन एक्टिविटी एरिया के साथ साथ तनाव कम करने के लिए इंटरेक्टिव सेशंस का आयोजन हो रहा है। देर रात तक पढ़ाई करने वालों के लिए भूख लगने पर इन हाउस स्नैक्स जैसी सुविधा भी है।
1: बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छी फैसिलिटीज है, हर चीज का ध्यान रखते हैं, खाना वाना सब अच्छा होता है, मतलब कि प्रॉपर केयर होती है यहाँ पर हर चीज को।
2: सबसे अच्छी चीज
1: क्या है? सबसे अच्छी चीज ये है कि मतलब आपको हर फैसिलिटीज मिलेंगी, ये नहीं कि आपको इसकी दिक्कत हो रही है, इसकी दिक्कत हो रही है, 24 आवर्स आपको सब चीज अवेलेबल रहेगी यहाँ पर, और सब बढ़िया ही है, खाना पीना सब अच्छा है।
2: कब से रह रहे
1: हैं आप? मैं 8 जून को आई थी यहाँ पर, 1 मंथ होने वाला है। हाँ जी मिडनाइट कैफे है यहाँ, मतलब कि जैसे बच्चों को रात को पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है, कुछ हो जाता है तो आप वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो, और ये नहीं है कि कॉस्टली है, जितनी रीजनेबल प्राइस है सारी, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, जैसे मैगी हो गई, कोल्ड कॉफी वगैरह कुछ भी, जो आपको अगर भूख लग रही है तो आप मंगा लो या फिर कुछ भी कर लो।
0: हॉस्टल संचालकों के रवैये में आए सकारात्मक बदलाव की वजह से छात्रों का तनाव कम होने के अलावा उनका आत्मविश्वास बढ़ने की भी उम्मीद जगी है।
3: हम मधुरम गर्ल्स हॉस्टल में, पहली बात तो हम इस हॉस्टल इंडस्ट्री में 23-24 ईयर्स से हैं, तो हमें पूरा इन हाउस पता है कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है। हमारे यहाँ पे बच्चों की सेफ्टी है, वार्डन्स रहते हैं, गार्ड है हमारे पास में, बायोमेट्रिक है, फायर सेफ्टी है पूरी, मेस क्लीन एंड यूज एंड हाइजीनिक मेस है हमारे पास में, मेडिकल फैसिलिटी है हमारे पास में, आर ओ ट्रीटेड प्लांट है, वाटर सॉफ्टनर है, बिग स्पेशियस रूम्स है। हम बच्चों को रूम्स के साथ साथ रेंट में हमारे इंक्लूड होता है वाईफाई, लॉन्ड्री एंड डेली क्लीनिंग ऑफ द रूम्स। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए हम 100% प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को मेंटरशिप भी देते हैं जिससे वो पढ़ाई कर सके अच्छे से और अपनी जो एग्जाम में परफॉर्मेंस है उसको बेटर कर सके, टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं।
0: इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी तैयारियों के दौरान छात्र छात्रों को सहयोग मिले तो पढ़ाई में बेहतर तरीके से ध्यान लगाया जा सकता है। घर जैसी देखभाल, बातचीत का अवसर और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिलने से तनाव काफी हद तक कम महसूस होता है। कोटा के हॉस्टल संचालकों के रवैये से यह बात साबित हो रही है कि कोटा सिर्फ करियर बनाने वाला शहर नहीं बल्कि छात्रों को साथ देने वाली केयरिंग सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ वीले रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए आपको लिए चलते हैं कोटा के ही एक अनोखे मंदिर में, जहां पर इतिहास और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इस मंदिर में महादेव पांच स्वरूपों में विद्यमान है और वक्त वक्त पर ये स्वरूप बदलता रहता है। मान्यता यह है कि इस मंदिर की स्थापना गुप्त काल में की गई थी और इस मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं भी प्रचलित हैं।

0: राजस्थान के कोटा के चारचोमा गांव का पंचमुखी महादेव मंदिर आस्था, पौराणिकता और प्राचीन शिल्प कला का अनोखा संगम माना जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां का दुर्लभ पंचमुखी शिवलिंग है, जिसमें भगवान शिव के 5 स्वरूपों के दर्शन होते हैं। कहते हैं शिवलिंग का स्वरूप भी बदलता रहता है।
1: ये मंदिर 4-5 हजार वर्ष पुराना मंदिर है। कोटा से 30 किलोमीटर मंदिर है। यूं मानते हैं कि चोमेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वो ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर के अंदर चतुर्मुखी मूर्त है, पीछे जगत जननी जगदम्बा की मूर्त है, सामने गणेश जी महाराज हैं, जाल के नीचे भैरव जी महाराज, नीचे बजरंगबली का मंदिर है, क्या नीचे कुंड है। ये ऐसी मान्यता है इस चोमेश्वर महादेव जी के मंदिर की कि मूर्ति, आप कभी दर्शन करने पधारो तो मूर्ति के 3 समय में 3 मूर्ति रूप स्वरूप चेंज करती है, सुबह, दिन में, शाम को। ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्ति जो पत्थर की मूर्ति है, बलेग जो नीलम मूर्त है, वो ऐसी प्राकृतिक, ऐसी आकृतिक, ऐसी कृपालु मूर्त है जो मूर्ति का ही रूप चेंज हो जाता है।
0: इस मंदिर को चोमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य शैली का बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह, विशाल स्तंभों और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी आज भी उस दौर की शिल्प कला की झलक दिखाती है। समय के साथ मंदिर के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण जरूर हुआ, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पहचान आज भी बरकरार है। मंदिर में स्थापित काले कसौटी पत्थर से बना लगभग 75 सेंटीमीटर ऊंचा पंचमुखी शिवलिंग इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसमें भगवान शिव की मूर्ति के 5 स्वरूपों में तत्पुरुष, अघोर, सघोजात, वामदेव और ईशान स्वरूप उकेरा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये 5 रूप सृष्टि, प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना के अलग अलग प्रतीक माने जाते हैं। यही वजह है कि पंचमुखी महादेव के दर्शन के लिए दूर दूर से शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि महादेव की इस मूर्ति को विभीषण जी लेकर आए थे और इस मंदिर की देखरेख मंदसौर का राज परिवार करता है।
1: केतुन में विभीषण जी महाराज और चारचोमे में चोमेश्वर महादेव, तो विभीषण जी महाराज इनको पलने में लेके आए थे। 15-15 किलोमीटर की दूरी है विभीषण जी, पीछे की रंगबाड़ी के हनुमान जी, चारचोमा महादेव और बीच में विभीषण जी महाराज। ये मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है। ये जो मंदसौर के राजा था, इस मंदिर का जीर्णोद्वार उनके द्वारा किया जाता है और जो इनका भोग पाठ पूजा सब उनकी द्वारा ही आता था। इस मंदिर में पूरी व्यवस्था है, राजा महाराजों के द्वारा वो व्यवस्था करी गई है।
0: सावन और फागुन मास में पड़ने वाले महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय घोष गूंजते हैं और धार्मिक माहौल देखते ही बनता है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर 15 दिन का मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से शिव भक्त पहुँचते हैं।
1: फागुन महीना आता है उसमें महाशिवरात्रि का 15 दिवसीय मेला लगता है, 13 से चालू होता है, जिसके बाद जैसे जैसे लोगों का यहाँ पर तांता रहता है तो 15 दिन तक हाड़ौती का जो विश्वविख्यात जो मेला लगता है चार चोमा की सोरती के नाम से। ये मेला ऐसा है, यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा हर चीज की व्यवस्था, हर चीज की खरीदारी 12 महीने से पूरे मेले में करते हैं, क्योंकि इन लोगों इधर जो आते हैं लोग, उनकी ऐसी भावना थी जो पुराने जमाने से गाड़ी बैल के द्वारा आते थे। आज तो संपूर्ण साधन हो गए तो मेले में आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। पहले के जमाने में रोड नहीं थे तो भी लोगों की ऐसी भावना थी इस मंदिर के प्रति, भोलेनाथ जी के प्रति, तो बोले यहाँ पे वो उनकी कृपा से ऐसा मेला लगने लग गया। तो आज तो यूं मान के चलो पहले 5 दिन का मेला था, आज 15 दिन का मेला जो लगने लग गया।
0: इसके अलावा भी सोमवार को भक्तों का हुजूम उमड़ता है और लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ महादेव का दर्शन करते हैं और मन्नत मांगते हैं।
1: सोमवार को 2-500 आदमी आते हैं, डेली 2-300 आदमी, क्योंकि ग्रामीण लोकल लोग तो आते हैं, फिर जैसे दीतवार है, सोमवार है, तो बाहर के लोग फिर छुट्टी के दिन ज्यादा आते हैं।
2: चोमेश्वर महादेव का मंदिर है, हम रोज आते हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं, ये बहुत प्राचीन मंदिर है।
3: तब से पैदा हुए तब से आ रहे हैं,
1: बहुत मान्यता है मंदिर की, असीम कृपा है। सुबह डेली नहा धो के बढ़िया दर्शन होते हैं भोलेनाथ के अच्छे, और श्रद्धालु बहुत आते हैं। महाशिवरात्रि कहाँ पे मेला लगता है, चार मूर्ति के नाम से जो प्रसिद्ध है, 15 दिन का मेला लगता है सर, बहुत अच्छा मेला लगता है, बढ़िया मान्यता है मंदिर की।
0: इस मंदिर में जगह जगह बजरंगबली की मूर्ति भी विद्यमान है। मंदिर परिसर में प्राचीन ब्राह्मी शिलालेख, देवी प्रतिमा और ऐतिहासिक बावड़ी भी मौजूद है, जो इस स्थल की पुरातात्विक महत्ता को और बढ़ाते हैं। प्राचीन कुंड का पानी बेहद चमत्कारी और औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के गंभीर चर्म रोग से पीड़ित है और वो श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र कुंड में स्नान कर ले तो उसकी बीमारियां और त्वचा के रोग हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। पुरातात्विक दृष्टिकोण से यह प्राचीन मंदिर गुप्त साम्राज्य के काल का माना जाता है। मंदिर का गर्भगृह, अंतराल और विशाल सभा मंडप इसकी भव्यता और दिव्यता सबका मन मोह लेते हैं। मंडप के विशाल पत्थरों और स्तंभों पर उकेरी गई सुंदर कमल आकृतियां, हवा में लटकती हुई अलंकरण श्रृंखलाएं, मुख्य द्वार की शाखाओं पर की गई सूक्ष्म नक्काशी और गुण मंडप के मजबूत स्तंभ गुप्तकालीन शिल्पकला की भव्यता की पहचान है। हालांकि मंदिर के ऊपरी हिस्से का 18वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण किया गया था, लेकिन इसकी मूल आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान आज भी पहेली बनी हुई है।
3: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सुंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे आपकी नींद के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को बढ़िया नींद आती है, कुछ को नींद के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो दवाइयां भी खाते हैं फिर भी उन्हें नींद नहीं आती है। तो नींद के पीछे ज्योतिष के कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और नींद लाने के अच्छे उपाय क्या हैं, इस विषय पे चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:24 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम के 4:24 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3:04:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं नींद के बारे में, यानी निद्रा के बारे में। निद्रा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको नींद आएगी या नहीं आएगी इसमें भी ग्रहों की बड़ी भूमिका है। क्या भूमिका है? नींद व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यक आवश्यकता है। जीव के 4 लक्षण हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो आहार के बाद सबसे महत्वपूर्ण है निद्रा यानी नींद। बिना नींद के या कम नींद के हम कई बीमारियों और समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। ज्योतिष में

लग्न चतुर्थ अष्टम और द्वादश भाव से नींद और शैया सुख देखा जाता है, मुख्यतः द्वादश भाव से बेड कंफर्ट देखते हैं। शनि नींद का सबसे प्रमुख ग्रह है। आपके दिमाग में जो नींद के एंजाइम्स होते हैं, हिप्नोटिक एंजाइम हैं, वो शनि पैदा करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र और बुध भी नींद से संबंध रखते हैं। जो जल की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, और जो वायु की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, ये नींद की राशियां हैं। इसीलिए जो जल की राशियों के लोग हैं या जो वायु की राशियों के लोग हैं, उनको नींद सामान्य से ज्यादा आती है। नींद पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम में समस्या हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, अचानक धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, करियर में लाभ यानी फायदा होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, प्रियजन से मुलाकात होगी, मान सम्मान मिलेगा, काम की अधिकता रहेगी, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बड़ी अच्छी और गहरी नींद आती है, तो नींद कब किसको अच्छी आती है? अगर कुंडली शनि प्रधान है, शनि की सिचुएशन कुंडली में ठीक है, तो व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। चंद्रमा, शुक्र या बुध में से एक भी अगर कुंडली के अच्छे स्थान पर बैठा है तो नींद अच्छी आएगी। केंद्र में या अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह अगर हो तो भी जीवन में अच्छी नींद आती है। अगर कुंडली में जल तत्व के ग्रह मजबूत हो, जल की राशियां मजबूत हो, तो आपको जीवन में आराम मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। कर्क, वृश्चिक, मीन यानी जल की राशियां, मिथुन, तुला और कुंभ यानी वायु की राशियां, इन राशि के लोगों को सामान्यतः अच्छी नींद आती है।
जिनके घर के पास जल का स्रोत होता है, पानी होता है, या जिनके घरों के पास जंगल या पहाड़ होते हैं, ऐसे लोगों को भी सामान्यतः अच्छी नींद आ जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नींद के लिए दवाइयां खानी पड़ती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दवाइयां तो खाते हैं लेकिन दवाई खाने के बावजूद भी नींद नहीं आती। तो नींद आने में कब समस्या होती है? अगर शनि दूषित होगा तो आप हर समय आलस्य में डूबे रहेंगे, लेकिन आपको गहरी नींद नहीं आएगी। चंद्रमा या शुक्र अगर पीड़ित होंगे तो अकारण बिना वजह के आप करवट बदलते रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। अगर बुध पीड़ित हो गया, चंद्र भी गड़बड़ है, बुध भी पीड़ित हो गया, तो तनाव की वजह से, चिंता की वजह से आपको नींद नहीं आएगी। अगर कुंडली अग्नि तत्व प्रधान हो, कुंडली में फायर की मात्रा ज्यादा हो, या पृथ्वी तत्व प्रधान कुंडली हो, तो भी नींद आने में मुश्किल होती है। मंगल की प्रचंडता जब कुंडली में होती है तो शरीर में दर्द है, घाव है, कष्ट है, तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ की वजह से नींद नहीं आती। रात भर पैरों में, शरीर में दर्द होता रहता है, आदमी दर्द और कष्ट की वजह से सो नहीं पाता है। नींद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, करियर में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में आपके लाभ होगा, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी और गहरी नींद आए तो अच्छी नींद के उपाय क्या हैं? जो आपके बेडरूम का रंग है, सोने के कमरे का रंग क्रीम, हल्का हरा या गुलाबी या सफेद रखिएगा। अपने बेडरूम में जिस पलंग पर आप सोते हैं उसका भी बहुत ध्यान रखिए।
इसके अलावा कमरे में हल्की सुगंध हो तो अच्छा है। पलंग के नीचे कोई भी सामान मत रखिए, खास तौर से लोहे की वस्तु अपनी पलंग के नीचे ना रखें। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में गंदे कपड़े भी मत रखिएगा। और अगर आपको नींद आने में दिक्कत होती है तो गले में चांदी जरूर पहनिए। लाल तिलक का प्रयोग मत करिएगा, लाल रंग का तिलक लगाने से एनर्जी लेवल ताकतवर होता है, जिनको नींद में दिक्कत है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। रात को सोते समय अपने पलंग के पाए के पास, अपने सर के नीचे की तरफ जमीन पर लोटे में जल भर करके रखिए खुला, और सुबह उठकर उस जल को पौधे में डाल दीजिए। जिस कमरे में थोड़ी बहुत सूर्य और चंद्रमा की किरणें आती हों, उसी कमरे को सोने के लिए प्रयोग करिएगा। सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। नींद लाने में, मन को रिलैक्स करने में, गहरी नींद आने में ओपल के फायदे बहुत हैं। अगर आप ओपल उंगली में या गले में लॉकेट में पहनते हैं, लगभग हफ्ते 10 दिन में आपकी नींद की साइकिल रेगुलेट होने लगेगी। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको दवाई दी है तो डॉक्टर की सलाह से ही बंद करिएगा, खुद प्रैक्टिकल मत करिएगा। और जब आप सोने जाते हैं पलंग पर लेटने के बाद भगवान के किसी भी नाम का लगातार जप करते जाइए, आंखें बंद करके गहरी सांस के साथ। अगर आप ऐसा करें तो ऐसा करने से भी नींद का आना आसान होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा।
तो आज हमने बात की नींद के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है आज का लकी टिप। रसोई घर में चूल्हा पानी के निकट, सिंक के निकट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रसोई घर में पानी और चूल्हा आस पास होंगे तो आपके घर में सेवक और सहायक नहीं टिकेंगे, मेड और सर्वेंट की समस्या आपको हमेशा परेशान करेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा और घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: एक दिन के विराम के बाद नवसारी डांग जिले में मॉनसून एक बार फिर से जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आहवा, बघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और इसका आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं।
8: मॉनसून की बारिश जमकर बरस रही है, कहीं राहत बनकर तो कहीं आफत बनकर। लेकिन जो लोग गर्मी से राहत के लिए सैर पर निकल गए हैं वो इस मौसम का भी खूब आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां घूमने आए सैलानी मूसलाधार बारिश में भी बोटिंग का लुत्फ लेते नजर आए। नीचे झील का पानी और ऊपर आसमान से बरसती बूंदे।
9: कल तक यहाँ पर कोई बारिश नहीं थी, आज बहुत बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वेदर भी बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत सारे आए। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की है, रास्ते में पेड़ भी गिरे हुए थे वो भी हटाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत पब्लिक आई हुई है।
8: असल में नवसारी डांग जिले में मॉनसून ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आहवा, बघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम बेहद सुहावना हो गया है और इस मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। आहवा, बघई, सुबीर और सापुतारा जैसी जगहों पर वीकेंड और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक डांग पहुंचे हैं। नवसारी से रौनक जाने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राज जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमकर हो रही बारिश, प्रदेश के कई जिलों में 22 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। सैलानियों से प्रशासन की अपील, मौसम से जुड़ी एडवाइजरी का करें पालन। हिमाचल के मंडी से अब महज 30 मिनट में पूरा होगा चंडीगढ़ तक का सफर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ। ₹3500 होगा हेलीकॉप्टर का किराया। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। खराब मौसम पर भी भारी दिखी आस्था। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 51वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन, विश्व शांति सद्भावना और मानवता का संदेश। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने किया रिसीव। द्विपक्षीय बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल डील पर लग सकता है मोहर। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा 116 साल की एक बुजुर्ग महिला की भक्ति की भी है। देखिए,
11: तिरुमला में दिखी भक्ति की अनोखी शक्ति। कर्नाटक की 100 साल से अधिक उम्र की एक महिला भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए 3550 सीढ़ियां चढ़ती नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नवनी थम्मा नाम की ये महिला खुद चलकर भगवान वेंकटेश्वर के दरबार तक पहुंची। गोविंदा गोविंदा का जाप करते हुए श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तक पहुंचने वाली नवनी थम्मा की उम्र 116 साल बताई गई है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने परिवार के सदस्यों की मदद के बिना किसी व्हीलचेयर के खुद सीढ़ियों की चढ़ाई की। इतनी उम्र में भक्ति के इस जज्बे को देखकर मंदिर प्रबंधन की ओर से उनके लिए विशेष VIP दर्शन की व्यवस्था की गई। ये दिव्य तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले की है, जहां की होंग गांव में धूमधाम के साथ मनाया गया 37वां होंग ड्रीम महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश के आपातानी समुदाय का ये वार्षिक महोत्सव है, जिसका सबसे बड़ा आयोजन लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो घाटी और राजधानी ईटानगर में हुआ। इस महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पारंपरिक प्री नृत्य, लोकप्रिय डामिंगा नृत्य समेत बाकी और लोक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा साहित्यिक प्रतियोगिताएं, पारंपरिक खेलकूद और आधुनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस महोत्सव में आयोजित हुए। ये आपातानी समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण कृषि और सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें अच्छी फसल, समय पर मानसून, उर्वरता और मानव कल्याण के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती है। हर वर्ष 4 से 7 जुलाई तक ये ड्रीम महोत्सव आयोजित होता है। राजस्थान के पाली में पशु प्रेम और लोक परंपरा की अनोखी मिसाल देखने को मिली। पाली जिले के बारसा गांव में ग्रामीणों ने सामूहिक सहमति से एक बछड़ा और बछड़ी का वैदिक रीति रिवाजों से विवाह कराया। इस अनोखे आयोजन में सैकड़ों ग्रामीणों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। 3 दिन तक चले आयोजन में गणपति पूजन, बंदोली, निकासी और वेद मंत्रों के बीच फेरे संपन्न हुए। इस आयोजन को लेकर पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा। श्रीनगर में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी आमद देखी जा रही है, जो यहां के खुशनुमा माहौल का लुत्फ उठाने के साथ ही डल झील का दीदार कर उसकी सैर भी कर रहे हैं। पर्यटक इस खूबसूरत वादी में पहुंचकर प्राकृतिक नजारों का दीदार कर बेहद खुश नजर आते हैं। इन पर्यटकों के साथ ही यहां के कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। अलग अलग तरह के सामान बेचने वाले इन पर्यटकों के इर्द गिर्द मंडराते नजर आते हैं, तो पर्यटक उनसे खरीदारी करते भी दिखते हैं। दिव्यांगता को मात देते हुए राजस्थान के पहले टूथ आर्चर गोविंद माली ने पाली जिला तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। दांतों से धनुष खींचकर ये उपलब्धि हासिल कर गोविंद ने हर किसी को हैरान कर दिया। श्री बांगड़ स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद पैरा तीरंदाज गोविंद ने सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर स्वर्ण पदक जीता। इस शानदार जीत के साथ ही उन्होंने राज्य स्तरीय रिकर्व राउंड के लिए पाली की टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। गोविंद अब 8 से 10 अगस्त तक राजस्थान के बीकानेर में होने वाली राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में पाली का प्रतिनिधित्व करेंगे। गोविंद का सपना ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए मेडल जीतना है। और अब बात करते हैं मानसून की। मानसून ने देश भर में गर्मी से राहत तो दी है, जिसका लोग भरपूर आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में हो रही भारी बारिश लोगों का कड़ा इम्तिहान भी ले रही है। पुणे, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से बिगड़े हालातों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई है, जहां उफनती नदियों और बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में अलग अलग दिनों में हल्की से भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिलेंगी।

0: मॉनसून ने पूरे देश में दस्तक दे दी है। फिलहाल कहीं बारिश कम तो कहीं मूसलाधार बारिश। मॉनसून आने के बाद पूरे देश का कमोबेश यही नजारा है। हालांकि जहां मूसलाधार बारिश है वहां मुसीबतें भी हैं। जहां कम बारिश है वहां उमस और गर्मी से लोग अभी भी परेशान हैं। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार भारी बारिश से मुसीबत में घिरे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। दरअसल लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और मुंबई पुणे नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद है। इस बीच पुणे के चाकन इलाके में एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुणे के अम्बेथन रोड पर कुछ इमारतें चारों ओर पानी से घिर गई, जिससे उन इमारतों में करीब 70 से 80 लोग फंस गए। फायर ब्रिगेड ने खबर मिलते ही बचाव अभियान शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इमारत में फंसे लोगों को कंधे पर बैठाकर किनारे सुरक्षित जगह पर पहुंचाते दिखे। रेस्क्यू की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सांबा की है, जहां अचानक नदी में आए पानी ने 5 लोगों को मुश्किल में डाल दिया। लेकिन खबर मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और रस्सियों के सहारे एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ओडिशा के बौद्ध जिले की सालुंकी नदी बारिश के बाद उफान पर आ गई। तेज बहाव के बीच 2 महिलाएं फंस गई। पानी का रौद्र रूप और तेज बहाव दोनों ही बचाव अभियान में बड़ी चुनौती थे। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों महिलाओं को नदी से बाहर निकाल लिया गया। ओडिशा की महानदी उफान पर है। रविवार को 3 युवा कटक में बहने वाली महानदी की तेज धार में फंस गए। जानकारी के मुताबिक एक युवक फिसलन की वजह से नदी में गिर गया। उसे बचाने के लिए बाकी दोनों युवक भी नदी में कूद गए और तीनों डूबने लगे। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोग बोट लेकर पहुंचे और 2 युवकों को सुरक्षित किनारे पर बचा लाए। बाढ़ के बीच रेस्क्यू अभियान की ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से भी आई है। लगातार बारिश के चलते पुल बनाने के काम में लगे 14 मजदूर चारों तरफ पानी में घिर गए। खबर मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा। घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और आखिरकार सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मॉनसून आने के बाद से ही मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित कोयना नगर के झरने मॉनसून के मौसम में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते। यहाँ का कोयना डैम कुदरत का वो करिश्मा है कि इसे जो भी देखता है वो इसमें खो जाता है। ऊंचाई से गिरती पानी की धार पर्यटकों को आकर्षित कर लेती है।
1: कोयना डैम इलाके में बहुत ही जोरदार बारिश चल रही है और यहाँ पे जो आजू बाजू का परिसर है वो पूरा ग्रीन हो चुका है और हम खासकर यहाँ पे जो कोयना का प्रसिद्ध ओझरडे वाटरफॉल है ये देखने के लिए आए हैं। सो ये जो वाटरफॉल है वो 800-900 फीट ऊपर से गिरता है और यहाँ का आजू बाजू का जो परिसर है पूरा ग्रीन हो चुका है। खासकर कोयना और आजू बाजू के जो और भी वाटरफॉल है वो भी अच्छी तरह से बह रहे हैं। रेनी सीजन में यहाँ पे घूमने का मजा ही कुछ और है। यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात से बहुत ही टूरिस्ट यहाँ पे खासकर ये ओझरडे वाटरफॉल देखने के लिए आते हैं। हमें यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और रेनी सीजन में कोयना का ये ओझरडे वाटरफॉल बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस।
0: वहीं सतारा के महाबलेश्वर में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे यहाँ पारा में काफी गिरावट आई है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। पीपल कोठी के नजदीक गुलाब कोठी में भूस्खलन की वजह से सड़क पर मलबा आने के कारण बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लिहाजा बद्रीनाथ धाम जाने वाले और वापस ऋषिकेश देहरादून हरिद्वार की ओर जाने वाले यात्री और स्थानीय लोग बीच रास्ते में ही फंस गए। हालांकि 2 घंटे बाद भनीर पानी में मार्ग को खोल दिया गया। चमोली जिले में कल देर रात हुई बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। फिलहाल नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब हो गई और घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
2: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और जहां हम खड़े हैं प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर 3 में, यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे सारे बड़े मंत्रियों के घर हैं, जहां के विजुअल्स अगर हम आपको दिखाएं तो लगेगा कि वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्से अभी पानी में डूबे हुए हैं। और ये सिर्फ 48 आवर्स में हुआ, यानी कि 48 घंटों में ये हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग ने सेंट्रल छत्तीसगढ़ यानी कि बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग ऐसे सारे एरिया में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। देखिए, ड्रेनेज जो सिस्टम बनाना, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, इसके लिए क्या वैज्ञानिक को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बन ही नहीं पा रहा है किसी से इतने सालों से यही समस्या।
3: मैं तो 15 साल से हूँ यहाँ पे, देख रहा हूँ हर साल कैसा प्रॉब्लम आता है। इधर के तो बहुत सारे घर जो रेंट पर रहते, कई लोग छोड़ छोड़ के भी जा चुके हैं।
0: जाहिर है मॉनसून ने आते ही भले ही लोगों को गर्मी से राहत दे दी, लेकिन कुछ जगहों पर मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। अब जरा सैटेलाइट तस्वीरों से समझिए कि आखिर कई इलाकों में मॉनसून हदें क्यों लांघ रहा है। दरअसल इस वक्त पूर्व मध्य अरब सागर से लेकर कोंकण तट तक घने बादलों का एक बड़ा सिस्टम एक्टिव है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक मजबूत वेदर सिस्टम बना हुआ है, जो देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह बना हुआ है। अरब सागर से लगातार नमी मिलने की वजह से महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं बारिश के सिस्टम को और ताकत दे रही हैं। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम का असर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत तक साफ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जाहिर है मॉनसून ने आने में देर जरूर की, लेकिन जिस तरह देश के बड़े हिस्से में बारिश हो रही है, उसके संकेत खेती के लिहाज से भी अच्छे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में मॉनसूनी गतिविधियां आने वाले वक्त में जोर पकड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनों से रोजाना लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं, लेकिन भारी बारिश होने पर सबसे पहले लोकल ट्रेनों पर ब्रेक लग जाता है। लेकिन इस बार खुशी की तस्वीरें देखी जा रही है। मुंबई में लगातार 5 दिनों से मूसलाधार बारिश होने के बावजूद रेल पटरियों पर जलभराव जैसे हालात नहीं। देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे की रिपोर्ट।
4: लगातार 5 दिनों से मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है। हर किसी को चिंता इस बात की थी कि जो मुंबई की लाइफलाइन है यानी कि लोकल, कहीं वो ठप ना हो जाए, क्योंकि रोजाना 33 लाख से ज्यादा यात्री मुंबई की लोकल से सफर करते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई के सेंट्रल रेलवे के घाटकोपर स्टेशन पर और तस्वीरों के माध्यम से देखें पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म इस समय खाली पड़ा हुआ है। इसके 2 कारण है। पहला तो ये कि महाराष्ट्र सरकार ने बकायदा मुंबई करो के मोबाइल पर एक SMS भेज दिया है, जिसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि 90 घंटे तक लगातार मुंबई में मूसलाधार बारिश होगी। रेड अलर्ट भी जो है मौसम विभाग की तरफ से घोषित किया गया है। पहली ये वजह है कि मुंबई का घाटकोपर रेलवे स्टेशन इस समय खाली दिख रहा है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी वजह है वो ये भी कि लगातार मुंबई की जो लोकल है वो पटरियों पर दौड़ रही है, भले ही 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे देरी से चल रही हो, लेकिन लगातार मुंबई की जो लोकल है वो दौड़ रही है। यानी कि मुंबई की लाइफलाइन, वेस्टर्न रेलवे, हार्बर रेलवे और सेंट्रल रेलवे, ये तीनों ही बकायदा बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं।
0: इंडियन नेवी की ताकत बढ़ने वाली है। स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी 11 जुलाई को होगा नेवी में शामिल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। देवभूमि में चार धाम यात्रा धूमधाम से जारी है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन कर रिकॉर्ड बनाया है। खराब मौसम के बावजूद यहाँ श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। यहाँ रोजाना लगभग 9 से 10 हजार श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। मॉनसून सक्रिय होने के बावजूद जुलाई के पहले हफ्ते में ही भक्तों की संख्या 14.5 लाख के पार पहुंचना लोगों की अटूट आस्था का उदाहरण है। हालांकि प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि वो मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा के लिए आगे बढ़ें। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 91 साल के हो गए। आज लेह के जवित्साल में दलाई लामा का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं और तिब्बती समुदाय के लोगों ने विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान दलाई लामा के लंबे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और विश्व शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए गए। दलाई लामा ने श्रद्धालुओं का आभार जताया, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि दलाई लामा का शांति, सद्भाव और मानवता का मैसेज दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की। साथ ही सीएम योगी ने यमुना नदी में बोट रैली का भी शुभारंभ किया। इसी दौरान प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगाई गई और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का लोकार्पण भी किया। सीएम ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की निरंतर प्रगति का प्रण दोहराया। इस दौरान सीएम योगी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। नौसेना के P-17A क्लास के छठे जंगी जहाज महेंद्र गिरी के क्रेस्ट का अनावरण हो गया। ये युद्धपोत भारत की समुद्री ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसके क्रेस्ट में सबसे ऊपर शिकारी पक्षी बाज की एक प्रजाति क्रेस्टेड गोशाक को महेंद्रगिरी पर्वत पर बैठा हुआ दिखाया गया। ये साहस, तेजी और सटीकता का प्रतीक कहलाता है। स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी 11 जुलाई को बेड़ी में शामिल किया जाएगा। अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस इस युद्धपोत का नाम उड़ीसा के महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जोधपुर में भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति आरंभ की जाएगी। सितंबर 2026 में भारतीय वायुसेना की यह सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होगी। तरंग शक्ति एक्सरसाइज का ये दूसरा एडिशन है, जिसे इस बार जोधपुर एयरबेस पर 28 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच शुरू करने की संभावना है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास अपने सहयोगियों के साथ भारत की ओर से आयोजित ये पहली बड़ी एयर कॉम्बैट ड्रिल होगी। इसमें 30 से ज्यादा देशों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें अहम रणनीतिक सहयोगी भी शामिल है। ये इंटरनेशनल मिलिट्री सहयोग और इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देने में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। और अब बात अमरनाथ यात्रा की। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंच रहे हैं। आज श्रद्धालुओं का चौथा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। अब तक 56,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। वहीं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जम्मू से श्रीनगर के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा भी शुरू कर दी गई है। हालांकि इस बीच खबर है कि जिस प्राकृतिक हिम शिवलिंग का दर्शन करने श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते हैं, उसका आकार धीरे धीरे कम हो रहा है। महादेव बम बम भोले के जय घोष के बीच श्रद्धालु बाबा बर्फानी के द्वार पर माथा टेकने आ रहे हैं। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पवित्र गुफा पहुंच रहे हैं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अमरनाथ यात्रा शुरू हुए अभी 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है भक्तों का जोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
5: थोड़ी गर्मी ज्यादा है जम्मू में, पर उत्साह बाबा का अच्छा है सबको।
6: भोले बाबा इन लोगों को भी सुरक्षा करे और इनको भी शक्ति दे, हम लोगों के इन्हीं लोगों के बदौलत हम लोग अच्छे से दर्शन कर पाते।
7: निर्डर होके सेना देख के हर एक चीज उत्साह आ रहा है कि चलो हम लोग सेफ भी हैं, अच्छे भी हैं और अच्छे से यात्रा हमारी सफल होगी।
0: हिमगिरी गुहावासम कृतकर्पनाशम भक्त जन प्रियमीशम नमामि अविनाशम। बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटने वाले श्रद्धालुओं के चेहरों पर भक्ति और आस्था की चमक साफ दिखाई दे रही है। वहीं यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु पूरे उत्साह और विश्वास के साथ कठिन रास्ता तय कर रहे हैं।
8: ये तो व्यवस्था हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमने प्रोसेस से सारा काम किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के घर से ही आए थे और जरा सा भी यहाँ पे कोई तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई।
9: सरकार द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं बहुत अच्छे किए गए हैं, जो जम्मू सरकार है वो भी हमारी पूरी मदद कर रही है।
0: आज बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था रवाना हुआ। पहला जत्था 3 जुलाई को दर्शन के लिए निकला था। बालटाल बेस कैंप पर रोजाना सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार दिख रही है। वहीं पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से भी आज श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रवाना हुआ। बालटाल रूट के मुकाबले पहलगाम रूट पर वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्त भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए यात्रा के हर पल को अपने उत्साह से भर देते हैं। 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा के पहले 3 दिनों में ही 56,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़ा करीब 18.6% ज्यादा है। साल 2025 में पहले 3 दिन में 48,000 श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे।
10: बहुत ज्यादा यात्री से बहुत प्रसन्न हैं और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद कश्मीर के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इतना कोऑपरेट करते हैं हर चीज में। मैं साइन बोर्ड तो है ही है, लेकिन यहाँ के जो लोकल आवाम है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ।
0: मार्गों पर बने शिविरों में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के भजन गाकर माहौल को शिवमय बना रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं के लिए रास्ते भर जगह जगह लंगर, मेडिकल कैंप, विश्राम स्थल और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं।
11: यात्रियों को अमरनाथ यात्रा के लिए जाना है उनके लिए नीचे जो रिसेप्शन सेंटर पे RFID की सहूलियत है और वहाँ पे
0: यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने भी बड़ी पहल की है। जम्मू से श्रीनगर के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है। इससे श्रद्धालु कम समय में कश्मीर घाटी तक पहुँच सकेंगे। ट्रेन सेवा शुरू होने से सड़क मार्ग पर दबाव भी कम होगा और यात्रा पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक होगी।
12: बहुत ही अच्छी सुविधा है, रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है उससे और ज़्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुंच जा रहे हैं बिना किसी थकान के। हम लोग सुबह उतरे हैं और वहां से डायरेक्ट हम लोग यहां आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है।
13: और ये बात लगी कि टीटी और जो CRF के जवान हैं हमारे, वो जवान भी सपोर्टेड थे, जहाँ कुछ गलत है वहाँ वो रोक रहे थे, पर डेफिनेटली यात्रा बहुत सुविधाजनक थी।
14: द्रव्य दक्षिणाम ओम मानो महंत मुदमानो।
0: इसी बीच अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक हिम शिवलिंग के आकार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि पवित्र शिवलिंग का आकार धीरे धीरे घट रहा है। बताया गया कि जून में हिम शिवलिंग की ऊंचाई करीब 7 फीट देखी गई थी।
15: बहुत चिंता है भक्तों के बीच में कि शिवलिंग का आकार बहुत घट रहा है, तो कैसा आपको फील हुआ वहाँ पर? क्या
16: ऐसे तो फील हुआ भाई, क्या वो बहुत ही कम था शिवलिंग, लेकिन बड़ा मजा आया देखने में, बहुत ही ज्यादा मजा आया, आनंद आया।
17: जैसे कि हमने ये देखा कि यात्रा जब भी स्टार्ट होती है तो शिवलिंग फुल पूरे होते हैं, तो आज हमें देख के ऐसे थोड़ा दुख हुआ कि शिवलिंग जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, इससे भक्तों में थोड़ी सी निराशा जरूर होगी।
0: जानकारों के अनुसार मौसम में बदलाव, तापमान बढ़ने, गुफा के भीतर नमी और श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही जैसे कारणों से हिम शिवलिंग का आकार कम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
15: अमरनाथ गुफा पर आने वाले श्रद्धालुओं में सबसे बड़ी मायूसी इस बात को लेकर है कि हमेशा अमरनाथ गुफा में अब पिछले कुछ सालों के दौरान शिवलिंग का आकार ज्यादा समय तक नहीं रह पाता है। पिछले साल भी यात्रा शुरू होते ही शिवलिंग ने आकार घटाना शुरू कर दिया था और कुछ ही दिन तक मात्र अमरनाथ गुफा में श्रद्धालुओं को शिवलिंग के दर्शन हो पाए थे।
0: आस्था और विश्वास यही कहता है कि बाबा बर्फानी का स्वरूप प्रकृति के साथ बदलता है और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और विश्वास हमेशा अटल रहता है। अमरनाथ से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
18: कारोबारी सप्ताह के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में फिर बढ़त देखने को मिली। सोमवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 521 अंकों की बढ़त के साथ 78,285 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएससी निफ्टी 159 अंकों की बढ़त के साथ 24,430 पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में सुस्ती और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने की वजह से आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 150 रुपए गिरकर 1,50,650 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपए लुढ़क कर 2,40,000 रुपए पर पहुंच गई। 6 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 20 पैसे कमजोर होकर 95.38 के स्तर पर बंद हुआ।
0: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमकर हो रही बारिश, प्रदेश के कई जिलों में 22 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मॉनसून, सैलानियों से प्रशासन की अपील, मौसम से जुड़ी एडवाइजरी का करें पालन। शिमला के मंडी से अब महज 30 मिनट में पूरा होगा चंडीगढ़ तक का सफर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ, 3500 रुपए होगा हेलीकॉप्टर का किराया। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम पर भी भारी दिखी आस्था। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 51वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन, विश्व शांति सद्भावना और मानवता का संदेश। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने किया रिसीव, द्विपक्षीय बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल डील पर लग सकता है मोहर। चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
20: सोशल सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। बच्चा भी सड़क पर चल रहे दोपहिया वाहन पर बहन के साथ बैठा है। बहन नींद में और बच्चा बहन के हाथ में रखी आइसक्रीम का लुत्फ लेने पर उतारू है। मुंह में बस आइसक्रीम का स्वाद लेने को ही था, लेकिन तभी पीछे की गाड़ी ने इतनी तेज हॉर्न बजा दिया कि बच्चे ने कमाल का रिएक्शन दिया। बच्चे ने हॉर्न बजाने वाली गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर आइसक्रीम ही दे मारी। अब बच्चे का ये आखिरी वाला रिएक्शन

0: करने का खुमार चढ़ा है। ओपन पार्क में वो जिम इक्विपमेंट्स के साथ वर्कआउट करती नजर आ रही हैं, लेकिन इस उत्साह में दादी माँ की वर्कआउट की रफ्तार देखकर एक तरफ तो सब दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूजर्स दादी माँ को कह रहे हैं कि माना कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, पर रियलिटी यही है कि आप ओल्ड हैं, इसीलिए उन्हें सुरक्षित रहने की हिदायत भी दे रहे हैं। भाई माँ तो माँ होती है, चाहे इंसान की माँ हो या फिर बछड़े की माँ। इन वायरल तस्वीरों को जरा देखिए, गाय अपने नवजात बछड़े को ढूंढ रही है और तभी जब उसे बछड़ा दिख जाता है तो वो बछड़े के पास किसी को खड़ा हुआ देखती है। फिर क्या, तेजी से दौड़ती हुई गाय माता अपने बच्चे को सुरक्षित करने पहुंचती है। पास खड़ा व्यक्ति तो भाग जाता है और गाय अपने बच्चे को चाट चाट कर दुलारने लगती है। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें बता रही हैं कि रास्ते चाहे कितने भी खतरनाक क्यों न हो, अगर दिल में हौसला है, जुनून है, तो कामयाबी मिलना तय है। भरी बरसात में सिंगल लाइन जुगाड़ू पुल पर इस तरह भला साइकिल चलाने का हौसला किसके पास होगा। इन भाई साहब का बैलेंस देखकर तो हर किसी के होश उड़ गए। यूजर्स वाहवाही तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सेफ्टी को लेकर भी चिंतित है।
1: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बेंगलुरु में चलाए जा रहे सेफ फुटपाथ अभियान की। कर्नाटक सरकार की ओर से बेंगलुरु में चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर काफी चर्चा है। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जानकारी दी है कि बेंगलुरु के पांचों नगर निगम क्षेत्रों में सेफ फुटपाथ अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत 3 दिनों में 200 किलोमीटर से अधिक फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त कराए जा चुके हैं। इस अभियान का उद्देश्य शहर की सड़कों को सुरक्षित, सुगम और हर पैदल यात्री के लिए अधिक सुलभ बनाना है। सरकार का मानना है कि वर्षों से फुटपाथ पर अवैध कब्जों के कारण लोग मजबूरी में सड़क पर चलने को मजबूर होते हैं, जिससे कि दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर इस अभियान से प्रभावित हुए हजारों रेहड़ी पटरी वालों के भविष्य और आजीविका को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस कार्रवाई को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक पक्ष इसे शहर को अधिक व्यवस्थित और पैदल यात्रियों के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष सरकार से मांग कर रहा है कि शहर के फुटपाथ को खाली कराने के साथ साथ विस्थापित स्ट्रीट वेंडर्स के पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाए। ग्रेटर बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को पूरी तरह हटाना नहीं है। मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा है कि सड़कों से हटाए गए वेंडर्स को वार्ड स्तर की सड़कों और निर्धारित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा, ताकि उनकी रोजी रोटी पर असर ना पड़े। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि शहर के क्षतिग्रस्त फुटपाथों की मरम्मत और उन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने संकेत दिया है कि अभियान के अगले चरण में फुटपाथ पर खड़े लावारिस वाहन, अवैध पार्किंग और कचरे के ढेर भी हटाए जाए, ताकि पैदल यात्रियों को चलने में दिक्कतें ना हो। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई लंबे समय से नागरिकों की मांग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है। सरकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से भी अपील है कि वे अपनी मर्जी से फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण हटा लें, ताकि प्रशासन को कठोर कार्रवाई ना करनी पड़े। जाहिर है फुटपाथ पर अतिक्रमण की समस्या देश के ज्यादातर शहरों में है। इस समस्या की वजह से पैदल यात्रियों को चलने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिलती है। ऐसे में बेंगलुरु शहर में फुटपाथ खाली कराने के लिए चल रहे अभियान की गूंज दूसरे शहरों में सुनाई दे सकती है। इस मुद्दे पर हमने देश की राजधानी दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी
2: कि ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि पब्लिक भी चल रही है उसमें, छोटे भी बड़े भी हर तरह के लोग चल रहे हैं, ठीक है, परचेस करते हैं, मगर जो फुटपाथ है वो फुटपाथ पे आक्रमण ज़्यादा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कभी ये ऐसा गलत है, चाहे वो कंट्री हो, चाहे स्टेट हो, चाहे वो भी हो, तो मैं तो कहता हूँ फुटपाथ बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक दुर्घटना के बहुत चांसेस होते हैं और इसका जो है अनयूज भी बहुत तरीके से हो जाता है लूटपाट का भी, तो ये भी देखा है हमने, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। मैं तो इसके आने के से जिसको जाना है अपने जाए, ठीक है, पब्लिक को परेशानी हो क्या होगी, पब्लिक को नहीं, मगर पब्लिक को सबसे ज़्यादा परेशानी है। लेने वाले सामान लेने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर कल को कोई हादसा हो जाए तब कितनी प्रॉब्लम होगी।
3: दिल्ली में क्या हर जगह नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उनकी रोजी रोटी है ना, और आप उनकी रोटी रोटी छीनोगे तो वो कहाँ जाएंगे। फुटपाथ की तो ऐसी उनके लिए जगह है कि अब जी आप यहाँ पे कनॉट प्लेस पे देख लेना, फुटपाथ की जगह है लेने की, ठीक है, तो इनकी भी तो रोजी रोटी है, इनके पास दुकान तो है नहीं है।
4: दिल्ली में पहला होना चाहिए, बहुत जरूरी है, फुटपाथ पे चले नहीं जाते इंसान से, फुटपाथ सब कवर है पूरे, पब्लिक ने कब्जा कर रखा है, और रोड पे चलते हैं तो पीछे से वाहन करते हैं, पों पों पों, वो आदमी चले कैसे, कहाँ चले, बड़ी दिक्कत है, होना चाहिए। ये तो
5: इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो आप देख रहे हो व्हीकल्स जाम जो लग रहा है ना, वो एनक्रोचमेंट का ही कारण।

0: कारण है। जितना दिल्ली मानो कोई भी बड़ा सिटी है, जो जाम लग रहा है वो एनक्रोचमेंट जो फुटपाथ हो रहा है ना उसी का, क्यों कि फुटपाथ पे चलने वाला नीचे चलेगा, फिर वाहन वाले उस साइड में चलेंगे तो रोड ब्लॉक हो जाएगी, पीछे से जाम लगेगा। तो एनक्रोचमेंट तो मैं कह रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको तुरंत ऐसा कोई कानून बनाए कि एनक्रोचमेंट रहे ही नहीं बिल्कुल।
1: फिल्म तेरा यार हूं का ट्रेलर हुआ रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
2: उसकी मिलाप मिलन जावेरी की मोस्ट अवेटेड फिल्म तेरा यार हूँ मैं का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें रोमांस, हास्य और ड्रामा देखने को मिल रहा है। इसमें एक ऐसे कपल की कहानी है जहाँ प्यार एक तरफा दिख रहा है। लड़की के लिए बॉयफ्रेंड से ज्यादा पिता के प्यार की अहमियत दिखती है, जबकि हीरो खुद लड़की के पिता से उनकी बेटी का दिल जीतने के लिए कुछ वक्त मांगता है। इस फिल्म के साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंद्र कुमार के बेटे अमन इंद्र कुमार और आकांक्षा शर्मा बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म में परेश रावल, जॉनी लीवर, सुप्रिया पिलगांवकर जैसे कलाकार भी हैं। फिल्म तेरा यार हूँ मैं 24 जुलाई को सिनेमाघर में रिलीज होगी। फिल्म लव लॉटरी का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। फर्स्ट लुक का ये वीडियो अपने रहस्यमयी अंदाज, दमदार विजुअल्स और सस्पेंस से भरपूर बैकग्राउंड स्कोर के साथ दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने वाला है। ये फिल्म कोर्टरूम ड्रामा, मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर वाली इस फिल्म में रिश्तों, कानून और समाज के कई संवेदनशील पहलुओं को कहानी का हिस्सा बनाया गया है। फर्स्ट लुक में कहानी का ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन फिल्म के कलाकारों की झलक दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा रही है। वीडियो में अक्षय ओबरॉय, हेली दारूवाला, कबीर दुहान सिंह, हेमंत पांडे, विजयंत कोहली और अग्नि अग्यारी नजर आते हैं। तो आखिर में संतोष शुक्ला की एंट्री कहानी के रहस्य को गहरा करती हुई नजर आती है। ये फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सौरभ गांगुली के जन्मदिन पर उनकी बायोपिक दादा द सौरभ गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक आ सकता है सामने। चर्चा है कि राजकुमार राव के मुख्य किरदार वाली इस फिल्म के मेकर्स 8 जुलाई को इस फिल्म की पहली झलक रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि मेकर्स इस फर्स्ट लुक के साथ ही फिल्म के रिलीज डेट का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि मेकर्स की ओर से अभी इस सबको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन चर्चाओं को लेकर नजरें 8 जुलाई पर टिक गई हैं।
1: और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। माँ केवल एक शब्द या फिर रिश्ता नहीं, बल्कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति और ममता का सागर है, जो बिना कहे बच्चों की हर तकलीफ समझ लेती है और उनके जीवन को हमेशा खुशियों और त्याग से रोशन रखती है। ऐसी ही मिसाल राजस्थान के कोटा में देखने को मिली, जहां बिहार की एक माँ अपने बेटे के लिए एक बार फिर स्टूडेंट बन गई, जिसकी बदौलत बेटे को बड़ी कामयाबी हासिल हुई।
3: अपने बेटे के साथ क्लास में पढ़ाई करती माँ, अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए। बेटे के सामने जब मुश्किल हालात बन गए तो उसे न सिर्फ हौसला देने के लिए ये माँ सामने आई, बल्कि उसकी पढ़ाई में पूरी शिद्दत से साथ दिया। और माँ के उस समर्पण ने बेटे को वो सफलता दिलाई जिस पर हर बेटे को फक्र होगा। बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले गुंजन जेईई 2021 के टॉपर मृदुल अग्रवाल से प्रेरित होकर कोचिंग के लिए राजस्थान के कोटा पहुंचा। 2 साल तैयारी करने के बाद अचानक गुंजन बीमार हो गया। फेफड़े से जुड़ी बीमारी ने बेड पर रहने को मजबूर कर दिया, जिसके चलते कोचिंग क्लास करना भी संभव नहीं रह गया। अपने बेटे की इस स्थिति को देखते हुए माँ ने मोर्चा संभाला ताकि बेटे की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो। वो बिहार से कोटा पहुंचकर अपने बेटे के साथ रहने लगी। बीएड कर चुकी गुंजन की माँ गुंजा एक गृहिणी है। आईटी को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं होने पर भी गुंजा ने बेटे के लिए वर्षों बाद फिर से पढ़ाई शुरू की। बेटे गुंजन को ऑनलाइन वीडियो दिखाए और खुद भी क्लासेस के नोट बनाए। एक साथी की तरह माँ के साथ देने से गुंजन अब आईआईटी में एडमिशन लेगा।
4: फिर वो बहुत बड़ा एक चैलेंजेस था कि सबसे पहले तो उसमें ये था कि बेटा को तबीयत ठीक करना था, जल्द से जल्द जितना जल्दी ठीक बात ठीक करना था। बहुत ज्यादा उसमें समस्या आई थी इसके साथ, इसको उठना बैठना बिल्कुल सख्त मानना था। उसमें काफी परेशानी हमें हुई थी, फिर भी मेरा लड़का हिम्मत नहीं हार रहा था, ये मोबाइल से ऑनलाइन क्लास पढ़ता ही था लेटे लेटे ही, फिर अब पढ़ तो लेता था पर लिख नहीं पाता था, उसके लिए मुझे इसको हेल्प करना पड़ा। इसने बोला मम्मा मुझे नोट्स बनानी है, तो मैंने इसका नोट्स बनाए, नोट्स भी देता था ये पीडीएफ बना के देता था, तो उसमें जल्दी जल्दी, लेकिन कुछ कुछ वीडियो आते थे उसमें हमें प्रॉब्लम होती थी लिखने वाले, क्योंकि हमें IIT की तैयारी के बारे में स्टडी के बारे में जानकारी थी नहीं, फिर जो जो वीडियो होती तो उसमें कुछ सर का हैंड राइटिंग जो होता था वो मुझे समझ में नहीं आता था, तो फिर मैं उसे पूछती थी वीडियो रोक रोक के, फिर ये मुझे बताता था यहाँ पे ये लिखा है वो लिखा है, फिर मैं उसको अच्छे से लिखती थी।
3: न्यूमोथोरेक्स जैसी गंभीर बीमारी ने गुंजन को करीब 3 महीने तक बिस्तर पर रहने को मजबूर कर दिया। बावजूद इसके माँ से मिली मदद और अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत, JEE एडवांस में गुंजन ने सफलता हासिल की। गुंजन की आंखें कमजोर हैं, 70% से ज्यादा आईसाइट वीक है, लेकिन पढ़ाई के प्रति समर्पण ने बड़ी कामयाबी दिलाई। JEE मेन में 91.8% स्कोर करने वाले गुंजन का JEE एडवांस में PWD OBC कैटेगरी रैंक 50 और कॉमन रैंक PWD 120 है, और अब IIT दिल्ली CS ब्रांच में एडमिशन लेकर IITian बनने के सपने को साकार करेगा।
5: सर आखिरी के 3 महीने में अचानक बीमारी आ गई मेरे पास, एंड फिर मेरा ऑपरेशन हुआ एंड 2.5 महीने का बेड रेस्ट। उस बीच मैं मतलब बैठ नहीं पाता था, मेरे को लेटना ही था सिर्फ, तो मेरी तैयारी थोड़ी सी वीक हो गई काफ़ी, एंड अंदर से लग रहा था कि ड्रॉप लेना पड़ेगा 1 ईयर का, लेकिन सब मैनेज हो गया आखिरी में। मेरे स्टडी हावर्स पहले से इंक्रीज हो गए, एंड मम्मी का काफ़ी सपोर्ट रहा नोट्स बनाने में, रिविजन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ये सब। जब सही हो गया दिसंबर लास्ट वीक में, फिर मैंने जर्नी वापस दोबारा शुरू किया एंड मेरा पूरा हो गया।
3: गुंजन को माँ से जो सपोर्ट मिला उसने मंजिल दिलाने में अहम भूमिका निभाई, और उसी की बदौलत अब वो अपने उस सपने को पूरा करने जा रहा है जिसे उसने 9वीं क्लास में देखा था।
5: IIT सपना मैंने क्लास 9 में देखा, जब मैंने देखी वीडियो मृदु अग्रवाल ऑल इंडिया रैंक 1 जो एलएन से आया था, एंड फिर मैंने सर्च किया IIT के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, फिर मालूम पड़ा कि इसके पैकेज काफ़ी अच्छे लगते कंप्यूटर साइंस ब्रांच के, फिर मेरा भी मन किया कि IIT का सपना पूरा करने का, फिर मैं एलएन कोटा में एडमिशन लिया मैंने, एंड मेरी जर्नी पूरी हुई एंड मेरा IIT दिल्ली जाने का सपना पूरा हुआ।
3: ये सिर्फ एक बेटे के IIT तक पहुँचने की कहानी नहीं है, ये कहानी एक माँ की तपस्या की ऐसी मिसाल है जिसने अपने बेटे के सपने को अपना सपना बना लिया। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चीन में 2 बच्चियों के लायन डांस ने दुनिया को लुभाया। जी हाँ, ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। चीन के ग्वांगडोंग में लायन डांस आयोजित किया गया जिसमें नन्ही कलाकारों ने मासूमियत का ऐसा जादू बिखेरा कि हर देखने वाला उन पर प्यार लुटाता रहा। 2 स्कूली लड़कियों की परफॉर्मेंस ने महफिल ही लूट ली। शेर की पोशाक में बच्चियों का शानदार डांस सोशल मीडिया पर छा चुका है। मासूम मुस्कान और शानदार मूव्स ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चीन का त्यांगोंग स्पेस स्टेशन एक बार फिर चर्चा में है। इस स्पेस स्टेशन पर पहला स्पेस बेस्ड ग्रीन हाउस गैस डिटेक्टर इंस्टॉल कर दिया गया। ये डिटेक्टर अब पृथ्वी की कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा पर नजर रख सकता है। चीन के स्पेस स्टेशन पर मौजूद शेंझो 23 क्रू कई अहम रिसर्च पर काम कर रहा है। इस डिटेक्टर के इंस्टॉल होने से ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को ट्रैक करने और इकोलॉजिकल एनवायरमेंट के लिए भी जानकारी मिल सकेगी। चीन के शिनजियांग उइगुर में तारों को देखने के शौकीन लोग एक साथ जुटे। विशेष प्राकृतिक स्थितियों के चलते साल में 240 दिनों तक आसमान साफ रहता है। यही वजह है कि देश विदेश के आने वाले पर्यटकों के लिए यहां अब स्टारी स्काई ड्राइविंग कॉरिडोर बनाया जा रहा है। फिलहाल 90% से ज्यादा कैंप साइट बुक हो चुकी है और लोग इसे लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। चीन का रोबोट एक्सपोर्ट पहले 5 महीनों में 20 अरब युआन पहुंच चुका है। दुनिया भर में 1.3 करोड़ से ज्यादा मेड इन चाइना रोबोट एक्सपोर्ट होते हैं। दरअसल दुनिया भर में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में स्मार्ट रोबोट्स की मांग बढ़ गई है।
6: विजुअल रिक्रिएशन वाले रोबोट्स ने काम की रफ्तार बढ़ा दी है, इसलिए अब हर कोई मेड इन चाइना रोबोट की डिमांड कर रहा है। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में रोबोट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें सिंगवा यूनिवर्सिटी में लार्ज साइज ह्यूमनॉइड लीग का खिताब जीत लिया। रोबोट वर्ल्ड कप के फाइनल में चीन की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की शंघाई टीम से मुकाबला हुआ था। सिंगवा यूनिवर्सिटी की टीम ने बूस्टर T1 रोबोट की मदद से मैच जीत लिया। इस साल रोबोट कप में पहली बार AI ऑपरेटेड फॉर्मेट अपनाया गया। रोबो कप में रोबोट्स खिलाड़ी मैदान पर खुद फैसले लेकर अपनी रणनीति बनाते और खेलते नजर आए। ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
8: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच।
6: क्रिकेट जगत में तहलका मचा रहे हैं राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ और समित द्रविड़। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
14: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के दोनों बेटे क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने को तैयार हैं। उनके बेटे अन्वय द्रविड़ ने भारतीय अंडर 19 टीम की ओर से खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ 87 रन की पारी खेली। अन्वय अपनी टीम में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। उनकी पारी के दम पर टीम इंडिया ने 285 रन का आंकड़ा हासिल किया। अच्छे प्रदर्शन के चलते अन्वय की खूब चर्चा की जा रही है। कुछ दिन पहले उनके बेटे समित द्रविड़ ने KSCA लीग में अपनी दमदार बल्लेबाजी दिखाई थी। भारत ए ने गोल में खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में श्रीलंका ए को 10 विकेट से हराकर दो मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। इस जीत के सबसे बड़े हीरो तेज गेंदबाज गुरनूर बरार रहे, जिन्होंने पूरे मैच में 10 विकेट लेकर श्रीलंका ए की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। पहला मैच ड्रॉ रहने के बाद भारत ए को सीरीज जीतने के लिए इस मुकाबले में जीत जरूरी थी। भारत ए ने पहली पारी में 543 रन बनाकर 177 रनों की बढ़त हासिल की। चौथे और अंतिम दिन गुरनूर बरार ने घातक गेंदबाजी करते हुए दूसरी पारी में 6 विकेट झटके। पहली पारी में उन्होंने 4 विकेट लिए थे, जिससे उनका मैच में कुल विकेटों का आंकड़ा 10 पहुँच गया। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, अर्जुन एरिगाइसी और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन नौदिर बैक उन खास खिलाड़ियों में शामिल हैं जो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स के चौथे एडिशन में हिस्सा लेंगे। ये टूर्नामेंट 16 जुलाई से 22 जुलाई तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। 75 लाख रुपए के प्राइस पूल वाले इस टूर्नामेंट में अहम FIDE सर्किट पॉइंट्स भी मिलेंगे, क्योंकि खिलाड़ी अगले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश में जुटे हैं। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने क्रोएशिया के जगरेब में ग्रैंड चेस टूर के क्रोशियाई लीग के आखिरी दिन शानदार वापसी करते हुए संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। प्रज्ञानंद ने 21.5 अंक हासिल करके फ्रांस के ही मैक्सिमम वॉचियर लाग्रेव के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान शेयर किया। फ्रांस के फिरोजा अली रेजा ने 23.5 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। जर्मनी के कीमर ने कुल 20 अंक हासिल किए, जो मौजूदा विश्व चैंपियन गुकेश से 1.5 अंक ज्यादा थे। इस लीग में गुकेश छठे स्थान पर रहे।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
12: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: Tune in radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है। जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें
11: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।

0: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
2: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
10: हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमकर हो रही है बारिश, प्रदेश के कई जिलों में 22 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। सैलानियों से प्रशासन की अपील, मौसम से जुड़ी एडवाइजरी का करें पालन। हिमाचल के मंडी से अब महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा चंडीगढ़ तक का सफर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ, ₹3500 होगा हेलीकॉप्टर का किराया। देवभूमि में धूमधाम से जा रही है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम पर भी भारी दिखी आस्था। दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन, शांति सद्भावना और मानवता का संदेश। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने किया रिसीव, द्विपक्षीय बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल डील पर लग सकती है मोहर। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान, 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह को भी मिली जगह।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना।
10: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की और रथ यात्रा की। दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा का प्रारंभ हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से हो जाता है, यानी 16 जुलाई को रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर जाएंगे। इस यात्रा के लिए भव्य रथों का निर्माण आखिरी चरण में है। आज आपको रथों के निर्माण के साथ साथ उनके महत्व के बारे में तमाम जानकारी देंगे। पूरी ही नहीं, आपको बता दें देश के कई इलाकों में भगवान की यात्रा निकाली जाती है, खासकर अहमदाबाद और उदयपुर में ये यात्रा भव्य होती है। आज आपको उदयपुर में यात्रा में इस्तेमाल होने वाला चांदी का रथ भी दिखाने जा रहे हैं। अहमदाबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाएंगे और कोलकाता के दीघा में इस साल रथ यात्रा में क्या नया होने जा रहा है ये भी आपको आगे बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पुरी से। देखिए, भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से पहले पुरी में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तीनों भव्य रथ लगभग तैयार हो चुके हैं, विशाल पहियों को रथ में लगा दिया गया है और अब रंग रोगन के साथ नक्काशी का काम भी चल रहा है। भगवान के लिए रथ निर्माण का भी बहुत धार्मिक महत्व है और परंपरा के अनुसार विशेष लकड़ियों से ही इसे बनाया जाता है। पुरी में एक तरफ रथों को तैयार करने के लिए काम किया जा रहा है, दूसरी ओर भक्तों में उमंग और उत्साह जबरदस्त है। मान्यता है कि रथ खींचने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए देश विदेश से श्रद्धालु पुरी जाने के लिए तैयार है। रिपोर्ट देखिए।

0: ऊंचा शिखर, हवा में लहराता ध्वज और हर चेहरे पर 16 जुलाई का इंतजार। श्री जगन्नाथ धाम इन दिनों एक अलग ही रंग में नजर आ रहा है। वजह है वो पल जब भगवान अपने गर्भगृह से निकलकर स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। इस पल का इंतजार केवल ओडिशा नहीं बल्कि पूरा देश करता है। पुरी की गलियों में इन दिनों अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। सड़कें श्रद्धालुओं से भरने लगी हैं। कोई दूर दराज से पहुंचा है तो कोई कई दिनों से यही डेरा डाले बैठा है। हर किसी की बस एक ही इच्छा है, प्रभु की एक झलक मिल जाए। रथ लगभग तैयार है, विशाल पहिए अपनी जगह ले चुके हैं, लकड़ी का भव्य ढांचा आकार ले चुका है, रंग बिरंगे वस्त्र और सजावट अंतिम रूप ले रही है। अब केवल उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। ये केवल यात्रा नहीं, सदियों से चली आ रही एक जीवंत परंपरा है। मान्यता है कि भगवान अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और पूरे 9 दिन तक ये उत्सव चलता है। लाखों श्रद्धालु मोटी रस्सियों से रथ खींचते हैं। इसे जीवन का बड़ा सौभाग्य माना जाता है।
1: हमारा परंपरा का काम है, हम आते हैं। हमारा अभी छोटा लड़का था, घर चला गया, छोटा लड़का आके काम करता है। हम भी पिताजी के साथ आया था, छोटा 5 साल हुआ था, उसी समय आके काम किया। पिताजी चले गए, हम अभी काम करते हैं और उसके बाद हमारा पिता लड़का काम कर रहे, हम चले जाएंगे, उनका लड़का भी काम करेंगे। इस परंपरा का काम है। उसके बाद मंदिर में जितना काम पड़ता है वो भी काम करते हैं। इस जगन्नाथ का जो काम करते हैं हमको इतना खुशी मिलता है, बोलने से आपको मालूम नहीं होगा, इतना खुशी मिलता है, इतना सुख मिलता है। प्रभु को हम बोलते हैं, प्रभु इसी तरह हमारा लड़का को फूल घोड़ा के रखे, इस तरह आके काम करते हैं, हमको बहुत खुशी मिलता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
0: लेकिन इन रथों की कहानी यात्रा वाले दिन से नहीं बल्कि कई महीने पहले शुरू हो जाती है। रथ तैयार करने का काम किसी फैक्ट्री में नहीं होता, ये सेवा पीढ़ियों से जुड़े परिवार निभाते हैं। हर कारीगर अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाता है। किसी का काम पहिए बनाना होता है, कोई धुरी तैयार करता है तो कोई ऊपर का ढांचा खड़ा करता है। हर जिम्मेदारी पहले से तय होती है। सबसे पहले जंगलों से विशेष लकड़ी चुनी जाती है। इसके लिए सामान्य पेड़ नहीं काटे जाते, पूरी धार्मिक विधि के साथ चयन किया जाता है। रथ निर्माण में मुख्य रूप से 5 प्रकार की लकड़ियों का उपयोग होता है। फांसी लकड़ी से मजबूत धुरी बनाई जाती है जिस पर पूरा भार टिका रहता है। सिमली लकड़ी का इस्तेमाल ऊपरी ढांचे और सजावटी हिस्सों में किया जाता है। सहजा लकड़ी से हल्के भाग और पट्टियां तैयार होती हैं। मही और दारुक लकड़ी का उपयोग विशेष धार्मिक कार्यों में किया जाता है। ये सभी लकड़ियां मयूरभंज, गंजाम, क्योझर और दसपल्ला के जंगलों से लाई जाती है।
2: ये हर साल तो नया बनता है, प्रभु जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी का, सुभद्रा माई का रथ हर साल नया बनता है। ये काम हर साल अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और श्रीगुंडीचा के पहला दिन अर्थात नेत्रोत्सव तिथि के दिन खत्म हो जाता है। प्रभु के तीनों रथ जाकर पब्लिक पुलिस खींच के ले जाएंगे प्रभु जी दरवाजा पर, सिंह दरवाजा पर। इसके बाद रथयात्रा, इसके बाद होगा, इस पहला दिन खत्म हो जाएगा, फिर रथयात्रा के दिन रथयात्रा होगा। अक्षय तृतीया तिथि से 220 आदमी काम कर रहे हैं। तीनों रथ में 220 आदमी मुद्दे हैं कि कारपेंटर को सहायता करने के लिए भोई, कुमार सेवक लोहे के काम करने के लिए और चित्रकार, दर्जी, ये सबको मिलकर 220 आदमी काम कर रहे हैं।
0: लेकिन केवल जंगल में जाकर पेड़ काट लेना इस परंपरा का हिस्सा नहीं है। पहले विधिवत पूजा होती है, फिर ऐसे वृक्ष की तलाश की जाती है जिसमें कुछ विशेष संकेत हों। मान्यता है कि तने पर शंख, चक या गदा जैसा प्राकृतिक चिन्ह दिखाई देना चाहिए। पास में सांप का बिल, पक्षियों का घोंसला या शमशान नहीं होना चाहिए। शाखाएं टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आसपास बेल का वृक्ष या शिव मंदिर होना शुभ माना जाता है। इन सभी नियमों के बाद ही उस वृक्ष को रथ निर्माण के लिए चुना जाता है। निर्माण की शुरुआत भी एक निश्चित परंपरा के अनुसार होती है। बसंत पंचमी के दिन कार्यस्थल की पूजा होती है। इसके बाद लकड़ियां पूरी लाई जाती हैं। फिर अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर कारीगर औजार उठाते हैं। काम शुरू करने से पहले लकड़ी पर हल्दी और चंदन लगाया जाता है।
1: अच्छा काम करते हैं हम लोग, ये जो काम करते हैं ये सब रूप का कार्य है। पहले नृसिंह चतुर्थ जो होता है, जो नृसिंह जन्म होता है, उसी खुंभ में निकल के वो हिरण्यों को बिजा रहते थे। प्रभु जो हिरण्य के बिजाते उसी दिन हमारा कौन को जो आरंभ होता है, कौन को जो का मतलब रथ में फिटिंग हुआ है, इसी नृसिंह चतुर्थी शुरू होता है। वो जब काम फिटिंग हो जाता है उसके बाद नाटोगढ़ पड़ता है। नाटोगढ़ वो प्रभा जो लगता है रथ का ऊपर, उनका नाम है प्रभा। उसके बाद नाटोगढ़ पड़ता है। नाटोगढ़ के बाद हमारा मुहाटी पड़ता है। रथ का बहुत विभिन्न काम है।
0: पूरी श्रद्धा के साथ निर्माण प्रारंभ होता है और लगभग 6 महीने की मेहनत के बाद तीनों रथ तैयार हो जाते हैं। हर रथ की अपनी अलग पहचान होती है। भगवान जगन्नाथ नंदी घोष रथ पर विराजमान होते हैं, बलभद्र ताल ध्वज रथ पर बैठते हैं, बहन सुभद्रा दर्प दलन रथ की शोभा बढ़ाती हैं।
1: इसमें जगन्नाथ बटाकुर बलभद्र और सुभद्रा माँ इसका ऊपर इस तरह आराम से बैठेंगे। ये परभ्रा है। इसी परमा में एक राहु मुंड होता है, एक कलश होता है, दोनों तरफ सिंह होता है, यहाँ लता होता है, वहाँ मगर मुंड होता है। ये सब काम करने से वो पेंटिंग वाला वो पेंटिंग बनाएगा, उसके बाद रथ में फिटिंग होगा। और रथ में घोड़ा जो लगता है, वो घोड़ा में अभी मरामती नहीं हुआ है। किसका पांव किसका गोड़ हलता है उसको डिपेंड मरामती करते हैं हम लोग।
0: ये तीनों रथों का आकार, ऊंचाई, रंग और सजावट एक दूसरे से अलग होती है। रथ यात्रा के दिन एक और अनोखी परंपरा निभाई जाती है। पुरी के गजपति महाराज स्वयं सोने की झाड़ू से रथों के आसपास सफाई करते हैं। इस रस्म को छेरा पहनरा कहा जाता है।
1: जब महाराजा छेरा फेरा करके चले जाएंगे उसके समय हम लोग बड़भद्र का रथ में बैठेंगे। जब छेरा फेरा करके महाराजा चले जाएंगे उसके बाद हम घोड़ा बांधेंगे। घोड़ा बांधने से रथ चलेगा। रथ जाके मौसमा मंदिर में खड़ा रहेंगे। जिस दिन रथ लगेगा उस दिन प्रभु नहीं जाएंगे। वो रथ का ऊपर बैठ गए सुखला भोग खाएगा क्या, पूरा और केला और नाशपाती सेव इस तरह भोग लगता है। उसके अगल दिन में प्रभु विराजमान करेंगे मौसमा मंदिर।
0: भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर सभी समान हैं। यात्रा पूरी होने के बाद भी ये परंपरा यहीं समाप्त नहीं होती। उत्सव खत्म होने पर रथों को अलग अलग कर दिया जाता है। उनकी लकड़ी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद मानी जाती है। कई लोग उसे घर ले जाकर पूजा स्थल में रखते हैं। कुछ हिस्सों का उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है। इसी कारण हर साल नए रथ बनाए जाते हैं।
3: 200 से ऊपर कारीगर लगे हुए हैं। 7 तरह के कारीगर लगते हैं एक एक रथ बनाने के लिए।
4: तरीका होता है देखिए,
3: पहले चरण में मुख्य भूमिका यहाँ कारीगर लोग जो विश्वकर्मा सेवक लोग महाराणा लोग लेते हैं, उनके सहयोगी रूप में भोई सेवक रहते हैं। तो तीसरे कारीगर में आते लोहार जो लोहे का कांटा वगैरह रथ के लिए बनाते हैं, और रूपकार जो खुदाई का काम करते हैं, कार्विंग का काम करते हैं। उसके बाद चित्रकार आएंगे, उसके बाद दर्जी आएंगे जो कपड़े का काम करते हैं, रथ के ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है उसको। उसके बाद जो कपड़ा डालेंगे, जो ऊपर के कलश लगाएंगे, वो कोठोश्वास या सेवक है उनका काम आएगा। इस तरह के 7 तरीके के कारीगर मिलकर एक रथ बनाते हैं।
0: कई सालों के बाद एक और विशेष अवसर आता है जिसे नफ कलेवर कहा जाता है। जब आषाढ़ महीने में अधिक मास पड़ता है तब भगवान की नई प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। पुरानी प्रतिमा से ब्रह्म तत्व निकालकर नई प्रतिमा में स्थापित किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय होती है। सेवा करने वाले पुजारी आंखों पर पट्टी बांध कर ये धार्मिक अनुष्ठान पूरा करते हैं।
3: देखिए, ये सेवा है। भगवान जी को बनाने का, रथ बनाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तो मैं बोलूँगा जो हर विश्वकर्मा सेवक ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन महाप्रभु को तेरे कर तैयार करना, हर साल रथ बनाना किसी के नसीब में ही आता है। तो हमारे नसीब में हर साल हम उसी परिवार में जन्म ग्रहण किए हैं, उनके सेवा के लिए साड़ी बनाया है। तो उनकी सेवक के रूप में आज जीवन भर हमें रहना है और हर साल एक सेवा हमें प्रदान करना है। हमारे बाद हमारे नेक्स्ट पीढ़ी जो हमारे बच्चे आएंगे वो भी ये काम करेंगे, चाहे कोई भी नौकरी करे या कोई भी व्यवसाय करे, लेकिन यहाँ सेवा करना जरूरी है। तो ये बाउंड है, आप करना, आपको ही करना है और कोई दूसरा नहीं कर सकता।
0: विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा गुंडीचा मंदिर पहुँचते हैं, वहाँ 5 दिन विश्राम होता है। इसके बाद बहुदा यात्रा के माध्यम से तीनों वापस श्री मंदिर लौटते हैं। इस दौरान हेरा पंचमी, सुनाबेशा, अधरापना और नीलाद्री विजय जैसी महत्वपूर्ण रस्में निभाई जाती है। हर परंपरा अपने भीतर गहरी धार्मिक मान्यता और सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: पुरी के अलावा आपको बता दें, उदयपुर और अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। उदयपुर में चांदी के रथ को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जबकि अहमदाबाद में 18 किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए सुरक्षा और धार्मिक व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। दोनों शहरों में भव्य झांकियां, भजन मंडलियां और सांस्कृतिक आयोजन आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे वैभव और श्रद्धा के साथ निकाली जाएगी।

0: जग के पालनहार होंगे रजत रथ पर सवार, देखने पूजने के लिए आतुर हैं भक्त हजारों हजार। झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों एक अलग ही उल्लास है। पूरा शहर जैसे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी में जुटा है। मंदिर में भावना नजर आती है और रजत रथ की पॉलिशिंग, रंग रोगन, साफ सफाई में कारीगरों का हुनर, सभी की मेहनत चांदी सी चमक रही है। पिछले करीब 15 दिनों से कारीगर रथ को और अधिक आकर्षक बनाने में लगे हैं, ताकि यात्रा के दिन इसकी दिव्यता अद्वितीय हो। अद्भुत होती है उदयपुर की रथ यात्रा। सड़क पर जनसैलाब, रथ के साथ भक्ति की भावधारा। समझिए कि 16 जुलाई को निकलने जा रही रथ यात्रा की तैयारी लगभग हो चुकी है। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ इसी चांदी के रथ पर सवार होंगे, जिसका वजन 100 किलो से ज्यादा है। अभी अलग अलग हिस्से पर काम हो रहा है। सभी हिस्सों को मुख्य यात्रा से करीब 4-5 दिन पहले ऐतिहासिक जगदीश चौक परिसर में लाकर आपस में जोड़ा जाएगा। सभी हिस्सों को बेहद सावधानी पूर्वक जोड़ने के बाद अंतिम बार इसकी तकनीकी जांच की जाएगी, ताकि नगर भ्रमण यात्रा के दौरान मार्ग में किसी भी तरह की तकनीकी या व्यवहारिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
1: आगामी 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा जगदीश चौक से प्रारंभ होगी। उसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई है और लगभग सारा काम हो चुका है। अब 8 तारीख को हम पूरे रथ यात्रा मार्ग को सजाएंगे और 9 तारीख को ठाकुर जी के रथ को अलग अलग जो भागों में हैं, जो 58 खंड में हैं, उन सबको जगदीश चौक प्रांगण में लाके सभी कार्यकर्ता के सहयोग से लगभग 100-125 कार्यकर्ता वहाँ लगेंगे और इसको जोड़ा जाएगा। और 16 जुलाई को जब निकलेगा रथ, एक अलग तरीके की छटा होगी। जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में जो रथ निकलता है, रथ यात्रा निकलती है, उसी अंदाज में, उसी तर्ज पे हमारे उदयपुर में भी निकलती है। नंबर 1 जगन्नाथपुरी है, नंबर 2 अहमदाबाद है, तीसरा नंबर पे हमारे उदयपुर में, और राजस्थान में नंबर 1 रथ यात्रा है। इसके लिए रथ समिति के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं।
0: माना जाता है कि उदयपुर की रथ यात्रा पुरी और अहमदाबाद के बाद देश की तीसरी भव्य यात्रा है। इसमें कोई त्रुटि ना रह जाए, इसलिए मंदिर प्रशासन, रथ समिति, सामाजिक और धार्मिक संगठन सभी अपने अपने काम में जुटे हैं। जैसी की परंपरा रही है, उदयपुर में रथ यात्रा के दौरान विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। इसके अलावा भी रथ यात्रा से जुड़ी कई तैयारियां हैं। भगवान के स्वागत के लिए यात्रा मार्ग पर जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा ठंडे शरबत, महाप्रसाद और अन्य आवश्यक सेवाओं के सैकड़ों स्टॉल लगाए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस बार भी रथ यात्रा में धार्मिक संगठनों, संतों और जन प्रतिनिधियों के साथ हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। और इस साल रथ यात्रा मार्ग और श्रद्धालुओं के घरों की छतों पर 11,000 ध्वजा पताका लगाई जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित झांकियां, 5 बैंड, भजन मंडिया, ऊंट घोड़े होंगे। सिर पर कलश लेकर मंगल गीत गाती महिलाएं साथ चलेंगी। समिति ने श्रद्धालुओं से रथ यात्रा मार्ग पर आतिशबाजी नहीं करने की अपील की है। साथ ही 23 फीट से ज्यादा ऊंचाई के स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। पूरे मार्ग पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सुरक्षा कर्मी और CCTV निगरानी की व्यवस्था रहेगी। उदयपुर में जब रथ यात्रा निकलती है, तब पूरा शहर जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ भक्ति के माहौल में डूब जाता है। और रजत रथ पर भगवान जगन्नाथ स्वामी, माता लक्ष्मी जी एवं दानी राय जी के दर्शन के लिए होड़ रहती है। रथ यात्रा की तैयारी अहमदाबाद में भी चल रही है, जिसे पुरी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी यात्रा माना जाता है। 18 किलोमीटर की यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के 3 विशाल रथ शामिल होते हैं। परंपरा पुरी की रथ यात्रा जैसी ही है। जमालपुर के प्राचीन मंदिर से निकलने के बाद सरसपुर में पड़ाव आता है, जिसे भगवान का ननिहाल माना जाता है। अहमदाबाद की रथ यात्रा में सजे धजे हाथी होते हैं। इसके अलावा अखाड़े, भजन मंडलियां और पौराणिक कथाओं को दिखाती बेशुमार झांकियां होती हैं। यात्रा सुबह 7 बजे से शुरू होती है और रणछोड़दास मंदिर जाकर एक ही दिन में पूरी कर ली जाती है। लेकिन लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी इस यात्रा को दिव्य और भव्य बनाती है। इस साल भी यात्रा के दौरान मार्ग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। इस सिलसिले में यात्रा मार्ग पर ईवी बाइक के जरिए पेट्रोलिंग की गई।
2: भगवान जगन्नाथ जी की आगामी 149वीं रथ यात्रा के लिए पुलिस के द्वारा तैयारी की जा रही है। इस तैयारी के भाग स्वरूप में आज पूरे रथ यात्रा के रूट के ऊपर पुलिस के द्वारा 100 से ज्यादा ईवी वाहनों के द्वारा पेट्रोलिंग करने में आ रही है। हर साल पुलिस के द्वारा सारे रूट के ऊपर पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन के लिए व्हीकल के द्वारा फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग करी जाती है। इस साल एक क्लीन और ग्रीन पहल के अंतर्गत 100 से ज्यादा ईवी टू व्हीलर वाहनों द्वारा समग्र रथ यात्रा के रूट ऊपर सीनियर अधिकारियों साथ जो पेट्रोलिंग है वो करने में आ रही है। इससे पूरे एरिया के अंदर पुलिस का जो है एरिया डोमिनेट होगा और अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
0: अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान पाहिंद विधि की जाती है, यानी तीनों रथ के आगे सोने की विशेष झाड़ू से रास्ते को साफ किया जाता है, इसके बाद ही रथ आगे बढ़ता है। इस परंपरा को गुजरात के मुख्यमंत्री निभाते रहे हैं। इस साल भी भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक आयोजन के साथ 16 जुलाई को रथ यात्रा निकलने की तैयारी है।
3: जैसे कि भगवान जगन्नाथ जी की ये साल 149वीं रथ यात्रा है, एक ऐतिहासिक रथ यात्रा है। जैसे माना जाता है कि सारे देश में सबसे प्रथम रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी का उड़ीसा में और दूसरा नंबर की यात्रा गुजरात कर्णावती महानगरे जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली यात्रा को दूसरा नंबर से निकलती है। इसमें जैसे वर्षों से परंपरा के मुताबिक गजराज रहते हैं, ट्रकें टेम्पलें रहते हैं सांस्कृतिक झांकियाँ की, अखाड़े रहते हैं, ध्वजा निशान डंका रहते हैं, भजन मंडलियाँ रहती है, अनेक भक्त समुदाय संतों महंतों के उपस्थिति में भगवान का तीनों रथ रहता है। और इस परंपरा से वर्षों की इस परंपरा से प्रणालिक इस रथ यात्रा 16 जुलाई को मनाया जाएगा।
0: न सिर्फ अहमदाबाद और उदयपुर बल्कि कोलकाता के दीघा में भव्य रथ यात्रा की तैयारी चल रही है। रथ की मरम्मत के बाद ट्रायल रन किया जा चुका है। इस साल के रथ यात्रा में वीआईपी संस्कृति खत्म कर दी गई है, यानी भगवान जगन्नाथ, देव बलराम और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा में आम लोग ही रस्सी खींचेंगे और उन्हीं के हाथों भगवान अपनी मौसी के घर की यात्रा पर निकलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
1: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी।

0: भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने किया रिसीव, द्विपक्षीय बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल डील पर लग सकती है मोहर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
0: दिल्ली वालों को मिली दो दिन की उमस भरी गर्मी से राहत, फिर बरसे बदरा, तापमान में गिरावट। राजधानी और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने दो दिन का येलो अलर्ट किया जारी। पंजाब हरियाणा में अगले तीन दिन में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी, अगले दो दिन में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, उड़ीसा के तटों पर मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में नहीं जाने की अपील। शिमला में रुक रुक कर बारिश लगातार जारी, मौसम सुहाना, ऊंची पहाड़ियों पर छाई धुंध। बारिश के बीच कई जगह भूस्खलन, सड़क पर आया मलबा, धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। कांगड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भी लगा लंबा जाम, बारिश के कारण फिसलन भरी पहाड़ी रास्तों पर वाहन चलाना दूभर। कांगड़ा में हुई जोरदार बारिश के बाद सब्जी मंडी की दुकानों में घुस गया पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। सूरत में हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, सड़कों पर भर गया पानी, बसें तक आधी पानी में डूबी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ बारिश के बीच देवदूत बने रेस्क्यू टीमों के जवान, लोनावला में पीएमआरडीए की आपदा राहत टीम ने 20 से ज्यादा लोगों को बचाया। कमर तक भरे पानी में उतरे पीएमआरडीए के जवान, लाइफ जैकेट के सहारे फंसे लोगों को बाहर निकाला। मूसलाधार बारिश से पालघर का पश्चिमी तटीय क्षेत्र प्रभावित, 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जिला कलेक्टर खुद एनडीआरएफ की टीम के साथ रात और राह बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं, बाढ़ बारिश में फंसे लोगों को पूरी मदद कर आश्वासन। भारी बारिश के चलते पालघर में 7 जुलाई को सभी स्कूल कॉलेज बंद, मौसम विभाग की भारी अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई में हो रही है मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी, मरीन ड्राइव पर समुद्र में हाई टाइड। मुंबई के वसई विरार और नाला सुपारा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रायगढ़ के पास पुणे में मुंबई के लिए आने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड, लगा लंबा जाम। महाराष्ट्र में दिख रहा है मॉनसून का जोरदार असर, लोनावला के पास ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पर भर गया पानी। पुणे में देखा बारिश का खैर, ताश के पत्तों की तरह ढहा दो मंजिला मकान। मैदानों के साथ पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का दौर लगातार जारी, उत्तराखंड के 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया येलो अलर्ट। उत्तराखंड के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की आशंका, लोगों के अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए अपील। बागेश्वर जिले में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, राहत बचाव की दल टीम में अलर्ट। बागेश्वर जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को किया गया बंद, मौसम को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू किश्तवाड़ हाईवे पर रोकी गई आवाजाही, राहत और बचाव काम युद्ध स्तर पर जारी। जामनगर के लाठी दड़ से देवभूमि द्वारका तक निकाली गई गौमाता वेदना पदयात्रा। लगभग 19 दिनों की यात्रा के बाद 21 गायों का झुंड पहुंचा द्वारकाधीश के दरबार। गौ माता की सुरक्षा और सम्मान का संदेश देने के लिए आयोजित की गई थी यात्रा, गायों के लिए की गई द्वारकाधीश के दर्शन की विशेष व्यवस्था। अमरावती में पांडव गुफा के नाम से मशहूर पवित्र प्राचीन गुफा आज भी श्रद्धालुओं की अटूट

0: का केंद्र। इसी गुफा में है करीब 400 वर्ष पुराना मां दुर्गा का मंदिर। मां के दरबार और भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक करती पहाड़ की चट्टानों से निरंतर बहती है जलधारा। 91 वर्ष के हुए दलाई लामा लेह के जवित साल में मनाया गया दलाई लामा का बर्थडे। इस मौके पर काटा गया विशाल केक। दलाई लामा के लंबे जीवन के लिए मांगी गई दुआएं। तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं और तिब्बती समुदाय के लोगों ने विशेष प्रार्थना सभाओं का किया आयोजन। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। परम पावन दलाई लामा ने श्रद्धालुओं का जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। पोस्ट पर लिखा, दलाई लामा का शांति, सद्भावना और मानवता का मैसेज दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम की यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है। रोजाना लगभग 9 से 10 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मानसून सक्रिय होने के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था अडिग। जुलाई के पहले हफ्ते में ही भक्तों की संख्या 14.5 लाख के पार। मानसून के चलते बद्रीनाथ में उफान पर अलकनंदा नदी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ जगह भूस्खलन। मौसम की परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं प्रशासन। श्रद्धालुओं से मौसम की जानकारी ले रही है यात्रा करने की अपील। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज चौथा दिन। बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। यात्रियों की सुविधाओं का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा लगातार जारी। कई श्रद्धालु पैदल तो कई घोड़ों और पालकी पर सवार। अमरनाथ यात्रा में रविवार को 24,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा पर फन के दर्शन। 18,700 पुरुष और 5,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल। अमरनाथ यात्रा में हर दिन बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की संख्या। 3 दिन में 56,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चंदनवाड़ी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने रविवार को दिया था पहलगाम का दौरा। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप हॉस्पिटल में तैयारियों को परखा। 57 दिनों तक चलेगी दिव्य अमरनाथ यात्रा। जम्मू बेस कैंप से हर दिन रवाना होते हैं तीर्थयात्री। अमरनाथ यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात। जम्मू से श्रीनगर के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा। अमरनाथ यात्रियों का आधार केवाईसी और मौके पर पंजीकरण का भी मिलेगी सुविधा। अब पौधे भी बताएंगे अपनी भावनाएं। कोटा के छात्र आर्यन सिंह ने बनाया स्मार्ट इमोशन पोर्ट। ये स्मार्ट इमोशन पॉट पौधे की स्थिति को इमोजी के माध्यम से प्रदर्शित करता है। इस अत्याधुनिक स्मार्ट पॉट में लगाए गए हैं सॉयल मॉइस्चर समेत तमाम जेस्चर्स। ये सिर्फ एक स्मार्ट गमला नहीं है बल्कि एक डिजिटल प्लांट कंपेनियन भी है। अब रोज दौड़ेगी बहरमपुर सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर दैनिक सेवा का शुभारंभ किया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कर्म जोशी के साथ रिसीव किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देखिए इंडोनेशियाई परंपरा की झलक। जकार्ता में होटल के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स ने किया स्वागत। इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर इंडोनेशियाई लड़ाकू विमानों ने किया एस्कॉर्ट। अपने 3 देशों के दौरे के दौरान 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की। यमुना नदी में वोट रैली का शुभारंभ किया गया। प्रेरणा स्थल पर लगाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का लोकार्पण। प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री ने बड़े हनुमान जी के दर्शन भी किए। भगवान परशुराम पुरी होगा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सिविल लाइंस में पूर्व मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को अब स्टेट गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। नौसेना के P-17A क्लास के छठे जंगी जहाज महेंद्र गिरी के क्रेस्ट का अनावरण हुआ। इसके क्रेस्ट में सबसे ऊपर शिकारी बाज की एक प्रजाति क्रेस्टेड गुशाक शामिल। 11 जुलाई को बेड़े में शामिल हो जाएगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। ओडिशा स्थित महेंद्र गिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है इस पोत का नाम। भारतीय वायुसेना जोधपुर में एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति की करेगी मेजबानी। अमेरिका और फ्रांस समेत 30 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा लेंगे। मंडी से चंडीगढ़ के बीच शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली शुभारंभ किया। इस रूट पर लोगों को मिलेंगे रोजाना 2 उड़ाने, 3500 रुपए किराया। पंजाबी युवक को इंडोनेशिया के शाही परिवार ने दिया प्रिंस का खिताब। बटालामी के नजदीकी गांव उमरवाल के रहने वाले हैं कुमार अमृतबीर सिंह। झांसी के दाम्पत्य ने दिखाई अनोखी भक्ति, 3 साल की बेटी के साथ शुरू की खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा। कल भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 नॉटिंगहम में खेला जाएगा मैच। कल के मैच के समय में हुआ बदलाव, भारतीय समय अनुसार 10 बजे शुरू हो जाएगा मैच, 9:30 बजे टॉस। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत जीत का खाता खोलने की करेगा कोशिश। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान हो गया। 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथों में कमान। 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह की भी हो गई वापसी। हरसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, अशोक शर्मा जैसे खिलाड़ी भी शामिल। फिल्म फुकरे के बाद फिर लौटेगी भोली, पंजाबन और जफर की जोड़ी। अर्जुन रामपाल ने अपने हमजा यानी रणवीर सिंह को दी जन्मदिन की बधाई, शेर रणवीर के लिए शेयर किया पोस्ट। आठ जुलाई को सौरभ गांगुली के बर्थडे पर रिलीज होने जा रही है उनके बायोपिक का फर्स्ट लुक। हल्की फुल्की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 13 यार हूं मैं का ट्रेलर हुआ रिलीज। लव लॉटरी का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, कोर्टरूम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री के साथ देखेगा सस्पेंस का तड़का। लेगोलैंड शंघाई रिजॉर्ट ने मनाई अपनी पहली सालगिरह, हुआ शानदार जश्न। शानदार आयोजन में काटा गया केक, दुनिया भर से विजिटर्स शामिल हुए। बच्चों में खासतौर पर नजर आया उत्साह, अपने फेवरेट लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। इस दौरान लेगोलैंड ने एक शानदार कीर्तिमान भी हासिल किया, अपने पहले साल में पार्क में आए 20 लाख से ज्यादा विजिटर्स। दुनिया भर के लेगोलैंड में सबसे पसंदीदा पार्क में दर्ज है इस शंघाई रिजॉर्ट का नाम। दक्षिण चीन के बेईडी माउंटेन सीनिक एरिया में दिखा हैरतअंगेज नजारा, 1000 मीटर ऊंची चट्टान पर जर्नी टू द वेस्ट के मशहूर सीन को किया गया रिक्रिएट। इसमें तांग राजवंश के भिक्षु ज्वानजांग और उनके तीन शिष्यों को गहरी खाई के ऊपर एक तंग रस्सी पर चलते हुए दिखाया गया। स्टंट में एक शख्स रस्सी पर गुलाटियां खाते हुए भी नजर आया। इस स्टंट को देखने के लिए जुटी भारी भीड़, खतरनाक स्टंट ने बटोरी सुर्खियां। 16वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध चीनी उपन्यास है जर्नी टू द बेस्ट। फ्रांस के पेशेवर डॉन कोर्स ट्रायथलीट सैम लेडलू ने रचा इतिहास। दुनिया के सबसे बड़े लॉन्ग डेस्टिनेशन ट्रायथलॉन में शानदार वर्ल्ड बेस्ट समय के साथ जीता चैलेंज रोथ। 2023 आयरमैन वर्ल्ड चैंपियन के नाम अब बवेरिया में चैलेंज रूथ का कुर्स रिकॉर्ड। नॉर्वे के ओलंपिक चैंपियन क्रिस्टियन दूसरे स्थान पर रहे। इस इवेंट में 3,500 से ज्यादा अलग अलग एथलीट्स और 700 रिले टीमों ने हिस्सा लिया। महिलाओं के रेस में पिछले साल तीसरे स्थान पर रही है स्विट्जरलैंड की एलिनिस ने जीत हासिल की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
0: फेनाइयों की मधुर गूंज, ढोल ताशों के साथ बैंड बाजी की धुन, नाचते गाते बाराती, ऊंट पर सवार दूल्हा और चुनरी ओढ़े दुल्हन। पहली नजर में ये किसी सामान्य विवाह समारोह का नजारा लगता है, और ये विवाह उत्सव है भी, लेकिन थोड़ा अनोखा। राजस्थान में पाली जिले के बाड़सा गांव में ये विवाह महोत्सव 3 दिनों तक धूमधाम से चला, जहां पर देखिए एक और बछड़े का विवाह बछड़ी से कराया गया। दूल्हा बना बछड़ा ऊंट पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचा, और दुल्हन बनी बछड़ी को कानों में कुड़की और पैरों में पैजेब पहनाकर सुंदर ढंग से बिल्कुल सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार रस्में और पूरे रीति रिवाज के अनुसार ये शादी संपन्न की गई। यहाँ बछड़ा बछड़ी के साथ ही बड़ और पीपल के पौधों की भी शादी कराई गई बाकायदा, जिसमें पीपल के पौधे को चुनरी ओढ़ाकर दुल्हन का रूप दिया गया। इस अनोखे आयोजन ने हर किसी का मन मोह लिया। 3 दिनों तक पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस आयोजन ने वर्षों पुरानी लोक परंपरा को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। ग्रामीणों ने इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि गौ संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश देने वाला आयोजन बताया। तस्वीरें देखिए, विवाह समारोह में गांव के अलावा अगर हम देखें आसपास के इलाकों से भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। तस्वीरें देखिए।

0: एक दिन के विराम के बाद नवसारी डांग जिले में मॉनसून ने एक बार फिर से जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आहवा, वघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम बहुत सुहाना हो चुका है। इसका आनंद लेने बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं।
1: मॉनसून की बारिश जमकर बरस रही है, कहीं राहत बनकर तो कहीं आफत बनकर। लेकिन जो लोग गर्मी से राहत के लिए सैर पर निकल गए हैं, वो इस मौसम का भी खूब आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां घूमने आए सैलानी मूसलाधार बारिश में भी बोटिंग का लुत्फ लेते नजर आए। नीचे झील का पानी और ऊपर आसमान से बरसती बूंदे।
2: कल तक यहाँ पर कोई बारिश नहीं थी, आज बहुत बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वेदर भी बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत सारे आए। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की है, रास्ते में पेड़ भी गिरे हुए थे वो भी हटाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत पब्लिक आई हुई है।
1: असल में नवसारी डांग जिले में मानसून ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आहवा, वघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम बेहद सुहावना हो गया है और इस मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। आहवा, वघई, सुबीर और सापुतारा जैसी जगहों पर वीकेंड और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक डांग पहुंचे हैं। नवसारी से रौनक जाने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
7: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे Good News Today पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमकर हो रही है बारिश, प्रदेश के कई जिलों में 22 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। सैलानियों से प्रशासन की अपील, मौसम से जुड़ी एडवाइजरी का करें पालन। हिमाचल की मंडी से अब महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा चंडीगढ़ तक का सफर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ, ₹3500 होगा हेलीकॉप्टर का किराया। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन, खराब मौसम के बावजूद आस्था परंपरा। दलाई लामा के 51वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन, विश्व शांति सद्भावना और मानवता का संदेश। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान, 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह को भी मिला मौका।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: क्या आप धन की बचत नहीं कर पाते? धन की बचत के पीछे ग्रहों का क्या कनेक्शन होता है और कैसे कर सकते हैं धन की बचत? पंडित जी से जानेंगे ज्योतिषीय महा उपाय, लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक मंत्र।
1: घर में पूजा के स्थान पर आकृतियों वाले और चित्रों वाले यंत्र न रखें। अगर आप चित्र वाले यंत्र रखते हैं और यंत्र में जरा सी भी गड़बड़ होती है तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। अगर आपको अपने घर में यंत्र रखना ही है तो अंकों वाले यंत्र, नंबर वाले यंत्र रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
0: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 7 जुलाई यानी मंगलवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:24 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम के 4:24 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3:04:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और आप पंडित जी से जान लेते हैं कि धन की बचत के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं।
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि धन की बचत का ग्रहों से क्या संबंध है, धन की बचत कब हो पाती है और धन की बचत के उपाय क्या हैं। ज्योतिष में कौन से ग्रह धन की बचत के लिए जिम्मेदार होते हैं? कुंडली का 6वां भाव 6th हाउस मुख्य रूप से धन की बचत से संबंध रखता है। इसके अलावा कुंडली का 11वां भाव आपके आय को, आपके पैसे रुपए को कंट्रोल करता है। तो जितना पैसा आएगा उसी हिसाब से आप बचा पाएंगे, इसीलिए कुंडली के 11वें भाव को भी देखना चाहिए कि अर्निंग कितनी है, धन का आय और व्यय कितना आया और कितना गया, ये बुध से नियंत्रित होता है। इसीलिए बुध को देखना भी जरूरी है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं और कितना बचा पाते हैं। बुध की प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र, बृहस्पति और मंगल, इनकी स्थिति भी देखनी चाहिए कि आप किस वजह से पैसा खर्च करते हैं और पैसे के बचाने में आपका इंटरेस्ट कितना है। जब आप इन तमाम चीजों को देखेंगे तब आप जान पाएंगे कि पैसा कितना आता है और पैसा कितना बचाया जा सकता है।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है राशिफल के बारे में जानने का। पंडित जी, क्या है मेष वृषभ और मिथुन राशि का भाग्य पर?
1: मेष राशि, काम में आपके समस्या हो सकती है, काम का ध्यान दें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, अचानक धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, करियर में फायदा होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि कब धन की बचत नहीं हो पाती, किस ग्रह के कमजोर होने पर ऐसा होता है, इसके अलावा और क्या कारण होते हैं इसके?
1: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा आता है, लेकिन पैसा बच नहीं पाता। तो कब धन की बचत नहीं हो पाती है? कुंडली में अगर बुध कमजोर हो गया, अगर कुंडली में बुध गड़बड़ हो गया तो आप पैसे का बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कितना कमाया कितना खर्च किया ये सेट नहीं होगा और पैसा नहीं बचेगा। अगर शुक्र बहुत ज्यादा प्रधान हो तो आदमी पैसा बहुत खर्चता है, पैसे का खर्चा ज्यादा करता है, कपड़ों पर, खाने पर, लग्जरी पर, और इस वजह से धन बचना कठिन होता है। कुंडली में अगर छठवें भाव का स्वामी खराब हो गया तो आपका बहुत सारा पैसा बीमारियों में खर्च होगा, कर्ज चुकाने में खर्च होगा, ब्याज देने में खर्च होगा। ऐसी स्थिति में भी धन की बचत आसान नहीं होगी। वायु तत्व अगर कुंडली में ज्यादा मजबूत हो गया तो ऐसी स्थिति में आप पैसों को लेकर के लापरवाह रहेंगे और आपकी लापरवाही की वजह से पैसा बचा पाना कठिन होगा। घर में सही स्थान पर अगर आप धन न रखें, आपने घर में पैसा रख दिया वायव्य कोण में, पैसा बचा पाना इम्पॉसिबल होगा। यानी घर में अगर सही स्थान पर धन न रखें आप, तो पैसे की बचत बहुत मुश्किल होगी। और अगर बिना सोचे विचारे गलत रूप से आपने पन्ना पहन लिया या गलत रूप से बिना सोचे विचारे अगर पुखराज पहन लिया तो इसकी वजह से भी आपको पैसे की बचत में मुश्किल होगी, पैसा बचा पाना बहुत कठिन होगा।
0: और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आगे की राशियों का हाल जानेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल और कितने प्रतिशत है आपका लक मीटर?
1: कर्क राशि, प्रियजन से मुलाकात होने की स्थिति बन रही है, मान सम्मान मिलेगा आपको, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करने तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, करियर में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है दर्शकों के सवालों का। आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंडित जी, सबसे पहले आप किसका सवाल लेना चाहेंगे?
1: जी, आज का पहला प्रश्न एक महिला ने हमें हरियाणा से लिखा है। 15 सितंबर 1997 का जन्म है, 9:40 रात को हरियाणा। ये कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, क्या मेरा डिवोर्स होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा बुध की चल रही है। कुंडली के हिसाब से डिवोर्स होने की संभावना प्रबल है। अगले एक वर्ष में आपसी सुलह समझौते से आपका डिवोर्स होगा। और अगर आप नौकरी की कोशिश करें तो शिक्षा क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी पा सकती हैं। आपका डिवोर्स सरलता से हो और आपका भविष्य बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है दूसरे सवाल का। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका रहेगा?
1: जी, अगला प्रश्न पंखुड़ी कुमारी ने हमें लिखा है, गोवा से लिखती हैं। 26 जुलाई 1998 का जन्म है, 4:05 प्रातः सीतामढ़ी बिहार। ये पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरा करियर कैसा होगा, विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पंखुड़ी आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और सिंह राशि की, महादशा सूर्य की और अंतरदशा केतु की चल रही है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं, एसएससी की, सीजीएल की, तो इसमें सफलता पाने की संभावनाएं अच्छी हैं और साल 2027 के आरंभिक समय तक आपको नौकरी मिलनी चाहिए। 2027 के अंत तक आपके विवाह होने की संभावना भी कुंडली में बन रही है। पन्ना आप धारण किए रखें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करने से आपको लाभ होगा।
0: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि कब व्यक्ति धन की बचत सरलता से कर पाता है।
1: देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसा कम कमाते हैं, कम अर्निंग होती है, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा बचाते हैं, धन की बचत आसानी से कर ले जाते हैं। तो धन की बचत कब सरलता से होती है ये भी जानते हैं। अगर कुंडली में बुध मजबूत है तो आपके पैसे का आना, खर्च होना, ये सब आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे बुध या बृहस्पति के मजबूत होने पर। धन की बचत आसान होती है। शनि अगर धन भाव के निकट होता है तो ऐसे लोग भी अच्छा पैसा कमाते हैं और अच्छा पैसा बचाते हैं। कुंडली में अगर पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो जाए, कुंडली में अगर अर्थियल एलिमेंट ज्यादा हो जाए, तो आदमी हर जगह पैसा बचाता है, हालांकि कई कई बार पृथ्वी तत्व वाले काफी कंजूस भी हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व की प्रधानता से पैसे की बचत होती है। अगर आपके घर में रसोई ठीक है तो बीमारियों में पैसा बर्बाद नहीं होगा। अगर तिजोरी ठीक स्थान पर रखी है तो पैसे का अपव्यय नहीं होगा, धन की बचत सरलता से हो पाएगी। अगर आप धन के कुछ हिस्से का नियमित रूप से दान करते हैं तो ऐसा करने से भी धन की बचत आसानी से कर पाएंगे।
0: और चलिए अब पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल जान लेते हैं।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, करियर की समस्या आपकी हल होगी, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75। 70% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: तो पंडित जी से हमने जाना कि कब धन की बचत नहीं हो पाती और कब आसानी से धन की बचत हो जाती है, और अब जान लेते हैं उपाय के बारे में कि धन की बचत के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
1: देखिए, पैसे की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी अर्निंग में से जो हिस्सा आप बचाते हैं वो भविष्य के लिए आपके काम आता है। तो धन की बचत के लिए क्या करें, सलाह लेकर एक पन्ना या एक पीला पुखराज धारण करें, अपने घर के रसोई के स्थान को, रसोई घर को साफ सुथरा बनाए रखें, ऐसी अलमारी में पैसा रखें जो उत्तर या पूरब की तरफ खुलती हो। उत्तर या पूर्व की तरफ खुलने वाली अलमारी में धन आपको रखना चाहिए। पीले कपड़े में दो गांठें हल्दी की बांध कर अपने रसोई में रखें या अपने धन के स्थान पर रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और हर शनिवार को गरीबों को धन का, खास तौर से क्वाइन के रूप में, सिक्कों के रूप में धन का दान करें तो बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब आखिरी की तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है?
1: मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए आप जान लेते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका रहेगा?
1: जी, अगला प्रश्न पूजा शॉ ने हमें लिखा है, दुर्ग छत्तीसगढ़ से लिखती हैं। 12 नवंबर 2004 का जन्म है। 11:27 प्रातः दुर्ग छत्तीसगढ़। ये कह रही हैं कि मेरी सिविल इंजीनियरिंग पूरी हो गई है, आगे नौकरी की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। पूजा आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और तुला राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, आपको अभी एक साधारण नौकरी सितंबर अक्टूबर के महीने में मिलेगी, वो कर लीजिएगा। बहुत अच्छा करियर और बहुत अच्छी नौकरी जून 2027 के बाद दिखाई दे रहा है। अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और अब बढ़ते हैं अंतिम सवाल की ओर। पंडित जी, आज का अंतिम सवाल किसका है?
1: जी, आज का अंतिम प्रश्न मोहित सुभाष तिवारी ने हमें लिखा है, नागपुर से लिखते हैं। 26 सितंबर 1986 का जन्म है। 8:21 रात को नागपुर, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से मेरा करियर रुका हुआ है, कोई प्रगति नहीं हो पा रही है, तो आने वाले समय में मेरे करियर के हाल कैसे रहेंगे, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मोहित, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए, अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाएं, तकनीक के क्षेत्र में जाएं, तो उसमें आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। और अभी आपका करियर 2026 के अक्टूबर नवंबर में शुरू होगा। अगस्त 2027 के बाद आपका करियर काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6-8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
0: पंडित जी, इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दान पुण्य करने का धन की बचत से क्या मेल होता है?
1: जी देखिए, लगभग हर धर्म में ये कहा गया है कि आप जो अर्निंग करते हैं, जो आपकी आय है, उसका कुछ हिस्सा आपको दान करना चाहिए या लोगों की सहायता में लगाना चाहिए। जब आप अपने आय का कुछ हिस्सा दान में या दूसरों की सहायता में लगाते हैं, तो ऐसा करने से आपका धन बर्बाद नहीं होता, धन का अपव्यय नहीं होता, बीमारियों में धन बर्बाद नहीं होता और पर्याप्त मात्रा में आप धन की बचत कर पाते हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको अपनी अर्निंग के कुछ हिस्से का दान अवश्य करना चाहिए।
0: तो जिनका भी जन्मदिन 7 जुलाई को है, सबसे पहले उन्हें हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जानते हैं उनका साल कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 7 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, करियर की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी, धन की स्थिति भी अच्छी होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, लेकिन विवाह और संतान के मामलों में इस साल में भी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: और चलिए, अब समय हो गया है आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का। पंडित जी, क्या है आज की जिज्ञासा और क्या है इसका समाधान?
1: देखिए, आज की जिज्ञासा ये है कि क्या शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद या फल या मिठाई ग्रहण नहीं करना चाहिए? देखिए, मान्यता ये है कि शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने से दुख भोगना पड़ता है। इस दोष के निवारण के लिए शिवलिंग के पास शालिग्राम की स्थापना की जाती है। अगर शिवलिंग के साथ शालिग्राम स्थापित है तो शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं।
0: और चलिए, अब पंडित जी से जान लेते हैं कि दिनांक 7 जुलाई 2026 का शुभ पहर क्या है।
1: दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा, आपके कर्ज संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही।

0: महाउपाय के बारे में जानने का। पंडित जी, आज का महाउपाय क्या है?
1: जी, अगर आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से किसी महत्वपूर्ण काम के लिए मिलने जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपको काम में सफलता मिले, तो क्या करेंगे? जिस दिन मिलने जाना है उस दिन सुबह हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। इसके बाद एक बार हनुमान चालीसा बोल बोल कर पढ़िएगा। घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं, आपकी मुलाकात सफल होगी और आपका काम बन जाएगा।
0: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: आइए बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा के पांचवें दिन भी शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। आज तड़के बालटाल और नुनवान से यात्रियों का चौथा जत्था पूरे धूमधाम से रवाना किया गया, तब पूरा यात्रा मार्ग बाबा बर्फानी के जयघोष से गुंजायमान हुआ।

0: हर दिन के साथ श्रद्धालुओं का नया जत्था अमरनाथ यात्रा की शोभा बढ़ा रहा है। बम बम भोले, हर हर महादेव और बाबा बर्फानी के जय घोष से हिमालय की वादियां गूंज रही हैं। मन में बस भोले भंडारी के दर्शन की आस है, शिव भक्ति की चाह है और इसी निर्मल पावन भावना के साथ कार वहाँ बढ़ता ही जा रहा है। शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर गुजरते दिन के साथ यात्रा से जुड़े उमंग में उफान है। ज्यादातर श्रद्धालु जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर में रुके बिना सीधे बालटाल और पहलगाम मार्ग से होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंच रहे हैं। आज बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालुओं का चौथा जत्था रवाना किया गया है। दूसरी तरफ ननवान बेस कैंप से भी भक्तों का चौथा जत्था जयकारे लगाते हुए निकला है।
1: व्यवस्था देखिए तो व्यवस्था हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमने प्रोसेस से सारा काम किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के घर से ही आए थे और जरा सा भी यहाँ पे कोई तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई।
2: प्रार्थना करने जा रहे हैं ना, व्यवस्था अच्छी रखे हैं, सब सुरक्षा अच्छा है।
3: फिलहाल तो मैं गुरु के पास से अकेले हूँ, बाकी सब लोग तो मेरे ही साथ हैं।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ऐसे ही जाएंगे?
3: जी मैं पैदल ही जाता हूँ।
4: पैदल?
3: जी पिछले साल में आया था तो अगस्त में आया था, शिवलिंग गल गया था।
4: अच्छा,
3: तो मैंने बाबा से वादा किया था कि बाबा अगर मैं सही समाधान रहा तो मैं फिर जल्दी से आपके पास दर्शन करने के लिए आऊंगा।
5: जो सरकार द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं बहुत अच्छे किए गए हैं, जो जम्मू सरकार है वो भी हमारी पूरी मदद कर रही है, पूरी मिलिट्री और जम्मू पुलिस और बीएसएफ सीएफएफ सभी अपने देश की सुरक्षा करने वाली सीमाओं की जो फौज है वो हमारी यात्रा पूरी कंप्लीट करा रही है। पूरे प्यार से वो अपने आप को हमारे लिए जोक रखा है उन्होंने।
0: यात्रा मार्गों पर बने शिविरों में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के भजन

0: गाकर माहौल को शिवमय बना रहे हैं। देश के कोने कोने के साथ साथ विदेश से भी भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कई दिव्यांग श्रद्धालु भी पूरे उत्साह से यात्रा कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा दी है और जम्मू से श्रीनगर के बीच विशेष ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य यात्रा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक सफर उपलब्ध कराना है। इसको लेकर जम्मू और श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं और यात्रियों को जानकारी भी दी जा रही है।
1: यात्री कृपया ध्यान दें, जिन यात्रियों को अमरनाथ यात्रा के लिए जाना है उनके लिए नीचे टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे आरएफआईडी की सहूलियत है और वहाँ पे आप लोगों के लिए गाड़ियाँ भी लगी हुई है।
0: अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं ने रेलवे की इस पहल का स्वागत किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेन में मिले अनुभव की सराहना करते हुए पहले की कठिन रेल यात्राओं को भी याद कर रहे हैं। फिर अब सुविधाओं में सुधार का हवाला भी दे रहे हैं। सुरक्षित और सुविधाजनक रेल यात्रा के बाद टिकट निरीक्षकों और सुरक्षा कर्मियों की प्रशंसा करना भी नहीं भूल रहे।
2: बहुत बहुत ही अच्छी सुविधा है, रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है उससे और ज़्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुँच जा रहे हैं बिना किसी थकान के। हम लोग सुबह उतरे हैं और वहाँ से डायरेक्ट हम लोग यहाँ आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम यात्रा रहा।
3: आगे आसान हो गया,
2: बहुत बहुत बहुत आसान रहा।
4: हम लोग यहाँ से वंदे भारत से आए, बहुत ही सुविधा सुंदर थी। जो हमारे पहले यात्रीगण हैं उन्होंने बताया कि जब वो पहले ट्रैवल करते थे तो बहुत ही कठिनाइयाँ आती थी। टचूड अभी वंदे भारत के कारण एसी और होने के कारण जो उन लोगों ने बताया, जो उन लोगों को झेलना पड़ रहा था, टचूड हम लोगों को नहीं झेलना पड़ा।
5: वंदे भारत ट्रेन प्लस जो सुविधाएं हैं, जो सिक्योरिटी है, उसको देख के अभी फील हो रहा है कि अभी कोई भी यहाँ पे डर नहीं है, आराम से आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी अरेंजमेंट और रहना चाहिए और इसमें कोई 1% की भी गुंजाइश नहीं की और कुछ करें, काफ़ी बेटर है।
6: आने वाले दिनों में मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगा, सभी लोग आइए भोले बाबा के दर्शन के लिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सेफ हो, आप सिक्योर हो। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: 60,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री अब तक अमरनाथ यात्रा कर बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 50,000 था। दिलचस्प बात यह है कि इस बार तीर्थ यात्रा में युवा और स्कूली बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उनके लिए ये यात्रा अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अध्यात्म को जानने के साथ साथ प्रकृति के साथ कुछ पल बिताने का भी है, कश्मीर की खूबसूरती को करीब से निहारने का भी है, तो कुछ इस सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा के दौरान एडवेंचर टूरिज्म का भी मौका देख रहे हैं।
7: आपने यात्रा की?
8: हाँ जी, कल कर ली।
7: एक तो ये भक्ति है, दूसरा इसको एक एडवेंचर टूरिज्म भी देखा जाता है, क्योंकि हर तरह की जो भी कुदरत की खूबसूरती है वो आपको नजर में आती है। क्या क्या चीज आपको अलग जिसको आप एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर देखेंगे?
8: यहाँ पे मतलब बहुत, एक तो ऊंचाई बहुत है और यहाँ पे मजा भी बहुत आता है। जैसे हम लोग घोड़े पर गए थे तो वहाँ पे उस पर बैठ के गए थे तो देखा था यार, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे नजारे अच्छे होते हैं, ऊपर दर्शन भी बहुत अच्छे हुए थे।
7: आप कहाँ से हैं?
8: गुड़गांव से।
7: गुड़गांव से ही है यात्रा हुई?
8: हाँ।
7: कब दर्शन किया आपने?
8: कल ही कर
7: दिए। जो एडवेंचर टूरिज्म इस यात्रा को माना जा रहा है, ग्लेशियर्स आपको देखने मिलते हैं, झरने मिलते हैं, तो कैसा क्या आपको लगा, कुछ फील की ये?
8: बहुत सुंदर नजारे थे वहाँ पे, मतलब बीच में झरने भी आ रहे थे, वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। ऊपर दर्शन भी बहुत अच्छे हुए थे, मतलब लाइन इतनी नहीं थी कल, तो बहुत अच्छे नजारे थे।
9: आए जरूर यात्रा करें, पहली बात तो शंकर भगवान के दर्शन होंगे, दूसरी बात इतना सुंदर नजारे हैं और मतलब इससे अच्छा, मतलब इससे अच्छे पहाड़ और झरने, नदियां कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, तो जरूर आए, भक्ति में लीन हुए।
0: अमरनाथ यात्रा के भक्तों में राष्ट्र भक्ति का भी जोश भरने के लिए भारतीय सेना ने पहलगाम जिले के चंदनवाड़ी में एक हाई मास्ट राष्ट्रीय ध्वज लगाया है। चंदनवाड़ी पारंपरिक पहलगाम रूट पर अमरनाथ यात्रा का मुख्य बेस स्टेशन है। अमरनाथ यात्री चंदनवाड़ी तक गाड़ियों से पहुंचते हैं और वहां से आगे की यात्रा पैदल या टट्टू पर करते हैं और अमरनाथ की गुफा तक पहुंचते हैं। भीड़ के भारी दबाव के कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 9 जुलाई तक सभी पंजीकरण स्लॉट फुल होने की जानकारी दी है। बिना आधिकारिक रजिस्ट्रेशन के यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल रुकने की सलाह दी गई है। अमरनाथ यात्रा दो रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम से है और दूसरा रास्ता गांधरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबे बालटाल से होकर जाता है। दोनों रूटों से लगातार यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन तक चलेगी। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात करते हैं राजस्थान के कोटा की। देखिए, पिछले 3 दशक में जिसकी छवि कोचिंग फैक्ट्री की बन चुकी है, हर साल 12वीं में पढ़ने के दौरान या पास करने के बाद लाखों युवा आईआईटी और नीट क्रैक करने के लिए यहां तैयारी करने के लिए पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ये शहर जो है देश में फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बना हुआ है। हालांकि भारी फीस, कॉम्पिटिशन के दबाव और कोचिंग शिक्षा के व्यवसायीकरण की वजह से छात्र भारी दबाव महसूस भी करते हैं, जिसकी वजह से जो है अब हॉस्टल संचालक भी अपने रवैये में बदलाव लाने की हर कोशिश कर रहे हैं। वो हॉस्टल में घर और परिवार जैसा माहौल देने में जुटे हुए हैं, ताकि तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को करियर के साथ साथ केयरिंग सिटी का भरोसा भी मिल सके।

0: कोटा, यानी हजारों लाखों बच्चों के दिलो दिमाग में इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने की गारंटी। पूरे देश में एजुकेशन कैपिटल के तौर पर मशहूर कोटा, प्लस टू में पढ़ रहे या बारहवीं पास कर चुके लाखों बच्चों के लिए फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन है। हर साल देश के अलग अलग राज्यों के करीब 2.5 लाख बच्चे देश के किसी अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए कोटा शहर में जी तोड़ मेहनत करते हैं। इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में दाखिले का दबाव छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। महंगी फीस, घर से हजारों किलोमीटर दूर और परीक्षा में नाकाम होने का डर यहां तैयारी करने वाले बच्चों को तनाव देता है। गाला काट प्रतियोगिता और होम सिकनेस जैसे फैक्टर उन पर हावी होने लगते हैं। इसलिए अब कोटा के कई हॉस्टल संचालक छात्रों को मानवता के आधार पर सहयोग कर रहे हैं। दरअसल घर परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले इन छात्रों के लिए हॉस्टल केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी करने तक उनकी पूरी दिनचर्या और व्यक्तित्व का अहम हिस्सा बन जाता है। ऐसे में अब कोटा के हॉस्टल्स भी सिर्फ रूम और टिफिन तक सीमित नहीं रहे। शिक्षा की इस नगरी में प्रतिस्पर्धा के बीच हॉस्टल कल्चर तेजी से बदला है। वहाँ अब पढ़ाई लिखाई के अलावा छात्रों की मानसिक सेहत, सुरक्षा और घर जैसा माहौल देने की भी कोशिश की जा रही है।
1: काफी अच्छा है, हर चीज मतलब सही है। सबसे अच्छा खाना है, क्योंकि खाने की बहुत दिक्कत होती है अगर अदर हॉस्टल्स वगैरह में जाओ तो। और हर चीज़ की फैसिलिटी है वैसे तो काफ़ी अच्छी से। यहाँ का स्टाफ मतलब जो मैम्स है ये काफ़ी अच्छी है नेचर में। अगर कोई प्रॉब्लम तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि रहने के लिए आराम से रह सकते हैं। अगर बच्चे को अपने रूम में, किसी किसी बच्चे को जैसे ना नींद आती है, अगर बैड है अपने तो सो जाएगा, तो इसलिए वो लाइब्रेरी में जाके आराम से पढ़ सकता है। काफ़ी कम्फर्टेबल, वहाँ भी एसी है, सब चीज़ है, रूम जैसी इन्वायरमेंट अच्छा है। और अपने दोस्त के साथ पढ़ सकते हैं अगर डाउट वगैरह पूछना है। इसलिए
2: झूला भी लग रहा है कभी? झूला
1: हाँ झूला है, मोस्टली झूल लेते हैं, काफी बढ़िया लगता है वो।
2: घर जैसी फीलिंग आती है?
1: हाँ घर जैसी फीलिंग आती है।
0: अब छात्रों को हाई स्पीड इंटरनेट, जिम और कॉमन एक्टिविटी एरिया के साथ साथ तनाव कम करने के लिए इंटरेक्टिव सेशंस का आयोजन हो रहा है। देर रात तक पढ़ाई करने वालों के लिए भूख लगने पर इन हाउस स्नैक्स जैसी सुविधा भी है।
1: बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छी फैसिलिटीज है, हर चीज का ध्यान रखते हैं, खाना वाना सब अच्छा होता है, मतलब कि प्रॉपर केयर होती है यहाँ पर हर चीज को।
2: सबसे अच्छी चीज क्या है?
1: सबसे अच्छी चीज ये है कि मतलब आपको हर फैसिलिटीज मिलेंगी, ये नहीं कि आपको इसकी दिक्कत हो रही है, इसकी दिक्कत हो रही है, 24 आवर्स आपको सब चीज अवेलेबल रहेगी यहाँ पर। और सब बढ़िया ही है, खाना पीना सब अच्छा है।
2: कब से रहते
1: हैं आप? मैं 8 जून को आई थी यहाँ पर, 1 मंथ होने वाला है। हाँ जी मिडनाइट कैफे है यहाँ, मतलब कि जैसे बच्चों को रात को पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो। और ये नहीं है कि कॉस्टली है, जितनी रीजनेबल प्राइस है सारी, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, जैसे मैगी हो गई, कोल्ड कॉफी वगैरह, कुछ भी जो आपको अगर भूख लग रही है तो आप मंगा लो या फिर कुछ भी कर लो।
0: हॉस्टल संचालकों के रवैये में आए सकारात्मक बदलाव की वजह से छात्रों का तनाव कम होने के अलावा उनका आत्मविश्वास बढ़ने की भी उम्मीद जगी है।
3: हम मधुरम गर्ल्स हॉस्टल में, पहली बात तो हम इस हॉस्टल इंडस्ट्री में 23-24 ईयर्स से हैं, तो हमें पूरा इन हाउस पता है कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है। हमारे यहाँ पे बच्चों की सेफ्टी है, वार्डन्स रहते हैं, गार्ड है हमारे पास में, बायोमेट्रिक है, फायर सेफ्टी है पूरी, मेस क्लीन एंड यूज एंड हाइजीनिक मेस है हमारे पास में, मेडिकल फैसिलिटी है हमारे पास में, RO ट्रीटेड प्लांट है, वाटर सॉफ्टनर है, बिग स्पेशियस रूम्स है। हम बच्चों को रूम्स के साथ साथ रेंट में हमारे इंक्लूड होता है वाईफाई, लॉन्ड्री एंड डेली क्लीनिंग ऑफ द रूम्स। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए हम 100% प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को मेंटरशिप भी देते हैं, जिससे वो पढ़ाई कर सके अच्छे से और अपनी जो एग्जाम में परफॉर्मेंस है उसको बेटर कर सके, टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं।
0: इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी तैयारियों के दौरान छात्र छात्रों को सहयोग मिले तो पढ़ाई में बेहतर तरीके से ध्यान लगाया जा सकता है। घर जैसी देखभाल, बातचीत का अवसर और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिलने से तनाव काफी हद तक कम महसूस होता है। कोटा के हॉस्टल संचालकों के रवैये से यह बात साबित हो रही है कि कोटा सिर्फ करियर बनाने वाला शहर नहीं, बल्कि छात्रों को साथ देने वाली केयरिंग सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ वीरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब आपको लिए चलते हैं कोटा के ही एक अनोखे मंदिर में, जहां पर इतिहास और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इस मंदिर में महादेव पांच स्वरूपों में विराजमान है और वक्त वक्त पर ये स्वरूप बदलता रहता है। मान्यता ये है कि इस मंदिर की स्थापना गुप्त काल में की गई थी। इस मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं भी प्रचलित हैं।

0: राजस्थान के कोटा के चारचोमा गांव का पंचमुखी महादेव मंदिर आस्था, पौराणिकता और प्राचीन शिल्प कला का अनोखा संगम माना जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां का दुर्लभ पंचमुखी शिवलिंग है, जिसमें भगवान शिव के 5 स्वरूपों के दर्शन होते हैं। कहते हैं शिवलिंग का स्वरूप भी बदलता रहता है।
1: ये मंदिर 4-5 हजार वर्ष पुराना मंदिर है। कोटा से 30 किलोमीटर मंदिर है। यूं मानते हैं कि चोमेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वो ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर के अंदर चतुर्मुखी मूर्त है, पीछे जगत जननी जगदम्बा की मूर्त है, सामने गणेश जी महाराज हैं, जाल के नीचे भैरव जी महाराज, नीचे बजरंगबली का मंदिर है, क्या नीचे कुंड है। ये ऐसी मान्यता है इस चोमेश्वर महादेव जी के मंदिर की कि मूर्ति, आप कभी दर्शन करने पधारो तो मूर्ति के 3 समय में 3 मूर्ति रूप स्वरूप चेंज करती है, सुबह, दिन में, शाम को। ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्ति जो पत्थर की मूर्ति है, बलेग जो नीलम मूर्त है, वो ऐसी प्राकृतिक, ऐसी आकृतिक, ऐसी कृपालु मूर्त है जो मूर्ति का ही रूप चेंज हो जाता है।
0: इस मंदिर को चोमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य शैली का बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह, विशाल स्तंभों और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी आज भी उस दौर की शिल्पकला की झलक दिखाती है। समय के साथ मंदिर के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण जरूर हुआ, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पहचान आज भी बरकरार है। मंदिर में स्थापित काले कसौटी पत्थर से बना लगभग 75 सेंटीमीटर ऊंचा पंचमुखी शिवलिंग इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसमें भगवान शिव की मूर्ति के 5 स्वरूपों में तत्पुरुष, अघोर, सघोजात, वामदेव और ईशान स्वरूप उकेरा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये 5 रूप सृष्टि, प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना के अलग अलग प्रतीक माने जाते हैं। यही वजह है कि पंचमुखी महादेव के दर्शन के लिए दूर दूर से शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि महादेव की इस मूर्ति को विभीषण जी लेकर आए थे और इस मंदिर की देखरेख मंदसौर का राज परिवार करता है।
1: केतुन में विभीषण जी महाराज और चार चौमे में चोमेश्वर महादेव, तो विभीषण जी महाराज इनको पलने में लेके आए थे। 15-15 किलोमीटर की दूरी है विभीषण जी, पीछे की रंगबाड़ी के हनुमान जी, चार चौमा महादेव और बीच में विभीषण जी महाराज। ये मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है। ये जो मंदसौर के राजा था, इस मंदिर का जीर्णोद्वार उनके द्वारा किया जाता है और जो इनका भोग पाठ पूजा सब उनकी द्वारा ही आता था। इस मंदिर में पूरी व्यवस्था है राजा महाराजों के द्वारा, वो व्यवस्था करी गई है।
0: सावन और फागुन मास में पड़ने वाले महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय घोष गूंजते हैं और धार्मिक माहौल देखते ही बनता है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर 15 दिन का मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से शिव भक्त पहुँचते हैं।
1: फागुन महीना आता है, उसमें महाशिवरात्रि का 15 दिवसीय मेला लगता है। 13 से चालू होता है, जिसके बाद जैसे जैसे लोगों का यहाँ पर तांता रहता है, तो 15 दिन तक हाड़ौती का जो विश्वविख्यात जो मेला लगता है चार चौमा की सोरती के नाम से, ये मेला ऐसा है यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा हर चीज की व्यवस्था, हर चीज की खरीदारी 12 महीने से पूरे मेले में करते हैं। क्योंकि इन लोगों इधर जो आते हैं लोग, उनकी ऐसी भावना थी जो पुराने जमाने से गाड़ी बैल के द्वारा आते थे, आज तो संपूर्ण साधन हो गए, तो मेले में आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। पहले के जमाने में रोड नहीं थे, तो भी लोगों की ऐसी भावना थी इस मंदिर के प्रति, भोलेनाथ जी के प्रति, तो बोले यहाँ पे वो उनकी कृपा से ऐसा मेला लगने लग गया। तो आज तो ये मान के चलो, पहले 5 दिन का मेला था, आज 15 दिन का मेला जो लगने लग गया।
0: इसके अलावा भी सोमवार को भक्तों का हुजूम उमड़ता है और लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ महादेव का दर्शन करते हैं और मन्नत मांगते हैं।
1: सोमवार को 2-500 आदमी आते हैं, डेली 200-300 आदमी, क्योंकि ग्रामीण लोकल लोग तो आते हैं। फिर जैसे दीतवार है, सोमवार है, तो बाहर के लोग फिर छुट्टी के दिन ज्यादा आते हैं।
2: चोमेश्वर महादेव का मंदिर है, हम रोज आते हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं, ये बहुत प्राचीन मंदिर है।
3: मगे देने वाले और तब से पैदा हुए तब से आ रहे हैं, बहुत मान्यता है मंदिर की, असीम कृपा है। सुबह डेली नहा धो के बढ़िया दर्शन होते हैं भोलेनाथ के अच्छे, और श्रद्धालु बहुत आते हैं। महाशिवरात्रि का यहाँ पे मेला लगता है, चार मसूर जी के नाम से जो प्रसिद्ध है, 15 दिन का मेला लगता है सर। बहुत अच्छा मेला लगता है, बढ़िया मान्यता है।
0: इस मंदिर में जगह जगह बजरंगबली की मूर्ति भी विद्यमान है। मंदिर परिसर में प्राचीन ब्राह्मी शिलालेख, देवी प्रतिमा और ऐतिहासिक बावड़ी भी मौजूद है, जो इस स्थल की पुरातात्विक महत्ता को और बढ़ाते हैं। प्राचीन कुंड का पानी बेहद चमत्कारी और औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के गंभीर चर्म रोग से पीड़ित है और वो श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र कुंड में स्नान कर ले तो उसकी बीमारियां और त्वचा के रोग हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। पुरातात्विक दृष्टिकोण से यह प्राचीन मंदिर गुप्त साम्राज्य के काल का माना जाता है। मंदिर का गर्भगृह, अंतराल और विशाल सभा मंडप इसकी भव्यता और दिव्यता सबका मन मोह लेते हैं। मंडप के विशाल पत्थरों और स्तंभों पर उकेरी गई सुंदर कमल आकृतियाँ, हवा में लटकती हुई अलंकरण श्रृंखलाएं, मुख्य द्वार की शाखाओं पर की गई सूक्ष्म नक्काशी और गुण मंडप के मजबूत स्तंभ गुप्तकालीन शिल्पकला की भव्यता की पहचान है। हालांकि मंदिर के ऊपरी हिस्से का 18वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण किया गया था, लेकिन इसकी मूल आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान आज भी पहेली बनी हुई है।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Tune In is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
3: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
2: Big 12 Radio.
4: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking down.
2: And talk sports.
5: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
2: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
10: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators, dive with sharks, explore the unexplored, from nature, science, and space, to premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
12: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे धावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
13: हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमकर हो रही है बारिश, प्रदेश के कई जिलों में 22 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। सैलानियों से प्रशासन की अपील, मौसम से जुड़ी एडवाइजरी का करें पालन। हिमाचल की मंडी से अब महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा चंडीगढ़ तक का सफर, मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ, 3500 रुपए होगा हेलीकॉप्टर का किराया। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन, खराब मौसम के बावजूद आस्था परंपरा। दलाई लामा के 51वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन, विश्व शांति सद्भावना और मानवता का संदेश। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान, 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह को भी मिला मौका।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। तो जेएनटी स्पेशल में आज बात आस्था की यात्रा से जुड़ी। इस समय देश में कई धार्मिक यात्राओं उत्सवों का दौर चल रहा है। पिछले कई हफ्तों से चारधाम यात्रा चल ही रही थी। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ भी हमने देखा। तो वहीं 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का भी श्री गणेश हो गया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली है अमरनाथ धाम से जुड़ी, दूसरी जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई और तीसरी देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम की तस्वीर। पिछले 4 दिनों से अमरनाथ यात्रा मार्ग पर आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। खूबसूरत वादियों में बोलबम का जय घोष है। 3 जुलाई की सुबह से बाबा बर्फानी के भक्तों के जोश जज्बे से भरी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। इसी बीच झारखंड के देवघर में मौजूद बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जब आस्था की एक और यात्रा कांवड़ यात्रा का श्री गणेश होगा, लेकिन उससे पहले अब से ठीक 10 दिन बाद पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज होने वाला है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा एक अनोखा उत्सव है, जब भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारते हैं। पुरी में चारों तरफ आस्था का जन समुद्र नजर आता है। जगन्नाथपुरी में भगवान की रथ यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है, जिसमें अब बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पुरी और दिखाते हैं तैयारी जगन्नाथ यात्रा की।

0: नगरी के लिए इस लकड़ी का हर टुकड़ा पूजनीय है। लकड़ी पर पड़ती औजार की हर चोट आस्था का जयघोष है। चोट से निकलती हर ध्वनि शंखनाद सी पवित्र है, क्योंकि ये ध्वनि संकेत है कि जगन्नाथ प्रभु के पधारने की घड़ी अब समीप आ चुकी है। पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए भव्य रथ बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है।
1: अभी रथ का शीर्ष पर यह काम चल रहा है, जो रथ के चारों तरफ चार चार द्वार भड़ा जो है अभी तीनों बन चुका है और एक बनना बाकी है। अभी रथ के ऊपर का काम जो है पोटल बढ़धरा पोटल लगाया गया है, उसके बाद जो 13 परस्त पोटल में 12 परस्त पोटल और पारावाड़ी वो सब लगाया जाएगा। उसके बाद कलश का काम भी अभी चल रहा है, कलश का पिंडी और पकुड़ा वो अभी तैयार हो रहा है। उसको तैयार करने के बाद उसके ऊपर टीन का छप्पर डालने के बाद और चित्रकार लोगों को दिया जाएगा, वो चित्र करेंगे। अभी जो द्वार का जो नाट गोड़ है उसका खुदाई अभी रूपकार सेवक के द्वारा हो रहा है।
0: पुरी में भव्य रथ यात्रा का संयोग भले ही आषाढ़ के महीने में बनता है, लेकिन रथ के निर्माण और उसके श्रृंगार की यात्रा कई महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। भगवान का ये रथ महीनों के कठिन परिश्रम और तपस्या के बाद तैयार होता है।
2: आप देख सकते हैं काम अब तेजी से चल रहा है, काम अभी तेजी से पूरा चल रहा है। कैसे काम में पूरा जो कारीगर लोग हैं यहाँ पूरा काम में जुटे हुए हैं। ये रथ कला है और रथ कला में मैं मौजूद हूँ, आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ कैसे रथ का पहिया का काम खत्म हो चुका है, ये रथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बन रहा है और इसके बाद और जो काम है वो काम आहिस्ता आहिस्ता काम हो ही जाएगा। आप ये देख सकते हैं, मैं रथ का विजुअल भी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो जगन्नाथ मंदिर के पास पूरा 3 रथ अब एक जो इसका जो बड़ी पार्ट है यह बन चुका है। आप देख सकते हैं 3 रथ मौजूद हैं, ये 1, 2 और 3, ये पूरा 3 रथ यहाँ तैयार हो चुका है। बड्डी का जो है पार्ट ये पार्ट बन चुका है और इसमें जो जो पार्ट अभी लगेगा ये काम के लिए पूरा जो कारीगर लोग हैं ये लगे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे मार्किंग हो रहा है, पहिया कहीं पे, ये रथ का अलग जो हिस्सा, बाहर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा, जो जो हिस्सा है और इसका डिजाइनिंग, कलर, ये सब काम के लिए पूरा कारीगर लोग हैं वो लगे हुए हैं।
0: हर साल सैकड़ों कारीगर मिलकर इन 3 रथों को तैयार करते हैं। जब तक रथ बन नहीं जाता तब तक उसे बनाने वाले सभी कारीगर और कलाकार सात्विक तरीके से रहते हैं। आस्था की ये पूरी यात्रा समाज को एक सूत्र में पिरो देती है। पुरी में रहने वाले महाराणा परिवार पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। परिवार की हर पीढ़ी से एक सदस्य रथ निर्माण में सेवा देने का दायित्व उठाता है। भले ही वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, कोई भी काम करता हो, लेकिन रथ निर्माण के समय यहाँ सेवा देने जरूर पहुँच जाता है।
1: देखिए ये सेवा है, भगवान जी को बनाने का, रथ बनाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तो मैं बोलूँगा जो हर विश्वकर्मा सेवक ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन महाप्रभु को तिर कर तैयार करना और हर साल रथ बनाना किसी के नसीब में ही आता है। तो हमारे नसीब में हर साल हम उसी परिवार में जन्म ग्रहण किए हैं, उनके सेवा के लिए साड़ी बनाया है, तो उनके सेवक के रूप में आज जीवन भर हमें रहना है और हर साल एक सेवा हमें प्रदान करना है। हमारे बाद हमारे नेक्स्ट पीढ़ी जो हमारे बच्चे आएंगे वो भी ये काम करेंगे, चाहे कोई भी नौकरी करे या कोई भी व्यवसाय करे, लेकिन यहाँ सेवा करना जरूरी है। तो ये बाउंड है, आप करना, आपको ही करना है और कोई दूसरा नहीं कर सकता।
0: हर साल की तरह इस बार भी अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर पुरी में रथों के निर्माण की शुरुआत हुई थी। जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर 3 रथों को बनाने के लिए वर्कशॉप मौजूद है, जहां इन रथों को बेहद मेहनत और श्रद्धा के साथ तैयार किया जाता है। इन रथों के निर्माण में 12 तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिनमें आसन, धौरा और फांसी नाम की लकड़ियों का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। आसन की लकड़ी से रथ का मुख्य खम्बा यानी डंडा बनता है, फांसी से 3 रथों के पहिए बनाए जाते हैं, तो वहीं धौरा से रथों के दूसरे कलात्मक हिस्से तैयार किए जाते हैं। इस बार भी 7 तरह की कलाओं में निपुण 200 से ज्यादा कारीगर रथों के निर्माण में पूरी आस्था के साथ जुटे हैं।
1: कुल 200 से ऊपर कारीगर लगे हुए हैं, 7 तरीके के कारीगर लगते हैं एक एक रथ बनाने के लिए। पहले चरण में मुख्य भूमिका यहाँ कारीगर लोग जो विश्वकर्मा सेवक लोग महाराणा लोग लेते हैं, उनके सहयोगी रूप में भोई सेवक रहते हैं। तो तीसरे कारीगर में आते लोहार जो लोहे का कांटा वगैरह रथ के लिए बनाते हैं, और रूपकार जो खुदाई का काम करते हैं, कार्विंग का काम करते हैं। उसके बाद चित्रकार आएंगे, उसके बाद दर्जी आएंगे जो कपड़े का काम करते हैं, रथ के ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है उसको, उसके बाद जो कपड़ा डालेंगे जो ऊपर के कलश लगाएंगे वो कोठोसवासिया सेवक है, उनका काम आएगा। इस तरह के 7 तरीके के कारीगर मिलकर एक रथ बनाते हैं।
0: यानी हुनर के आधार पर कारीगरों की जिम्मेदारियां तय हैं। ढांचे का निर्माण, कार्विंग, चित्रकारी, रंग रोगन, कलश स्थापना और भगवान की पोशाक बनाने की जिम्मेदारी अलग अलग कारीगरों में बटी हुई है। यहाँ तक कि रथों के निर्माण में काम आने वाली कीलें बनाने के लिए भी अलग कारीगर हैं, जो भगवान के विशाल काय रथों के लिए 2 इंच से लेकर 4.5 फीट तक की कीलें तैयार करते हैं।
3: यह कील देखिए 20 ये 16 mm की, ये जो कील है ये चेसिस में रहता है, ये जैसे नट बोल्ट है वो घुमा के इसको अंदर देते हैं, ये ऊपर बांध के रखेगा, ये नीचे ऐसे पलटा के ये बांध के रखेगा, ये जाने में मैंने सकपचर जैसे काम करता है, ये कील ऐसे ही बनता है।
2: सबसे बड़ा कील जो है,
3: सबसे बड़ा कील दिखा रहे हैं हम आपको,
2: ये कील देखिए,
3: ये देखिए ये कील है, ये 4.5 फुट की कील, ये जब भी ऊपर ये सबसे ऊपर लगता है, ये 13 परस्त पोटोल है, उसको बोलते हैं पोटोल, उस पे पूरा घुसा में पूरा भेद के जाएगा नीचे तक।
0: यात्रा में दिन कम बचे हैं और काम ज्यादा, लेकिन टाइम टेबल इस तरह बनाया गया है कि रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले यानी 15 जुलाई को ये तीनों रथ जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में संसार की सबसे खास सवारियों को बैठाने के लिए सजे धजे तैयार खड़े नजर आएंगे।
4: जुलाई 15 तारीख को ये सब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों रथ का काम यहाँ पर चल रहा है, हर कारपेंटर ज़्यादा खुश होकर काम कर रहे हैं। रथा और जो काम बाकी है, जितना दिन हमारा हाथ में है, इस दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा।
0: जगन्नाथ के जयकारों के बीच रथों के निर्माण का काम अब अंत की ओर बढ़ रहा है। इंतजार उस दिन का है जब इन दिव्य रथों में सवार होकर जगत के नाथ अपना जग देखने निकलेंगे और सारी पूरी नगरी आस्था के उत्सव में रम जाएगी। लेकिन उससे पहले फिलहाल वर्कशॉप में रथों का निर्माण देखने के लिए भी रथ यात्रा से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथपुरी पहुंच रहे हैं।
2: हर तरह की इंतजाम हो रही है और भक्तों का यहाँ भीड़ भी हो रही है, यहाँ बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, आपको ये दिखाऊंगा। बहुत सारे भक्त यहाँ ये रथ का काम देखने के लिए, भगवान का ये अपूर्व लीला, ये रथ का काम देखने के लिए कई प्रांतों से जो भगवान को देखने के लिए आते हैं, भगवान का ये रथ का काम भी देखने के लिए यहाँ खड़े हो जाते हैं और भगवान का ये रथ का काम देखते हैं। खुशी लगता है कि भगवान का ये जो अपूर्व लीला ये सालों में एक बार होता है, इसके लिए, इसको देखने के लिए, इसका सानिध्य लेने के लिए एक बड़ा इसमें हिस्सा बनने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल रथ यात्रा कैसे मनाया जाएगा ये देखने के लिए बाकी है। पूरी संजय कुमार, गुड न्यूज टुडे।
5: पुरी के साथ साथ देश के कई और शहरों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी इन दिनों उत्साह के साथ जारी है। पुरी के बाद जिन शहरों में सबसे भव्य यात्रा का आयोजन होता है उनमें गुजरात के अहमदाबाद और राजस्थान के उदयपुर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उदयपुर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान को चांदी के रथ की सवारी करवाई जाती है। उदयपुर में इन दिनों कारीगर इस रथ को यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। 16 जुलाई को उदयपुर के जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ इसी शानदार रथ में सवार होकर यात्रा के लिए निकलेंगे।

0: नाथ वही है, आस्था भी वही, भक्त और भाव भी दूसरे नहीं, बस कुछ बदला है तो रथ। जहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ अपनी काया के समान ही काष्ठ यानी लकड़ी के रथ में विराजते हैं, वहीं उदयपुर में जगन्नाथ प्रभु को चांदी के रथ में सवारी करवाई जाती है। जिस तरह पुरी धाम में रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, ठीक वैसे ही इन दिनों राजस्थान के उदयपुर में भी जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। उदयपुर की रथ यात्रा में हर साल भगवान जगन्नाथ इस भव्य चांदी के रथ पर विराजमान होते हैं। पुरी की रथ यात्रा के बाद अहमदाबाद और फिर उदयपुर की रथ यात्रा को ही सबसे भव्य माना जाता है। आपको बता दें, 80 किलो चांदी से बना ये रथ 16 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 21 फीट ऊंचा है। वहीं भक्तों के द्वारा रथ के लिए दान किए गए चांदी के सिंहासन और दूसरे सामान को भी जोड़ दिया जाए तो चांदी का कुल भार 195 किलो हो जाता है।
1: रथ की चौड़ाई है 8 फीट, लंबाई है 16 फीट, ऊंचाई है 21 फीट। इसमें लगभग 80 किलो चांदी लगी हुई है और इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे लमादमा है, रेवाड़ी है, सिंहासन है, इस तरह सारे आइटम करके 115 किलो चांदी सभी भक्तों के सहयोग से रथ समिति ने इस चीज को निर्माण में सहयोग किया।
0: उदयपुर के जगदीश मंदिर से ये भव्य रथ यात्रा निकलती है। उदयपुर के सिटी पैलेस के पास मौजूद जगदीश मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 17वीं सदी में मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर में सारा मेवाड़ बेहद आस्था के साथ सिर झुकाता है और उतनी ही आस्था के साथ शामिल होता है हर साल यहाँ से निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में, जिसके केंद्र में होता है ये चांदी का रथ और उस पर सवार भगवान जगन्नाथ। बताया जा रहा है कि रथ यात्रा से एक हफ्ते पहले यानी 9 जुलाई को दर्जनों कारीगर मिलकर भगवान के इस रथ के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर इसे अंतिम रूप प्रदान करेंगे।
1: 8 तारीख को हम पूरे रथ यात्रा मार्ग को सजाएंगे और 9 तारीख को ठाकुर जी के रथ को अलग अलग जो भागों में है, जो 58 खंड में है, उन सबको जगदीश चौक प्रांगण में लाके सभी कार्यकर्ता के सहयोग से लगभग 100-100 कार्यकर्ता वहाँ लगेंगे और इसको जोड़ा जाएगा। और 16 जुलाई को जब निकलेगा रथ, एक अलग तरीके की छटा होगी। जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में जो रथ निकलता है, रथ यात्रा निकलती है, उसी अंदाज में, उसी तर्ज पे हमारे उदयपुर में भी निकलती है। नंबर 1 जगन्नाथपुरी है, नंबर 2 अहमदाबाद है, तीसरे नंबर पे हमारे उदयपुर में, और राजस्थान में नंबर 1 रथ यात्रा है।
0: अब भक्तों को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 16 जुलाई का बेसब्री से इंतजार है, जब भगवान जगन्नाथ अपने इस रजत रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और उनके आगे पीछे नाचते झूमते हजारों भक्त अनंत आस्था की इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब आपको लेकर चलते हैं भव्य दिव्य अमरनाथ धाम में, जहां आस्था और विश्वास की अद्भुत तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। हर रोज नए जत्थों की रवानगी के साथ ही अमरनाथ यात्रा मार्ग पर आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। अब तक 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। खास बात यह है कि अब युवाओं के बीच भी अमरनाथ यात्रा तेजी के साथ लोकप्रिय होती जा रही है। दरअसल अमरनाथ यात्रा के दौरान यहां के प्राकृतिक नजारे और रास्ते उन्हें एडवेंचर टूरिज्म का अनुभव दे रहे हैं और बड़ी संख्या में युवा यात्रा के लिए आ रहे हैं। आंकड़ों से समझा जाए तो अमरनाथ यात्रा के पहले 3 दिन में 56,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल से करीब 18.6% ज्यादा रहा। 2025 में पहले 3 दिन में 47,972 श्रद्धालु पहुंचे थे। आपको बता दें कि 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई है। 48 किलोमीटर लंबे नुनवान पहलगाम रूट और 14 किलोमीटर वाले छोटे लेकिन कठिन बालटाल रूट से लगातार यात्री दर्शन के लिए अमरनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के उत्साह को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने अब की बार यात्रा के लिए कई खास इंतजाम किए हैं। सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है, वहीं सुरक्षा के भी इंतजाम कड़े किए गए हैं। वहीं एक सौगात रेलवे की तरफ से यात्रियों को भी मिली है। श्रद्धालुओं के भारी उत्साह को देखते हुए रेलवे जम्मू से श्रीनगर के बीच में स्पेशल ट्रेन चला रहा है, जिससे यात्री आराम से बेस कैंप तक पहुंच सके। विशेष ट्रेन सेवा के अलावा तीर्थयात्रियों को आधार, KYC, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, भोजन और डिजिटल सर्विलांस जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिल रही हैं। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू से श्रीनगर के बीच में स्पेशल ट्रेन चलाए जाने को लेकर पैसेंजर्स काफी खुश हैं।
3: बहुत बहुत ही अच्छी सुविधा है, रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है। और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है, उससे और ज़्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुंच जा रहे हैं बिना किसी थकान के। हम लोग सुबह उतरे हैं और वहां से डायरेक्ट हम लोग यहां आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम यात्रा रहा।
4: मैं महाराष्ट्र मुंबई से आई हूँ और हम लोग यहाँ से वंदे भारत से आए। बहुत ही सुविधा सुंदर थी। जैसे हम लोग प्लेन में रहते तब जो सुविधाएं रहती है ऑलमोस्ट नियर बाय सुविधाएं ये थी, इसलिए ये जो प्रवास है वो सुखकर लगा।
5: मैं जलंधर पंजाब से आया हूँ और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करने में पहली बार आया हूँ। हमारी जो इंडियन आर्मी के जो भाई लोग हैं वो चप्पे चप्पे पे खड़े हैं।
6: अमृतसर से आ रहा हूँ और वंदे भारत ट्रेन प्लस जो सुविधाएं हैं, जो सिक्योरिटी है, उसको देख के अभी फील हो रहा है कि अभी कोई भी यहाँ पे डर नहीं है, आराम से आ सकते हैं और काफी अच्छा अरेंजमेंट है।
2: जगन्नाथ रथ यात्रा और अमरनाथ यात्रा के साथ ही तैयारी एक तीसरी यात्रा की भी है। सावन से पहले का महीना है आषाढ़ का महीना, जिसमें अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, लेकिन इसके बाद ही भगवान शिव का प्रिय सावन महीना भी आने वाला है, जिसके हर सोमवार को करोड़ों शिव भक्त बाबा भोले की ना केवल पूजा आराधना करते हैं, बल्कि दूर दूर से कांवड़ लाकर भगवान का जलाभिषेक भी करते हैं। और यही वजह है कि सावन महीने से पहले भोलेनाथ के धामों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने लगी हैं। इन धामों में देवघर के बाबा बैद्यनाथ का धाम भी है। झारखंड में स्थित इस धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। भोलेनाथ के धामों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने लगी हैं। इन धामों में देवघर के बाबा बैद्यनाथ का धाम भी है। झारखंड में स्थित इस धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है।
7: के बाद सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और झारखंड के देवघर में स्थित महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के धाम पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने वाली है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक श्रद्धालु सावन में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं। वैसे तो बाबा बैद्यनाथ धाम पूरे साल भर शिवमय रहता है और भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए हमेशा यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने की बात ही और है, क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। और खास बात ये भी है कि सावन में हर साल बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला लगता है, जिसका शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बैद्यनाथ धाम में इस बार श्रावणी मेला 31 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये मेला 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगा। इस दौरान कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर आएंगे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे सावन भर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए स्पर्श पूजा पूरी तरह बंद रहेगी और कांवड़िये अर्घा के माध्यम से यहाँ पर स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। वही हर साल की तरह इस साल भी श्रावणी मेले में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में देवघर में झारखंड और बिहार के सरकारी अफसरों की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें कांवड़ियों के आवागमन और मेले के इंतजामों को लेकर अहम फैसले किए गए।
8: जहाँ भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में संबंध स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफ़ी मुद्दों पर बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्प का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है वो आपस में शेयर करेंगे ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया से।
7: बताया गया है कि मेले में भीड़ पर नियंत्रण के लिए अलग अलग स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाई जा रही है। कावड़ियों के ठहरने, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था होगी। उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार श्रावणी मेले के दौरान कावड़ियों की डबल डेकर गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।
9: सबसे ज्यादा मेजर इशू था ये डबल डेकर जो गाड़ी, जो मॉडिफाइड गाड़ी आती है उसके लिए, तो मॉडिफाइड गाड़ी के बारे में अभी हुआ कि आप अभी से ही बिहार साइड में ही अभी से प्रचार हो कि मॉडिफिकेशन हो ही ना, यहाँ पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ से इनिशिएट ही नहीं हो, इसके बारे में चर्चा हो और उन्होंने इस बारे में अभी से ही कार्रवाई करने के बारे में।
7: ये भी तय किया गया है कि अब सुल्तानगंज से हर दिन जल उठाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी पहले से ही देवघर और दुमका जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों के बेहतर उपयोग में काफी सुविधा होगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी जिलों में तालमेल बिठाकर इंतजाम किए जाएंगे ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से देवघर पहुंचकर बाबा को जल अर्पित कर सके। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: फेनाइयों की मधुर गूंज, ढोल ताशों के साथ बैंड बाजे की धुन, नाचते गाते बाराती, ऊंट पर सवार दूल्हा और चुनरी ओढ़े दुल्हन। पहली नजर में ये किसी सामान्य विवाह समारोह का नजारा लगता है और ये विवाह उत्सव है भी, लेकिन थोड़ा अनोखा। राजस्थान में पाली जिले के बाड़सा गांव में ये विवाह महोत्सव 3 दिनों तक धूमधाम से चला, जहां पर देखिए एक और बछड़े का विवाह बछड़ी से कराया गया। दूल्हा बना बछड़ा ऊंट पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचा और दुल्हन बनी बछड़ी को कानों में कुड़की और पैरों में पैजेब पहनाकर सुंदर ढंग से बिल्कुल सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार रस्में और पूरे रीति रिवाज के अनुसार ये शादी संपन्न की गई। यहाँ बछड़ा बछड़ी के साथ ही बड़ और पीपल के पौधों की भी शादी कराई गई बाकायदा, जिसमें पीपल के पौधे को चुनरी ओढ़ाकर दुल्हन का रूप दिया गया। इस अनोखे आयोजन ने हर किसी का मन मोह लिया। 3 दिनों तक पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस आयोजन ने वर्षों पुरानी लोक परंपरा को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। ग्रामीणों ने इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि गौ संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश देने वाला आयोजन बताया। तस्वीरें देखिए विवाह समारोह में, गांव के अलावा अगर हम देखें आसपास के इलाकों से भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। तस्वीरें देखिए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है, कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है। धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमकर हो रही है बारिश, प्रदेश के कई जिलों में 22 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। सैलानियों से प्रशासन की अपील, मौसम से जुड़ी एडवाइजरी का करें पालन। हिमाचल की मंडी से अब महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा चंडीगढ़ तक का सफर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ, 3500 रुपए होगा हेलीकॉप्टर का किराया। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन, खराब मौसम के बावजूद आस्था परंपरा। दलाई लामा के 51वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन, विश्व शांति सद्भावना और मानवता का संदेश। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान, 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह को भी मिला मौका।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है बल्कि यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो ये तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान के शेयर कर देते हैं और यही शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पुलिस से पिट रहा शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। ये शख्स भगवान श्री राम के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और इसकी जमकर पिटाई की गई। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, करेंगे आगे पड़ताल। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पासपोर्ट चोरी होने के कारण आगरा में मजदूरी करने को मजबूर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंडरसन, इस वायरल दावे की सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में पुलिसकर्मी एक युवक को थाने में जमकर पीट रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस से पिट रहा शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता सुरेश जाटव है, जो भगवान श्री राम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसे पीटा। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
4: पुलिस स्टेशन का ये दृश्य है जहां एक शख्स हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन पुलिस के जवान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक लाठियों की बरसात की जा रही है, मानो ये तय करके आए हैं आज इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसकी गलती माफी लायक नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के दावे पर यकीन करें तो पुलिस से पिट रहा ये शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता सुरेश जाटव है, जो भगवान श्री राम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक युवक को थाने में जमकर पीटा जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पुलिस से पिट रहा यह शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता सुरेश जाटव है, जो भगवान श्री राम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने इसे पीटा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसकी पड़ताल जरूरी हो गई थी, तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना भी। इस दौरान हमें बैकग्राउंड में आ रही जो आवाजें सुनाई दी वो मराठी जैसी लग रही थी। इसके अलावा वायरल हो रहे वीडियो के क्वालिटी को देखने से ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल का वीडियो नहीं है। साथ ही साथ वीडियो में पुलिसकर्मियों के चेहरों पर मास्क लगा हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये कि वीडियो कोरोना के

0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 28 मई 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना महाराष्ट्र के जालना जिले की थी, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सचिव शिवराज नारियलवाले की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की थी। दरअसल अप्रैल 2021 में जालना के एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ किया। जब पुलिस भीड़ को हटा रही थी तब शिवराज वहां इस घटना का वीडियो बना रहे थे। इसी बात से नाराज हुए पुलिसकर्मियों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी थी। पड़ताल के दौरान 28 मई 2021 को एक YouTube चैनल पर अपलोड की गई वीडियो रिपोर्ट में भी यह वीडियो मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि यह घटना महाराष्ट्र के जालना स्थित दीपक अस्पताल की है, जहां भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी शिवराज नारियल वाले को पुलिस ने लाठियों से पीटा था। रिपोर्ट में पीड़ित व्यक्ति का बयान भी मिला। इस मामले को लेकर 27 मई 2021 को एक समाचार एजेंसी ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद हैं। बतौर रिपोर्ट जालना पुलिस थाने के इंस्पेक्टर प्रशांत महाजन ने बताया था कि 10 अप्रैल को एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की थी। उन्हें अस्पताल से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया था। पड़ताल के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर 29 मई 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में आरोपी 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि भीम आर्मी कार्यकर्ता की पिटाई के दावे से वायरल हुआ यह वीडियो 5 साल पुराना है। यह वीडियो महाराष्ट्र का है, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने लाठियों से पीटा था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि आगरा घूमने आए ऑस्ट्रेलियन नागरिक एंडरसन का पासपोर्ट और दूसरा सामान चोरी हो गया, जिसके चलते उसे ईंट भट्टे पर मजदूरी करनी पड़ रही है। इस वायरल वीडियो के जरिए लोग ये अपील कर रहे हैं कि जिसने भी इसका सामान लिया है कृपया इंसानियत दिखाएं और वापस लौटा दें। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो क्या सच और झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
2: नाम आगरे का ताजमहल देखना था, इसका वीजा पासपोर्ट बैग आगरा का चोरी होगा, आज इस भाई को मजबूरी करनी पड़ रही है।
3: सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक का बताकर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक को ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के एंडरसन को आगरा में सामान और पासपोर्ट चोरी होने के बाद मजदूरी करनी पड़ रही है। यूजर्स इसे देश को शर्मसार करने वाली घटना बताकर कथित रूप से चोरी किया गया एंडरसन का सामान लौटाने की भी अपील कर रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अतिथि देवो भव के देश से आई इस तस्वीर ने सभी को शर्मसार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया से भारत की संस्कृति और खूबसूरती को निहारने आए एंडरसन नाम के एक विदेशी पर्यटक के साथ आगरा में एक बेहद दुखद और शर्मनाक वाकया पेश आया है। आगरा घूमने के दौरान चोरों ने एंडरसन का पासपोर्ट, सारे पैसे और उसका पूरा सामान पार कर दिया। विदेशी धरती पर सब कुछ खो जाने के बाद एंडरसन पूरी तरह लाचार हो गए। हालात ये हो गए हैं कि अब उन्हें दो वक्त की रोटी और अपना पेट भरने के लिए एक ईंट के भट्टे पर कड़ा शारीरिक श्रम और मजदूरी करनी पड़ रही है। जिस सैलानी का स्वागत पलकों पर होना चाहिए था, वो आज दाने दाने को मोहताज है। हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये प्रशासन तक पहुंचे। साथ ही जिसने भी इसका सामान चुराया है, कृपया इंसानियत के नाते इसका पासपोर्ट और सामान लौटा दें, ताकि ये मासूम विदेशी नागरिक अपने वतन सुरक्षित वापस लौट सके।
2: देखो भाई, इसका नाम है एंड्रूशन।
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है और वीडियो में एक युवक को ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एंडरसन को आगरा में

0: सामान और पासपोर्ट चोरी होने के बाद मजदूरी करनी पड़ रही है। यूजर्स इसे देश को शर्मसार करने वाली घटना बताकर कथित रूप से चोरी किया गया एंडरसन का सामान लौटाने की भी अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा और वीडियो को देखने पर ऐसा लग रहा है कि इसके जरिए गलत दावा किया जा रहा है। जिस शख्स को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बताया जा रहा है, वो शख्स इतनी निपुणता से ईंट को ऊपर फेंक रहा है, उससे ये इशारा मिल रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नहीं हो सकता। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि युवक आगरा में ताजमहल देखने आया था, जहां पर उसका सामान चोरी हुआ, और इस आधार पर हमने आगरा ताजगंज थाने के प्रभारी जसवीर सिंह से संपर्क भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अगर किसी पर्यटक का सामान चोरी होता है तो वो पुलिस में शिकायत जरूर करता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी मामला सामने नहीं आया। इसके अलावा यदि किसी भी विदेशी नागरिक का पासपोर्ट भारत में खो गया है या फिर चोरी हो गया, तो उसे मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कानूनन वो अपने देश के दूतावास से संपर्क करके तुरंत आपातकालीन पासपोर्ट या फिर यात्रा दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ सर्च के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है वो अपने रंग के कारण चर्चा में नजर आया है। दरअसल त्वचा और बालों को रंग मेलानिन नामक के एक पिगमेंट से मिलता है और इसका प्राथमिक कार्य सनस्क्रीन की तरह हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण से त्वचा की रक्षा करना है। कुछ लोगों में ये बहुत कम होता है, जिससे उनकी त्वचा, बाल और आंखें बहुत पीली होती हैं। हो सकता है कि ये शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ हो, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो जिसमें नजर आ रहा जो शख्स है, उसकी पहचान क्या है? हमारा दूसरा सवाल ये कि अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई? तीसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही? सच और झूठ क्या इस रिपोर्ट में देखिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये वीडियो नहीं मिला जहां वायरल दावे की पुष्टि की गई हो। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर अकाउंट पर पोस्ट किया गया एक वीडियो मिला। इसे 25 जून 2026 को अपलोड किया गया था। इसमें इनसेट में वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट देखने को मिले। जानकारी के अनुसार एंडरसन के दावे से जिस युवक की कहानी वायरल हो रही है, वो यूपी के बागपत जिले के काठा गांव का है और उसका नाम साहिल देशवाल है। वीडियो में साहिल कह रहा है कि ये सब फेक है और मुंशी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था।
2: कहाँ के हैं आप, बताइए अपने बारे में।
3: बागपत जिला यूपी काठा से।
2: बागपत जिला के हैं, यूपी से हैं। हाँ, आप तो ऑस्ट्रेलिया के बताए जा रहे हैं।
3: ये सब फेक न्यूज़।
2: फेक न्यूज़ है। कौन है वीडियो बना के वायरल किया है?
3: भट्टे में मुंशी ने बना दी थी।
2: मुंशी ने बना दिया था।
1: साहिल ईट भट्टे पर काम करता है। इस अकाउंट से साहिल के कुछ और वीडियोस भी देखने को मिले। 16 फरवरी 2025 को साहिल की ईट भट्टे पर मजदूरी करने का एक और वीडियो पोस्ट किया गया था। एक इंस्टाग्राम यूजर ने 25 जून 2026 को वायरल वीडियो के बारे में जानकारी पोस्ट की है। इसमें वायरल क्लिप को भी देखा जा सकता है। वीडियो में एंडरसन के नाम से वायरल किए जा रहे युवक और उसके भाई ने इसे फेक बताया है। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वायरल वीडियो में मौजूद व्यक्ति का नाम साहिल है और वो यूपी के बागपत का रहने वाला है। आगरा में पासपोर्ट चोरी होने से ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंडरसन के मजदूरी करने का दावा बेबुनियाद है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league. From the first pitch of the season to the stretch run.
6: That's the ball game.
5: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चल
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
7: इंसानियत की मिसाल पेश करने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी क्षेत्र में स्कूल के एक वार्डन ने तेज बुखार से पीड़ित छात्रा को समय पर इलाज दिलाने के लिए करीब 6 किलोमीटर तक अपनी पीठ पर उठाकर पैदल सफर तय किया। इस भावुक पल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पर लोग इमोशनल कमेंट कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल वार्डन हेमा बीमार छात्रा को अपनी पीठ पर लेकर पहाड़ी और जंगल वाले कठिन रास्ते से गुजरती दिखाई दे रही है। बताया गया कि इलाके में वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद छात्रा को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का फैसला किया। करीब 6 किलोमीटर लंबे सफर में श्रीमती हेमा ने उबड़ खाबड़ रास्तों और पहाड़ियों को पार किया। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि छात्रा को बिना देर किए इलाज मिल सके।
8: अखियां मेरे पूछ रही है तुमको, मेरे चैन नहीं है कि थी लड़ाइयां वे, दुखिया कि थी लड़ाइयां वे।
7: इंटरनेट पर अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के वांचो समुदाय की 3 नन्ही बच्चियों का एक वीडियो तेजी से तहलका मचा रहा है। अपनी कमाल की गायकी, जबरदस्त डांस मूव्स और गजब के स्वैग से इन बच्चियों ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है।
8: अखियां मेरे पूछ रही है तुमको, मेरे चैन नहीं है कि थी लड़ाइयां वे, दुखिया कि थी लड़ाइयां वे।
7: जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जा रही है। वीडियो का बैकग्राउंड भी बेहद खूबसूरत है, जहां अरुणाचल की हरी भरी वादियां दिखाई दे रही है। इन हसीन वादियों के बीच 3 छोटी बहनों को बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाना और थिरकना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है।

इन दिनों एक नन्ही बच्ची का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग उसकी प्यारी आवाज और आत्मविश्वास की खूब तारीफ कर रहे हैं। वायरल वीडियो में छोटी बच्ची नीले रंग की फ्रॉक पहने बेहद मासूम अंदाज में बैठी दिखाई देती है। उसके हाथ में एक छोटा सा गिटार है, जिसे बजाते हुए वो गाना गाती है। उसकी मीठी आवाज, मासूम मुस्कान और गाने का अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले कई यूजर्स का कहना है कि बच्ची की सादगी और आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो किसी बड़े कलाकार या मजेदार कॉमेडियन का नहीं, बल्कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चों का है। बच्चों की मासूमियत और उनकी अलग सोच ने इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया है। जो भी इसे देख रहा है वे अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा। वीडियो में एक स्कूल की क्लास का नजारा दिखाई देता है। टीचर बच्चों को एक आसान सा काम देते हैं। उनसे कहा जाता है कि वे भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की ड्राइंग बनाएं। सुनने में यह काम बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में मोर बनाकर दिखाते हैं, तब असली मजा शुरू होता है। हर बच्चे ने अपनी कल्पना के हिसाब से मोर बनाने की कोशिश की। किसी ने उसकी गर्दन इतनी लंबी बना दी कि वह जिराफ जैसी लगने लगी। किसी ने पंखों को ऐसे बना दिया कि उन्हें देखकर समझ ही नहीं आता कि यह मोर है या कोई दूसरी चिड़िया। कुछ बच्चों ने तो मोर का आकार और रंग भी अपनी पसंद के हिसाब से बना दिए। उनकी ड्राइंग देखकर साफ समझ आता है कि उन्होंने किताबों की तस्वीर की नकल करने के बजाय अपने दिमाग में जो तस्वीर बनाई उसे ही कागज पर उतार दिया। सबसे मजेदार बात यह रही कि बच्चों की इन अनोखी ड्राइंग्स को देखकर टीचर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। क्लास का माहौल हल्का फुल्का और खुशियों से भर गया। बच्चों के चेहरे पर भी अपनी बनाई तस्वीर दिखाने की खुशी साफ नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों की आंखों को नम और दिलों को खुश कर दिया है। एक कमर्शियल पायलट बेटे ने जब पहली बार अपनी माँ को प्लेन में बतौर कैप्टन सफर कराया, तो वह पल बेहद भावुक कर देने वाला बन गया। वीडियो की शुरुआत में तपेश बोर्डिंग गेट पर खड़े होकर अपनी फ्लाइट के एक बेहद खास मेहमान का इंतजार करते दिखते हैं। जैसे ही उनकी माँ प्लेन में चढ़ने के लिए आगे बढ़ती हैं, दोनों के चेहरे की मुस्कान और एक दूसरे को गले लगाने का अंदाज यह बता देता है कि यह सफर दोनों के लिए कितना खास है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उड़ान भरने से पहले दोनों ने प्लेन के सामने एक शानदार तस्वीर खिंचवाई और फिर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए, जहां पहुंचने के बाद इस माँ बेटे की जोड़ी ने साथ में बेहतरीन समय बिताया। तपेश अपनी माँ को एक आलीशान होटल में ले गए। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे माँ ने अपनी जिंदगी में पहली बार स्विमिंग पूल का आनंद लिया और होटल में लजीज खाने का लुत्फ उठाया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इन दोनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स सिर के बल लगातार सीढ़ियां चढ़ते हुए अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता नजर आ रहा है। यह कारनामा देखकर लोग भी दंग रह गए और वीडियो पर तरह तरह के कॉमेंट आ रहे हैं। इस वीडियो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो में चीन के ली किंगबो बिना हाथों का सहारा लिए सिर के बल लगातार 40 सीढ़ियां चढ़ते दिखाई देते हैं। इसी के साथ उन्होंने इस अनोखे कारनामे का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया। बारिश का मौसम शुरू होते ही छाते की जरूरत पड़ती है, लेकिन छाता पकड़कर चलना कई बार मुश्किल हो जाता है। एक हाथ में छाता, दूसरे में बैग या मोबाइल और कभी कभी बच्चे को संभालना, ये सब बहुत परेशान करने वाला होता है। अब इस समस्या का क्रांतिकारी समाधान सामने आ गया है। कनाडा के इंजीनियर जॉन ने एक ऐसा उड़ने वाला छाता बनाया है जो हाथ में पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने देगा। यह फ्लाइंग अम्ब्रेला ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें डेप्थ सेंसिंग कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है, जो मालिक को पहचान लेता है और लगातार उसके सिर के ऊपर उड़ता रहता है। व्यक्ति जहाँ भी जाएगा छाता उसके साथ साथ चलेगा, यानी हाथ पूरी तरह फ्री रहेंगे। छाता बनाने वाले जॉन से के अनुसार यह प्रोटोटाइप धूप में छांव और हल्की बारिश में सुरक्षा दे सकता है। अभी एक बैटरी चार्ज पर यह 10 से 15 मिनट तक हवा में रह सकता है। यह अभी रिसर्च और डेवलपमेंट स्टेज पर है और बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी वायरल तस्वीरों और वीडियो ने दुनिया भर में चर्चा मचा दी है। सोशल मीडिया पर लोग इसे भविष्य की तकनीक बता रहे हैं।
कभी कभी खुशियाँ बहुत छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। एक प्यारी सी पूंछ का हिलना, मासूम आंखों की चमक, या फिर किसी ऐसे जीव का मुस्कुराता चेहरा जिसे आखिरकार अपना घर मिल गया हो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो भी कुछ ऐसी ही भावनाओं से भरा है। इसमें गोद लिए गए कुत्ते का पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन यह सिर्फ केक और सजावट की कहानी नहीं है। यह उस भरोसे, प्यार और अपनेपन की कहानी है जिसने एक बेघर कुत्ते की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुत्ता अपने परिवार के बीच बैठा है। जब मालिक ने उसके सामने जन्मदिन का केक रखा, उसके चेहरे पर खुशी के आंसू थे, मानो वो उन सब का धन्यवाद कर रहा हो कि उन्होंने उसे अपना लिया। परिवार के सदस्यों ने न केवल उसे खाना दिया बल्कि उसे गले लगाकर वह एहसास कराया कि अब वह इस घर का एक अहम हिस्सा है। इस छोटे से गोलू मोलू पांडा ने अपने अंदाज से इंटरनेट पर ऐसी महफिल जमा दी है कि लोग बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैग लेन के नाम से जानते हैं। हुआ यूं कि एनरिचमेंट सेशन के दौरान केयरटेकर ने पांडा के साथ थोड़ी मस्ती करने का सोचा। उन्होंने एक विक पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलेन अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था कि आखिर केयरटेकर क्या करने वाला है। माहौल में सस्पेंस था। पांडा को लग रहा था कि केयरटेकर उसके सामने डांस करने वाला है और इसके लिए उसने इशारा भी किया। तभी केयरटेकर एक फिल्मी अंदाज में डांस करने लगता है। तभी अचानक अपने सिर से विक को हवा में उछाल दिया और अचानक उनका चमकता हुआ गंजा सिर फिर सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आई ट्विस्ट को देखकर मैंगलेन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वह पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू कैसे हुआ। वह इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो यह प्रैंक किया, उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: शहनाइयों की मधुर गूंज, ढोल ताशों के साथ बैंड बाजी की धुन, नाचते गाते बाराती, ऊंट पर सवार दूल्हा और चुनरी ओढ़े दुल्हन। पहली नजर में ये किसी सामान्य विवाह समारोह का नजारा लगता है और ये विवाह उत्सव है भी, लेकिन थोड़ा अनोखा। राजस्थान में पाली जिले के बाड़सा गांव में ये विवाह महोत्सव 3 दिनों तक धूमधाम से चला, जहां पर देखिए एक और बछड़े का विवाह बछड़ी से कराया गया। दूल्हा बना बछड़ा ऊंट पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचा और दुल्हन बनी बछड़ी को कानों में कुड़की और पैरों में पैजेब पहनाकर सुंदर ढंग से बिल्कुल सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार रस्में और पूरे रीति रिवाज के अनुसार ये शादी संपन्न की गई। यहाँ बछड़ा बछड़ी के साथ ही बड़ और पीपल के पौधों की भी शादी कराई गई बाकायदा, जिसमें पीपल के पौधे को चुनरी ओढ़ाकर दुल्हन का रूप दिया गया। इस अनोखे आयोजन ने हर किसी का मन मोह लिया। 3 दिनों तक पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस आयोजन ने वर्षों पुरानी लोक परंपरा को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। ग्रामीणों ने इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि गौ संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश देने वाला आयोजन बताया। तस्वीरें देखिए, विवाह समारोह में गांव के अलावा अगर हम देखें आसपास के इलाकों से भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। तस्वीरें देखिए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमकर हो रही है बारिश, प्रदेश के कई जिलों में 22 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। सैलानियों से प्रशासन की अपील, मौसम से जुड़ी एडवाइजरी का करें पालन। हिमाचल की मंडी से अब महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा चंडीगढ़ तक का सफर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ, ₹3500 होगा हेलीकॉप्टर का किराया। देवभूमि में धूमधाम से जा रही है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन, खराब मौसम के बावजूद आस्था परंपार। दलाई लामा के 51वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन, विश्व शांति सद्भावना और मानवता का संदेश। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान, 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह को भी मिला मौका।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। तो जेएनटी स्पेशल में आज बात आस्था की यात्रा से जुड़ी। इस समय देश में कई धार्मिक यात्राओं उत्सवों का दौर चल रहा है। पिछले कई हफ्तों से चारधाम यात्रा चल ही रही थी। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ भी हमने देखा। तो वहीं 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का भी श्री गणेश हो गया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली है अमरनाथ धाम से जुड़ी, दूसरी जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई और तीसरी देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम की तस्वीर। पिछले 4 दिनों से अमरनाथ यात्रा मार्ग पर आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। खूबसूरत वादियों में बोलबम का जय घोष है। 3 जुलाई की सुबह से बाबा बर्फानी के भक्तों के जोश जज्बे से भरी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। इसी बीच झारखंड के देवघर में मौजूद बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जब आस्था की एक और यात्रा कांवड़ यात्रा का श्री गणेश होगा, लेकिन उससे पहले अब से ठीक 10 दिन बाद पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज होने वाला है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा एक अनोखा उत्सव है, जब भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारते हैं। पुरी में चारों तरफ आस्था का जन समुद्र नजर आता है। जगन्नाथपुरी में भगवान की रथ यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है, जिसमें अब बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पुरी और दिखाते हैं तैयारी जगन्नाथ यात्रा की।

0: नगरी के लिए इस लकड़ी का हर टुकड़ा पूजनीय है। लकड़ी पर पड़ती औजार की हर चोट आस्था का जयघोष है। चोट से निकलती हर ध्वनि शंखनाद सी पवित्र है, क्योंकि ये ध्वनि संकेत है कि जगन्नाथ प्रभु के पधारने की घड़ी अब समीप आ चुकी है। पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए भव्य रथ बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है।
1: अभी रथ का शीर्ष पर यह काम चल रहा है, जो रथ के चारों तरफ चार चार द्वार भड़ा जो है अभी तीनों बन चुका है और एक बनना बाकी है। अभी रथ के ऊपर का काम जो है पोर्टल बढ़धरा पोर्टल लगाया गया है, उसके बाद जो 13 परस्त पोर्टल में 12 परस्त पोर्टल और पाराबाड़ी वो सब लगाया जाएगा। उसके बाद कलश का काम भी अभी चल रहा है, कलश का पिंडी और पखुड़ा वो अभी तैयार हो रहा है। उसको तैयार करने के बाद उसके ऊपर टीन का छप्पर डालने के बाद और चित्रकार लोगों को दिया जाएगा, वो चित्र करेंगे। अभी जो द्वार का जो नाट गोड़ है उसका खुदाई अभी रूपकार सेवक के द्वारा हो रहा है।
0: पुरी में भव्य रथ यात्रा का संयोग भले ही आषाढ़ के महीने में बनता है, लेकिन रथ के निर्माण और उसके श्रृंगार की यात्रा कई महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। भगवान का ये रथ महीनों के कठिन परिश्रम और तपस्या के बाद तैयार होता है।
2: आप देख सकते हैं काम अब तेजी से चल रहा है, काम अभी तेजी से पूरा चल रहा है। कैसे काम में पूरा जो कारीगर लोग हैं यहाँ पूरा काम में जुटे हुए हैं। ये रथ कला है और रथ कला में मैं मौजूद हूँ, आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ कैसे रथ का पहिया का काम खत्म हो चुका है, ये रथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बन रहा है और इसके बाद और जो काम है वो काम आहिस्ता आहिस्ता काम हो ही जाएगा। आप ये देख सकते हैं, मैं रथ का विजुअल भी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो जगन्नाथ मंदिर के पास पूरा तीन रथ अब एक जो इसका जो बड़ी पार्ट है यह बन चुका है। आप देख सकते हैं तीनों रथ मौजूद हैं, ये एक दो और तीन, ये पूरा तीनों रथ यहाँ तैयार हो चुका है। बड्डी का जो है पार्ट ये पार्ट बन चुका है और इसमें जो जो पार्ट अभी लगेगा ये काम के लिए पूरा जो कारीगर लोग हैं ये लगे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे मार्किंग हो रहा है, पहिया कहीं पे, ये रथ का अलग जो हिस्सा, बाहर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा, जो जो हिस्सा है और इसका डिजाइनिंग कलर, ये सब काम के लिए पूरा कारीगर लोग हैं वो लगे हुए हैं।
0: हर साल सैकड़ों कारीगर मिलकर इन तीनों रथों को तैयार करते हैं। जब तक रथ बन नहीं जाता तब तक उसे बनाने वाले सभी कारीगर और कलाकार सात्विक तरीके से रहते हैं। आस्था की ये पूरी यात्रा समाज को एक सूत्र में पिरो देती है। पुरी में रहने वाले महाराणा परिवार पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। परिवार की हर पीढ़ी से एक सदस्य रथ निर्माण में सेवा देने का दायित्व उठाता है। भले ही वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, कोई भी काम करता हो, लेकिन रथ निर्माण के समय यहाँ सेवा देने जरूर पहुँच जाता है।
1: देखिए ये सेवा है, भगवान जी को बनाने का, रथ बनाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, तो मैं बोलूँगा जो हर विश्वकर्मा सेवक ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन महाप्रभु को तिर कर तैयार करना हर साल रथ बनाना ये किसी के नसीब में ही आता है। जो हमारे नसीब में हर साल हम उसी परिवार में जन्म ग्रहण किए हैं, उनके सेवा के लिए साड़ी बनाया है, तो उनके सेवक के रूप में आज जीवन भर हमें रहना है और हर साल एक सेवा हमें प्रदान करना है। हमारे बाद हमारे नेक्स्ट पीढ़ी जो हमारे बच्चे आएंगे वो भी ये काम करेंगे, चाहे कोई भी नौकरी करे या कोई भी व्यवसाय करे, लेकिन यहाँ सेवा करना जरूरी है। तो ये बाउंड है, आप करना, आपको ही करना है और कोई दूसरा नहीं कर सकता।
0: हर साल की तरह इस बार भी अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर पुरी में रथों के निर्माण की शुरुआत हुई थी। जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर तीनों रथों को बनाने के लिए वर्कशॉप मौजूद है, जहां इन रथों को बेहद मेहनत और श्रद्धा के साथ तैयार किया जाता है। इन रथों के निर्माण में 12 तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिनमें आसन, धौरा और फांसी नाम की लकड़ियों का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। आसन की लकड़ी से रथ का मुख्य खम्बा यानी दंडा बनता है, फांसी से तीनों रथों के पहिए बनाए जाते हैं, तो वहीं धौरा से रथों के दूसरे कलात्मक हिस्से तैयार किए जाते हैं। इस बार भी 7 तरह की कलाओं में निपुण 200 से ज्यादा कारीगर रथों के निर्माण में पूरी आस्था के साथ जुटे हैं।
1: कुल 200 से ऊपर कारीगर लगे हुए हैं, 7 तरह के कारीगर लगते हैं एक एक रथ बनाने के लिए। पहले चरण में मुख्य भूमिका यहाँ कारीगर लोग जो विश्वकर्मा सेवक लोग महाराणा लोग लेते हैं, उनके सहयोगी रूप में भोई सेवक रहते हैं। तो तीसरे कारीगर में आते लोहार जो लोहे का कांटा वगैरह रथ के लिए बनाते हैं, और रूपकार जो खुदाई का काम करते हैं, कार्विंग का काम करते हैं। उसके बाद चित्रकार आएंगे, उसके बाद दर्जी आएंगे जो कपड़े का काम करते हैं, रथ के ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है उसको, उसके बाद जो कपड़ा डालेंगे जो ऊपर के कलश लगाएंगे वो कोठोश्वासिया सेवक है, उनका काम आएगा। इस तरह के 7 तरीके के कारीगर मिलकर एक रथ बनाते हैं।
0: यानी हुनर के आधार पर कारीगरों की जिम्मेदारियां तय हैं। ढांचे का निर्माण, कार्विंग, चित्रकारी, रंग रोगन, कलश स्थापना और भगवान की पोशाक बनाने की जिम्मेदारी अलग अलग कारीगरों में बटी हुई है। यहाँ तक कि रथों के निर्माण में काम आने वाली कीले बनाने के लिए भी अलग कारीगर हैं, जो भगवान के विशाल काय रथों के लिए 2 इंच से लेकर 4.5 फीट तक की कीले तैयार करते हैं।
3: यह कील देखिए 20 ये 16 mm की, ये जो कील है ये चेसिस में रहता है, ये जैसे नट बोल्ट है वो घुमा के इसको अंदर देते हैं, ये ऊपर बांध के रखेगा, ये नीचे ऐसे पलटा के ये बांध के रखेगा, ये जाने में मैंने सकपचर जैसे काम करता है, ये कील ऐसे ही बनता है।
2: सबसे बड़ा कील जो है,
3: सबसे बड़ा कील दिखा रहे हैं हम आपको,
2: ये कील देखिए,
3: ये देखिए ये कील है, ये 4.5 फुट की कील, ये जब भी ऊपर ये सबसे ऊपर लगता है, ये 13 परस्त पोटोल है, उसको बोलते हैं पोटोल, उस पे पूरा घुसा में पूरा भेद के जाएगा नीचे तक।
0: यात्रा में दिन कम बचे हैं और काम ज्यादा, लेकिन टाइम टेबल इस तरह बनाया गया है कि रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले यानी 15 जुलाई को ये तीनों रथ जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में संसार की सबसे खास सवारियों को बैठाने के लिए सजे धजे तैयार खड़े नजर आएंगे।
4: जुलाई 15 तारीख को ये सब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों रथ का काम यहाँ पर चल रहा है, हर कारपेंटर ज़्यादा खुश होकर काम कर रहे हैं। रथा और जो काम बाकी है, जितना दिन हमारा हाथ में है, इस दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा।
0: जगन्नाथ के जयकारों के बीच रथों के निर्माण का काम अब अंत की ओर बढ़ रहा है। इंतजार उस दिन का है जब इन दिव्य रथों में सवार होकर जगत के नाथ अपना जग देखने निकलेंगे और सारी पूरी नगरी आस्था के उत्सव में रम जाएगी। लेकिन उससे पहले फिलहाल वर्कशॉप में रथों का निर्माण देखने के लिए भी रथ यात्रा से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथपुरी पहुंच रहे हैं।
2: हर तरह की इंतजाम हो रही है और भक्तों का यहाँ भीड़ भी हो रही है, यहाँ बहुत सारे भक्त आ रहे हैं। आपको ये दिखाऊंगा, बहुत सारे भक्त यहाँ ये रथ का काम देखने के लिए, भगवान का ये अपूर्व लीला, ये रथ का काम देखने के लिए कई प्रांतों से जो भगवान को देखने के लिए आते हैं, भगवान का ये रथ का काम भी देखने के लिए यहाँ खड़े हो जाते हैं और भगवान का ये रथ का काम देखते हैं। खुशी लगता है कि भगवान का ये जो अपूर्व लीला, ये सालों में एक बार होता है, इसके लिए, इसको देखने के लिए, इसका सानिध्य लेने के लिए एक बड़ा इसमें हिस्सा बनने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल रथ यात्रा कैसे मनाया जाएगा ये देखने के लिए बाकी है। पूरी संजय कुमार, गुड न्यूज टुडे।
5: पुरी के साथ साथ देश के कई और शहरों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी इन दिनों उत्साह के साथ जारी है। पुरी के बाद जिन शहरों में सबसे भव्य यात्रा का आयोजन होता है उनमें गुजरात के अहमदाबाद और राजस्थान के उदयपुर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उदयपुर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान को चांदी के रथ की सवारी करवाई जाती है। उदयपुर में इन दिनों कारीगर इस रथ को यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। 16 जुलाई को उदयपुर के जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ इसी शानदार रथ में सवार होकर यात्रा के लिए निकलेंगे।

0: नाथ वही है, आस्था भी वही, भक्त और भाव भी दूसरे नहीं, बस कुछ बदला है तो रथ। जहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ अपनी काया के समान ही काष्ठ यानी लकड़ी के रथ में विराजते हैं, वहीं उदयपुर में जगन्नाथ प्रभु को चांदी के रथ में सवारी करवाई जाती है। जिस तरह पुरी धाम में रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, ठीक वैसे ही इन दिनों राजस्थान के उदयपुर में भी जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उदयपुर की रथ यात्रा में हर साल भगवान जगन्नाथ इस भव्य चांदी के रथ पर विराजमान होते हैं। पुरी की रथ यात्रा के बाद अहमदाबाद और फिर उदयपुर की रथ यात्रा को ही सबसे भव्य माना जाता है। आपको बता दें, 80 किलो चांदी से बना ये रथ 16 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 21 फीट ऊंचा है। वहीं भक्तों के द्वारा रथ के लिए दान किए गए चांदी के सिंहासन और दूसरे सामान को भी जोड़ दिया जाए तो चांदी का कुल भार 195 किलो हो जाता है।
1: रथ की चौड़ाई है 8 फीट, लंबाई है 16 फीट, ऊंचाई है 21 फीट। इसमें लगभग 80 किलो चांदी लगी हुई है और इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे लमाजमा है, रेवाड़ी है, सिंहासन है, इस तरह सारे आइटम करके 115 किलो चांदी सभी भक्तों के सहयोग से रथ समिति ने इस चीज को निर्माण में सहयोग किया।
0: उदयपुर के जगदीश मंदिर से ये भव्य रथ यात्रा निकलती है। उदयपुर के सिटी पैलेस के पास मौजूद जगदीश मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 17वीं सदी में मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर में सारा मेवाड़ बेहद आस्था के साथ सिर झुकाता है और उतनी ही आस्था के साथ शामिल होता है हर साल यहाँ से निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में, जिसके केंद्र में होता है ये चांदी का रथ और उस पर सवार भगवान जगन्नाथ।

0: चढ़ाने आते हैं। वैसे तो बाबा बैद्यनाथ धाम पूरे साल भर शिवमय रहता है और भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए हमेशा यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने की बात ही और है, क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। और खास बात ये भी है कि सावन में हर साल बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला लगता है, जिसका शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बैद्यनाथ धाम में इस बार श्रावणी मेला 31 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये मेला 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगा। इस दौरान कांवड़िए सुल्तानगंज से जल लेकर आएंगे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे सावन भर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए स्पर्श पूजा पूरी तरह बंद रहेगी और कांवड़िए अर्घा के माध्यम से यहां पर स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। वहीं हर साल की तरह इस साल भी श्रावणी मेले में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में देवघर में झारखंड और बिहार के सरकारी अफसरों की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें कांवड़ियों के आवागमन और मेले के इंतजामों को लेकर अहम फैसले किए गए।
1: जहां भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में समन्वय स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफी मुद्दों पर बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्प का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है वो आपस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन और बढ़िया से।
0: बताया गया है कि मेले में भीड़ पर नियंत्रण के लिए अलग अलग स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रही हैं। कांवड़ियों के ठहरने, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था होगी, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार श्रावणी मेले के दौरान कांवड़ियों की डबल डेकर गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।
2: सबसे ज्यादा मेजर इशू था ये डबल डेकर जो गाड़ी, जो मॉडिफाइड गाड़ी आती है उसके लिए, तो मॉडिफाइड गाड़ी के बारे में अभी हुआ कि आप अभी से ही बिहार साइड में ही अभी से प्रचार हो कि मॉडिफिकेशन हो ही ना, यहाँ पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ से इनिशिएट ही नहीं हो, इसके बारे में चर्चा हो और उन्होंने इस बारे में अभी से ही कार्रवाई करने के बारे में।
0: ये भी तय किया गया है कि अब सुल्तानगंज से हर दिन जल उठाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी पहले से ही देवघर और दुमका जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों के बेहतर उपयोग में काफी सुविधा होगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी जिलों में तालमेल बिठाकर इंतजाम किए जाएंगे, ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से देवघर पहुंचकर बाबा को जल अर्पित कर सके। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
2: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
1: or want to catch your team's live play-by-play.

0: It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: फेनाइयों की मधुर गूंज, ढोल ताशों के साथ बैंड बाजी की धुन, नाचते गाते बाराती, ऊंट पर सवार दूल्हा और चुनरी ओढ़े दुल्हन। पहली नजर में ये किसी सामान्य विवाह समारोह का नजारा लगता है और ये विवाह उत्सव है भी, लेकिन थोड़ा अनोखा। राजस्थान में पाली जिले के बाड़सा गांव में ये विवाह महोत्सव 3 दिनों तक धूमधाम से चला, जहां पर देखिए एक और बछड़े का विवाह बछड़ी से कराया गया। दूल्हा बना बछड़ा ऊंट पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचा और दुल्हन बनी बछड़ी को कानों में कुड़की और पैरों में पैजेब पहनाकर सुंदर ढंग से बिल्कुल सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार रस्में और पूरे रीति रिवाज के अनुसार ये शादी संपन्न की गई। यहां बछड़ा बछड़ी के साथ ही बड़ और पीपल के पौधों की भी शादी कराई गई बाकायदा, जिसमें पीपल के पौधे को चुनरी ओढ़ाकर दुल्हन का रूप दिया गया। इस अनोखे आयोजन ने हर किसी का मन मोह लिया। 3 दिनों तक पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस आयोजन ने वर्षों पुरानी लोक परंपरा को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। ग्रामीणों ने इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि गौ संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश देने वाला आयोजन बताया। तस्वीरें देखिए, विवाह समारोह में गांव के अलावा अगर हम देखें आसपास के इलाकों से भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। तस्वीरें देखिए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
2: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमकर हो रही है बारिश, प्रदेश के कई जिलों में 22 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। सैलानियों से प्रशासन की अपील, मौसम से जुड़ी एडवाइजरी का करें पालन। हिमाचल की मंडी से अब महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा चंडीगढ़ तक का सफर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ, ₹3500 होगा हेलीकॉप्टर का किराया। देवभूमि में धूमधाम से जा रही है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन, खराब मौसम के बावजूद आस्था परंपरा। दलाई लामा के 51वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन, विश्व शांति सद्भावना और मानवता का संदेश। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान, 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह को भी मिला मौका।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं बल्कि यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो ये तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान के शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज जो 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे उसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पुलिस से पिट रहा शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। ये शख्स भगवान श्री राम के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और इसकी जमकर पिटाई की गई। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, करेंगे आगे पड़ताल। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पासपोर्ट चोरी होने के कारण आगरा में मजदूरी करने को मजबूर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंडरसन। इस वायरल दावे की सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में पुलिसकर्मी एक युवक को थाने में जमकर पीट रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस से पिट रहा शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता सुरेश जाटव है, जो भगवान श्री राम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसे पीटा। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
5: पुलिस स्टेशन का ये दृश्य है जहां एक शख्स हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन पुलिस के जवान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक लाठियों की बरसात की जा रही है। मानो ये तय करके आए हैं आज इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसकी गलती माफी लायक नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के दावे पर यकीन करें तो पुलिस से पिट रहा ये शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता सुरेश जाटव है, जो भगवान श्री राम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक युवक को थाने में जमकर पीटा जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पुलिस से पिट रहा यह शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता सुरेश जाटव है, जो भगवान श्री राम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने इसे पीटा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसकी पड़ताल जरूरी हो गई थी, तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना भी। इस दौरान हमें बैकग्राउंड में आ रही जो आवाजें सुनाई दी वो मराठी जैसी लग रही थी। इसके अलावा वायरल हो रहे वीडियो के क्वालिटी को देखने से ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल का वीडियो नहीं है। साथ ही साथ वीडियो में पुलिसकर्मियों के चेहरों पर मास्क लगा हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये कि वीडियो कोरोना के समय का हो सकता है, क्योंकि सर्च के दौरान हाल फिलहाल में हमें इस दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में इस वीडियो के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित पुराने वीडियो को नया एंगल देकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
5: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 28 मई 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना महाराष्ट्र के जालना जिले की थी, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सचिव शिवराज नारियलवाले की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की थी। दरअसल अप्रैल 2021 में जालना के एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ किया। जब पुलिस भीड़ को हटा रही थी तब शिवराज वहां इस घटना का वीडियो बना रहे थे। इसी बात से नाराज हुए पुलिसकर्मियों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी थी। पड़ताल के दौरान 28 मई 2021 को एक YouTube चैनल पर अपलोड की गई वीडियो रिपोर्ट में भी यह वीडियो मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि यह घटना महाराष्ट्र के जालना स्थित दीपक अस्पताल की है, जहां भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी शिवराज नारियल वाले को पुलिस ने लाठियों से पीटा था। रिपोर्ट में पीड़ित व्यक्ति का बयान भी मिला। इस मामले को लेकर 27 मई 2021 को एक समाचार एजेंसी ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद हैं। बतौर रिपोर्ट जालना पुलिस थाने के इंस्पेक्टर प्रशांत महाजन ने बताया था कि 10 अप्रैल को एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की थी। उन्हें अस्पताल से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया था। पड़ताल के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर 29 मई 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में आरोपी 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि भीम आर्मी कार्यकर्ता की पिटाई के दावे से वायरल हुआ यह वीडियो 5 साल पुराना है। यह वीडियो महाराष्ट्र का है, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने लाठियों से पीटा था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि आगरा घूमने आए ऑस्ट्रेलियन नागरिक एंडरसन का पासपोर्ट और दूसरा सामान चोरी हो गया, जिसके चलते उसे ईंट भट्टे पर मजदूरी करनी पड़ रही है। इस वायरल वीडियो के जरिए लोग ये अपील कर रहे हैं कि जिसने भी इसका सामान लिया है कृपया इंसानियत दिखाएं और वापस लौटा दें। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो क्या सच और झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
6: आगरे का ताजमहल देखना आया था, इसका वीजा पासपोर्ट मेरा बैग आगरे का चोरी होगा, आज इस भाई को मजबूरी करनी पड़ रही है।
7: सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक का बताकर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक को ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के एंडरसन को आगरा में सामान और पासपोर्ट चोरी होने के बाद मजदूरी करनी पड़ रही है। यूजर्स इसे देश को शर्मसार करने वाली घटना बताकर कथित रूप से चोरी किया गया एंडरसन का सामान लौटाने की भी अपील कर रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अतिथि देवो भव के देश से आई इस तस्वीर ने सभी को शर्मसार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया से भारत की संस्कृति और खूबसूरती को निहारने आए एंडरसन नाम के एक विदेशी पर्यटक के साथ आगरा में एक बेहद दुखद और शर्मनाक वाकया पेश आया है। आगरा घूमने के दौरान चोरों ने एंडरसन का पासपोर्ट, सारे पैसे और उसका पूरा सामान पार कर दिया। विदेशी धरती पर सब कुछ खो जाने के बाद एंडरसन पूरी तरह लाचार हो गए। हालात ये हो गए हैं कि अब उन्हें दो वक्त की रोटी और अपना पेट भरने के लिए एक ईंट के भट्टे पर कड़ा शारीरिक श्रम और मजदूरी करनी पड़ रही है। जिस सैलानी का स्वागत पलकों पर होना चाहिए था, वो आज दाने दाने को मोहताज है। हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये प्रशासन तक पहुंचे। साथ ही जिसने भी इसका सामान चुराया है, कृपया इंसानियत के नाते इसका पासपोर्ट और सामान लौटा दें, ताकि ये मासूम विदेशी नागरिक अपने वतन सुरक्षित वापस लौट सके।
6: देखो भाई, इसका नाम एंड्रू सन।
7: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है और वीडियो में एक युवक को ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एंडरसन को आगरा में सामान और पासपोर्ट चोरी होने के बाद मजदूरी करनी पड़ रही है। यूजर्स इसे देश को शर्मसार करने वाली घटना बताकर कथित रूप से चोरी किया गया एंडरसन का सामान लौटाने की भी अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा और वीडियो को देखने पर ऐसा लग रहा है कि इसके जरिए गलत दावा किया जा रहा है। जिस शख्स को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बताया जा रहा है, वो शख्स इतनी निपुणता से ईंट को ऊपर फेंक रहा है, उससे ये इशारा मिल रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नहीं हो सकता। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि युवक आगरा में ताजमहल देखने आया था, जहां पर उसका सामान चोरी हुआ और इस आधार पर हमने आगरा ताजगंज थाने के प्रभारी जसवीर सिंह से संपर्क भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अगर किसी पर्यटक का सामान चोरी होता है तो वो पुलिस में शिकायत जरूर करता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी मामला सामने नहीं आया। इसके अलावा यदि किसी भी विदेशी नागरिक का पासपोर्ट भारत में खो गया है या फिर चोरी हो गया, तो उसे मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कानूनन वो अपने देश के दूतावास से संपर्क करके तुरंत आपातकालीन पासपोर्ट या फिर यात्रा दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ सर्च के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है, वो अपने रंग के कारण चर्चा में नजर आया है। दरअसल त्वचा और बालों को रंग मेलानिन नामक के एक पिगमेंट से मिलता है और इसका प्राथमिक कार्य सनस्क्रीन की तरह हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण से त्वचा की रक्षा करना है। कुछ लोगों में ये बहुत कम होता है, जिससे उनकी त्वचा, बाल और आंखें बहुत पीली होती हैं। हो सकता है कि ये शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ हो, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो जिसमें नजर आ रहा जो शख्स है, उसकी पहचान क्या है? हमारा दूसरा सवाल ये कि अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई? तीसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही? सच और झूठ क्या इस रिपोर्ट में देखिए।
6: इसका नाम एंड्रू सर।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये वीडियो नहीं मिला जहां वायरल दावे की पुष्टि की गई हो। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर अकाउंट पर पोस्ट किया गया एक वीडियो मिला। इसे 25 जून 2026 को अपलोड किया गया था। इसमें इनसेट में वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट देखने को मिले। जानकारी के अनुसार एंडरसन के दावे से जिस युवक की कहानी वायरल हो रही है वो यूपी के बागपत जिले के काठा गांव का है और उसका नाम साहिल जेशवाल है। वीडियो में साहिल कह रहा है कि ये सब फेक है और मुंशी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था।
0: कहाँ के हैं आप, बताइए अपने बारे में।
8: बागपत जिला यूपी काठा से।
0: बागपत जिला के हैं, यूपी से है। तो आप तो ऑस्ट्रेलिया के बताया जा रहे हैं।
8: नहीं, ये सब फेक न्यूज
0: है। फेक न्यूज है। कौन है वीडियो बना के वायरल किया है?
8: भट्टे में मुंशी ने बना दी थी।
0: मुंशी ने बना दिया था।
7: साहिल ईट भट्टे पर काम करता है। इस अकाउंट से साहिल के कुछ और वीडियोस भी देखने को मिले। 16 फरवरी 2025 को साहिल की ईट भट्टे पर मजदूरी करने का एक और वीडियो पोस्ट किया गया था। एक इंस्टाग्राम यूजर ने 25 जून 2026 को वायरल वीडियो के बारे में जानकारी पोस्ट की है। इसमें वायरल क्लिप को भी देखा जा सकता है। वीडियो में एंडरसन के नाम से वायरल किए जा रहे युवक और उसके भाई ने इसे फेक बताया है। हमारी पड़ताल में मिले साक्षियों से स्पष्ट है कि वायरल वीडियो में मौजूद व्यक्ति का नाम साहिल है और वो यूपी के बागपत का रहने वाला है। आगरा में पासपोर्ट चोरी होने से ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंडरसन के मजदूरी करने का दावा बेबुनियाद है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में। दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today. Come on.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
10: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: और वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
13: इंसानियत की मिसाल पेश करने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी क्षेत्र में स्कूल के एक वार्डन ने तेज बुखार से पीड़ित छात्रा को समय पर इलाज दिलाने के लिए करीब 6 किलोमीटर तक अपनी पीठ पर उठाकर पैदल सफर तय किया। इस भावुक पल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पर लोग इमोशनल कमेंट कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल वार्डन हेमा बीमार छात्रा को अपनी पीठ पर लेकर पहाड़ी और जंगल वाले कठिन रास्ते से गुजरती दिखाई दे रही है। बताया गया कि इलाके में वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद छात्रा को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का फैसला किया। करीब 6 किलोमीटर लंबे सफर में श्रीमती हेमा ने उबड़ खाबड़ रास्तों और पहाड़ियों को पार किया। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि छात्रा को बिना देर किए इलाज मिल सके।
14: अखियां मेरे पूछ रही है तुमको, मेरे चैन नहीं है कि थी लड़ाइयां में, तुम अखियां की थी लड़ाइयां में।
13: इंटरनेट पर अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के वांचो समुदाय की 3 नन्ही बच्चियों का एक वीडियो तेजी से तहलका मचा रहा है। अपनी कमाल की गायकी, जबरदस्त डांस मूव्स और गजब के स्वैग से इन बच्चियों ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है।
14: अखियां मेरे पूछ रही है तुमको, मेरे चैन नहीं है कि
13: जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जा रही है। वीडियो का बैकग्राउंड भी बेहद खूबसूरत है, जहां अरुणाचल की हरी भरी वादियां दिखाई दे रही है। इन हसीन वादियों के बीच तीन छोटी बहनों को बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाना और थिरकना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है।
14: Okay.

0: ছে কমবে
1: इन दिनों एक नन्ही बच्ची का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग उसकी प्यारी आवाज और आत्मविश्वास की खूब तारीफ कर रहे हैं। वायरल वीडियो में छोटी बच्ची नीले रंग की फ्रॉक पहने बेहद मासूम अंदाज में बैठी दिखाई देती है। उसके हाथ में एक छोटा सा गिटार है, जिसे बजाते हुए वो गाना गाती है। उसकी मीठी आवाज, मासूम मुस्कान और गाने का अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले कई यूजर्स का कहना है कि बच्ची की सादगी और आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो किसी बड़े कलाकार या मजेदार कॉमेडियन का नहीं, बल्कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चों का है। बच्चों की मासूमियत और उनकी अलग सोच ने इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया है। जो भी इसे देख रहा है वे अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा। वीडियो में एक स्कूल की क्लास का नजारा दिखाई देता है। टीचर बच्चों को एक आसान सा काम देते हैं। उनसे कहा जाता है कि वे भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की ड्राइंग बनाएं। सुनने में यह काम बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में मोर बनाकर दिखाते हैं तब असली मजा शुरू होता है। हर बच्चे ने अपनी कल्पना के हिसाब से मोर बनाने की कोशिश की। किसी ने उसकी गर्दन इतनी लंबी बना दी कि वह जिराफ जैसी लगने लगी। किसी ने पंखों को ऐसे बना दिया कि उन्हें देखकर समझ ही नहीं आता कि यह मोर है या कोई दूसरी चिड़िया। कुछ बच्चों ने तो मोर का आकार और रंग भी अपनी पसंद के हिसाब से बना दिए। उनकी ड्राइंग देखकर साफ समझ आता है कि उन्होंने किताबों की तस्वीर की नकल करने के बजाय अपने दिमाग में जो तस्वीर बनाई उसे ही कागज पर उतार दिया। सबसे मजेदार बात यह रही कि बच्चों की इन अनोखी ड्राइंग्स को देखकर टीचर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। क्लास का माहौल हल्का फुल्का और खुशियों से भर गया। बच्चों के चेहरे पर भी अपनी बनाई तस्वीर दिखाने की खुशी साफ नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों की आंखों को नम और दिलों को खुश कर दिया है। एक कमर्शियल पायलट बेटे ने जब पहली बार अपनी माँ को प्लेन में बतौर कैप्टन सफर कराया तो वह पल बेहद भावुक कर देने वाला बन गया। वीडियो की शुरुआत में तपेश बोर्डिंग गेट पर खड़े होकर अपनी फ्लाइट के एक बेहद खास मेहमान का इंतजार करते दिखते हैं। जैसे ही उनकी माँ प्लेन में चढ़ने के लिए आगे बढ़ती हैं, दोनों के चेहरे की मुस्कान और एक दूसरे को गले लगाने का अंदाज यह बता देता है कि यह सफर दोनों के लिए कितना खास है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उड़ान भरने से पहले दोनों ने प्लेन के सामने एक शानदार तस्वीर खिंचवाई और फिर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए, जहां पहुंचने के बाद इस माँ बेटे की जोड़ी ने साथ में बेहतरीन समय बिताया। तपेश अपनी माँ को एक आलीशान होटल में ले गए। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे माँ ने अपनी जिंदगी में पहली बार स्विमिंग पूल का आनंद लिया और होटल में लजीज खाने का लुत्फ उठाया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इन दोनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स सिर के बल लगातार सीढ़ियां चढ़ते हुए अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता नजर आ रहा है। यह कारनामा देखकर लोग भी दंग रह गए और वीडियो पर तरह तरह के कॉमेंट आ रहे हैं। इस वीडियो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो में चीन के ली किंगबो बिना हाथों का सहारा लिए सिर के बल लगातार 40 सीढ़ियां चढ़ते दिखाई देते हैं। इसी के साथ उन्होंने इस अनोखे कारनामे का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया। बारिश का मौसम शुरू होते ही छाते की जरूरत पड़ती है, लेकिन छाता पकड़कर चलना कई बार मुश्किल हो जाता है। एक हाथ में छाता, दूसरे में बैग या मोबाइल और कभी कभी बच्चे को संभालना, ये सब बहुत परेशान करने वाला होता है। अब इस समस्या का क्रांतिकारी समाधान सामने आ गया है। कनाडा के इंजीनियर जॉन ने एक ऐसा उड़ने वाला छाता बनाया है जो हाथ में पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने देगा। यह फ्लाइंग अम्ब्रेला ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें डेप्थ सेंसिंग कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है, जो मालिक को पहचान लेता है और लगातार उसके सिर के ऊपर उड़ता रहता है। व्यक्ति जहां भी जाएगा छाता उसके साथ साथ चलेगा, यानी हाथ पूरी तरह फ्री रहेंगे। छाता बनाने वाले जॉन से के अनुसार यह प्रोटोटाइप धूप में छांव और हल्की बारिश में सुरक्षा दे सकता है। अभी एक बैटरी चार्ज पर यह 10 से 15 मिनट तक हवा में रह सकता है। यह अभी रिसर्च और डेवलपमेंट स्टेज पर है और बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी वायरल तस्वीरों और वीडियो ने दुनिया भर में चर्चा मचा दी है। सोशल मीडिया पर लोग इसे भविष्य की तकनीक बता रहे हैं। कभी कभी खुशियाँ बहुत छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। एक प्यारी सी पूंछ का हिलना, मासूम आंखों की चमक, या फिर किसी ऐसे जीव का मुस्कुराता चेहरा जिसे आखिरकार अपना घर मिल गया हो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो भी कुछ ऐसी ही भावनाओं से भरा है। इसमें गोद लिए गए कुत्ते का पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन यह सिर्फ केक और सजावट की कहानी नहीं है। यह उस भरोसे, प्यार और अपनेपन की कहानी है जिसने एक बेघर कुत्ते की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुत्ता अपने परिवार के बीच बैठा है। जब मालिक ने उसके सामने जन्मदिन का केक रखा, उसके चेहरे पर खुशी के आंसू थे, मानो वो उन सब का धन्यवाद कर रहा हो कि उन्होंने उसे अपना लिया। परिवार के सदस्यों ने न केवल उसे खाना दिया बल्कि उसे गले लगाकर वह एहसास कराया कि अब वह इस घर का एक अहम हिस्सा है। इस छोटे से गोलू मोलू पांडा ने अपने अंदाज से इंटरनेट पर ऐसी महफिल जमा दी है कि लोग बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैग लेन के नाम से जानते हैं। हुआ यूं कि एनरिचमेंट सेशन के दौरान केयरटेकर ने पांडा के साथ थोड़ी मस्ती करने का सोचा। उन्होंने एक विग पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलेन अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था कि आखिर केयरटेकर क्या करने वाला है। माहौल में सस्पेंस था। पांडा को लग रहा था कि केयरटेकर उसके सामने डांस करने वाला है और इसके लिए उसने इशारा भी किया। तभी केयरटेकर एक फिल्मी अंदाज में डांस करने लगता है। तभी अचानक अपने सिर से विग को हवा में उछाल दिया और अचानक उनका चमकता हुआ गंजा सिर फिर सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आई ट्विस्ट को देखकर मैंगलेन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वह पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू कैसे हुआ। वह इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो यह प्रैंक किया, उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़। और
1: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
0: Good news today is really good. It's in this case, right? It's the news of the news. And it's not a chill. It's not a chill.
3: शहनाइयों की मधुर गूंज, ढोल ताशों के साथ बैंड बाजी की धुन, नाचते गाते बाराती, ऊंट पर सवार दूल्हा और चुनरी ओढ़े दुल्हन। पहली नजर में ये किसी सामान्य विवाह समारोह का नजारा लगता है और ये विवाह उत्सव है भी, लेकिन थोड़ा अनोखा। राजस्थान में पाली जिले के बाड़सा गांव में ये विवाह महोत्सव 3 दिनों तक धूमधाम से चला, जहां पर देखिए एक और बछड़े का विवाह बछड़ी से कराया गया। दूल्हा बना बछड़ा ऊंट पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचा और दुल्हन बनी बछड़ी को कानों में कुड़की और पैरों में पैजेब पहनाकर सुंदर ढंग से बिल्कुल सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार रस्में और पूरे रीति रिवाज के अनुसार ये शादी संपन्न की गई। यहां बछड़ा बछड़ी के साथ ही बड़ और पीपल के पौधों की भी शादी कराई गई बाकायदा, जिसमें पीपल के पौधे को चुनरी ओढ़ाकर दुल्हन का रूप दिया गया। इस अनोखे आयोजन ने हर किसी का मन मोह लिया। 3 दिनों तक पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस आयोजन ने वर्षों पुरानी लोक परंपरा को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। ग्रामीणों ने इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि गौ संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश देने वाला आयोजन बताया। तस्वीरें देखिए, विवाह समारोह में गांव के अलावा अगर हम देखें आसपास के इलाकों से भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। तस्वीरें देखिए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ। धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ।
0: से कम लोगों को खबरें।
2: हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमकर हो रही है बारिश, प्रदेश के कई जिलों में 22 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। सैलानियों से प्रशासन की अपील, मौसम से जुड़ी एडवाइजरी का करें पालन। हिमाचल की मंडी से अब महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा चंडीगढ़ तक का सफर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ, 3500 रुपए होगा हेलीकॉप्टर का किराया। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन, खराब मौसम के बावजूद आस्था परंपरा। दलाई लामा के 51वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन, विश्व शांति सद्भावना और मानवता का संदेश। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान, 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह को भी मिला मौका।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। तो जेएनटी स्पेशल में आज बात आस्था की यात्रा से जुड़ी। इस समय देश में कई धार्मिक यात्राओं उत्सवों का दौर चल रहा है। पिछले कई हफ्तों से चारधाम यात्रा चल ही रही थी। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ भी हमने देखा। तो वहीं 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का भी श्री गणेश हो गया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली है अमरनाथ धाम से जुड़ी, दूसरी जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई और तीसरी देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम की तस्वीर। पिछले 4 दिनों से अमरनाथ यात्रा मार्ग पर आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। खूबसूरत वादियों में बोलबम का जय घोष है। 3 जुलाई की सुबह से बाबा बर्फानी के भक्तों के जोश जज्बे से भरी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। इसी बीच झारखंड के देवघर में मौजूद बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जब आस्था की एक और यात्रा कांवड़ यात्रा का श्री गणेश होगा, लेकिन उससे पहले अब से ठीक 10 दिन बाद पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज होने वाला है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा एक अनोखा उत्सव है, जब भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारते हैं। पुरी में चारों तरफ आस्था का जन समुद्र नजर आता है। जगन्नाथपुरी में भगवान की रथ यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होता है, जिसमें अब बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पुरी और दिखाते हैं तैयारी जगन्नाथ यात्रा की।

0: नगरी के लिए इस लकड़ी का हर टुकड़ा पूजनीय है। लकड़ी पर पड़ती औजार की हर चोट आस्था का जयघोष है। चोट से निकलती हर ध्वनि शंखनाद सी पवित्र है, क्योंकि ये ध्वनि संकेत है कि जगन्नाथ प्रभु के पधारने की घड़ी अब समीप आ चुकी है। पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए भव्य रथ बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है।
1: अभी रथ का शेष पर यह काम चल रहा है, जो रथ के चारों तरफ चार चार द्वार भरा जो है, अभी तीनों बन चुका है और एक बनना बाकी है। अभी रथ के ऊपर का काम जो है, पोटल बाढ़धरा पोटल लगाया गया है, उसके बाद जो 13 परस्त पोटल में 12 परस्त पोटल और पारावाड़ी वो सब लगाया जाएगा। उसके बाद कलश का काम भी अभी चल रहा है, कलश का पिंडी और पकुड़ा वो अभी तैयार हो रहा है। उसको तैयार करने के बाद उसके ऊपर टीन का छप्पर डालने के बाद और चित्रकार लोगों को दिया जाएगा, वो चित्र करेंगे। अभी जो द्वार का जो नाटगोड़ है उसका खुदाई अभी रूपकार सेवक के द्वारा हो रहा है।
0: पुरी में भव्य रथ यात्रा का संयोग भले ही आषाढ़ के महीने में बनता है, लेकिन रथ के निर्माण और उसके श्रृंगार की यात्रा कई महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। भगवान का ये रथ महीनों के कठिन परिश्रम और तपस्या के बाद तैयार होता है।
2: आप देख सकते हैं काम अब तेजी से चल रहा है, काम अभी तेजी से पूरा चल रहा है। कैसे काम में पूरा जो कारीगर लोग हैं यहाँ पूरा काम में जुटे हुए हैं। ये रथ खला है और रथ कला में मैं मौजूद हूँ, आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ, कैसे रथ का पहिया का काम खत्म हो चुका है, ये रथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बन रहा है और इसके बाद और जो काम है वो काम आहिस्ता आहिस्ता काम हो ही जाएगा। आप ये देख सकते हैं, मैं रथ का विजुअल भी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो जगन्नाथ मंदिर के पास पूरा 3 रथ अब एक जो इसका जो बड़ी पार्ट है यह बन चुका है। आप देख सकते हैं 3 रथ मौजूद हैं, ये 1, 2 और 3, ये पूरा 3 रथ यहाँ तैयार हो चुका है। बड्डी का जो है पार्ट, ये पार्ट बन चुका है और इसमें जो जो पार्ट अभी लगेगा ये काम के लिए पूरा जो कारीगर लोग हैं ये लगे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे मार्किंग हो रहा है, पहिया कहीं पे, ये रथ का अलग जो हिस्सा, बाहर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा, जो जो हिस्सा है और इसका डिजाइनिंग कलर, ये सब काम के लिए पूरा कारीगर लोग हैं वो लगे हुए हैं।
0: हर साल सैकड़ों कारीगर मिलकर इन 3 रथों को तैयार करते हैं। जब तक रथ बन नहीं जाता तब तक उसे बनाने वाले सभी कारीगर और कलाकार सात्विक तरीके से रहते हैं। आस्था की ये पूरी यात्रा समाज को एक सूत्र में पिरो देती है। पुरी में रहने वाले महाराणा परिवार पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। परिवार की हर पीढ़ी से एक सदस्य रथ निर्माण में सेवा देने का दायित्व उठाता है। भले ही वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, कोई भी काम करता हो, लेकिन रथ निर्माण के समय यहाँ सेवा देने जरूर पहुँच जाता है।
1: देखिए, ये सेवा है, भगवान जी को बनाने का, रथ बनाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तो मैं बोलूँगा जो हर विश्वकर्मा सेवक ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन महाप्रभु को तिर कर तैयार करना, हर साल रथ बनाना किसी के नसीब में ही आता है। तो हमारे नसीब में हर साल, हम उसी परिवार में जन्म ग्रहण किए हैं, उनके सेवा के लिए साड़ी बनाया है, तो उनकी सेवक के रूप में आज जीवन भर हमें रहना है और हर साल एक सेवा हमें प्रदान करना है। हमारे बाद हमारे नेक्स्ट पीढ़ी जो हमारे बच्चे आएंगे वो भी ये काम करेंगे, चाहे कोई भी नौकरी करे या कोई भी व्यवसाय करे, लेकिन यहाँ सेवा करना जरूरी है। तो ये बाउंड है, आप करना, आपको ही करना है और कोई दूसरा नहीं कर सकता।
0: हर साल की तरह इस बार भी अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर पुरी में रथों के निर्माण की शुरुआत हुई थी। जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर 3 रथों को बनाने के लिए वर्कशॉप मौजूद है, जहां इन रथों को बेहद मेहनत और श्रद्धा के साथ तैयार किया जाता है। इन रथों के निर्माण में 12 तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिनमें आसन, धौरा और फांसी नाम की लकड़ियों का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। आसन की लकड़ी से रथ का मुख्य खम्बा यानी डंडा बनता है, फांसी से 3 रथों के पहिए बनाए जाते हैं, तो वहीं धौरा से रथों के दूसरे कलात्मक हिस्से तैयार किए जाते हैं। इस बार भी 7 तरह की कलाओं में निपुण 200 से ज्यादा कारीगर रथों के निर्माण में पूरी आस्था के साथ जुटे हैं।
1: कुल 200 से ऊपर कारीगर लगे हुए हैं, 7 तरह के कारीगर लगते हैं एक एक रथ बनाने के लिए। पहले चरण में मुख्य भूमिका यहाँ कारीगर लोग जो विश्वकर्मा सेवक लोग महाराणा लोग लेते हैं, उनके सहयोगी रूप में भोई सेवक रहते हैं। तो तीसरे कारीगर में आते लोहार जो लोहे का कांटा वगैरह रथ के लिए बनाते हैं, और रूपकार जो खुदाई का काम करते हैं, कार्विंग का काम करते हैं। उसके बाद चित्रकार आएंगे, उसके बाद दर्जी आएंगे जो कपड़े का काम करते हैं, रथ के ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है उसको, उसके बाद जो कपड़ा डालेंगे जो ऊपर के कलश लगाएंगे कोठोसवासी सेवक है उनका काम आएगा। इस तरह के 7 तरीके के कारीगर मिलकर एक रथ बनाते हैं।
0: यानी हुनर के आधार पर कारीगरों की जिम्मेदारियां तय हैं। ढांचे का निर्माण, कार्विंग, चित्रकारी, रंग रोगन, कलश स्थापना और भगवान की पोशाक बनाने की जिम्मेदारी अलग अलग कारीगरों में बटी हुई है। यहाँ तक कि रथों के निर्माण में काम आने वाली कीलें बनाने के लिए भी अलग कारीगर हैं, जो भगवान के विशाल काय रथों के लिए 2 इंच से लेकर 4.5 फीट तक की कीलें तैयार करते हैं।
3: यह कील देखिए 16 mm की, ये जो कील है ये चेसिस में रहता है, ये जैसे नट बोल्ट है वो घुमा के इसको अंदर देते हैं, ये ऊपर बांध के रखेगा, ये नीचे ऐसे पलटा के ये बांध के रखेगा, ये जाने में मैंने सकपचर जैसे काम करता है, ये कील ऐसे ही बनता है।
2: सबसे बड़ा कील जो है,
3: सबसे बड़ा कील दिखा रहे हैं हम आपको,
2: ये कील देखिए,
3: ये देखिए ये कील है, ये 4.5 फुट की कील, ये जब भी ऊपर ये सबसे ऊपर लगता है, ये 13 परस पोटोल है, उसको बोलते हैं पोटोल, उस पे पूरा घुसा में पूरा भेद के जाएगा नीचे तक।
0: यात्रा में दिन कम बचे हैं और काम ज्यादा, लेकिन टाइम टेबल इस तरह बनाया गया है कि रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले यानी 15 जुलाई को ये तीनों रथ जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में संसार की सबसे खास सवारियों को बैठाने के लिए सजे धजे तैयार खड़े नजर आएंगे।
4: जुलाई 15 तारीख को ये सब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों रथ का काम यहाँ पर चल रहा है, हर कारपेंटर ज़्यादा खुश होकर काम कर रहे हैं। रथ और जो काम बाकी है, जितना दिन हमारा हाथ में है, इस दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा।
0: जगन्नाथ के जयकारों के बीच रथों के निर्माण का काम अब अंत की ओर बढ़ रहा है। इंतजार उस दिन का है जब इन दिव्य रथों में सवार होकर जगत के नाथ अपना जग देखने निकलेंगे और सारी पूरी नगरी आस्था के उत्सव में रम जाएगी। लेकिन उससे पहले फिलहाल वर्कशॉप में रथों का निर्माण देखने के लिए भी रथ यात्रा से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथपुरी पहुंच रहे हैं।
2: हर तरह की इंतजाम हो रही है और भक्तों का यहाँ भीड़ भी हो रही है, यहाँ बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, आपको ये दिखाऊंगा। बहुत सारे भक्त यहाँ ये रथ का काम देखने के लिए, भगवान का ये अपूर्व लीला, ये रथ का काम देखने के लिए कई प्रांतों से जो भगवान को देखने के लिए आते हैं, भगवान का ये रथ का काम भी देखने के लिए यहाँ खड़े हो जाते हैं और भगवान का ये रथ का काम देखते हैं। खुशी लगता है कि भगवान का ये जो अपूर्व लीला, ये सालों में एक बार होता है, इसके लिए, इसको देखने के लिए, इसका सानिध्य लेने के लिए, एक बड़ा इसमें हिस्सा बनने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल रथ यात्रा कैसे मनाया जाएगा ये देखने के लिए बाकी है। पूरी संजय कुमार, गुड न्यूज टुडे।
5: पुरी के साथ साथ देश के कई और शहरों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी इन दिनों उत्साह के साथ जारी है। पुरी के बाद जिन शहरों में सबसे भव्य यात्रा का आयोजन होता है उनमें गुजरात के अहमदाबाद और राजस्थान के उदयपुर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उदयपुर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान को चांदी के रथ की सवारी करवाई जाती है। उदयपुर में इन दिनों कारीगर इस रथ को यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। 16 जुलाई को उदयपुर के जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ इसी शानदार रथ में सवार होकर यात्रा के लिए निकलेंगे।

0: नाथ वही है, आस्था भी वही, भक्त और भाव भी दूसरे नहीं, बस कुछ बदला है तो रथ। जहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ अपनी काया के समान ही काष्ठ यानी लकड़ी के रथ में विराजते हैं, वहीं उदयपुर में जगन्नाथ प्रभु को चांदी के रथ में सवारी करवाई जाती है। जिस तरह पुरी धाम में रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, ठीक वैसे ही इन दिनों राजस्थान के उदयपुर में भी जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। उदयपुर की रथ यात्रा में हर साल भगवान जगन्नाथ इस भव्य चांदी के रथ पर विराजमान होते हैं। पुरी की रथ यात्रा के बाद अहमदाबाद और फिर उदयपुर की रथ यात्रा को ही सबसे भव्य माना जाता है। आपको बता दें, 80 किलो चांदी से बना ये रथ 16 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 21 फीट ऊंचा है। वहीं भक्तों के द्वारा रथ के लिए दान किए गए चांदी के सिंहासन और दूसरे सामान को भी जोड़ दिया जाए तो चांदी का कुल भार 195 किलो हो जाता है।
1: रथ की चौड़ाई है 8 फीट, लंबाई है 16 फीट, ऊंचाई है 21 फीट। इसमें लगभग 80 किलो चांदी लगी हुई है और इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे लमाजमा है, रेवाड़ी है, सिंहासन है, इस तरह सारे आइटम करके 115 किलो चांदी सभी भक्तों के सहयोग से रथ समिति ने इस चीज को निर्माण में सहयोग किया।
0: जगदीश मंदिर से ये भव्य रथ यात्रा निकलती है। उदयपुर के सिटी पैलेस के पास मौजूद जगदीश मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 17वीं सदी में मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर में सारा मेवाड़ बेहद आस्था के साथ सिर झुकाता है और उतनी ही आस्था के साथ शामिल होता है हर साल यहाँ से निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में, जिसके केंद्र में होता है ये चांदी का रथ और उस पर सवार भगवान जगन्नाथ। बताया जा रहा है कि रथ यात्रा से एक हफ्ते पहले यानी 9 जुलाई को दर्जनों कारीगर मिलकर भगवान के इस रथ के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर इसे अंतिम रूप प्रदान करेंगे।
1: 8 तारीख को हम पूरे रथ यात्रा मार्ग को सजाएंगे और 9 तारीख को ठाकुर जी के रथ को अलग अलग जो भागों में है, जो 58 खंड में है, उन सबको जगदीश चौक में, जगदीश चौक प्रांगण में लाके सभी कार्यकर्ता के सहयोग से लगभग 100-100 कार्यकर्ता वहाँ लगेंगे और इसको जोड़ा जाएगा। और 16 जुलाई को जब निकलेगा रथ, एक अलग तरीके की छटा होगी, जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में जो रथ निकलता है, रथ यात्रा निकलती है, उसी अंदाज में, उसी तर्ज पे हमारे उदयपुर में भी निकलती है। नंबर 1 जगन्नाथपुरी है, नंबर 2 अहमदाबाद है, तीसरे नंबर पे हमारे उदयपुर में, और राजस्थान में नंबर 1 रथ यात्रा है।
0: अब भक्तों को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 16 जुलाई का बेसब्री से इंतजार है, जब भगवान जगन्नाथ अपने इस रजत रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और उनके आगे पीछे नाचते झूमते हजारों भक्त अनंत आस्था की इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब आपको लेकर चलते हैं भव्य दिव्य अमरनाथ धाम में, जहां आस्था और विश्वास की अद्भुत तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। हर रोज नए जत्थों की रवानगी के साथ ही अमरनाथ यात्रा मार्ग पर आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। अब तक 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। खास बात यह है कि अब युवाओं के बीच भी अमरनाथ यात्रा तेजी के साथ लोकप्रिय होती जा रही है। दरअसल अमरनाथ यात्रा के दौरान यहां के प्राकृतिक नजारे और रास्ते उन्हें एडवेंचर टूरिज्म का अनुभव दे रहे हैं और बड़ी संख्या में युवा यात्रा के लिए आ रहे हैं। आंकड़ों से समझा जाए तो अमरनाथ यात्रा के पहले 3 दिन में 56,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल से करीब 18.6% ज्यादा रहा। 2025 में पहले 3 दिन में 47,972 श्रद्धालु पहुंचे थे। आपको बता दें कि 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई है। 48 किलोमीटर लंबे नुनवान पहलगाम रूट और 14 किलोमीटर वाले छोटे लेकिन कठिन बालटाल रूट से लगातार यात्री दर्शन के लिए अमरनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के उत्साह को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने अब की बार यात्रा के लिए कई खास इंतजाम किए हैं। सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है, वहीं सुरक्षा के भी इंतजाम कड़े किए गए हैं। वहीं एक सौगात रेलवे की तरफ से यात्रियों को भी मिली है। श्रद्धालुओं के भारी उत्साह को देखते हुए रेलवे जम्मू से श्रीनगर के बीच में स्पेशल ट्रेन चला रहा है, जिससे यात्री आराम से बेस कैंप तक पहुंच सके। विशेष ट्रेन सेवा के अलावा तीर्थयात्रियों को आधार, KYC, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, भोजन और डिजिटल सर्विलांस जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिल रही हैं। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू से श्रीनगर के बीच में स्पेशल ट्रेन चलाए जाने को लेकर पैसेंजर्स काफी खुश हैं।
3: बहुत बहुत ही अच्छी सुविधा है, रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है। और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है, उससे और ज़्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुंच जा रहे हैं बिना किसी थकान के। हम लोग सुबह उतरे हैं और वहां से डायरेक्ट हम लोग यहां आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम यात्रा रहा।
4: मैं महाराष्ट्र मुंबई से आई हूँ और हम लोग यहाँ से वंदे भारत से आए। बहुत ही सुविधा सुंदर थी, जैसे हम लोग प्लेन में रहते तब जो सुविधाएं रहती है ऑलमोस्ट नियर बाय सुविधाएं ये थी, इसलिए ये जो प्रवास है वो सुखकर लगा।
5: मैं जलंधर पंजाब से आया हूँ और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करने में पहली बार आया हूँ। हमारी जो इंडियन आर्मी के जो भाई लोग हैं वो चप्पे चप्पे पे खड़े हैं।
6: अमृतसर से आ रहा हूँ और वंदे भारत ट्रेन प्लस जो सुविधाएं हैं, जो सिक्योरिटी है, उसको देख के अभी फील हो रहा है कि अभी कोई भी यहाँ पे डर नहीं है, आराम से आ सकते हैं और काफी अच्छा अरेंजमेंट है।
2: जगन्नाथ रथ यात्रा और अमरनाथ यात्रा के साथ ही तैयारी एक तीसरी यात्रा की भी है। सावन से पहले का महीना है आषाढ़ का महीना, जिसमें अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, लेकिन इसके बाद ही भगवान शिव का प्रिय सावन महीना भी आने वाला है, जिसके हर सोमवार को करोड़ों शिव भक्त बाबा भोले की ना केवल पूजा आराधना करते हैं, बल्कि दूर दूर से कांवड़ लाकर भगवान का जलाभिषेक भी करते हैं। और यही वजह है कि सावन महीने से पहले भोलेनाथ के धामों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने लगी हैं। इन धामों में देवघर के बाबा बैद्यनाथ का धाम भी है। झारखंड में स्थित इस धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है।
7: के बाद सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और झारखंड के देवघर में स्थित महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के धाम पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने वाली है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक श्रद्धालु सावन में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं। वैसे तो बाबा बैद्यनाथ धाम पूरे साल भर शिवमय रहता है और भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए हमेशा यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने की बात ही और है, क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। और खास बात ये भी है कि सावन में हर साल बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला लगता है।

0: बेसब्री से इंतजार रहता है। बैद्यनाथ धाम में इस बार श्रावणी मेला 31 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये मेला 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगा। इस दौरान कांवड़िए सुल्तानगंज से जल लेकर आएंगे और बाबा भोलेनाथ का जल अभिषेक करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे सावन भर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए स्पर्श पूजा पूरी तरह बंद रहेगी और कांवड़िए अर्घा के माध्यम से यहां पर स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। वहीं हर साल की तरह इस साल भी श्रावणी मेले में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में देवघर में झारखंड और बिहार के सरकारी अफसरों की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें कांवड़ियों के आवागमन और मेले के इंतजामों को लेकर अहम फैसले किए गए।
1: जहां भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में समन्वय स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उस पर समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफी मुद्दों पर बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्प का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है वो आपस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया से।
0: बताया गया है कि मेले में भीड़ पर नियंत्रण के लिए अलग अलग स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रही हैं। कांवड़ियों के ठहरने, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था होगी। उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार श्रावणी मेले के दौरान कांवड़ियों की डबल डेकर गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।
2: सबसे ज्यादा मेजर इशू था ये डबल डेकर जो गाड़ी, जो मॉडिफाइड गाड़ी आती है उसके लिए, तो मॉडिफाइड गाड़ी के बारे में अभी हुआ कि आप अभी से ही बिहार साइड में ही अभी से प्रचार हो कि मॉडिफिकेशन हो ही ना, यहाँ पर आने के बाद तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहाँ से इनिशिएट ही नहीं हो, इसके बारे में चर्चा हो और उन्होंने इस बारे में अभी से ही कार्रवाई करने के बारे में।
0: ये भी तय किया गया है कि अब सुल्तानगंज से हर दिन जल उठाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी पहले से ही देवघर और दुमका जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों के बेहतर उपयोग में काफी सुविधा होगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी जिलों में तालमेल बिठाकर इंतजाम किए जाएंगे, ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से देवघर पहुंचकर बाबा को जल अर्पित कर सके। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: शहनाइयों की मधुर गूंज, ढोल ताशों के साथ बैंड बाजी की धुन, नाचते गाते बाराती, ऊंट पर सवार दूल्हा और चुनरी ओढ़े दुल्हा।

पहली नजर में ये किसी सामान्य विवाह समारोह का नजारा लगता है और ये विवाह उत्सव है भी, लेकिन थोड़ा अनोखा। राजस्थान में पाली जिले के बाड़सा गांव में ये विवाह महोत्सव 3 दिनों तक धूमधाम से चला, जहां पर देखिए एक और बछड़े का विवाह बछड़ी से कराया गया। दूल्हा बना बछड़ा ऊंट पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचा और दुल्हन बनी बछड़ी को कानों में कुड़की और पैरों में पैजेब पहनाकर सुंदर ढंग से बिल्कुल सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार रस्में और पूरे रीति रिवाज के अनुसार ये शादी संपन्न की गई। यहाँ बछड़ा बछड़ी के साथ ही बड़ और पीपल के पौधों की भी शादी कराई गई बाकायदा, जिसमें पीपल के पौधे को चुनरी ओढ़ाकर दुल्हन का रूप दिया गया। इस अनोखे आयोजन ने हर किसी का मन मोह लिया। 3 दिनों तक पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस आयोजन ने वर्षों पुरानी लोक परंपरा को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। ग्रामीणों ने इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि गौ संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश देने वाला आयोजन बताया। तस्वीरें देखिए, विवाह समारोह में गांव के अलावा अगर हम देखें आसपास के इलाकों से भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। तस्वीरें देखिए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
2: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमकर हो रही है बारिश, प्रदेश के कई जिलों में 22 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। सैलानियों से प्रशासन की अपील, मौसम से जुड़ी एडवाइजरी का करें पालन। हिमाचल की मंडी से अब महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा चंडीगढ़ तक का सफर। मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ, 3500 रुपए होगा हेलीकॉप्टर का किराया। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन, खराब मौसम के बावजूद आस्था परंपरा। दलाई लामा के 51वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन, विश्व शांति सद्भावना और मानवता का संदेश। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान, 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह को भी मिला मौका।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं बल्कि यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो ये तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान के शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पुलिस से पिट रहा शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। ये शख्स भगवान श्री राम के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और इसकी जमकर पिटाई की गई। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, करेंगे आगे पड़ताल। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पासपोर्ट चोरी होने के कारण आगरा में मजदूरी करने को मजबूर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंडरसन। इस वायरल दावे की सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में पुलिसकर्मी एक युवक को थाने में जमकर पीट रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस से पिट रहा शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता सुरेश जाटव है, जो भगवान श्रीराम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसे पीटा। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
5: पुलिस स्टेशन का ये दृश्य है, जहाँ एक शख्स हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन पुलिस के जवान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक लाठियों की बरसात की जा रही है, मानो ये तय करके आए हैं आज इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसकी गलती माफी लायक नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के दावे पर यकीन करें तो पुलिस से पिट रहा ये शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता सुरेश जाटव है, जो भगवान श्री राम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक युवक को थाने में जमकर पीटा जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पुलिस से पिट रहा यह शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता सुरेश जाटव है, जो भगवान श्री राम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने इसे पीटा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसकी पड़ताल जरूरी हो गई थी, तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना भी। इस दौरान हमें बैकग्राउंड में आ रही जो आवाजें सुनाई दी वो मराठी जैसी लग रही थी। इसके अलावा वायरल हो रहे वीडियो के क्वालिटी को देखने से ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल का वीडियो नहीं है। साथ ही साथ वीडियो में पुलिसकर्मियों के चेहरों पर मास्क लगा हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये कि वीडियो कोरोना के समय का हो सकता है, क्योंकि सर्च के दौरान हाल फिलहाल में हमें इस दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में इस वीडियो के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित पुराने वीडियो को नया एंगल देकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
5: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 28 मई 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली, जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना महाराष्ट्र के जालना जिले की थी, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सचिव शिवराज नारियलवाले की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की थी। दरअसल अप्रैल 2021 में जालना के एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ किया। जब पुलिस भीड़ को हटा रही थी तब शिवराज वहां इस घटना का वीडियो बना रहे थे। इसी बात से नाराज हुए पुलिसकर्मियों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी थी। पड़ताल के दौरान 28 मई 2021 को एक YouTube चैनल पर अपलोड की गई वीडियो रिपोर्ट में भी यह वीडियो मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि यह घटना महाराष्ट्र के जालना स्थित दीपक अस्पताल की है, जहां भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी शिवराज नारियल वाले को पुलिस ने लाठियों से पीटा था। रिपोर्ट में पीड़ित व्यक्ति का बयान भी मिला। इस मामले को लेकर 27 मई 2021 को एक समाचार एजेंसी ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद हैं। बतौर रिपोर्ट जालना पुलिस थाने के इंस्पेक्टर प्रशांत महाजन ने बताया था कि 10 अप्रैल को एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की थी। उन्हें अस्पताल से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया था। पड़ताल के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर 29 मई 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में आरोपी 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि भीम आर्मी कार्यकर्ता की पिटाई के दावे से वायरल हुआ यह वीडियो 5 साल पुराना है। यह वीडियो महाराष्ट्र का है, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने लाठियों से पीटा था। इनफैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि आगरा घूमने आए ऑस्ट्रेलियन नागरिक एंडरसन का पासपोर्ट और दूसरा सामान चोरी हो गया, जिसके चलते उसे ईंट भट्टे पर मजदूरी करनी पड़ रही है। इस वायरल वीडियो के जरिए लोग ये अपील कर रहे हैं कि जिसने भी इसका सामान लिया है कृपया इंसानियत दिखाएं और वापस लौटा दें। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो क्या सच और झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
6: नाम आगरे का ताजमहल देखना था, इसका वीजा पासपोर्ट मेरा बैग आगरे का चोरी होगा, आज इस भाई को मजबूरी करनी पड़ रही है।
7: सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक का बताकर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक को ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के एंडरसन को आगरा में सामान और पासपोर्ट चोरी होने के बाद मजदूरी करनी पड़ रही है। यूजर्स इसे देश को शर्मसार करने वाली घटना बताकर कथित रूप से चोरी किया गया एंडरसन का सामान लौटाने की भी अपील कर रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अतिथि देवो भव के देश से आई इस तस्वीर ने सभी को शर्मसार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया से भारत की संस्कृति और खूबसूरती को निहारने आए एंडरसन नाम के एक विदेशी पर्यटक के साथ आगरा में एक बेहद दुखद और शर्मनाक वाकया पेश आया है। आगरा घूमने के दौरान चोरों ने एंडरसन का पासपोर्ट, सारे पैसे और उसका पूरा सामान पार कर दिया। विदेशी धरती पर सब कुछ खो जाने के बाद एंडरसन पूरी तरह लाचार हो गए। हालात ये हो गए हैं कि अब उन्हें दो वक्त की रोटी और अपना पेट भरने के लिए एक ईंट के भट्टे पर कड़ा शारीरिक श्रम और मजदूरी करनी पड़ रही है। जिस सैलानी का स्वागत पलकों पर होना चाहिए था, वो आज दाने दाने को मोहताज है। हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये प्रशासन तक पहुंचे। साथ ही जिसने भी इसका सामान चुराया है, कृपया इंसानियत के नाते इसका पासपोर्ट और सामान लौटा दें, ताकि ये मासूम विदेशी नागरिक अपने वतन सुरक्षित वापस लौट सके।
6: देखो भाई, इसका नाम एंड्रू सन।
7: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है और वीडियो में एक युवक को ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एंडरसन को आगरा में सामान और पासपोर्ट चोरी होने के बाद मजदूरी करनी पड़ रही है। यूजर्स इसे देश को शर्मसार करने वाली घटना बताकर कथित रूप से चोरी किया गया एंडरसन का सामान लौटाने की भी अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा और वीडियो को देखने पर ऐसा लग रहा है कि इसके जरिए गलत दावा किया जा रहा है। जिस शख्स को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बताया जा रहा है, वो शख्स इतनी निपुणता से ईंट को ऊपर फेंक रहा है, उससे ये इशारा मिल रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नहीं हो सकता। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि युवक आगरा में ताजमहल देखने आया था, जहां पर उसका सामान चोरी हुआ और इस आधार पर हमने आगरा ताजगंज थाने के प्रभारी जसवीर सिंह से संपर्क भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अगर किसी पर्यटक का सामान चोरी होता है तो वो पुलिस में शिकायत जरूर करता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी मामला सामने नहीं आया। इसके अलावा यदि किसी भी विदेशी नागरिक का पासपोर्ट भारत में खो गया है या फिर चोरी हो गया, तो उसे मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कानूनन वो अपने देश के दूतावास से संपर्क करके तुरंत आपातकालीन पासपोर्ट या फिर यात्रा दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ सर्च के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है वो अपने रंग के कारण चर्चा में नजर आया है। दरअसल त्वचा और बालों को रंग मेलानिन नामक के एक पिगमेंट से मिलता है और इसका प्राथमिक कार्य सनस्क्रीन की तरह हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण से त्वचा की रक्षा करना है। कुछ लोगों में ये बहुत कम होता है, जिससे उनकी त्वचा, बाल और आंखें बहुत पीली होती हैं। हो सकता है कि ये शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ हो, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो जिसमें नजर आ रहा जो शख्स है, उसकी पहचान क्या है? हमारा दूसरा सवाल ये कि अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई? तीसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ क्या इस रिपोर्ट में देखिए।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये वीडियो नहीं मिला जहां वायरल दावे की पुष्टि की गई हो। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर अकाउंट पर पोस्ट किया गया एक वीडियो मिला। इसे 25 जून 2026 को अपलोड किया गया था। इसमें इनसेट में वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट देखने को मिले। जानकारी के अनुसार एंडरसन के दावे से जिस युवक की कहानी वायरल हो रही है वो यूपी के बागपत जिले के काठा गांव का है और उसका नाम साहिल देशवाल है। वीडियो में साहिल कह रहा है कि ये सब फेक है और मुंशी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था।
8: कहाँ के हैं आप, बताइए अपने बारे में।
9: बागपत जिला यूपी काठा से।
8: बागपत जिला के हैं, यूपी से है। तो आप तो ऑस्ट्रेलिया के बताया जा रहे हैं।
9: नहीं, ये सब फेक न्यूज है।
8: फेक न्यूज है। कौन है वीडियो बना के वायरल किया है?
9: भट्टे में मुंशी ने बना दी थी।
8: मुंशी ने बना दिया था।
7: साहिल ईट भट्टे पर काम करता है। इस अकाउंट से साहिल के कुछ और वीडियोस भी देखने को मिले। 16 फरवरी 2025 को साहिल की ईट भट्टे पर मजदूरी करने का एक और वीडियो पोस्ट किया गया था। एक इंस्टाग्राम यूजर ने 25 जून 2026 को वायरल वीडियो के बारे में जानकारी पोस्ट की है। इसमें वायरल क्लिप को भी देखा जा सकता है। वीडियो में एंडरसन के नाम से वायरल किए जा रहे युवक और उसके भाई ने इसे फेक बताया है। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वायरल वीडियो में मौजूद व्यक्ति का नाम साहिल है और वो यूपी के बागपत का रहने वाला है। आगरा में पासपोर्ट चोरी होने से ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंडरसन के मजदूरी करने का दावा बेबुनियाद है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: और वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: इंसानियत की मिसाल पेश करने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी क्षेत्र में स्कूल के एक वार्डन ने तेज बुखार से पीड़ित छात्रा को समय पर इलाज दिलाने के लिए करीब 6 किलोमीटर तक अपनी पीठ पर उठाकर पैदल सफर तय किया। इस भावुक पल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पर लोग इमोशनल कमेंट कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल वार्डन हेमा बीमार छात्रा को अपनी पीठ पर लेकर पहाड़ी और जंगल वाले कठिन रास्ते से गुजरती दिखाई दे रही है। बताया गया कि इलाके में वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद छात्रा को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का फैसला किया। करीब 6 किलोमीटर लंबे सफर में श्रीमती हेमा ने उबड़ खाबड़ रास्तों और पहाड़ियों को पार किया। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि छात्रा को बिना देर किए इलाज मिल सके।
11: अखियां मेरे पूछ रही है तुमको, मेरे चैन नहीं है कि थी लड़ियां में।
5: इंटरनेट पर अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के वांचो समुदाय की 3 नन्ही बच्चियों का एक वीडियो तेजी से तहलका मचा रहा है। अपनी कमाल की गायकी, जबरदस्त डांस मूव्स और गजब के स्वैग से इन बच्चियों ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है।
11: अखियां मेरे पूछ रही है तुमको, मेरे चैन नहीं है कि थी लड़ियां में, दुखियां की थी लड़ियां में।
5: जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जा रही है। वीडियो का बैकग्राउंड भी बेहद खूबसूरत है, जहां अरुणाचल के हरी भरी वादियां दिखाई दे रही है। इन हसीन वादियों के बीच तीन छोटी बहनों को बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाना और थिरकना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है।

0: come
1: इन दिनों एक नन्ही बच्ची का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग उसकी प्यारी आवाज और आत्मविश्वास की खूब तारीफ कर रहे हैं। वायरल वीडियो में छोटी बच्ची नीले रंग की फ्रॉक पहने बेहद मासूम अंदाज में बैठी दिखाई देती है। उसके हाथ में एक छोटा सा गिटार है, जिसे बजाते हुए वो गाना गाती है। उसकी मीठी आवाज, मासूम मुस्कान और गाने का अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले कई यूजर्स का कहना है कि बच्ची की सादगी और आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो किसी बड़े कलाकार या मजेदार कॉमेडियन का नहीं, बल्कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चों का है। बच्चों की मासूमियत और उनकी अलग सोच ने इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया है। जो भी इसे देख रहा है वे अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा। वीडियो में एक स्कूल की क्लास का नजारा दिखाई देता है। टीचर बच्चों को एक आसान सा काम देते हैं। उनसे कहा जाता है कि वे भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की ड्राइंग बनाएं। सुनने में यह काम बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में मोर बनाकर दिखाते हैं, तब असली मजा शुरू होता है। हर बच्चे ने अपनी कल्पना के हिसाब से मोर बनाने की कोशिश की। किसी ने उसकी गर्दन इतनी लंबी बना दी कि वह जिराफ जैसी लगने लगी। किसी ने पंखों को ऐसे बना दिया कि उन्हें देखकर समझ ही नहीं आता कि यह मोर है या कोई दूसरी चिड़िया। कुछ बच्चों ने तो मोर का आकार और रंग भी अपनी पसंद के हिसाब से बना दिए। उनकी ड्राइंग देखकर साफ समझ आता है कि उन्होंने किताबों की तस्वीर की नकल करने के बजाय अपने दिमाग में जो तस्वीर बनाई उसे ही कागज पर उतार दिया। सबसे मजेदार बात यह रही कि बच्चों की इन अनोखी ड्राइंग्स को देखकर टीचर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। क्लास का माहौल हल्का फुल्का और खुशियों से भर गया। बच्चों के चेहरे पर भी अपनी बनाई तस्वीर दिखाने की खुशी साफ नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों की आंखों को नम और दिलों को खुश कर दिया है। एक कमर्शियल पायलट बेटे ने जब पहली बार अपनी माँ को प्लेन में बतौर कैप्टन सफर कराया, तो वह पल बेहद भावुक कर देने वाला बन गया। वीडियो की शुरुआत में तपेश बोर्डिंग गेट पर खड़े होकर अपनी फ्लाइट के एक बेहद खास मेहमान का इंतजार करते दिखते हैं। जैसे ही उनकी माँ प्लेन में चढ़ने के लिए आगे बढ़ती हैं, दोनों के चेहरे की मुस्कान और एक दूसरे को गले लगाने का अंदाज यह बता देता है कि यह सफर दोनों के लिए कितना खास है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उड़ान भरने से पहले दोनों ने प्लेन के सामने एक शानदार तस्वीर खिंचवाई और फिर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए, जहां पहुंचने के बाद इस माँ बेटे की जोड़ी ने साथ में बेहतरीन समय बिताया। तपेश अपनी माँ को एक आलीशान होटल में ले गए। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे माँ ने अपनी जिंदगी में पहली बार स्विमिंग पूल का आनंद लिया और होटल में लजीज खाने का लुत्फ उठाया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इन दोनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स सिर के बल लगातार सीढ़ियां चढ़ते हुए अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता नजर आ रहा है। यह कारनामा देखकर लोग भी दंग रह गए और वीडियो पर तरह तरह के कॉमेंट आ रहे हैं। इस वीडियो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो में चीन के ली किंगबो बिना हाथों का सहारा लिए सिर के बल लगातार 40 सीढ़ियां चढ़ते दिखाई देते हैं। इसी के साथ उन्होंने इस अनोखे कारनामे का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया। बारिश का मौसम शुरू होते ही छाते की जरूरत पड़ती है, लेकिन छाता पकड़कर चलना कई बार मुश्किल हो जाता है। एक हाथ में छाता, दूसरे में बैग या मोबाइल और कभी कभी बच्चे को संभालना, ये सब बहुत परेशान करने वाला होता है। अब इस समस्या का क्रांतिकारी समाधान सामने आ गया है। कनाडा के इंजीनियर जॉन ने एक ऐसा उड़ने वाला छाता बनाया है जो हाथ में पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने देगा। यह फ्लाइंग अम्ब्रेला ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें डेप्थ सेंसिंग कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है, जो मालिक को पहचान लेता है और लगातार उसके सिर के ऊपर उड़ता रहता है। व्यक्ति जहां भी जाएगा छाता उसके साथ साथ चलेगा, यानी हाथ पूरी तरह फ्री रहेंगे। छाता बनाने वाले जॉन से के अनुसार यह प्रोटोटाइप धूप में छांव और हल्की बारिश में सुरक्षा दे सकता है। अभी एक बैटरी चार्ज पर यह 10 से 15 मिनट तक हवा में रह सकता है। यह अभी रिसर्च और डेवलपमेंट स्टेज पर है और बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी वायरल तस्वीरों और वीडियो ने दुनिया भर में चर्चा मचा दी है। सोशल मीडिया पर लोग इसे भविष्य की तकनीक बता रहे हैं। कभी कभी खुशियाँ बहुत छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। एक प्यारी सी पूंछ का हिलना, मासूम आंखों की चमक, या फिर किसी ऐसे जीव का मुस्कुराता चेहरा जिसे आखिरकार अपना घर मिल गया हो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो भी कुछ ऐसी ही भावनाओं से भरा है। इसमें गोद लिए गए कुत्ते का पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन यह सिर्फ केक और सजावट की कहानी नहीं है। यह उस भरोसे, प्यार और अपनेपन की कहानी है जिसने एक बेघर कुत्ते की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुत्ता अपने परिवार के बीच बैठा है। जब मालिक ने उसके सामने जन्मदिन का केक रखा, उसके चेहरे पर खुशी के आंसू थे, मानो वो उन सब का धन्यवाद कर रहा हो कि उन्होंने उसे अपना लिया। परिवार के सदस्यों ने न केवल उसे खाना दिया बल्कि उसे गले लगाकर वह एहसास कराया कि अब वह इस घर का एक अहम हिस्सा है। इस छोटे से गोलू मोलू पांडा ने अपने अंदाज से इंटरनेट पर ऐसी महफिल जमा दी है कि लोग बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैग लेन के नाम से जानते हैं। हुआ यूं कि एनरिचमेंट सेशन के दौरान केयरटेकर ने पांडा के साथ थोड़ी मस्ती करने का सोचा। उन्होंने एक विक पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलेन अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था कि आखिर केयरटेकर क्या करने वाला है। माहौल में सस्पेंस था। पांडा को लग रहा था कि केयरटेकर उसके सामने डांस करने वाला है और इसके लिए उसने इशारा भी किया। तभी केयरटेकर एक फिल्मी अंदाज में डांस करने लगता है। तभी अचानक अपने सिर से विक को हवा में उछाल दिया और अचानक उनका चमकता हुआ गंजा सिर फिर सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आई ट्विस्ट को देखकर मैंगलेन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वह पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू कैसे हुआ। वह इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो यह प्रैंक किया, उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: नाश्ते गाते बाराती, ऊंट पर सवार दूल्हा और चुनरी ओढ़े दुल्हन। पहली नजर में ये किसी सामान्य विवाह समारोह का नजारा लगता है और ये विवाह उत्सव है भी, लेकिन थोड़ा अनोखा। राजस्थान में पाली जिले के बाड़सा गांव में ये विवाह महोत्सव 3 दिनों तक धूमधाम से चला, जहां पर देखिए एक और बछड़े का विवाह बछड़ी से कराया गया। दूल्हा बना बछड़ा ऊंट पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचा और दुल्हन बनी बछड़ी को कानों में कुड़की और पैरों में पैजेब पहनाकर सुंदर ढंग से बिल्कुल सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार रस्में और पूरे रीति रिवाज के अनुसार ये शादी संपन्न की गई। यहां बछड़ा बछड़ी के साथ ही बड़ और पीपल के पौधों की भी शादी कराई गई बाकायदा, जिसमें पीपल के पौधे को चुनरी ओढ़ाकर दुल्हन का रूप दिया गया। इस अनोखे आयोजन ने हर किसी का मन मोह लिया। 3 दिनों तक पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस आयोजन ने वर्षों पुरानी लोक परंपरा को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। ग्रामीणों ने इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि गौ संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश देने वाला आयोजन बताया। तस्वीरें देखिए विवाह समारोह में, गांव के अलावा अगर हम देखें आसपास के इलाकों से भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। तस्वीरें देखिए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है। कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है। धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमकर हो रही है बारिश, प्रदेश के कई जिलों में 22 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। सैलानियों से प्रशासन की अपील, मौसम से जुड़ी एडवाइजरी का करें पालन। हिमाचल की मंडी से अब महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा चंडीगढ़ तक का सफर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ, 3500 रुपए होगा हेलीकॉप्टर का किराया। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन, खराब मौसम के बावजूद आस्था परंपरा। दलाई लामा के 51वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन, विश्व शांति सद्भावना और मानवता का संदेश। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान, 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह को भी मिला मौका।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। तो जेएनटी स्पेशल में आज बात आस्था की यात्रा से जुड़ी। इस समय देश में कई धार्मिक यात्राओं उत्सवों का दौर चल रहा है। पिछले कई हफ्तों से चारधाम यात्रा चल ही रही थी। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ भी हमने देखा। तो वहीं 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का भी श्री गणेश हो गया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली है अमरनाथ धाम से जुड़ी, दूसरी जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई और तीसरी देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम की तस्वीर। पिछले 4 दिनों से अमरनाथ यात्रा मार्ग पर आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। खूबसूरत वादियों में बोलबम का जयघोष है। 3 जुलाई की सुबह से बाबा बर्फानी के भक्तों के जोश जज्बे से भरी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। इसी बीच झारखंड के देवघर में मौजूद बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जब आस्था की एक और यात्रा कांवड़ यात्रा का श्री गणेश होगा, लेकिन उससे पहले अब से ठीक 10 दिन बाद पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज होने वाला है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा एक अनोखा उत्सव है, जब भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारते हैं। पुरी में चारों तरफ आस्था का जन समुद्र नजर आता है। जगन्नाथपुरी में भगवान की रथ यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है, जिसमें अब बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पुरी और दिखाते हैं तैयारी जगन्नाथ यात्रा की।

0: नगरी के लिए इस लकड़ी का हर टुकड़ा पूजनीय है। लकड़ी पर पड़ती औजार की हर चोट आस्था का जयघोष है। चोट से निकलती हर ध्वनि शंखनाद सी पवित्र है, क्योंकि ये ध्वनि संकेत है कि जगन्नाथ प्रभु के पधारने की घड़ी अब समीप आ चुकी है। पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए भव्य रथ बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है।
1: अभी रथ का शेष पर्याय काम चल रहा है, जो रथ के चारों तरफ चार चार द्वार भड़ा जो है अभी तीनों बन चुका है और एक बनना बाकी है। अभी रथ के ऊपर का काम जो है पोटल बढ़धरा पोटल लगाया गया है, उसके बाद जो 13 परस्त पोटल में 12 परस्त पोटल और पारावाड़ी वो सब लगाया जाएगा। उसके बाद कलश का काम भी अभी चल रहा है, कलश का पिंडी और पकुड़ा वो अभी तैयार हो रहा है। उसको तैयार करने के बाद उसके ऊपर टीन का छप्पर डालने के बाद और चित्रकार लोगों को दिया जाएगा, वो चित्र करेंगे। अभी जो द्वार का जो नाट गोड़ है उसका खुदाई अभी रूपकार सेवक के द्वारा हो रहा है।
0: पुरी में भव्य रथ यात्रा का संयोग भले ही आषाढ़ के महीने में बनता है, लेकिन रथ के निर्माण और उसके श्रृंगार की यात्रा कई महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। भगवान का ये रथ महीनों के कठिन परिश्रम और तपस्या के बाद तैयार होता है।
2: आप देख सकते हैं काम अब तेजी से चल रहा है, काम अभी तेजी से पूरा चल रहा है। कैसे काम में पूरा जो कारीगर लोग हैं यहाँ पूरा काम में जुटे हुए हैं। ये रथ कला है और रथ कला में मैं मौजूद हूँ, आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ कैसे रथ का पहिया का काम खत्म हो चुका है, ये रथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बन रहा है और इसके बाद और जो काम है वो काम आहिस्ता आहिस्ता काम हो ही जाएगा। आप ये देख सकते हैं, मैं रथ का विजुअल भी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो जगन्नाथ मंदिर के पास पूरा 3 रथ अब एक जो इसका जो बड़ी पार्ट है यह बन चुका है। आप देख सकते हैं 3 रथ मौजूद हैं, ये 1, 2 और 3, ये पूरा 3 रथ यहाँ तैयार हो चुका है। बड्डी का जो है पार्ट ये पार्ट बन चुका है और इसमें जो जो पार्ट अभी लगेगा ये काम के लिए पूरा जो कारीगर लोग हैं ये लगे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे मार्किंग हो रहा है, पहिया कहीं पे, ये रथ का अलग जो हिस्सा, बाहर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा, जो जो हिस्सा है और इसका डिजाइनिंग, कलर, ये सब काम के लिए पूरा कारीगर लोग हैं वो लगे हुए हैं।
0: हर साल सैकड़ों कारीगर मिलकर इन 3 रथों को तैयार करते हैं। जब तक रथ बन नहीं जाता तब तक उसे बनाने वाले सभी कारीगर और कलाकार सात्विक तरीके से रहते हैं। आस्था की ये पूरी यात्रा समाज को एक सूत्र में पिरो देती है। पुरी में रहने वाले महाराणा परिवार पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। परिवार की हर पीढ़ी से एक सदस्य रथ निर्माण में सेवा देने का दायित्व उठाता है। भले ही वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, कोई भी काम करता हो, लेकिन रथ निर्माण के समय यहाँ सेवा देने जरूर पहुँच जाता है।
1: देखिए ये सेवा है, भगवान जी को बनाने का, रथ बनाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तो मैं बोलूँगा जो हर विश्वकर्मा सेवक ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन महाप्रभु को तिर कर तैयार करना और हर साल रथ बनाना ये किसी के नसीब में ही आता है। जो हमारे नसीब में हर साल हम उसी परिवार में जन्म ग्रहण किए हैं, उनके सेवा के लिए साड़ी बनाया है, तो उनके सेवक के रूप में आज जीवन भर हमें रहना है और हर साल एक सेवा हमें प्रदान करना है। हमारे बाद हमारे नेक्स्ट पीढ़ी जो हमारे बच्चे आएंगे वो भी ये काम करेंगे, चाहे कोई भी नौकरी करे या कोई भी व्यवसाय करे, लेकिन यहाँ सेवा करना जरूरी है। तो ये बाउंड है, आप करना, आपको ही करना है और कोई दूसरा नहीं कर सकता।
0: हर साल की तरह इस बार भी अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर पुरी में रथों के निर्माण की शुरुआत हुई थी। जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर 3 रथों को बनाने के लिए वर्कशॉप मौजूद है, जहां इन रथों को बेहद मेहनत और श्रद्धा के साथ तैयार किया जाता है। इन रथों के निर्माण में 12 तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिनमें आसन, धौरा और फांसी नाम की लकड़ियों का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। आसन की लकड़ी से रथ का मुख्य खम्बा यानी डंडा बनता है। फांसी से 3 रथों के पहिए बनाए जाते हैं, तो वहीं धौरा से रथों के दूसरे कलात्मक हिस्से तैयार किए जाते हैं। इस बार भी 7 तरह की कलाओं में निपुण 200 से ज्यादा कारीगर रथों के निर्माण में पूरी आस्था के साथ जुटे हैं।
1: कुल 200 से ऊपर कारीगर लगे हुए हैं, 7 तरह के कारीगर लगते हैं एक एक रथ बनाने के लिए। पहले चरण में मुख्य भूमिका यहाँ कारीगर लोग जो विश्वकर्मा सेवक लोग महाराणा लोग लेते हैं, उनके सहयोगी रूप में भोई सेवक रहते हैं। तो तीसरे कारीगर में आते लोहार जो लोहे का कांटा वगैरह रथ के लिए बनाते हैं, और रूपकार जो खुदाई का काम करते हैं, कार्विंग का काम करते हैं। उसके बाद चित्रकार आएंगे, उसके बाद दर्जी आएंगे जो कपड़े का काम करते हैं, रथ के ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है उसको, उसके बाद जो कपड़ा डालेंगे जो ऊपर के कलश लगाएंगे कोटोश्वासिया सेवक है उनका काम आएगा। इस तरह के 7 तरीके के कारीगर मिलकर एक रथ बनाते हैं।
0: यानी हुनर के आधार पर कारीगरों की जिम्मेदारियां तय हैं। ढांचे का निर्माण, कार्विंग, चित्रकारी, रंग रोगन, कलश स्थापना और भगवान की पोशाक बनाने की जिम्मेदारी अलग अलग कारीगरों में बटी हुई है। यहाँ तक कि रथों के निर्माण में काम आने वाली कीलें बनाने के लिए भी अलग कारीगर हैं, जो भगवान के विशाल काय रथों के लिए 2 इंच से लेकर 4.5 फीट तक की कीलें तैयार करते हैं।
3: यह कील देखिए 16 mm की, ये जो कील है ये चेसिस में रहता है, ये जैसे नट बोल्ट है वो घुमा के इसको अंदर देते हैं, ये ऊपर बांध के रखेगा, ये नीचे ऐसे पलटा के ये बांध के रखेगा, ये जाने में मैंने सकपचर जैसे काम करता है, ये कील ऐसे ही बनता है।
2: सबसे बड़ा कील जो है,
3: सबसे बड़ा कील दिखा रहे हैं हम आपको,
2: ये कील देखिए,
3: ये देखिए ये कील है, ये 4.5 फुट की कील, ये जब भी ऊपर ये सबसे ऊपर लगता है, ये 13 परस्त पोटोल है, उसको बोलते हैं पोटोल, उस पे पूरा घुसा में पूरा भेद के जाएगा नीचे तक।
0: यात्रा में दिन कम बचे हैं और काम ज्यादा, लेकिन टाइम टेबल इस तरह बनाया गया है कि रथ यात्रा के ठीक 1 दिन पहले यानी 15 जुलाई को ये तीनों रथ जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में संसार की सबसे खास सवारियों को बैठाने के लिए सजे धजे तैयार खड़े नजर आएंगे।
4: जुलाई 15 तारीख को ये सब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों रथ का काम यहाँ पर चल रहा है, हर कारपेंटर ज़्यादा खुश होकर काम कर रहे हैं। रथा और जो काम बाकी है, जितना दिन हमारा हाथ में है, इस दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा।
0: जगन्नाथ के जयकारों के बीच रथों के निर्माण का काम अब अंत की ओर बढ़ रहा है। इंतजार उस दिन का है जब इन दिव्य रथों में सवार होकर जगत के नाथ अपना जग देखने निकलेंगे और सारी पूरी नगरी आस्था के उत्सव में रम जाएगी। लेकिन उससे पहले फिलहाल वर्कशॉप में रथों का निर्माण देखने के लिए भी रथ यात्रा से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथपुरी पहुंच रहे हैं।
2: हर तरह की इंतजाम हो रही है और भक्तों का यहाँ भीड़ भी हो रही है, यहाँ बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, आपको ये दिखाऊंगा। बहुत सारे भक्त यहाँ ये रथ का काम देखने के लिए, भगवान का ये अपूर्व लीला, ये रथ का काम देखने के लिए कई प्रांतों से जो भगवान को देखने के लिए आते हैं, भगवान का ये रथ का काम भी देखने के लिए यहाँ खड़े हो जाते हैं और भगवान का ये रथ का काम देखते हैं। खुशी लगता है कि भगवान का ये जो अपूर्व लीला ये सालों में एक बार होता है, इसके लिए, इसको देखने के लिए, इसका सानिध्य लेने के लिए, एक बड़ा इसमें हिस्सा बनने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल रथ यात्रा कैसे मनाया जाएगा ये देखने के लिए बाकी है। पूरी संजय कुमार, गुड न्यूज टुडे।
5: पुरी के साथ साथ देश के कई और शहरों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी इन दिनों उत्साह के साथ जारी है। पुरी के बाद जिन शहरों में सबसे भव्य यात्रा का आयोजन होता है उनमें गुजरात के अहमदाबाद और राजस्थान के उदयपुर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उदयपुर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान को चांदी के रथ की सवारी करवाई जाती है। उदयपुर में इन दिनों कारीगर इस रथ को यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। 16 जुलाई को उदयपुर के जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ इसी शानदार रथ में सवार होकर यात्रा के लिए निकलेंगे।

0: नाथ वही है, आस्था भी वही, भक्त और भाव भी दूसरे नहीं, बस कुछ बदला है तो रथ। जहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ अपनी काया के समान ही काष्ठ यानी लकड़ी के रथ में विराजते हैं, वहीं उदयपुर में जगन्नाथ प्रभु को चांदी के रथ में सवारी करवाई जाती है। जिस तरह पुरी धाम में रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, ठीक वैसे ही इन दिनों राजस्थान के उदयपुर में भी जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। उदयपुर की रथ यात्रा में हर साल भगवान जगन्नाथ इस भव्य चांदी के रथ पर विराजमान होते हैं। पुरी की रथ यात्रा के बाद अहमदाबाद और फिर उदयपुर की रथ यात्रा को ही सबसे भव्य माना जाता है। आपको बता दें, 80 किलो चांदी से बना ये रथ 16 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 21 फीट ऊंचा है। वहीं भक्तों के द्वारा रथ के लिए दान किए गए चांदी के सिंहासन और दूसरे सामान को भी जोड़ दिया जाए तो चांदी का कुल भार 195 किलो हो जाता है।
1: रथ की चौड़ाई है 8 फीट, लंबाई है 16 फीट, ऊंचाई है 21 फीट। इसमें लगभग 80 किलो चांदी लगी हुई है और इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे लमाजमा है, रेवाड़ी है, सिंहासन है, इस तरह सारे आइटम करके 115 किलो चांदी सभी भक्तों के सहयोग से रथ समिति ने इस चीज को निर्माण में सहयोग किया।
0: जगदीश मंदिर से ये भव्य रथ यात्रा निकलती है। उदयपुर के सिटी पैलेस के पास मौजूद जगदीश मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 17वीं सदी में मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर में सारा मेवाड़ बेहद आस्था के साथ सिर झुकाता है और उतनी ही आस्था के साथ शामिल होता है हर साल यहाँ से निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में, जिसके केंद्र में होता है ये चांदी का रथ और उस पर सवार भगवान जगन्नाथ। बताया जा रहा है कि रथ यात्रा से एक हफ्ते पहले यानी 9 जुलाई को दर्जनों कारीगर मिलकर भगवान के इस रथ के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर इसे अंतिम रूप प्रदान करेंगे।
1: 8 तारीख को हम पूरे रथ यात्रा मार्ग को सजाएंगे और 9 तारीख को ठाकुर जी के रथ को अलग अलग जो भागों में है, जो 58 खंड में है, उन सबको जगदीश चौक प्रांगण में लाके सभी कार्यकर्ता के सहयोग से लगभग 100-125 कार्यकर्ता वहाँ लगेंगे और इसको जोड़ा जाएगा। और 16 जुलाई को जब निकलेगा रथ, एक अलग तरीके की छटा होगी। जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में जो रथ निकलता है, रथ यात्रा निकलती है, उसी अंदाज में, उसी तर्ज पे हमारे उदयपुर में भी निकलती है। नंबर 1 जगन्नाथपुरी है, नंबर 2 अहमदाबाद है, तीसरे नंबर पे हमारे उदयपुर में, और राजस्थान में नंबर 1 रथ यात्रा है।
0: अब भक्तों को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 16 जुलाई का बेसब्री से इंतजार है, जब भगवान जगन्नाथ अपने इस रजत रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और उनके आगे पीछे नाचते झूमते हजारों भक्त अनंत आस्था की इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब आपको लेकर चलते हैं भव्य दिव्य अमरनाथ धाम में, जहां आस्था और विश्वास की अद्भुत तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। हर रोज नए जत्थों की रवानगी के साथ ही अमरनाथ यात्रा मार्ग पर आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। अब तक 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। खास बात यह है कि अब युवाओं के बीच भी अमरनाथ यात्रा तेजी के साथ लोकप्रिय होती जा रही है। दरअसल अमरनाथ यात्रा के दौरान यहां के प्राकृतिक नजारे और रास्ते उन्हें एडवेंचर टूरिज्म का अनुभव दे रहे हैं और बड़ी संख्या में युवा यात्रा के लिए आ रहे हैं। आंकड़ों से समझा जाए तो अमरनाथ यात्रा के पहले 3 दिन में 56,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल से करीब 18.6% ज्यादा रहा। 2025 में पहले 3 दिन में 47,972 श्रद्धालु पहुंचे थे। आपको बता दें कि 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई है। 48 किलोमीटर लंबे नुनवान पहलगाम रूट और 14 किलोमीटर वाले छोटे लेकिन कठिन बालटाल रूट से लगातार यात्री दर्शन के लिए अमरनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के उत्साह को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने अब की बार यात्रा के लिए कई खास इंतजाम किए हैं। सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है, वहीं सुरक्षा के भी इंतजाम कड़े किए गए हैं। वहीं एक सौगात रेलवे की तरफ से यात्रियों को भी मिली है। श्रद्धालुओं के भारी उत्साह को देखते हुए रेलवे जम्मू से श्रीनगर के बीच में स्पेशल ट्रेन चला रहा है, जिससे यात्री आराम से बेस कैंप तक पहुंच सके। विशेष ट्रेन सेवा के अलावा तीर्थयात्रियों को आधार, KYC, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, भोजन और डिजिटल सर्विलांस जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिल रही हैं। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू से श्रीनगर के बीच में स्पेशल ट्रेन चलाए जाने को लेकर पैसेंजर्स काफी खुश हैं।
3: बहुत बहुत ही अच्छी सुविधा है, रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है। और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है, उससे और ज़्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुंच जा रहे हैं बिना किसी थकान के। हम लोग सुबह उतरे हैं और वहां से डायरेक्ट हम लोग यहां आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम यात्रा रहा।
4: मैं महाराष्ट्र मुंबई से आई हूँ और हम लोग यहाँ से वंदे भारत से आए। बहुत ही सुविधा सुंदर थी, जैसे हम लोग प्लेन में रहते तब जो सुविधाएं रहती है ऑलमोस्ट नियर बाय सुविधाएं ये थी, इसलिए ये जो प्रवास है वो सुखकर लगा।
5: मैं जलंधर पंजाब से आया हूँ और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करने में पहली बार आया हूँ। हमारी जो इंडियन आर्मी के जो भाई लोग हैं वो चप्पे चप्पे पे खड़े हैं।
6: अमृतसर से आ रहा हूँ और वंदे भारत ट्रेन प्लस जो सुविधाएं हैं, जो सिक्योरिटी है, उसको देख के अभी फील हो रहा है कि अभी कोई भी यहाँ पे डर नहीं है, आराम से आ सकते हैं और काफी अच्छा अरेंजमेंट है।
2: जगन्नाथ रथ यात्रा और अमरनाथ यात्रा के साथ ही तैयारी एक तीसरी यात्रा की भी है। सावन से पहले का महीना है आषाढ़ का महीना, जिसमें अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, लेकिन इसके बाद ही भगवान शिव का प्रिय सावन महीना भी आने वाला है, जिसके हर सोमवार को करोड़ों शिव भक्त बाबा भोले की ना केवल पूजा आराधना करते हैं, बल्कि दूर दूर से कांवड़ लाकर भगवान का जलाभिषेक भी करते हैं। और यही वजह है कि सावन महीने से पहले भोलेनाथ के धामों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने लगी हैं। इन धामों में देवघर के बाबा वैद्यनाथ का धाम भी है। झारखंड में स्थित इस धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है।
7: के बाद सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और झारखंड के देवघर में स्थित महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के धाम पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने वाली है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक श्रद्धालु सावन में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं। वैसे तो बाबा बैद्यनाथ धाम पूरे साल भर शिवमय रहता है और भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए हमेशा यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने की बात ही और है, क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। और खास बात ये भी है कि सावन में हर साल बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला लगता है, जिसका शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बैद्यनाथ धाम में इस बार श्रावणी मेला 31 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये मेला 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगा। इस दौरान कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर आएंगे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे सावन भर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए स्पर्श पूजा पूरी तरह बंद रहेगी और कांवड़िये अर्घा के माध्यम से यहां पर स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे।

0: जिसमें कांवड़ियों के आवागमन और मेले के इंतजामों को लेकर अहम फैसले किए गए।
1: जहाँ भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में समन्वय स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफी मुद्दों पर बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके, और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्प का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है, या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है वो आपस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया से।
0: बताया गया है कि मेले में भीड़ पर नियंत्रण के लिए अलग अलग स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रही हैं। कांवड़ियों के ठहरने, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था होगी, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार श्रावणी मेले के दौरान कांवड़ियों की डबल डेकर गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।
2: सबसे ज्यादा मेजर इशू था ये डबल डेकर जो गाड़ी, जो मॉडिफाइड गाड़ी आती है उसके लिए, तो मॉडिफाइड गाड़ी के बारे में अभी हुआ कि आप अभी से ही बिहार साइड में ही अभी से प्रचार हो कि मॉडिफिकेशन हो ही ना, यहाँ पर आने के बाद तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहाँ से इनिशिएट ही नहीं हो, इसके बारे में चर्चा हो और उन्होंने इस बारे में अभी से ही कार्रवाई करने के बारे में।
0: भी तय किया गया है कि अब सुल्तानगंज से हर दिन जल उठाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी पहले से ही देवघर और दुमका जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों के बेहतर उपयोग में काफी सुविधा होगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी जिलों में तालमेल बिठाकर इंतजाम किए जाएंगे, ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से देवघर पहुंचकर बाबा को जल अर्पित कर सके। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
2: Swing and a foul out of play off to the left.
1: Big 12 Radio.
3: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
1: Talk Sport.
4: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
1: And more. Search sports to find the stations covering your team.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: फेनाइयों की मधुर गूंज, ढोल ताशों के साथ बैंड बाजे की धुन, नाचते गाते बाराती, ऊंट पर सवार दूल्हा और चुनरी ओढ़े दुल्हन। पहली नजर में ये किसी सामान्य विवाह समारोह का नजारा लगता है और ये विवाह उत्सव है भी, लेकिन थोड़ा अनोखा। राजस्थान में पाली जिले के बाड़सा गांव में ये विवाह महोत्सव 3 दिनों तक धूमधाम से चला, जहां पर देखिए एक और बछड़े का विवाह बछड़ी से कराया गया। दूल्हा बना बछड़ा ऊंट पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचा और दुल्हन बनी बछड़ी को कानों में कुड़की और पैरों में पैजेब पहनाकर सुंदर ढंग से बिल्कुल सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार रस्में और पूरे रीति रिवाज के अनुसार ये शादी संपन्न की गई। यहां बछड़ा बछड़ी के साथ ही बड़ और पीपल के पौधों की भी शादी कराई गई बाकायदा, जिसमें पीपल के पौधे को चुनरी ओढ़ाकर दुल्हन का रूप दिया गया। इस अनोखे आयोजन ने हर किसी का मन मोह लिया। 3 दिनों

तक पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस आयोजन ने वर्षों पुरानी लोक परंपरा को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। ग्रामीणों ने इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि गौ संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश देने वाला आयोजन बताया। तस्वीरें देखिए, विवाह समारोह में गांव के अलावा अगर हम देखें आसपास के इलाकों से भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। तस्वीरें देखिए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
2: धन की बचत से किस ग्रह का संबंध है? कब व्यक्ति धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता और कब थोड़ी आय होने पर भी धन बचा ले जाता है? धन की बचत का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमकर हो रही है बारिश, प्रदेश के कई जिलों में 22 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। सैलानियों से प्रशासन की अपील, मौसम से जुड़ी एडवाइजरी का करें पालन। हिमाचल की मंडी से अब महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा चंडीगढ़ तक का सफर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ, ₹3500 होगा हेलीकॉप्टर का किराया। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन। खराब मौसम के बावजूद आस्था परंपरा। दलाई लामा के 51वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और लद्दाख में भव्य आयोजन, विश्व शांति सद्भावना और मानवता का संदेश। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर टीम इंडिया का ऐलान, 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान, 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह को भी मिला मौका।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं बल्कि यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो ये तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान के शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पुलिस से पिट रहा शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। ये शख्स भगवान श्री राम के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और इसकी जमकर पिटाई की गई। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, करेंगे आगे पड़ताल। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पासपोर्ट चोरी होने के कारण आगरा में मजदूरी करने को मजबूर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंडरसन। इस वायरल दावे की सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में पुलिसकर्मी एक युवक को थाने में जमकर पीट रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस से पिट रहा शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता सुरेश जाटव है, जो भगवान श्रीराम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसे पीटा। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
5: पुलिस स्टेशन का ये दृश्य है जहां एक शख्स हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन पुलिस के जवान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक लाठियों की बरसात की जा रही है। मानो ये तय करके आए हैं आज इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसकी गलती माफी लायक नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के दावे पर यकीन करें तो पुलिस से पिट रहा ये शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता सुरेश जाटव है, जो भगवान श्री राम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक युवक को थाने में जमकर पीटा जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पुलिस से पिट रहा यह शख्स भीम आर्मी का कार्यकर्ता सुरेश जाटव है, जो भगवान श्री राम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने इसे पीटा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसकी पड़ताल जरूरी हो गई थी, तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना भी। इस दौरान हमें बैकग्राउंड में आ रही जो आवाजें सुनाई दी वो मराठी जैसी लग रही थी। इसके अलावा वायरल हो रहे वीडियो के क्वालिटी को देखने से ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल का वीडियो नहीं है। साथ ही साथ वीडियो में पुलिसकर्मियों के चेहरों पर मास्क लगा हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये कि वीडियो कोरोना के समय का हो सकता है, क्योंकि सर्च के दौरान हाल फिलहाल में हमें इस दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में इस वीडियो के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित पुराने वीडियो को नया एंगल देकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
5: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 28 मई 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना महाराष्ट्र के जालना जिले की थी, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सचिव शिवराज नारियल वाले की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की थी। दरअसल अप्रैल 2021 में जालना के एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ किया। जब पुलिस भीड़ को हटा रही थी तब शिवराज वहां इस घटना का वीडियो बना रहे थे। इसी बात से नाराज हुए पुलिसकर्मियों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी थी। पड़ताल के दौरान 28 मई 2021 को एक YouTube चैनल पर अपलोड की गई वीडियो रिपोर्ट में भी यह वीडियो मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि यह घटना महाराष्ट्र के जालना स्थित दीपक अस्पताल की है, जहां भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी शिवराज नारियल वाले को पुलिस ने लाठियों से पीटा था। रिपोर्ट में पीड़ित व्यक्ति का बयान भी मिला। इस मामले को लेकर 27 मई 2021 को एक समाचार एजेंसी ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद हैं। बतौर रिपोर्ट जालना पुलिस थाने के इंस्पेक्टर प्रशांत महाजन ने बताया था कि 10 अप्रैल को एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की थी। उन्हें अस्पताल से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया था। पड़ताल के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर 29 मई 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में आरोपी 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि भीम आर्मी कार्यकर्ता की पिटाई के दावे से वायरल हुआ यह वीडियो 5 साल पुराना है। यह वीडियो महाराष्ट्र का है, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने लाठियों से पीटा था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि आगरा घूमने आए ऑस्ट्रेलियन नागरिक एंडरसन का पासपोर्ट और दूसरा सामान चोरी हो गया, जिसके चलते उसे ईंट भट्टे पर मजदूरी करनी पड़ रही है। इस वायरल वीडियो के जरिए लोग ये अपील कर रहे हैं कि जिसने भी इसका सामान लिया है कृपया इंसानियत दिखाएं और वापस लौटा दें। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो क्या सच और झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
6: आगरे का ताजमहल देखना आया था, इसका वीजा पासपोर्ट या बैग आगरे का चोरी होगा, आज इस भाई को मजबूरी करनी पड़ रही है।
7: सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक का बताकर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक को ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के एंडरसन को आगरा में सामान और पासपोर्ट चोरी होने के बाद मजदूरी करनी पड़ रही है। यूजर्स इसे देश को शर्मसार करने वाली घटना बताकर कथित रूप से चोरी किया गया एंडरसन का सामान लौटाने की भी अपील कर रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अतिथि देवो भवा के देश से आई इस तस्वीर ने सभी को शर्मसार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया से भारत की संस्कृति और खूबसूरती को निहारने आए एंडरसन नाम के एक विदेशी पर्यटक के साथ आगरा में एक बेहद दुखद और शर्मनाक वाकया पेश आया है। आगरा घूमने के दौरान चोरों ने एंडरसन का पासपोर्ट, सारे पैसे और उसका पूरा सामान पार कर दिया। विदेशी धरती पर सब कुछ खो जाने के बाद एंडरसन पूरी तरह लाचार हो गए। हालात ये हो गए हैं कि अब उन्हें दो वक्त की रोटी और अपना पेट भरने के लिए एक ईंट के भट्टे पर कड़ा शारीरिक श्रम और मजदूरी करनी पड़ रही है। जिस सैलानी का स्वागत पलकों पर होना चाहिए था, वो आज दाने दाने को मोहताज है। हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये प्रशासन तक पहुंचे। साथ ही जिसने भी इसका सामान चुराया है, कृपया इंसानियत के नाते इसका पासपोर्ट और सामान लौटा दें, ताकि ये मासूम विदेशी नागरिक अपने वतन सुरक्षित वापस लौट सके।
6: देखो भाई, इसका नाम है एंड्रूशन।
7: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है और वीडियो में एक युवक को ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एंडरसन को आगरा में सामान और पासपोर्ट चोरी होने के बाद मजदूरी करनी पड़ रही है। यूजर्स इसे देश को शर्मसार करने वाली घटना बताकर कथित रूप से चोरी किया गया एंडरसन का सामान लौटाने की भी अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा और वीडियो को देखने पर ऐसा लग रहा है कि इसके जरिए गलत दावा किया जा रहा है। जिस शख्स को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बताया जा रहा है, वो शख्स इतनी निपुणता से ईंट को ऊपर फेंक रहा है, उससे ये इशारा मिल रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नहीं हो सकता। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि युवक आगरा में ताजमहल देखने आया था, जहां पर उसका सामान चोरी हुआ और इस आधार पर हमने आगरा ताजगंज थाने के प्रभारी जसवीर सिंह से संपर्क भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अगर किसी पर्यटक का सामान चोरी होता है तो वो पुलिस में शिकायत जरूर करता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी मामला सामने नहीं आया। इसके अलावा यदि किसी भी विदेशी नागरिक का पासपोर्ट भारत में खो गया है या फिर चोरी हो गया, तो उसे मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कानूनन वो अपने देश के दूतावास से संपर्क करके तुरंत आपातकालीन पासपोर्ट या फिर यात्रा दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ सर्च के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है वो अपने रंग के कारण चर्चा में नजर आया है। दरअसल त्वचा और बालों को रंग मेलानिन नामक के एक पिगमेंट से मिलता है और इसका प्राथमिक कार्य सनस्क्रीन की तरह हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण से त्वचा की रक्षा करना है। कुछ लोगों में ये बहुत कम होता है, जिससे उनकी त्वचा, बाल और आंखें बहुत पीली होती हैं। हो सकता है कि ये शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ हो, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो जिसमें नजर आ रहा जो शख्स है, उसकी पहचान क्या है? हमारा दूसरा सवाल ये कि अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई? तीसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही? सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये वीडियो नहीं मिला जहां वायरल दावे की पुष्टि की गई हो। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर अकाउंट पर पोस्ट किया गया एक वीडियो मिला। इसे 25 जून 2026 को अपलोड किया गया था। इसमें इनसेट में वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट देखने को मिले। जानकारी के अनुसार एंडरसन के दावे से जिस युवक की कहानी वायरल हो रही है वो यूपी के बागपत जिले के काठा गांव का है और उसका नाम साहिल देशवाल है। वीडियो में साहिल कह रहा है कि ये सब फेक है और मुंशी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था।
0: कहाँ के हैं आप, बताइए अपने बारे में।
8: बागपत जिला यूपी काठा से।
0: बागपत जिला के हैं, यूपी से है। तो आप तो ऑस्ट्रेलिया के बताया जा रहे हैं।
8: नहीं, ये सब फेक न्यूज
0: है। फेक न्यूज है। कौन है वीडियो बना के वायरल किया है?
8: भट्टे में मुंशी ने बना दी थी।
0: मुंशी ने बना दिया था।
7: साहिल ईट भट्टे पर काम करता है। इस अकाउंट से साहिल के कुछ और वीडियोस भी देखने को मिले। 16 फरवरी 2025 को साहिल की ईट भट्टे पर मजदूरी करने का एक और वीडियो पोस्ट किया गया था। एक इंस्टाग्राम यूजर ने 25 जून 2026 को वायरल वीडियो के बारे में जानकारी पोस्ट की है। इसमें वायरल क्लिप को भी देखा जा सकता है। वीडियो में एंडरसन के नाम से वायरल किए जा रहे युवक और उसके भाई ने इसे फेक बताया है। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वायरल वीडियो में मौजूद व्यक्ति का नाम साहिल है और वो यूपी के बागपत का रहने वाला है। आगरा में पासपोर्ट चोरी होने से ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंडरसन के मजदूरी करने का दावा बेबुनियाद है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे भारत।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
0: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
4: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
10: इंसानियत की मिसाल पेश करने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी क्षेत्र में स्कूल के एक वार्डन ने तेज बुखार से पीड़ित छात्रा को समय पर इलाज दिलाने के लिए करीब 6 किलोमीटर तक अपनी पीठ पर उठाकर पैदल सफर तय किया। इस भावुक पल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पर लोग इमोशनल कमेंट कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल वार्डन हेमा बीमार छात्रा को अपनी पीठ पर लेकर पहाड़ी और जंगल वाले कठिन रास्ते से गुजरती दिखाई दे रही है। बताया गया कि इलाके में वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद छात्रा को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का फैसला किया। करीब 6 किलोमीटर लंबे सफर में श्रीमती हेमा ने उबड़ खाबड़ रास्तों और पहाड़ियों को पार किया। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि छात्रा को बिना देर किए इलाज मिल सके। इंटरनेट पर अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के वांचो समुदाय की 3 नन्ही बच्चियों का एक वीडियो तेजी से तहलका मचा रहा है। अपनी कमाल की गायकी, जबरदस्त डांस मूव्स और गजब के स्वैग से इन बच्चियों ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है।

0: जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जा रही है। वीडियो का बैकग्राउंड भी बेहद खूबसूरत है, जहां अरुणाचल की हरी भरी वादियां दिखाई दे रही है। इन हसीन वादियों के बीच तीन छोटी बहनों को बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाना और थिरकना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है।
1: Okay.

0: ci come
1: इन दिनों एक नन्ही बच्ची का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग उसकी प्यारी आवाज और आत्मविश्वास की खूब तारीफ कर रहे हैं। वायरल वीडियो में छोटी बच्ची नीले रंग की फ्रॉक पहने बेहद मासूम अंदाज में बैठी दिखाई देती है। उसके हाथ में एक छोटा सा गिटार है, जिसे बजाते हुए वो गाना गाती है। उसकी मीठी आवाज, मासूम मुस्कान और गाने का अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले कई यूजर्स का कहना है कि बच्चे की सादगी और आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो किसी बड़े कलाकार या मजेदार कॉमेडियन का नहीं, बल्कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चों का है। बच्चों की मासूमियत और उनकी अलग सोच ने इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया है। जो भी इसे देख रहा है वे अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा। वीडियो में एक स्कूल की क्लास का नजारा दिखाई देता है। टीचर बच्चों को एक आसान सा काम देते हैं। उनसे कहा जाता है कि वे भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की ड्राइंग बनाएं। सुनने में यह काम बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में मोर बनाकर दिखाते हैं तब असली मजा शुरू होता है। हर बच्चे ने अपनी कल्पना के हिसाब से मोर बनाने की कोशिश की। किसी ने उसकी गर्दन इतनी लंबी बना दी कि वह जिराफ जैसी लगने लगी। किसी ने पंखों को ऐसे बना दिया कि उन्हें देखकर समझ ही नहीं आता कि यह मोर है या कोई दूसरी चिड़िया। कुछ बच्चों ने तो मोर का आकार और रंग भी अपनी पसंद के हिसाब से बना दिए। उनकी ड्राइंग देखकर साफ समझ आता है कि उन्होंने किताबों की तस्वीर की नकल करने के बजाय अपने दिमाग में जो तस्वीर बनाई उसे ही कागज पर उतार दिया। सबसे मजेदार बात यह रही कि बच्चों की इन अनोखी ड्राइंग्स को देखकर टीचर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। क्लास का माहौल हल्का फुल्का और खुशियों से भर गया। बच्चों के चेहरे पर भी अपनी बनाई तस्वीर दिखाने की खुशी साफ नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों की आंखों को नम और दिलों को खुश कर दिया है। एक कमर्शियल पायलट बेटे ने जब पहली बार अपनी माँ को प्लेन में बतौर कैप्टन सफर कराया तो वह पल बेहद भावुक कर देने वाला बन गया। वीडियो की शुरुआत में तपेश बोर्डिंग गेट पर खड़े होकर अपनी फ्लाइट के एक बेहद खास मेहमान का इंतजार करते दिखते हैं। जैसे ही उनकी माँ प्लेन में चढ़ने के लिए आगे बढ़ती हैं, दोनों के चेहरे की मुस्कान और एक दूसरे को गले लगाने का अंदाज यह बता देता है कि यह सफर दोनों के लिए कितना खास है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उड़ान भरने से पहले दोनों ने प्लेन के सामने एक शानदार तस्वीर खिंचवाई और फिर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए, जहां पहुंचने के बाद इस माँ बेटे की जोड़ी ने साथ में बेहतरीन समय बिताया। तपेश अपनी माँ को एक आलीशान होटल में ले गए। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे माँ ने अपनी जिंदगी में पहली बार स्विमिंग पूल का आनंद लिया और होटल में लजीज खाने का लुत्फ उठाया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इन दोनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स सिर के बल लगातार सीढ़ियां चढ़ते हुए अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता नजर आ रहा है। यह कारनामा देखकर लोग भी दंग रह गए और वीडियो पर तरह तरह के कॉमेंट आ रहे हैं। इस वीडियो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो में चीन के ली किंगबो बिना हाथों का सहारा लिए सिर के बल लगातार 40 सीढ़ियां चढ़ते दिखाई देते हैं। इसी के साथ उन्होंने इस अनोखे कारनामे का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया। बारिश का मौसम शुरू होते ही छाते की जरूरत पड़ती है, लेकिन छाता पकड़कर चलना कई बार मुश्किल हो जाता है। एक हाथ में छाता, दूसरे में बैग या मोबाइल और कभी कभी बच्चे को संभालना, ये सब बहुत परेशान करने वाला होता है। अब इस समस्या का क्रांतिकारी समाधान सामने आ गया है। कनाडा के इंजीनियर जॉन ने एक ऐसा उड़ने वाला छाता बनाया है जो हाथ में पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने देगा। यह फ्लाइंग अम्ब्रेला ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें डेप्थ सेंसिंग कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है, जो मालिक को